FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी बिलासपुर है। श्रोताओं, आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 की आषाढ़ माह की 19वीं तिथि, तदनुसार 10 जुलाई सन 2026।

0: ये आकाशवाणी बिलासपुर है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। हिंदी समाचार थोड़ी देर में आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया है। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
2: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार

0: स्तंभ बताया। श्री मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड की यात्रा होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुरक्षित सीमा, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और जागरूक समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। श्री शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन को संबोधित किया। इस सम्मेलन में जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों सहित सीमावर्ती राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन सीटों पर उपचुनाव इस महीने की 24 तारीख को होंगे। तीनों नेता कल तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव कानून की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति आज और कल गोवा में व्यापक विचार विमर्श करेगी। समिति अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत गोवा का दौरा कर रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में एक समान नागरिक संहिता UCC लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर कुवैत की यात्रा पूरी करने के बाद ओमान पहुंच गए हैं। उनके आगमन पर ओमान के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक शेख अहमद अल मस्करी ने उनका स्वागत किया। डॉ. जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, न्यूयॉर्क और ब्रुसेल्स की 11 दिन की यात्रा पर हैं। फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में पहले हाफ तक कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बापे ने 60वें मिनट में और उस्मान डेम्बले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। और ब्रिस्टल में चौथे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से हराया है। भारत के 159 रन के लक्ष्य को इंग्लैंड ने 37 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पूरे देश में सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर आज तेज वर्षा का अनुमान है। अगले 4 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश में तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: समाचार अभी हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। लीजिए पेश है देश वंदना और भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। श्रोताओं, राष्ट्र की सुरक्षा केवल सीमाओं पर तैनात सैनिकों की जिम्मेदारी नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। जब देश का हर व्यक्ति अपने दायित्वों को समझकर ईमानदारी, सतर्कता और जिम्मेदारी से निभाता है तो कोई भी बाहरी या आंतरिक खतरा राष्ट्र को कमजोर नहीं कर सकता।

पंडित नरेंद्र शर्मा का लिखा भक्ति गीत आपने सुना श्रीनिवास खाले के संगीत निर्देशन में, पंडित भीमसेन जोशी, लता मंगेशकर और साथियों के स्वर में। भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना इस समय आप आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से सुन रहे हैं।

सावेरी वर्मा का लिखा भक्ति गीत आपने सुना, अरुणिता कांजीलाल की आवाज में। संगीत तैयार किया था श्रेया पौराणिक ने। आराधना कार्यक्रम इस समय आप आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से सुन रहे हैं। श्रोताओं, सौंदर्य केवल आकर्षक रूप, वस्त्र या बाहरी व्यक्तित्व का नाम नहीं है। वास्तविक सुंदरता मनुष्य के अंतस की पवित्रता में निहित होता है। जब हृदय छल कपट ईर्ष्या द्वेष और अहंकार से मुक्त होकर प्रेम करुणा सत्य और सद्भाव से भर जाता है, तभी जीवन अपने वास्तविक अर्थों में सुंदर बनता है।

डॉक्टर मनोज सालपेकर का लिखा भक्ति गीत आपने सुना, अंतरानंदी और साथियों के स्वर में। संगीत तैयार किया था शैलेश दानी ने। आराधना कार्यक्रम इस समय आप आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से सुन रहे हैं।

0: पारंपरिक भजन आपने सुना, ओम व्यास का गाया हुआ। संगीत तैयार किया था विजय कुमार ने, और इसी के साथ आज की आराधना संपन्न हुई। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 6:30 हुए हैं। खेती की बात कार्यक्रम में आज जानकारी का विषय है मृदा स्वास्थ्य सुधार में बायो फर्टिलाइजर की भूमिका। वाचन स्वर हैं चित्रलेखा तिवारी के।
1: किसान संगी हुआ राम राम, जय जोहार। संगी हुआ आज खेती के बात में हम विषय लेके आए हैं माटी के स्वास्थ्य सुधार में बायो फर्टिलाइजर के का भूमिका हवे। जैसे कि हमार किसान भाई बहनी मन जानते, खेती के सबसे बड़े पूंजी अगर कुछ है तो वो है हमार माटी। जैसे मनखे मन बर स्वस्थ शरीर जरूरी होते, वैसा ही बढ़िया खेती बर स्वस्थ माटी के होना बहुत जरूरी है। अगर माटी स्वस्थ रही तब फसल ल पूरा पोषण मिलही और उत्पादन भी बढ़ी और खेती ले किसान के आमदनी घलो बढ़ी। फिर आजकल लगातार रासायनिक खातु के अधिक उपयोग, एक ठन फसल ल बार बार खेत में लेना और जैविक खातु के कम उपयोग के कारण माटी के सेहत हर बिगड़ जावत है। एकर ले माटी के उर्वरता घटत है और लाभदायक जो सूक्ष्म जीव होते माटी के अंदर में ओहर कम हो जाते। तो एकर कारण का होते फसल के उत्पादन में घलो असर पड़ते। यही समस्या के समाधान बर बायो फर्टिलाइजर यानी जैव उर्वरक के बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमार खेती किसानी के बूता में रहते। अब सवाल उठते आखिर बायो फर्टिलाइजर होते का? तो भाई बायो फर्टिलाइजर ऐसा ना जैविक उत्पादन है जेमा जीवित लाभदायक सूक्ष्म जीव रही थे। जब इला बीज या पौधा के जड़ में माटी में उपयोग करथन त ये सूक्ष्म जीव है जो एक अंदर रहते और सक्रिय हो जाते और जौन पौधा ला जरूरी पोषक तत्व चाहिए ओला हर उपलब्ध कराते। एमन खुद खातू नहीं हुए बल्कि माटी में पहली ले मौजूद पोषक तत्व जो रही थे ओला पौधा पर उपयोग योग्य बनाते। एकर कारण माटी के उर्वरता बढ़ते और फसल के विकास बढ़िया होते। तो किसान भाई बहनी मन माटी में लाखों करोड़ों प्रकार के सूक्ष्म जीव रही थे। कुछ हानिकारक होते तो कुछ लाभदायक कथन न भाई मित्र कीट कह के। तो बायो फर्टिलाइजर में यही लाभदायक जो सूक्ष्म जीव मित्र कीट होते ओकर उपयोग करते। ये मन माटी के प्राकृतिक शक्ति ला बढ़ाते और खेती ला टिकाऊ भी बनाते। आप जानबो के माटी के स्वास्थ्य सुधार में बायो फर्टिलाइजर के का महत्व होते। सबसे पहली भूमिका होते नाइट्रोजन उपलब्ध कराना। नाइट्रोजन फसल के बढ़वार पर सबसे जरूरी पोषक तत्व है। हवा में नाइट्रोजन के भरपूर मात्रा रही थे फिर पौधा सीधा एला प्रयोग नहीं कर सके तो ओकर में का होते राइजोबियम एजोटोबैक्टर और एजोस्पिरिलम जैसे जैव उर्वरक हवा के नाइट्रोजन माटी में स्थिर करके पौधा पर उपलब्ध कराते। एक बार का होते यूरिया के जरूरत नहीं पड़े और माटी के गुणवत्ता भी बढ़िया रहते। दूसरा महत्वपूर्ण भूमिका है फास्फोरस उपलब्ध कराना। हमार माटी में फास्फोरस तो रहते फिर ओकर बहुत सारा हिस्सा का होते अघुलनशील रूप में रहते जेकर ले पौधा तक ओ फास्फोरस नहीं पहुंच पावे। तब फास्फेट घुलनशील जीवाणु यानी PSB ये फास्फोरस ला घोल के पौधा पर उपलब्ध कराते और एकर से पौधा के जो जड़ है वो मजबूत होते, फूल दाना ये सब बढ़िया बनते। तीसरा भूमिका है माटी के जैविक गतिविधि ला बढ़ाना। बायो फर्टिलाइजर के उपयोग ले माटी में जो लाभदायक जीवाणु है ओकर संख्या बढ़ जाते। सूक्ष्म जीव जैविक पदार्थ ला सड़ा के पौधा पर पोषण तत्व तैयार करते और एकर से माटी हमेशा जीवंत बने रहते। चौथा भूमिका है माटी के संरचना ला सुधारना। जब माटी में जैविक गतिविधि बढ़ते तो माटी नरम भुरभुरा हो जाते। एकर ले का होते हवा के आवागमन बढ़ जाते, पानी सोखे के क्षमता बढ़ते, जड़ आसानी ले फैलते, वैसा माटी में फसल अधिक मजबूत और स्वस्थ रहते। ओकर बाद बात करबो रासायनिक खातु के ऊपर निर्भरता कम रहे के। ता आज किसान मन उत्पादन बढ़ाए बर का होते अधिक मात्रा में

0: रासायनिक खातू उपयोग करत हैं अपन खेत में, एकरे लागत तो बढ़ जाते पर माटी के स्वास्थ्य बिगड़ जाते। अगर जैव उर्वरक के संतुलित उपयोग करे जाए त रासायनिक खातू के जरूरत कम हो जाते, खेती करे में जो लागत आते वह घटते और पर्यावरण घलो सुरक्षित रहते। फिर बात करबो पौधा के रोग प्रतिरोधक क्षमता के, तो कुछ लाभदायक सूक्ष्म जीव पौधा के जड़ के चारों ओर सुरक्षा कवच बना डालते। एकर ले कई प्रकार के माटी जनित रोग जो है वो कम होते और पौधा स्वस्थ रहते। एक बात के विशेष ध्यान रखा, जैव उर्वरक जीवित सूक्ष्म जीव एला धूप में नहीं रखना है, हमेशा ठंडा और छांव वाला जगह में रखा। और आज देश में प्राकृतिक और टिकाऊ खेती ऊपर जोर दे जाते, एमा बायो फर्टिलाइजर के बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। सिर्फ एक जैव उर्वरक न है बल्कि माटी के जीवन शक्ति ल वापस लाए के प्रभावी साधन है। अंत में यही कि वो संगी हुआ कि स्वस्थ माटी, स्वस्थ फसल और समृद्ध किसान, ये तीनों बायो फर्टिलाइजर के मजबूत कड़ी है। आखिरी में एक बार और बता दी, माटी के स्वास्थ्य सुधार में बायो फर्टिलाइजर के भूमिका कौन प्रकार ली है। पहली तो माटी के उर्वरता बढ़ाते, दूसर पोषक तत्व तो उपलब्ध कराते, लाभदायक सूक्ष्म जीव के संख्या बढ़ाते, माटी के संरचना में सुधार करते और फसलवार के बढ़वार उत्पादन भी बढ़िया होते। आज के खेती के बात में अतके संगी हुआ, कल नवा विषय के संग फिर उपस्थित होबो। तब तक के लिए राम राम, जय जोहार।
1: खेती की बात कार्यक्रम में अभी आप जानकारी सुन रहे थे। विषय था मृदा स्वास्थ्य सुधार में बायो फर्टिलाइजर की भूमिका। वचन स्वर चित्रलेखा तिवारी का था। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। डीजे पेश है रामचरित मानस का गायन। मुख्य गायक कलाकार हैं ए हरिहरन और मिताली सिंह। संगीत सतीश भाटिया का है।

देवताओं के आग्रह ने सरस्वती को संकोच में डाल दिया। संपूर्ण जगत के कल्याण की भावना से प्रेरित सरस्वती ने रानी कैकेयी की मुंह बोली दासी मंथरा की बुद्धि फेर दी। श्री राम के राज्याभिषेक के लिए सजाई अयोध्या नगरी का उत्सव जैसा निखरा रूप मंथरा की आंखों में चुभने लगा। उदास होकर वो कैकेयी के पास पहुंची। कैकेयी मंथरा की उदासी का कारण पूछती हैं, किंतु वो चुप है। लंबी सांसें लेते हुए आंखों से आंसू ढरका रही है। कैकेयी को अंदेशा होता है कि महाराज दशरथ, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। कहीं उग्र स्वभाव वाले लक्ष्मण ने उसे दंडित तो नहीं किया है। तब मंथरा का त्रिया चरित्र मुखरित होता है। कहती है, उसे भला कोई दंड क्यों देगा? हे रानी, तुम्हारा पुत्र यहां से दूर परदेश में है और तुम यहां कोमल शैया पर पड़ी सुबह की मीठी नींद ले रही हो। राजा के छल कपट का ज्ञान तुम्हें क्यों होने लगा? मंथरा के मन का मैल कैकेयी से छुपा न रहा, किंतु उस पर क्रोध न कर कैकेयी ने राम के हृदय में अपने लिए उस स्नेह, आदर और सम्मान की बात कही जो माता कौशल्या को भी नहीं मिलता।

रामचरित मानस का गायन अभी आप सुन रहे थे। मुख्य गायक कलाकार थे ए हरिहरन और मिताली सिंह। संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का था। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। श्रोताओं, नवविहान कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको जानकारी देंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में।

श्रोताओं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भारत सरकार द्वारा 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा में शुरू की गई एक प्रमुख सामाजिक योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य घटते लिंगानुपात को रोकना, लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना और बालिकाओं की सुरक्षा, शिक्षा और सशक्तिकरण को सुनिश्चित करना है। ये योजना 3 मंत्रालयों, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। श्रोताओं, समाज में लड़कियों के जन्म का उत्सव मनाने और उन्हें बोझ न समझने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जाता है। इस योजना के तहत लिंग आधारित भेदभाव और कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए सख्त कानून जैसे PC और PNDT एक्ट लागू किया जाता है। शिक्षा और सशक्तिकरण के तहत लड़कियों को शिक्षा के माध्यम से सामाजिक और वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाना है। श्रोताओं, इस योजना की शुरुआत में इसे देश के केवल 100 चुनिंदा जिलों में लागू किया गया था, लेकिन शानदार सफलता के बाद अब इसका विस्तार पूरे भारत के सभी जिलों में कर दिया गया है। वर्तमान में ये योजना महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के व्यापक कार्यक्रम मिशन शक्ति के अंतर्गत संचालित की जा रही है। श्रोताओं, ये योजना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य गिरते बाल लिंग अनुपात की समस्या का समाधान करना है। इसके तहत लिंग आधारित भ्रूण हत्या को समाप्त करना और बालिकाओं के अस्तित्व और सुरक्षा की गारंटी देना है, बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना ताकि वे सामाजिक और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके। श्रोताओं, समाज में कन्या के जन्मदिन पर उत्सव मनाने की सोच विकसित करना और

बेटा बेटी एक समान का संदेश भी यह योजना देती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुख्य रूप से बालिकाओं के प्रति सामाजिक सोच बदलने और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने का एक राष्ट्रीय अभियान है। इसके तहत सरकार प्रत्यक्ष रूप से कोई नकद राशि तो नहीं देती, बल्कि बच्चियों के उज्जवल भविष्य के लिए उच्च शिक्षा में सहायता और सुकन्या समृद्धि योजना जैसे विशेष बचत खातों का लाभ मिलता है इस योजना के अंतर्गत।

कार्यक्रम नवविहान के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 6:50 हो चुके हैं। श्रोताओं, ये वक्त होता है कार्यक्रम विवरण का।

सुबह 8:30 पर हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे कार्यक्रम इनसे मिलिए। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से ही रिले करेंगे सुबह 9:55 पर और 11:55 पर। सुबह 7:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम आज सुबह। कार्यक्रम गांधी चर्चा का प्रसारण समय सुबह 7:20 पर। आज का विषय होगा ईश्वर आराधना, यादों के झरोखे से। पुराने फिल्मी गीतों का यह कार्यक्रम सुबह 7:30 पर और फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद आप सुनेंगे सुबह 10:30 पर। गुंजे स्वर गांव के इस कार्यक्रम में सुबह 10 बजे सुनेगा पारंपरिक पंथी गीत। गायक कलाकार होंगे डेरहा राम जांगड़े और साथी। बांस गीत सुनेगा दुर्योधन प्रसाद दुबे और साथियों से। प्रसंग होगा राजा सुंदर सिंह और रानी बेल कैना के किस्सा। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आप सुनेंगे सुबह 11 बजे। विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे सुबह 9 बजे से 9:55 तक, 11:30 से 11:55 तक, 12 बजे से शाम 5 बजे तक और फिर रात 9:15 से रात 11 बजे तक।

शाम 5 बजे सुनेगा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। चित्रपट संगीत शाम 5:05 पर, ईमेल करें गीत सुने शाम 6:20 पर और शाम 7 बजे रजनीगंधा रात 8:15 पर प्रसारित किया जाएगा। युवा जगत कार्यक्रम में शाम 5:35 पर आज की बात का विषय प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की रूपरेखा कैसी हो, साथी होगा क्रम अर्थ जगत और क्रम सवाल जवाब। शाम 7:20 पर ग्राम सभा कार्यक्रम में क्रम बेरा के गोट में चर्चा का विषय ग्राम सभा में पौधा लगाए के चर्चा कराओ पेड़ ला बचावा। शाम 7:30 सुनेगा फोन इन कार्यक्रम, विषय होगा जैव उर्वरकों का खरीफ फसलों में उपयोग एवं महत्व, विशेषज्ञ श्री जयंत साहू, विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर। साथी होगा गीत मौसम मंडी की जानकारी और किसान भाई बहनों को सामयिक सुझाव भी दिए जाएंगे। सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात 8 बजे कलाकार होंगे अनुराग शर्मा।

0: कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी बिलासपुर है, 6:55 हुए हैं। समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: श्रूयंताम प्रवाचिका निधि झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रावोचत् यत् एकविंशति शताब्द्याः भारतं विकसित भारतं भवितुं संकल्पबद्धं वर्तते। तेनोदीरितं यत् साम्प्रतं भारतं तादृशः देशः यः अधिक विकासे विश्वसिति। विगत द्वादश वर्षेषु स्वस्य तृतीयम् ऑस्ट्रेलिया भ्रमणं हैट्रिक इति विज्ञापयता तेन प्रतिपादितं यत् एषः प्रवासः भारत ऑस्ट्रेलिया संबद्धानां अपूर्व गमितां सूचयति। अत्रावसरे ऑस्ट्रेलिया देशस्य प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज अपि तत्र उपस्थितः आसीत्। तेन तत्रत्यं जनसमूहं वीक्ष्य एषा सहभागिता दृढतरा इत्युक्तम्। अस्मात् पुरा उभयोः देशयोर नेतृभ्यां मेलबर्न नगरे तृतीये भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलने भागं गृहीत्वा शिष्टमंडल स्तरीया द्विपाक्षिकी वार्ता विहिता। हिंद प्रशांत क्षेत्रे शांतिं स्थिरतां च स्थापयितुं द्वाभ्यां नेतृभ्यां रक्षा सुरक्षा सहयोग संयुक्त घोषणापत्रे हस्ताक्षरं विहितम्।
2: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
1: वार्ताहरान् संबोधयन् प्रधानमंत्री न्यगादीत् यत् भारत ऑस्ट्रेलिया देशाभ्यां परमाणु ऊर्जा क्षेत्रे ऐतिहासिकः सहयोगः साधितः। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः प्रत्यपादयत् यत् एकः सुरक्षितः समृद्धश्च सीमाप्रान्तः अथ जाग्रतः समाजः सम्भूय एव देशं सुरक्षितं विधातुं शक्नुवन्ति। गृहमन्त्रिणा ह्यः नवदेहल्याम् आरक्षक अधीक्षकाणां सम्मेलने सम्भाषणं कुर्वता प्रतिपादितं यत् वाइब्रेंट विलेजेस इत्यस्य क्रांतिकारी उपक्रमस्य अन्तर्गतं सीमा प्रान्तेभ्यः पलायनम् अपाकर्तुं प्रत्यग्रवृत्त्यवसराणां क्रियान्वयनं विधीयते। श्रीशाहः सविशेषं प्रावोचत् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः कुशल नेतृत्वे केन्द्रप्रशासनेन सीमावर्ती अवसंरचनासु वैज्ञानिक रीत्या 400% यावत् अभूतपूर्वो विकासो विहितः। देशे द्रुतगत्या प्रवर्धमानस्य सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी क्षेत्रस्य विविधासु अनियमिततासु वर्धमानां चिन्तां वीक्ष्य राष्ट्रिय महिला आयोगेन एका उच्चस्तरीया विशेषज्ञ समितिः निर्मिता। अत्रावधेयं यत् इयं समितिः महिलानां प्रजननाधिकाराणां प्रतिष्ठायाः सुरक्षायाश्च संरक्षणं करोति। तत्रैव आईवीएफ चिकित्सालयानां एआरटी केन्द्राणां अथ युग्मकोशानां नियन्त्रक तन्त्राणां प्रासंगिक विधानां च व्यापकं पुनरीक्षणं विधास्यति। संयुक्त राज्य अमेरिका बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र पार्श्वे वैमानिक आक्रमणं कृतवानिति ईरानेन आरोपितम्। ईरानस्य प्रशासनिक वार्ता संस्थया संसूचितं यत् एतत् आक्रमणं अमेरिका देशस्य सेना द्वारा स्व आक्रमणानि समापनस्य होरानन्तरमेव जातम्। इतः प्राग् अमेरिका देशेन ईरान देशस्य उपरि नूतनानि वायु आक्रमणानि कृतानि। यदा तु तेहरान देशः पश्चिमेशियायाम् अमेरिका सम्बद्ध

0: तद्देशान् लक्ष्यीकृत्य प्रक्षेपास्त्रप्रहारैः प्रत्युत्तरं दत्तवान्। ईरान देशस्य स्वास्थ्य मन्त्रालयः अवोचत् यत् अमेरिका देशेन कृतेषु दिनद्वयाक्रमणेषु न्यूनातिन्यूनं 14 जनाः मृताः। पादकन्दुक क्रीडायाम् अमेरिका देशस्य बोस्टन् नगरे आयोजिते प्रथमे प्रागुपान्त्यचरणस्य द्वन्द्वे फ्रांस दलं मैरिको दलं पराभूय उपान्त्यचक्रे प्रविष्टवत् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया है। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
2: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर जा रहा है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी आज ऑस्ट्रेलिया के नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से भी मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने तथा राजनीतिक सहयोग बढ़ाने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की संभावना है। श्री मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुरक्षित सीमा, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और जागरूक समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। श्री शाह कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों सहित सीमावर्ती राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये ईंधन मानक E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। हालांकि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जिन्हें विशेष रूप से इस ईंधन के उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री पुरी ने कहा कि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से इंजन को नुकसान पहुंचने और वाहनों के प्रदर्शन पर कुल प्रभाव पड़ने संबंधी आशंकाओं को वो खारिज करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा चुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराई को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन सीटों पर उपचुनाव इस महीने की 24 तारीख को होंगे। तीनों नेता कल तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में एक समान नागरिक संहिता UCC लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव कानून की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति आज और कल गोवा में व्यापक विचार विमर्श करेगी। समिति अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत गोवा का दौरा कर रही है। फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में पहले हाफ तक कोई गोल नहीं हुआ। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व के सेमीफाइनल में पहुंचा है। दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। ब्रिस्टल में चौथे टी20 क्रिकेट मुकाबले

0: में इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से हरा दिया। भारत के 159 रन के लक्ष्य को इंग्लैंड ने 37 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अच्छी बढ़त बना ली है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पूरे देश में सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर आज तेज वर्षा का अनुमान है। अगले 4 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार और मध्य महाराष्ट्र में तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: समाचार अभी हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 7:05 हुए हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम आज सुबह।

0: आज सुबह।
1: श्रोताओं, 4 महीनों की तपती गर्मी के बाद जुलाई का महीना राहत की सौगात लेकर आता है। कहीं रिमझिम बारिश तो कहीं झमाझम वर्षा, दिन भर बादलों से घिरा हुआ आसमान, सूर्यदेव कभी छिपते तो कभी आंख मिचौली करते नजर आ रहे हैं। धूप बादलों के पीछे सिमटी हुई है और ठंडी हवाओं ने मौसम को खुशनुमा बना दिया है। और ऐसी ही खूबसूरत सी सुबह में आप सभी का स्वागत कार्यक्रम आज सुबह में, और आज मैं हूं आपके साथ सीमा साहू।

श्रोताओं, वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष 10 जुलाई को मनाया जाता है। ये दिन तेल, कोयला और गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करने और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर, पवन और भूतापीय ऊर्जा को अपनाने के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। श्रोताओं, इस दिन की शुरुआत 2005 में लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया में हरित ऊर्जा प्रमोटर माइकल डी एंटोनोविच द्वारा की गई थी। यह दिवस इस बात पर जोर देता है कि कैसे व्यक्ति, समुदाय और देश अपनी ऊर्जा का स्वयं उत्पादन करके स्वतंत्र बन सकते हैं और जलवायु परिवर्तन से मुकाबला कर सकते हैं। इस तरह इस दिवस को मनाने का उद्देश्य व्यक्तियों, व्यवसायों और राष्ट्रों को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनने और टिकाऊ भविष्य की ओर कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करना है। श्रोताओं, ये दिन महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला की याद और उनके कार्यों को सम्मान करने का भी दिन है, जिन्होंने आधुनिक बिजली प्रणालियों और वैकल्पिक ऊर्जा समाधानों की नींव रखी थी। लगभग 80% से अधिक वैश्विक ऊर्जा आज भी जीवाश्म ईंधनों जैसे तेल, कोयला और गैस से आती है, जिसके कारण पर्यावरण को नुकसान होता है, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। इसीलिए स्वच्छ ऊर्जा पर जोर दिया जाता है। श्रोताओं, भारत जैसे देश इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और अपनी स्वच्छ ऊर्जा क्षमता का विस्तार भी कर रहे हैं। हमारे भारत का लक्ष्य 2030 तक अपनी अधिकांश ऊर्जा गैर जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त करना है। स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कुछ योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें एक योजना पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, जिसके तहत छतों पर सौर ऊर्जा पैनल लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

0: हरित ऊर्जा परिवर्तन के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग और पवन और सौर ऊर्जा जैसे विकल्पों को तेजी से बढ़ाना है। श्रोताओं, नवीकरणीय ऊर्जा के व्यापक उपयोग से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में महत्वपूर्ण कमी लाई जा सकती है। ये दिन नवीकरणीय स्रोतों जैसे कोयला और तेल की खपत को कम करके पर्यावरण के अनुकूल हरित भविष्य की ओर बढ़ने का संदेश देता है। ये थी दिन विशेष की चर्चा और अब आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुन लेते हैं आज का ट्रैफिक अपडेट।
1: उमाशंकर पांडे लीजिए प्रस्तुत है जिले की आज की यातायात व्यवस्था दैनिक कार्यक्रम ट्रैफिक अपडेट सा बिलासपुर। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज दोपहर कांग्रेसजनों के द्वारा अपनी मांगों के संबंध में नेहरू चौक में विरोध प्रदर्शन किए जाने की योजना है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज दोपहर 12 बजे कांग्रेस भवन के पास एकत्र होकर रैली स्वरूप नेहरू चौक आकर विरोध प्रदर्शन किए जाना प्रस्तावित है। जैसा कि यह सर्वविदित है कि नेहरू चौक शहर का सबसे बड़ा और तमाम दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण चौक है, इसलिए विरोध जता रहे सभी सदस्यों से अनुरोध है कि ध्यान रहे आपके प्रदर्शन से आम यातायात या शासकीय कार्य किसी भी स्थिति में बाधित ना हो। इसके साथ ही गांव-गांव से लेकर शहर तक अर्थात संपूर्ण बिलासपुर जिले की यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। मित्रों, ये बड़ी विडंबना है कि हिंदू राष्ट्र भारत में जहां गाय को गौ माता के नाम से जाना जाता है, वहीं अब गौ पालकों का इनके प्रति मोह या लगाव निरंतर कम होता जा रहा है। लोग अपनी गायों

0: इनके प्रति मोह या लगाव निरंतर कम होता जा रहा है। लोग अपनी गायों को दूध देना बंद करते ही स्वच्छंद छोड़ देते हैं, जिससे ये गौधन यत्र तत्र विचरण करते रहते हैं। सूखे दिनों में तो ये मवेशी कहीं भी रहकर अपना जीवन काट लेते हैं, किंतु वर्षा इनके लिए घातक होती है। सभी जगह धरती गीली होने से या पानी भरा होने से अपने मालिकों से उपेक्षित पशुधन सूखे स्थान की तलाश में सड़कों में आकर डेरा डालते हैं। जिले की प्रायः सभी सड़कों में सैकड़ों की संख्या में मवेशी देखे जा सकते हैं। सड़कों में मवेशियों की उपस्थिति से सड़कें क्षतिग्रस्त होती हैं, गंदगी फैलती है। इतना ही नहीं, सड़क दुर्घटना के कारण भी ये बनते हैं। विशेषकर रात के समय दो पहिया चालक इनसे टकरा कर गंभीर सड़क दुर्घटना के शिकार होते हैं, गंभीर रूप से घायल होते हैं या मारे भी जाते हैं। इसके अलावा भारी वाहन की चपेट में आकर ये बेचारे मूक पशु बड़ी संख्या में मारे जाते हैं। सभी गौपालकों से निवेदन है, अपने गौधन को संभाल कर सुरक्षित रखें, क्योंकि अब शासन इसमें कड़ा रुख अपनाने जा रहा है। सतर्क हो जाएं, हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। आपकी यात्रा शुभ हो।
1: ये था आज का ट्रैफिक अपडेट। श्रोताओं, हर साल 10 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस। इसका मुख्य उद्देश्य मत्स्य पालकों और वैज्ञानिकों के योगदान को सम्मान देना तथा नीली क्रांति को बढ़ावा देना है। ये दिन 10 जुलाई 1957 को भारतीय मत्स्य पालन क्षेत्र में हुए एक क्रांतिकारी अनुसंधान की याद में मनाया जाता है। इसी दिन वैज्ञानिक प्रोफेसर डॉ हीरालाल चौधरी और डॉ के एच अली कुन्ही ने हाइपोफिशिएशन नामक प्रेरित प्रजनन तकनीक की सफलता प्राप्त की थी। इस तकनीक के जरिए मछलियों के कृत्रिम प्रजनन का मार्ग प्रशस्त हुआ था, जिसने भारतीय जलीय कृषि में भारी बदलाव किया। श्रोताओं, ये दिन मत्स्य पालकों की कड़ी मेहनत और देश की खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उनके योगदान को मान्यता देता है। सरकार और विभिन्न संस्थाएं इस अवसर पर सेमिनार और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती हैं, ताकि किसानों को आधुनिक और वैज्ञानिक मछली पालन तकनीक के बारे में जागरूक किया जा सके। और अब आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये संदेश।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: श्रोताओं, दिग्गज भारतीय शायर और हिंदी उर्दू के गीतकार अशद भोपाली, जिनका वास्तविक नाम असदुल्ला खान था, इन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में 400 से ज़्यादा सदाबहार गीत लिखे। 1949 की फिल्म दुनिया में उन्हें अपना पहला ब्रेक मिला। उनके पास शब्दों का ऐसा भंडार था कि संगीतकार अक्सर उन्हें गीत लिखने की मशीन कहा करते थे। आज ही के दिन 1921 में जन्म हुआ था शायर और गीतकार असद भोपाली जी का। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं इन्हीं का लिखा हुआ एक खूबसूरत सा गाना।

0: इसी के साथ कार्यक्रम आज सुबह बस यहीं तक। आज्ञा दीजिए सीमा को।
1: आज सुबह
0: अभी आप सुन रहे थे प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह आकाशवाणी का। ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 7:20 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम गांधी चर्चा। आज का विषय है ईश्वर आराधना।

बापूजी से प्रश्न किया था कि ईश्वर भजन प्रार्थना किस तरह और किसकी करें, यह समझ में नहीं आता। और आप तो बार बार लिखते हैं प्रार्थना करो प्रार्थना करो, सो समझाइए कि कैसे। इस प्रश्न के उत्तर में बापूजी ने लिखा है, ईश्वर भजन का अर्थ है उसके गुण का गान, प्रार्थना का अर्थ है अपनी अयोग्यता की, अपनी अशक्ति की स्वीकृति। ईश्वर के सहस्त्र अर्थात अनेक नाम है, अथवा यूं कहिए कि वो नामहीन है। जो नाम हमको अच्छा मालूम हो उसी नाम से हम ईश्वर को भजें, उसकी प्रार्थना करें। कोई उसे राम के नाम से पहचानते हैं तो कोई कृष्ण के नाम से, कोई उसे रहीम कहते हैं तो कोई गॉड। ये सभी एक ही चैतन्य को भजते हैं। परंतु जिस प्रकार एक ही तरह का भोजन सबको नहीं रुचता, उसी तरह एक नाम भी सबको नहीं रुचता। जिसका जिससे संपर्क होता है उसी नाम से वो ईश्वर को पहचानता है, और यह अंतर्यामी सर्वशक्तिमान होने के कारण हमारे हृदय के भाव को पहचान कर हमारी योग्यता के अनुसार हमारी सुनता है। अर्थात प्रार्थना या भजन जीभ से नहीं वरन हृदय से होता है। इसी से गूंगे तोतले मूढ़ भी प्रार्थना कर सकते हैं। जीभ पर अमृत और हृदय में हलाहल हो तो कोई जीभ का अमृत किस काम का? कागज के गुलाब से सुगंध कैसे निकल सकती है? इसलिए जो सीधे तरीके से ईश्वर को भजना चाहता हो उसे अपने हृदय की शुद्धि कर लेनी चाहिए। हनुमान की जीभ पर जो राम था वही उनके हृदय का स्वामी था, और इसी से उनमें अपरिमित बल था। विश्वास से जहाज चलते हैं, विश्वास से पर्वत उठाया जा सकता है और समुद्र लांघा जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि जिसके हृदय में सर्वशक्तिमान ईश्वर का निवास है वो क्या नहीं कर सकता, फिर भले ही वो कोढ़ी हो या क्षय का रोगी। जिसके हृदय में राम बसते हैं उसके सब रोग सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। ऐसा हृदय किस प्रकार बन सकता है, यह सवाल प्रश्नकर्ता ने नहीं पूछा है, परंतु मेरे जवाब में से यह प्रश्न निकलता है। मुंह से बोलना तो हमें कोई भी सिखा सकता है, पर हृदय की वाणी कौन सिखा सकता है? ये तो भक्तजन ही कर सकते हैं। भक्त किसे कहें? गीता जी में 3 जगह खास तौर पर और सब जगह आम तौर पर इसका विवेचन किया गया है, परंतु उसकी संज्ञा या व्याख्या मालूम हो जाने से भक्तजन मिल नहीं जाते, इस जमाने में भी दुर्लभ है। इसी से मैंने तो सेवा धर्म पेश किया है। जो औरों की सेवा करता है उसके हृदय में ईश्वर अपने आप खुद अपनी गरज से रहता है। इसी से अनुभव ज्ञान प्राप्त नरसिंह मेहता ने गाया है, वैष्णो जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। और पीड़ित कौन है? अंत्यज और कंगाल। इन दोनों की सेवा तन मन धन से करनी चाहिए। जो अंत्यज को अछूत मानता है वो उसकी सेवा तन से क्या करेगा? जो कंगाल के लिए चरखा चलाने जितना भी शरीर हिलाने में आलस्य करता है, अनेक बहाने करता है, वो सेवा का मर्म नहीं जानता। कंगाल यदि अपंग हो तो उसे सदा वर दिया जा सकता है, पर जिसके हाथ पांव है उसे बिना मेहनत के भोजन देना मानो उसको नीचे गिराना है। जो मनुष्य कंगाल के सामने बैठकर चरखा चलाता है और उसे चरखा चलाने के लिए बुलाता है वो ईश्वर की अनन्य सेवा करता है। भगवान ने कहा है, जो मुझे पत्र पुष्प जल इत्यादि भक्तिपूर्वक अर्पित करता है वो मेरा सेवक है। भगवान कंगाल के घर अधिक रहते हैं, यह तो हम निरंतर सिद्ध हुआ देखते हैं। इसी से कंगाल के लिए कातना महाप्रार्थना है, महायज्ञ है, महासेवा है। अब प्रश्नकर्ता की बात का जवाब देना आसान हो गया। ईश्वर की प्रार्थना किसी भी नाम से की जा सकती है। उसकी सच्ची रीति है हृदय से प्रार्थना करना। हृदय की प्रार्थना सीखने का मार्ग सेवा धर्म है।

इस युग में जो हिंदू अंत्यज की सेवा हृदय से करता है वो शुद्ध प्रार्थना करता है। हिंदू और हिंदुस्तान के अन्य धर्मावलंबी जो गरीबों के लिए हृदय से चरखा चलाते हैं, सेवा धर्म का पालन करते हैं और हृदय से प्रार्थना करते हैं। नवजीवन पत्रिका के एक अंक में बापूजी ने मनुष्य द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में उन्होंने कहा है कि अपनी त्रुटियों को जानकर उन पर आंसू बहाना अनुचित है। अपनी त्रुटियों का निरीक्षण तो हमें उनमें सुधार करके ही करना चाहिए। हम अपनी त्रुटियों से अच्छी तरह परिचित हैं और उन्हें दूर करने का उपाय भी एक ही है। हम में से जो अपनी त्रुटियों को जान जाए उन्हें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि उन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। अन्य लोग देखें अथवा न देखें, परंतु हमें चुपचाप अपना काम करते रहना चाहिए। यदि किसी गांव में एक ही व्यक्ति खादी प्रेमी हो और केवल वही चरखा चलाता हो तो भी वो हार नहीं मानेगा, अपितु स्वयं नियम पूर्वक कातने बैठेगा और अपने विश्वास पर दृढ़ रखकर चरखा चलाता रहेगा। इस यज्ञ का, धैर्य का, तपश्चर्या का आसपास के वातावरण पर प्रभाव पड़े बिना न रहेगा। सब महान कार्य इसी तरह जुड़े हुए हैं। यदि राक्षसों के दल को देखकर राम हिम्मत हार गए होते तो क्या होता? कौरवों की विशाल सेना के विरुद्ध अपनी छोटी सी सेना देखकर अपार अर्जुन भाग खड़ा होता तो? यदि गैलीलियो लोकमत से धर्मांध पादरियों से घबराकर अपना विश्वास खो बैठता तो उसका परिणाम क्या होता? हम सारे जगत से ढूंढ ढूंढ कर ऐसे उदाहरण इकट्ठे कर सकते हैं। प्रारंभ तो हमेशा एक ही दृढ़ पुरुष अथवा स्त्री से होता है और यदि वो व्यक्ति धीरज से काम लेता है तब या तो समस्त संसार को अपनी ओर आकर्षित करता है अथवा विनम्र और सच्चा बनकर अपने भूल को देखता है, उसे स्वीकार करता है और उसमें सुधार करता है। कल्याणकृत किसी व्यक्ति की कभी दुर्गति नहीं होती, ये भगवत वचन है। नहि कल्याणकृत कश्चित दुर्गति तात गच्छति। सच्चा प्रयत्न करने वाले सब लोग कल्याणकृत हैं, उनकी भूल भी जगत के लिए हानिकारक सिद्ध नहीं होती। और इसके विपरीत जो लोग कल्याण को दृष्टि में रखकर कार्य नहीं करते उनके अव्यवस्थित चित्त का प्रसाद अथवा कृपा का परिणाम भी भयंकर होता है। आज की गांधी चर्चा हम यहीं संपन्न करते हैं। अनुमति दीजिए। नमस्कार।

दास्तान फिल्म का गाना आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और सुरैया की आवाज़ों में। गीत लिखा था शकील बदायूनी ने और धुन तैयार की थी नौशाद ने।

0: असद भोपाली का लिखा गीत आपने सुना, गीता दत्त और तलत महमूद की आवाज़ों में। लाल परी फिल्म के इस गीत के संगीतकार थे हंसराज बहल। पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादों के झरोखे से इस समय आप आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से सुन रहे हैं।
1: बड़ी बहू,
2: ये तुम्हारे नाम।
1: इतनी भी क्या जल्दी थी?
2: अरे और छोटी, ये तुम्हारे नाम।
1: और ये मेरी गुड़िया के
3: नाम। दादी
2: हाँ?
3: आपके नाम?
4: सब कुछ, मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
2: शुभ शुभ बोलो।

0: क्या?
1: RBI कहता है।
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

0: मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। संगीत तैयार किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और फिल्म थी धरती कहे पुकार के।
1: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
2: देश की सुरीली धड़कन
3: विविध भारती,
1: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
2: कुछ बातें कुछ गीत कायम रहे छाया गीत।
1: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
2: वीर सैनिकों की जय माला
1: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
2: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग
4: सखी सहेली,
2: बॉम्बे टॉकीज
5: और सेल्यूलॉइड के सितारे,
2: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
6: मुझे याद सब है जरा जरा,
1: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
2: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन
1: मन का सुकून दिल की आरती
2: सुरीली संदली।

शैलेंद्र का लिखा गीत आपने सुना आशा भोसले और किशोर कुमार के युगल स्वरों में। नॉटी बॉय फिल्म के इस गीत के संगीतकार थे सचिन देव बर्मन। पुराने फिल्म गीतों का कार्यक्रम यादों के झरोखे से इस समय आप आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से सुन रहे हैं।

0: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
1: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
0: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
0: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।

प्रेम धवन का लिखा गीत आपने सुना, शमशाद बेगम और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। संगीत निर्देशन हंसराज बहल का था। फिल्म थी सावन। यादों के झरोखे से कार्यक्रम इस समय आप आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से सुन रहे हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले हम आपको याद दिला दें, सुबह 8:30 पर हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे कार्यक्रम इनसे मिलिए। रायपुर केंद्र से ही रिले करेंगे प्रादेशिक समाचार 9:55 पर और 11:55 पर। गुंजे स्वर गांव के ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 10:00। आज आप सुनेंगे पारंपरिक पंथी गीत, गायक कलाकार होंगे डेरहा राम जांगड़े और साथी। बांस गीत में आज प्रसंग होगा राजा सुंदर सिंह और रानी बेल कैना के किस्सा। गायक कलाकार दुर्योधन प्रसाद दुबे और साथी। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद पेश करेंगे सुबह 10:30 पर। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का प्रसारण समय होगा सुबह 11:00। ये थी कार्यक्रम संबंधी कुछ सूचनाएं। और अब आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये गाना।

साहिर लुधियानवी का लिखा गीत आपने सुना सचिन देव बर्मन के संगीत निर्देशन में, गीता दत्त और साथियों के स्वर में। फिल्म थी बाजी। और इसी के साथ पुराने फिल्म गीतों का कार्यक्रम यादों के झरोखे से अब समाप्त होता है। श्रोताओं एक सूचना सुनिए। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है जो 18 वर्ष से कम उम्र के बालक बालिकाओं को वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। नामांकन या अनुशंसा ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https awards.gov.in पर 31 जुलाई 2026 तक जमा किया जा सकता है। विस्तृत विवरण राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर जाकर प्राप्त किया जा सकता है। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 MHz पर। सुबह के 8 बजने ही वाले हैं समाचार प्रभात। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: जल है तो हम है। आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पे और शाफ्ट बनवाए। अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें। जलाशयों से गाद निकालें। अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूजीलैंड की दो दिन की यात्रा पर ऑकलैंड पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद में सुपुर्दे खाक किया गया। अमरीकी और इसराइली हमलों में उनकी मृत्यु के 4 महीने बाद हुआ अंतिम संस्कार। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। और पुरुष टी20 क्रिकेट में इंग्लैंड ने चौथे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजय बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई है। ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ है। दोनों देशों ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में 3री ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
2: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात

0: गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
1: बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में चिप से लेकर जहाजों तक के विनिर्माण का तंत्र विकसित किया जा रहा है।
0: आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है। पीपल फर्स्ट यानी नागरिक देवो भव का मंत्र, ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ आज मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा किया। दोनों नेताओं के बीच हुई चर्चा क्रिकेट सहयोग, खेल अवसंरचना, आईपीएल बीबीएल साझेदारी और 2032 में ब्रिस्बेन ओलंपिक और भारत की 2036 में ओलंपिक के लिए बोली सहित प्रमुख वैश्विक खेल आयोजनों से पहले सहयोग पर केंद्रित थे। ऑस्ट्रेलिया यात्रा के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से मुलाकात की। उन्होंने श्री टेलर से भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रगाढ़ होते संबंधों और भविष्य में आने वाले अवसरों पर सार्थक चर्चा की। एक रिपोर्ट।
2: यह बैठक इस बात का स्पष्ट संकेत देती है कि ऑस्ट्रेलिया की संसद में भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों का व्यापक और मजबूत समर्थन प्राप्त है। रणनीतिक साझेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए नेता प्रतिपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्यूजीलैंड का सच्चा मित्र बताया। दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि यह सहयोग राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिखर वार्ता के प्रमुख निष्कर्षों के अनुरूप श्री टेलर ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम के निर्यात का समर्थन किया। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: श्री मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए ऑकलैंड पूरी तरह तैयार है। यहां बसे भारतीय समुदाय के साथ साथ स्थानीय न्यूजीलैंड वासी भी पारंपरिक माओरी अभिवादन किया ओरा मोदी कहकर उनका स्वागत करने को उत्सुक हैं। महिलाएं, युवा, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, शिक्षाविद और विभिन्न सामुदायिक संगठनों के सदस्य इस यात्रा को भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत मान रहे हैं। उनका विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा व्यापार, शिक्षा, निवेश, खेल और सांस्कृतिक सहयोग को नई गति देगी। प्रवासी भारतीयों का कहना है कि करीब 4 दशकों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आगमन उनके लिए गर्व, सम्मान और भावनाओं से जुड़ा एक ऐतिहासिक पल है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड से।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
0: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: का साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी सम्मेलन में उपस्थित रहे।
3: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत पलायन रोकने, रोजगार सृजित करने और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का 100% कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। भारत म्यांमार सीमा पर 31,000 करोड़ रुपए की लागत से बाड़ लगा रही है। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति का आकलन करके प्रवर्तन में सुधार के उपायों की पहचान कर देश के सीमा सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना था। अक्षित के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये ईंधन मानक E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। हालांकि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जिन्हें विशेष रूप से इस ईंधन के उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री पुरी ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से इंजन को नुकसान पहुंचने और वाहन के प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने संबंधी शंकाओं को भी खारिज किया। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता UCC का मसौदा तैयार करने के उद्देश्य से 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल महाराष्ट्र विधानसभा में इसकी घोषणा की। एक रिपोर्ट।
4: सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली ये समिति अगले 6 महीने में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। इसके आधार पर सरकार आगामी शीतकालीन सत्र में नागपुर में विधानसभा और विधान परिषद में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। न्यायमूर्ति रंजना देसाई इससे पहले उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की भी अध्यक्ष रह चुकी हैं। उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना था। इसके बाद गुजरात ने अपना UCC कानून पारित किया, जबकि असम इस वर्ष ऐसा करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
2: भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराई को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन सीटों पर उपचुनाव इस महीने की 24 तारीख को होंगे। तीनों नेता कल तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद स्थित इमाम रजा दरगाह में अंतिम विदाई दी गई। हजारों समर्थक उनके अंतिम दर्शन के लिए एकत्रित हुए। ईरानी मीडिया ने बताया कि उनके सबसे बड़े बेटे सैयद मुस्तफा खामनेई ने अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की। इस वर्ष 28 फरवरी को अमरीका इसराइल के हमलों में आयतुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई थी। और अब खेल खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
5: फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पहले हाफ में कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बापे ने 60वें मिनट और उस्मान डेम

0: उस्मान डेम्बेले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। विंबलडन टेनिस में महिला सिंगल्स का फाइनल चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा और कैरोलिना मुचोवा के बीच खेला जाएगा। लिंडा नोस्कोवा ने सेमीफाइनल में यूक्रेन की मार्टा कोत्स्युक को हराकर पहली बार विंबलडन और ग्रैंड स्लैम फाइनल में जगह बनाई है। वहीं कैरोलिना मुचोवा ने अमेरिका की कोको गॉफ को हराकर खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया।
1: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद फरहत। भारत द्वारा ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम खरीदने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, भारत को ऑस्ट्रेलिया करेगा यूरेनियम की आपूर्ति, गगनयान मिशन में भी देगा साथ। जनसत्ता के शब्द हैं, भारत ऑस्ट्रेलिया में रक्षा करार, व्यापार सौदे पर तेजी से काम। अंतरिक्ष में भेजा दुनिया का पहला कमर्शियल परमाणु संचालित सैटेलाइट, सफल लॉन्चिंग। अंतरिक्ष में ऊर्जा के लिए सूरज पर नहीं रहेंगे निर्भर, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। आसमान बरसा, एनसीआर थमा, तीन साल बाद दिल्ली में एक दिन में हुई सबसे ज्यादा बारिश। नवभारत टाइम्स ने कल बारिश से बेहाल लोगों की अलग अलग तस्वीरें प्रकाशित की हैं। पत्र लिखता है, सड़कों और अंडरपास में भरा पानी, कई जगह लगा जाम। दैनिक भास्कर ने बीजापुर के इंद्रावती टाइगर रिजर्व के खुलने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, पहली बार बीजापुर के जंगल में सफारी, 40 साल जिन नक्सलियों ने आने से रोका था, वहीं पर्यटकों को घुमाएंगे, प्रशिक्षण देकर नक्सलियों को गाइड बनाने की है तैयारी। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर पश्चिम एशिया पर फिर से अस्थिरता के बादल मंडराने पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, आक्रामक ट्रंप से अस्थिर दुनिया। पत्र लिखता है, जब तक व्यापक बातचीत के जरिए हॉर्मुज जलमार्ग का विवाद नहीं सुलझाया जाएगा, तब तक अमेरिका और ईरान दुनिया के अन्य देशों की परेशानी बढ़ाते रहेंगे।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूजीलैंड की दो दिन की यात्रा पर ऑकलैंड पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद में सुपुर्द खाक किया गया। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पुरुष टी20 क्रिकेट में इंग्लैंड ने चौथे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: समाचार अभी हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे थे। ये आकाशवाणी बिलासपुर है, कार्यक्रम इनसे मिलिए। अब हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम इनसे मिलिए। आज इसमें सुनिए पखावज और बांस वाद्य से जुड़े कलाकार श्री शुभाशीष सबसांची से ली गई भेंट वार्ता। भेंट करता है दीपक हटवार।

इनसे मिलिए कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को दीपक हटवार का नमस्कार। श्रोताओं, आकाशवाणी के माध्यम से प्रतिदिन मधुर संगीत हमारे घर आंगन में गुंजायमान होता है, और जब बात संगीत की होती है तो संगीत की दुनिया बहुत बड़ी है, और इस दुनिया में बहुत सारे साज पाए जाते हैं। उन्हीं साजों में तालवाद्य भी हैं, और कुछ साज ऐसे हैं जो बांस से बने होते हैं। तो आज इस कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है एक ऐसे कलाकार को जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और ताल वाद्य के एक बहुत ही प्राचीन और पारंपरिक वाद्य यंत्र

0: पखावज वादन से जुड़े हुए हैं और पखावज के साथ साथ आप बांस वाद्य से भी जुड़े हुए हैं। आप हैं श्री शुभाशीष सबसाची। इस कार्यक्रम में शुभाशीष जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: हाँ नमस्कार।
0: शुभाशीष जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका जन्म और प्रारंभिक शिक्षा कहाँ की है।
1: मेरा जन्म कोलकाता में हुआ। कोलकाता एक सांगीतिक परिवार। मेरा पिताजी स्वर्गीय जगजीवन घोष आज हमारे मध्य नहीं है, तो उनका अनुप्रेरणा था। और दूसरी बात, मेरा दादाजी मतलब मेरा पिताजी का जो चाचा थे वो भी सुप्रसिद्ध गायक जाने माने कलाकार पंकज कुमार मल्लिक से भी तालीम लिए थे। उनका जल्दी उन्होंने चला गया। उसके बाद उस दरबार को पिताजी बचा के रखे थे और उस सिलसिला को जारी रखते हुए मेरा माध्यम में भी इसका जो इम्प्लीमेंट हुआ पिताजी के द्वारा।
0: वर्तमान में अभी आप हमारे छत्तीसगढ़ में भी संगीत से संबंधित एक विशेष शोध कर रहे हैं, उसके बारे में बताएं।
1: मैं आभारी हूँ इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के, क्योंकि मेरा जो शोध है वहाँ से चल रहा है और ये बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक है, वेरी क्रिटिकल टॉपिक एम्बिडेक्सटर प्लेइंग की ऊपर है, उसके ऊपर मेरा शोध चल रहा है। और मैं खुद भी एम्बिडेक्सटर प्लेयर हूँ, तो मैं सिर्फ नॉट ओनली म्यूजिशियन बट ऑल्सो अदर आर्टिस्ट जो दोनों हाथ का कार्य करते, उसके ऊपर एक चिंतन मेरा शुरू में ही था और उसके ऊपर मैं कशिश की और फाइनली मैंने इसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी का रजिस्ट्रेशन हुआ और यहाँ से काम शुरू हुआ।
0: शुभाशीष जी, आप पखावज वादन से भी जुड़े हैं और साथ ही बांस वाद्य जिसे बैम्बू आर्ट्स कहा जाता है उससे भी आप जुड़े हुए हैं, तो आप बताएं कि पखावज से पहले जुड़े हैं या फिर बांस वाद्य से।
1: सर, शुरुआती दिन में तो मैं तबला से शुरू किया था। मैं छोटा था, 4 साल साढ़े 4 साल की उम्र में तबला। इसके बाद तबला तो बहुत लोग बजाते बचपन में, बहुत जाने माने कलाकारों का और कई मतलब एक इंस्पिरेशन तबला को तो मिलते ही गया, सब लोग तबला जानते हैं। लेकिन शुरुआती मेरा जो पखावज का हुआ, जिसे लोग मृदंग भी कहते हैं, वो रामाकृष्ण मिशन में जब मैं एडमिशन लिया था क्लास 5 में, दोस डेज स्टिल रिमेम्बरिंग, तो वहाँ पे खंडन भव बंधन स्वामी विवेकानंदों का रचना जोहा का मेडिटेशन संग, वहाँ से स्वामी जी लोगों को पखावज बजाते देखते हुए, जो उसमें आटा लगाते थे, तो आटा देके एक ऐसा वाद्यकोण है जिसका प्राण प्रतिष्ठा होता है, तो उसमें धीरे धीरे मेरा उसकी तरफ मेरा आकांक्षा बढ़ी। और जैसे जैसे चलते हुए पापा को भी मैं उसके बारे में बताया, इंटरेस्ट जैसे ही दिखा पापा भी मुझे एक छोटा पखावज लेके, पापा का एक गुरु था उनके पास, शुरू शुरू में मेरा थोड़ा थोड़ा तालीम शुरू हुआ।
0: उसके बाद आपके जो पखावज के गुरु रहे हैं जिनसे आपने सीखा है
1: जी,
0: वे कौन कौन रहे हैं?
1: कोलकाता में गुरु गुरुदास घोष जी, जो मुझे बहुत ही हेल्प किया, एकदम ट्रू ट्रेडिशन ऑफ गुरु शिष्य परंपरा जिसको कहते हैं, ऐसे शिक्षा दिया। 10 साल तालीम मैंने लिया उनसे। उसके बाद मैं आई स्टूड फर्स्ट ऑल इंडिया रेडियो कंपटीशन, आप जानते होंगे वो कितना मुश्किल कंपटीशन, उसमें मैं कोलकाता से भी फर्स्ट हुआ, पूरे इंडिया से भी, दिल्ली से भी प्रथम होके वहाँ से जो प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल मिलता है वो मुझे मिला। इसके बाद मैं और दिल्ली में रहना शुरू किया, तब पंडित डालचाँद शर्मा जी से भी मैं पखावज का तालीम ली।
0: शुभाशीष जी, अगर हम आज के सांगीतिक माहौल की बात करें तो तबले और पखावज में जो मांग की बात है, डिमांड की बात है, वो किसकी ज़्यादा है?
1: देखिए, मैं हमेशा ये कहूँगा तबला वेरी कॉमर्शलाइज पॉपुलर हुआ, वो हर जगह हर डांस में गाने में तबला एक क्या बोलूँ मतलब बहुत ही इजी टू विजुअलाइज, मतलब एकदम आपको हर जगह दिखते। और तबला बजाना भी मैं आसान

0: तो नहीं कहूंगा, तबला बजाना पखावज से तुलनामूलक सहज है, क्योंकि उंगली का वाद्य है और ये पखावज जो है ये थाप का वाद्य है। तो एक छोटा बच्चा पखावज शुरू करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो थापिया से बाजते हैं। दूसरी बात, उसका आटा का गूंज, कितना आटा लगाना है, तो थोड़ा क्रिटिकल तो है ही। और वो बैरल ड्रम है, तबला सीधा दीख के बजा सकते हैं, आप दोनों साइड एक साथ पखावज का दीख नहीं सकते। इसलिए मैं ये कहूँगा पखावज का से तबला का इसीलिए प्रचार हुआ, क्योंकि उसका अवेलेबिलिटी, उसका प्लेइंग स्टाइल बहुत कैची है। और पखावज जो है, पखावज मेरा जो चिंतन है, पखावज है डिवाइन इंस्ट्रूमेंट, प्योरली डिवाइन। तो हर जगह, हर गाने में और हर बर्थडे के साथ एकम्पेनीमेंट में भी शूट नहीं करते, लेकिन पखावज का एक अलग जगह है। अगर सीधी शब्दों में अगर बोलेंगे तो जो नॉर्मल जो कार है और कोई ब्रांडेड, तो पखावज को मैं ब्रांडेड की जगह रखूंगा।
1: शुभाशीष जी, अगर हम पखावज वादकों की बात करें तो आज भारत में पखावज बजाने वालों की संख्या स्थिति कैसी है?
0: पखावज बजाने वाले की संख्या बहुत ज़्यादा ही है। मुझे अच्छा लग रहा है जो आज नए जमाने में बच्चा पखावज बजा रहा है, क्योंकि इसका कारण सोशल मीडिया। पहले लोग पखावज और ढोलक को कंपेयर कर नहीं पाते थे, वो उन लोगों का दोनों में सिमिलर, एक ही एक जैसा लगता था। कुछ लोग अभी भी गांव देहाती में वो ढोलक, बड़ा ढोलक भी बोलते हैं, मैं सुना। जैसे तबला पॉपुलराइज हुआ, तो इसके लिए हमारा आर्टिस्ट लोगों का भी जगह जगह प्रोग्राम करना चाहिए, बोलना चाहिए। जैसे मैंने ही एक संकल्प उठाया, ये हमारा VC को भी बहुत अच्छा लगा, उन्होंने भी आशीर्वाद दिए। 108 मंदिर में मृदंग संकल्प यात्रा, ये 2 साल की समय लगेगा। तो आप लोगों को आशीर्वाद से कई जगह से मुझे फंडिंग के लिए भी बुलाया गया, मतलब कई भी हेल्प। ये अच्छा चीज़ आप कर रहे हैं। मैं भारतवर्षों की, ये आपकी आकाशवाणी के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, जो भारतवर्षों की 108 मंदिर में अलग अलग स्टेट में मैं मृदंग बजाऊंगा, ये एक परिब्रजक की तरफ। तो वो कम से कम 2 साल की एक प्रोजेक्ट। इसका मेन मुद्दा जो है, मैं इसको पॉपुलराइज करना चाहता हूँ पखावज को, ये मेरा मेन मुद्दा है, जो पखावज को लोग जाने। यही इसीलिए ये मेरा संकल्प यात्रा मैं शुरू किया महाराष्ट्र से, अम्बरेश्वर मंदिर से, अभी चल रहा है। रिसर्च के बीच बीच में वो भी काम मैं कर रहा हूँ। इसके अलावा और एक चीज़ दीपक जी आपको मैं कहूँगा, जो बेम्बू मिशन, जो बेम्बू, मैं बेम्बू आर्ट के लिए कैसे मैं अपने को अपनाया, कोविड के दौरान जब आर्टिस्ट लोगों का काम नहीं था, मेरा तो GRF उसमें ही हुआ, बेम्बू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट यूजफुलनेस अपन द सोसाइटी। इसके बाद मैं घर बैठ के ये सोचा, अगर बेम्बू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तो मैं बना लिया, उसका कार्य भी मैं कर रहा हूँ, एक इको फ्रेंडली ऑर्केस्ट्रा भी मैं बनाया, जगह जगह में प्रोग्राम करते। उसके बाद उस टाइम में मैं छोटा छोटा मिनिएचर बनाना शुरू किया। और ये स्कूल वाले, जैसे ही CCRT मुझे बुलाया, आप जानते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्थान है, तो ये IGNCA वर्कशॉप लिया, तो जगह जगह स्कूल में म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट एंड टॉयज की जो कार्यशाला और ये सब, मैं एक एक मतलब एक कैंपेनिंग, मेरा एक नया दिशा खुल गया। तब से मैं बेम्बू से जुड़ा हो, मतलब पखावज के साथ ही साथ।
1: आपने बैम्बू का जिक्र किया, बांस का जिक्र किया, तो हम जानना चाहेंगे कि बांस के अंतर्गत वो कौन कौन से साज हैं जिनसे आप जुड़े हैं?
0: देखिए, बेम्बू से तो नेचुरली आप भी जानते हैं दीपक जी, जो बांसुरी है मेनली, तो बांसुरी जो हम कृष्णा भगवान के हाथ में देखते हैं उनका मूर्ति में, और बांसुरी एक वेरी ट्रेडिशनल एंशियंट इंस्ट्रूमेंट है। और बीना भी, जैसे सरस्वती माता की हाथ में, हमारा तो सारे इंस्ट्रूमेंट देवी देवताओं की से ही प्रचलित रूट से आए। तो मैं बीना भी देखा, आप यकीन मानिए, बांस का बीना है। पहले जो डाट बनाया जाता था वो बैम्बू का, क्योंकि बैम्बू पूरा अंदर से हॉलो है,

0: उसका रेजोनेंस, जैसे लकड़ी में आपको उसको खुदाई करके अंदर से आपको शेप देना पड़ता है, बैम्बू में वो एक इनबॉर्न जो होता है वो शेप पहले से ही है। इसीलिए मैं ये चिंतन रखते हुए मैं भी मेरा दिशा को आगे बढ़ाया और भी इंस्ट्रूमेंट, बैम्बू से मैं तबला बनाया, बैम्बू से मैं गिटार बनाया, बैम्बू से मैं सितार, मतलब ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट को मैं अलग से बैम्बू से इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाया, ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट को चेंबर को मैंने चेंज करके देखा इसका रेजोनेंस का व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन।
1: सुभाषिष जी, आपने चूंकि बताया कि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से आप पीएचडी भी कर रहे हैं, तो
0: जी
1: पीएचडी में आपका जो विषय है
0: जी
1: उसके बारे में हमारे श्रोताओं को विस्तार से बताएं।
0: पीएचडी का मेरा जो विषय है वो एम्बिडेक्स्टर आर्टिस्ट एंड इसका जो हिस्ट्रिकल एंड एनालिटिकल स्टडी, मतलब मैं खुद ही एम्बिडेक्स्टर प्लेयर हूँ, मतलब मिंटू से चेंजिंग पोजीशन ऑफ द साइट इन माय इंस्ट्रूमेंट, मैं दोनों हाथ में बजाता हूँ लेफ्ट एंड राइट। लेकिन मैं शुरुआत में मैं ये सोचा जो एम्बिडेक्स्टर प्लेइंग मतलब सिर्फ कलाकारों की ऊपर करो जो परफॉर्मिंग आर्ट्स का, इसके बाद मैं जैसे ही हमारा बीसी मैम से इसको लेके डिस्कस किया, उन्होंने बहुत अच्छा सलाह दिया, जो ये है खैरागढ़ मैम, उन्होंने खुद ही म्यूजिशियन है, सितार प्लेयर है, लाबली शर्मा मैम, तो उन्होंने बच्चे को हर चीज़ों में उन्होंने उनका मोटिवेशन मिलता है। उन्होंने एक चीज़ मुझे बुलाया एक दिन, मुझे बोला तुम्हारा ये जो काम है इसको ऐसे करके दिशा दो ताकि सारे आर्ट फील्ड को कवर करे, और ये एक अच्छा सलाह था उनका। तो नॉट ओनली म्यूजिशियन बट ऑल्सो अदर आर्ट्स, फाइन आर्ट्स में कई लोग दो हाथ में पेंटिंग करते हैं, दो हाथ में कुछ लोग लिखते हैं, तो उनकी एक निर्देश बोल सकते हैं या गाइडलाइन, तो उसमें उसके चिंतन रखते हुए मैं इसको पूरा आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा इसका हिस्ट्रिकल एनालिटिकल स्टडी के ऊपर मैं काम कर रही, इवन प्लेयर जो दोनों हाथ में बल्लेबाजी करते।
1: श्रोताओं, इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज हमारे खास मेहमान हैं पखावज और बांस वाद्य के कलाकार श्री सुभाषिष सबसाची जी। सुभाषिष जी, इस बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे उससे पहले मन कर रहा है कि आपकी पसंद का एक फिल्मी गीत हमारे श्रोताओं को सुनवाएं, तो बताइए आप कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे?
0: ये गाना तो मुझे बहुत पता नहीं, इसका कौन फिल्म का नाम अभी याद नहीं
1: आप
0: लग रहा।
1: बताएं।
0: चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना
1: तो
0: कहना।
1: सुनते हैं आपकी पसंद पर किशोर कुमार जी का गाया हुआ ये गीत।

0: क्या बात है शुभाशीष जी, बहुत ही खूबसूरत गीत हमारे श्रोताओं को आपने सुनवाया। और श्रोताओं, इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज के हमारे खास मेहमान हैं पखावज और बांस वाद्य के कलाकार श्री शुभाशीष सब्यसाची। शुभाशीष जी, पखावज एक वाद्य ऐसा है जो खास तौर पर ध्रुपद धमार के साथ ज्यादा बजाया जाता है ना?
1: बहुत
0: शास्त्रीय
1: अच्छी
0: संगीत
1: बात
0: में
1: है,
0: इसका
1: बहुत
0: प्रयोग होता है
1: बहुत
0: और
1: अच्छी।
0: कुछ फिल्मी गानों में भी इसका प्रयोग किया गया है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि पखावज वादक जो होते हैं वो अपने मुंह से भी सारे बोल इसके निकालते हैं, तो हमारे
1: जी
0: श्रोताओं को
1: जैसे
0: कुछ बोल आप निकाल के बताएंगे?
1: देखिए, स्तुति पढ़न जो होता है पाखवास, तो पहले ही मैं जिक्र किया जो ये डिवाइन साज है। आप इसको आज की डेट में फिल्म में काफी गाने में भी पाखवाज के इस्तेमाल होता है, लेकिन ये तो टेंपल म्यूजिक में ज्यादा बजते हैं। कि पाखवाज की बात करेगी, साउथ इंडियन मृदंगम की बात करें, सब एक ही अलग अलग वर्षन है। एक ही मेन मृदंग है, पहले मिट्टी में था, अभी तो वो लकड़ी में हुआ, जो भी है। तो उसमें स्तुति जो पढ़ो ने देवदेवताओं की, उसमें जैसे एक शिव जी का मैं बताता हूँ आपको, धकिट धकिट धधकिट दिन दिन दिन दिगत तकिट गंगाधर नीलकंठ विश्वनाथ, तकिट ढिकिट ढिम ढिम ढिम डमुड बजत त्रिकट तक धिकिट हर हर महादेव, शिव शंकर त्रिकट ता त्रिकट गगन धा, शिव शंकर त्रिकट ता त्रिकट गगन धा, शिव शंकर त्रिकट ता त्रिकट गगन धा। हमारे लिए तो धाई फूल है, धा
0: जी
1: से पुष्पांजलि।
0: जी और इसके अलावा शिव जी के अलावा और भी उपासना के लिए अलग अलग
1: हाँ, अलग
0: आपके
1: अलग है।
0: बोल होते
1: जैसे
0: हैं, उसके बारे में कुछ बताएं।
1: देखिए,

0: सरस्वती सरस्वती माता की ऊपर, सरस्वती सरस्वती सरस्वती माता तेरी चरण में आई विधाता, चरण शरण माता चरण शरण माता चरण शरण माता। इसके अलावा आजकल मैं और एक चीज लेके काम कर रहा हूँ, जैसे मैं कुछ देखा जो गांव देहाती में अगर कोई जगह गायन वादन, कुछ लोग समझते नहीं है अगर हम कुछ बोल बोले, जैसे देखिए तो ये कंपोजिशन जब बजा रहे हो जो त्वरी के साथ, लोग उसका त्वरी में आनंद ले रहे हैं, और जो जानकार है जो क्लासिकल सीखते हैं उसका, बाकी लोगों का आम लोगों का इसमें मतलब नहीं है। तो इसके लिए ना मैं बोल कविता के ऊपर एक किताब की सोच है मेरा, उसके ऊपर मैं कार्य कर रहा हूँ। जैसे देखिए इसका जो ड्राइंग मैंने किया तकधमकड़ इसको एक्सप्लेन करके मैं जब बजाता हूँ तब जो श्रोता है बड़े आनंद लेते हैं। तो एक बच्चा भाग रहा है, देखिए तकधमकड़ उसका माँ उसको खींच रहा है, धड़न ने देता तकिटे तका कहा जा रहे हो इधर आओ, धड़न ने देता तकिटे कहा जा रहा। तो बच्चा बोलते हैं मेला पे वो जो बेलून है उसको कृधा नितारधा मुझे वो बेलून चाहिए मम्मी। तो उसको माँ डांट के बोले कत धागड़ तकड़ का, मतलब एकदम उसको चाटा लगाने के लिए बोले कत धागड़ तकड़ का। तो बच्चा बोलता है, फिर बच्चा आगे खींच रहा है हाथ, तो बोले क्रधित धिकिटे गेदाने, दोनों एक दूसरे में लड़न थोड़ा है, क्रधित धिकिटे गदान थूथू कृतज्ञा थूथू कृतज्ञ, मतलब बोले खींच के क्रधित धिकिटे एकदम लगा दो तुमको अभी, क्रधित धिकिटे गेदान इधर। तो बच्चा बोलते थूथू कृतज्ञा थूथू कृतज्ञा थूथू, मम्मी मुझे माफ कर दे माफ कर दे माफ।
1: मतलब ये जो है ये पूरी स्टोरी जो है ये आप पखावज के बोलों से व्यक्त करते हैं
0: जी,
1: बताते
0: जी,
1: हैं, तो ये बड़ी अद्भुत कला है आपकी
0: जी,
1: और सुनने वालों को समझ में आ जाता है कि माँ कहाँ डांट रही है कहाँ बुला रही है पखावज के बोलों से। सुभाषिष जी, आप चूंकि जो रिसर्च आप कर रहे हैं पीएचडी के लिए जो काम आप कर रहे हैं, दोनों हाथों से दोनों हाथों का इस्तेमाल साजों में करने के साथ साथ जीवन से जुड़ी हुई भी ये बात है
0: जी,
1: तो इसमें जो आपने रिसर्च किया उसमें आपने क्या क्या पाया कि हमारी इस दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं जो दोनों हाथों से बहुत सारे काम करते हैं, उनके बारे में भी आपने जानकारी एकत्र की हो?
0: जी सर, मेरा तो रिसर्च अभी गोइंग ऑन चल ही रहा है, तो उसमें मैं जो जो डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ, जो जो मैंने जो जो इंटरव्यू लिए, उसमें मुझे सबसे पहले डॉक्टरों से मैं मिला, क्योंकि ये न्यूरोसाइंस से भी जुड़े हैं सब्जेक्ट, तो डॉक्टरों से जैसे ही लिए तो उन्होंने एक आश्चर्य बताया था, जो लोग एम्बिडेक्स्टर होते हैं उसका ब्रेन का दोनों हिस्सा बराबर चलता है इक्वली, और दूसरी बात जो हमारा पूरा ब्रेन के ऊपर पूरा नियंत्रित हमारा शरीर का, तो मेन तो ब्रेन है आप जानते ही है, तो ये एम्बिडेक्स्टर लोगों का बराबर चलते। दूसरी बात, मैं जो जो आर्टिस्ट से मिला तो एक चीज देखा, जो एम्बिडेक्स्टर लोग होते हैं ये काम के लिए काफी निपुण होता है, परफेक्शनिस्ट होता है। मुझे, मैं खुद एम्बिडेक्स्टर हूँ, तो वो लगता है ना, जैसे मैं कई बार टिप्पणी करके बोलता हूँ, जैसे एक लोग दूसरे से कंपटीशन करते तो हमारे में क्या हो जाता है, हम राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को लड़ाते हैं, ये हमारा खास बात है, मतलब ये इनर एक फाइट होता है जो कौन हाथ से जल्दी और अच्छा काम निपुणता के साथ कर सके।
1: सुभाषिष जी, आपका ये शोध जब पूरा हो जाएगा जिसमें आप पीएचडी कर रहे हैं
0: जी,
1: तो उसके बाद फिर आपकी अगली मंजिल क्या है, आपका सपना क्या है?
0: मेरा एक सपना है, सपना तो बहुत है लेकिन उसको साकार देने की जो इच्छा है, एक देखिए मेरा एक बेम्बू स्कूल जिसमें

0: अक्सर कलाकार को देखता हूँ रंग बिरंग की कलरिक कुर्ता पाजामा पहन के, कलाकार तो शौकीन होते ही है, शो करते अपना पेमेंट लेके जाते, कलाकार का लाइफ भी स्ट्रगल होता है, ये नहीं बोल रहा हूँ जो अपने ही मतलब में, लेकिन मुझे लगता है सोसाइटी के लिए वो भी सुना रहा है, सेवा कर रहे संगीत का, चाहे अब जाकिर जी की बात बोले, किशन महाराज जी की बात बोले, जो भी बोले। लेकिन इसके अलावा मैं ये कहूँगा, जो मुझे जो चिंतन है, जो समाज के लिए हम क्या दे सकते हैं, जो आजकल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सेल्फ स्किल डेवलपमेंट, इसके ऊपर मैं सोचा एक बैम्बू स्कूल, जहाँ पे बैम्बू म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट मेकिंग से लेके उसको प्लेइंग तक सिखाया जाता है, और उसके ऊपर मैं थोड़ा अभी बहुत आभारी हूँ, मैं IIIT रायपुर का एक प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहा हूँ, और उसके साथ साथ बैम्बू स्कूल में बैम्बू क्राफ्ट की भी प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाएगा, और साथ ही साथ पाखोवाजार, ये जो एम्बिडेक्सटरिटी है, तो एम्बिडेक्सटर एक स्कूल खुलना भी मेरा इच्छा है, जो दोनों हाथ का काम करते, समर्थ है दोनों हाथ के काम की, बहुत छुपे हिडन आर्टिस्ट है, आपको भी पता होगा, अक्सर जब घर में हम बाएं हाथ से कोई खाना खाते कोई तो मम्मी पापा टोकते, आज की डेट में टोकना नहीं चाहिए, क्योंकि उनका एबिलिटी है, तो मैं जो जिसका एबिलिटी है उसको अगर दोनों हाथ से काम कराया जाए, तो इसके एम्बिडेक्सटरिटी का एक मैं इस मिशन लेके भी मैं आगे बढ़ना चाहूँगा।
1: तो शुभाशीष जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आपके इस मिशन में आपको सफलता मिले, और पखावज वादन के माध्यम से आप अपने साज को विभिन्न महफिलों तक लेके जाएं, और इस ताल वाद्य के माध्यम से संगीत की यूं ही आप सेवा करते रहें। इस बातचीत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

0: इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पखावज और बांस वाद्य से जुड़े कलाकार श्री शुभाशीष सबसांची से ली गई भेंट वार्ता। भेंट करता थे दीपक हटवार। यह आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।
1: कार्यक्रम इनसे मिली अभी आप सुन रहे थे, इसे हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे। ये आकाशवाणी बिलासपुर है। सुबह के 9 बजे हैं। 9:55 तक हम रिले करेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

ब्रेक के बाद आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से कार्यक्रम चित्रलोक में स्वागत है। अब आपको सुनवाने जा रहे हैं तेरी मेरी कहानी फिल्म का गीत। वाजिद, मीका सिंह और श्रेया घोषाल की आवाजें हैं। प्रसून जोशी की शब्द रचना, तर्ज बनाई है साजिद वाजिद ने।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: आइए अब आपको सुनवाते हैं ऐश किंग और रिजवान अली खान साथियों की आवाजों में ये गीत फिल्म रश से। आशीष पंडित ने इस गीत को लिखा है और धुन बनाई है प्रीतम ने।

अब आपको सुनवाते हैं ऐश किंग और रिजवान अली खान साथियों की आवाजों में ये गीत फिल्म रश से। आशिष आशिष पंडित ने इस गीत को लिखा है और धुन बनाई है प्रीतम ने।

अंतराल के बाद आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम चित्रलोक में। श्रोताओं, आपको बता दें कि आज है गीतकार असद भोपाली का जन्मदिन। आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित रहेगा गीतकार असद भोपाली पर, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे अब से कुछ ही देर में, यानी 9:30 पर, और ये कार्यक्रम पुनः आप सुन सकते हैं रात 9:30 पर। और अब कार्यक्रम चित्रलोक का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सरफरोश से। कुमार सानू, अलका याग्निक की आवाजें हैं, समीर के बोल, जतिन ललित का संगीत।

क्या यही प्यार है, इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं अरमान मलिक की आवाज में, रश्मि विराग और आनंद बख्शी के बोल हैं, अमाल मलिक और आरजी बर्मन का संगीत।

अरमान मलिक की आवाज में अभी ये गीत सुन रहे थे आप। गीतकार और संगीतकार का नाम एक बार फिर से सुन लीजिए। रश्मि विराग की रचना थी, अमाल मलिक का संगीत। अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म फना से सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाजों में, प्रसून जोशी की रचना, जतिन ललित की बनाई धुन।

फिल्म फना का गीत आप सुन रहे थे सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाजों में, और ये गीत बना आज के कार्यक्रम चित्रलोक की आखिरी पेशकश। कार्यक्रम चित्रलोक से अब आज्ञा दीजिए पूजा नारायणिया को। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, सुनने को थे प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: पेश प्रोग्राम आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है गीतकार असद भोपाली पर।
1: वो जब याद आ

0: जब याद आए बहुत याद आए।
1: असद भूपाली का जन्म मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 10 जुलाई सन 1921 में हुआ। मुंशी अहमद खान के वो बड़े साहबजादे थे। जब उनका जन्म हुआ तो इनका नाम रखा गया असदुल्ला खान। फारसी, अरबी, उर्दू और अंग्रेजी में उनकी शुरुआती पढ़ाई हुई। शहर भोपाल एक अदबी शहर, वहाँ की हवा में शायरी की खुशबू होने से कई शायर इस शहर ने दिए हैं। उन्हीं में से एक जगमगाता नाम है असद भोपाली साहब का।

असद भोपाली कोई 28 साल के रहे होंगे जब उन्होंने माया नगरी मुंबई का रुख किया ताकि वो अपने शायरी का फन फिल्मी गानों की शक्ल में उभार सके। भोपाल से मुंबई आने वाले शायरों की फहरिस्त का अव्वल नाम है असद भोपाली साहब का।

असद भोपाली का मुंबई आना किस तरह हुआ, ये भी एक दिलचस्प किस्सा है। फाजली ब्रदर्स एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था दुनिया। निर्देशक थे एस एफ हसनैन साहब। फिल्म के अभी दो गाने ही लिखे गए थे। लिखने वाले थे आरजू लखनवी साहब, जो तकसीम हिंदुस्तान के पेश नजर पाकिस्तान चले गए थे। अब फाजली ब्रदर्स के सामने मुसीबत मुंह बाए खड़ी थी कि बाकी गाने किससे लिखवाएं। इसी दौरान भोपाल के सुगम चंद कपाड़िया, जिनके भोपाल शहर में दो थिएटर थे, मुंबई आए हुए थे। उन्हें जब इस बात की खबर मिली तो फाजली साहब के सामने उन्होंने मदद की पेशकश करते हुए मशवरा दिया कि भोपाल शहर में शायरों की कमी नहीं है, अगर आप चाहो तो मैं एक मुशायरा भोपाल में करता हूँ, नामी गिरामी शोहरा इसमें भाग लेंगे। आप और आपके निर्देशक साहब जिस किसी शायर से मुतासिर हों उससे बाकी गाने लिखवा लें। तजवीज फाजली ब्रदर्स को पसंद आई, भोपाल में मुशायरा हुआ। फिल्म के प्रोड्यूसर फाजली ब्रदर और एस एफ हसनैन साहब मुशायरे में आए। जो शायर उन्हें सबसे अच्छे लगे वो थे असद भोपाली। फिल्म दुनिया के बाकी गाने फिर उन्हीं से लिखवाए गए। इस तरह से उनकी फिल्मी गीतकारी के रूप में पेश कदमी हुई। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं हम सब उस्ताद हैं, इस फिल्म का किशोर कुमार का गाया हुआ।

फिल्म दुनिया में असद भोपाली के दो गाने थे, रफी साहब का गाया हुआ रोना है तो चुप चुप के रो, आंसू न बहा आवाज न हो। सुरैया का गाया हुआ गाना था अरमान लुटे दिल टूट गया, दुख दर्द का साथी छूट गया। अगले साल यानी 1950 में फिल्म आधी रात के दो गाने लिखने का उन्हें ऑफर मिला, इधर तो आओ सरकार, किसी की जीत किसी की हार, और दिल ही तो है तड़प गया, दर्द से भर न आए क्यों। ये दोनों गाने लता मंगेशकर ने गाए थे, संगीतकार थे पंडित हुसन लाल और पंडित भगत राम। अब आपको सुना रहे हैं आगे बढ़ने से पहले ठाकुर जरनैल सिंह फिल्म का ये बड़ा ही मीठा सा गाना जिसे गाया है आशा भोसले ने।

सन 1950 में ही एक और फिल्म के लिए उन्होंने गाने लिखे। वो फिल्म थी निर्दोष। अगर आपको याद हो तो मुकेश साहब ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत इसी फिल्म से की थी। संगीतकार थे श्याम सुंदर।

सन 50-51 के आसपास बी.आर. चोपड़ा साहब ने एक फिल्म अफसाना का निर्माण किया था। अशोक कुमार और वीणा मुख्य भूमिकाओं में थे। फिल्म के संगीतकार थे पंडित होसन लाल और पंडित भगत राम। कुल 9 गाने थे फिल्म में, इनमें से 6 गाने लिखे थे असद भोपाली साहब ने और काफी मकबूल भी हुए थे।

फिल्म अफसाना एक सफल फिल्म थी और इसका संगीत भी खूब लोकप्रिय हुआ था। असद भोपाली को इसके बदले मिली एक फिल्म राजपूत, जो बॉक्स ऑफिस पर पिट गई थी। उन दिनों साल में इक्का दुक्का फिल्में बनती थीं। काम पाने के लिए स्ट्रगल और कंपटीशन बहुत कड़ा हुआ करता था। इसी की एक मिसाल 1954 में असद भोपाली को फिल्म गुलबहार में एक गाना लिखने का मौका मिला, जिसका संगीत खयाम साहब ने दिया था। इस फिल्म के दो संगीतकार थे, एक खयाम साहब और दूसरे धनी राम। दूसरे गीतकारों में थे जानेसार अख्तर, कैफी आजमी और शिवन रिजवी साहब। असद भोपाली का लिखा हुआ गाना था मुबारक बेगम का गया हुआ, कलियों को चूमूं मैं तारों से खेलूं। दोस्तों 1949 से 1990 तक असद भोपाली ने कुल 100 के आसपास फिल्मों में गाने लिखे, करीब करीब 400 के आसपास गाने हैं। असद भोपाली साहब का लिखा हुआ टावर हाउस फिल्म का ये बड़ा ही मीठा सा गाना है, लता मंगेशकर और मुकेश ने इसे गाया है।

पंडित हुसन लाल, पंडित भगत राम, सी रामचंद्र, खय्याम, हंसराज बहल, लच्छी राम, धनी राम, दत्ता राम, पंडित शिवराम, श्याम सुंदर, एम दत्ता, नौशाद, ए आर परेशी, चित्रगुप्त, रवि, सी अर्जुन, सोनी कोमी, राजकमल, लाला सत्तार, हेमंत कुमार, मानस मुखर्जी, कल्याण जी आनंद जी, इतने सारे संगीतकारों के साथ उन्होंने काम किया। सबसे ज्यादा काम उन्होंने गणेश और उषा खन्ना के साथ किया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने भी आनंद बख्शी साहब के साथ साथ असद भोपाली से गाने लिखवाए थे। फिल्म पारसमणि के जो दो गाने हैं, वो जब याद आए, बहुत याद आए, और हंसता हुआ नूरानी चेहरा, ये काफी मकबूल हुए थे।

0: फिल्म लुटेरा, फिल्म छैला बाबू, इन फिल्मों के गाने भी काफी पॉपुलर हुए थे।
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी का, ये बिलासपुर केंद्र है। इस समय 9:55 होने वाले हैं। प्रादेशिक समाचार अब हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा है कि रेडियो कार्यक्रम दीदी के गोठ प्रदेश की महिलाओं के लिए प्रेरणा का सशक्त माध्यम बन गया है। सरगुजा जिले के सीतापुर क्षेत्र में चलती हाईवा में आग लगने से 3 लोग झुलसे और मौसम विभाग ने आज बिलासपुर और सरगुजा संभाग में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि रेडियो कार्यक्रम दीदी के गोठ प्रदेश की महिलाओं के लिए प्रेरणा का सशक्त माध्यम बन गया है। कल रायपुर में आयोजित दीदी के गोठ वार्षिकोत्सव 2026 में उन्होंने दीदी के गोठ कॉफी टेबल बुक, विहान वाणी त्रैमासिक पत्रिका और मोर गांव मोर पानी पुस्तक का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने सफलता की कहानी साझा करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया और कहा कि कार्यक्रम के एक वर्ष में प्रसारित 12 एपिसोड से महिलाओं को आत्मनिर्भरता, नवाचार और स्वरोजगार की प्रेरक जानकारियां मिली हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल रायपुर जिले के समोदा में 128 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। उन्होंने ग्राम रीवा में लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत से स्टॉप डैम निर्माण सहित कई विकास कार्यों की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सुशासन, विकास और जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए प्रदेश के सभी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार कर रही है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के निर्देश पर कबीरधाम जिले के बोड़ला क्षेत्र में प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत बनी सड़क की राज्य स्तरीय जांच की गई। जांच के बाद निर्माण कार्यों की निगरानी और गुणवत्ता में लापरवाही पाए जाने पर सहायक अभियंता और उप अभियंता को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही क्षतिग्रस्त सड़क का हिस्सा दोबारा बनाने और ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश भी दिए गए। श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन की अध्यक्षता में कल मंत्रालय में छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल की पहली बैठक हुई। बैठक में ई रिक्शा सहायता योजना के तहत मिलने वाली अनुदान राशि को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1,00,000 रुपए करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा गिग वर्कर्स, चरवाहों और असंगठित कर्मकारों के मेधावी बच्चों के लिए नई कल्याणकारी योजनाएं तैयार करने

पर भी सहमति बनी। श्रम मंत्री ने पंजीकृत श्रमिकों का ई केवाईसी और आधार आधारित पंजीयन कराने तथा पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। धमतरी के भोपाल राव पवार शासकीय पॉलिटेक्निक ने तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI के मूल्यांकन में संस्थान को प्रदेश के शासकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में तीसरा स्थान मिला है। इस संस्थान का मूल्यांकन शिक्षा की गुणवत्ता, डिजिटल संसाधन, अधोसंरचना, उद्योगों से समन्वय और प्लेसमेंट जैसे मानकों पर किया गया। सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र के अंबिकापुर रायगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 पर कल एक चलती हाईवा में अचानक आग लग गई। मिली जानकारी के अनुसार ये दुर्घटना ग्राम सोन तराई स्थित देवगढ़ के पास हुई। इस दौरान हाईवा में सवार वाहन चालक समेत कुल 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। इन तीनों को सीतापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आज उत्तर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और सरगुजा संभाग में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार यही स्थिति अगले 3 दिनों तक भी बनी रहेगी। केंद्र सरकार ने सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए 31 जुलाई तक ऑनलाइन नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये पुरस्कार राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता और अखंडता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों और संस्थानों को दिया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने कहा है कि रेडियो कार्यक्रम दीदी के गोठ प्रदेश की महिलाओं के लिए प्रेरणा का सशक्त माध्यम बन गया है। सरगुजा जिले के सीतापुर क्षेत्र में चलती हाईवा में आग लगने से 3 लोग झुलसे और मौसम विभाग ने आज बिलासपुर और सरगुजा संभाग में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन आप 11:55 पर सुन सकते हैं। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, इसे हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, सुबह के 10 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे पारंपरिक पंथी गीत डेरहा राम जांगड़े और साथियों का गाया हुआ। साथ ही बांस गीत में प्रसंग होगा राजा सुंदर सिंह और रानी बेल कैना के किस्सा। गायक कलाकार होंगे दुर्योधन प्रसाद दुबे और साथी। कार्यक्रम में पहले सुनिए पारंपरिक पंथी गीत, गायक कलाकार हैं डेरहा राम जांगड़े और साथी।

0: गोरखपुरी में महंगुदास माता अमरोदिन के कुल में जाके जन्म ले।
1: ऐसे बात
0: सन 1756 मान के महीना
1: ऐसे
0: सोमवार के दिन बाबा घासीदास नाम से वहाँ प्रसिद्ध हुई।
1: या जा जा जा जय हो जी।
0: ये घासीदास के लूपला देखकर के नगरवासी सब अति आनंद है।
1: आनंद हो गया गुरुजी।
0: ये दिन माता अमरोदिन हंस आय के कारण पलंग में।
1: हाँ हाँ
0: जब माता अमरोदिन घासीदास बाबा दोनों सो है।
1: हाँ जी।
0: तो घासीदास बाबा ले नींद नहीं आई।
1: ऐसे बात
0: माता अमरोदिन देखे घासीदास नहीं सोए।
1: हाँ।
0: तो माता अमरोदिन घासीदास बाबा ला सोए कारण।
1: हाँ
0: कौन सा मंगल गावत है
1: कैसे गावत गुरुजी बता।

0: राजा गुजी जय हो जय हो।
1: कुमार के महीना में
0: ऐसे
1: विरोधपुरी के सब संत मनहा पितर मानने लगे
0: कि आजा।
1: तो महात्म दिन महंगू दास बबाले
0: हाँ।
1: पितर के निमंत्रण दे करके सुंदर भोजन खिलाई से
0: ऐसे।
1: एक दिन महात्म दिन कथे सा है
0: कैसे
1: ये कुमार के महीना में पितर पक्ष में भोजन खाते ते हा लागे लागर हम कैसे अदा होबो
0: या सही बात
1: महंगू दास कथे अमरो दी
0: हाँ जी।
1: ये कुमार के महीना हा बीत गया माई
0: या जा।
1: कर हमारे घर में भोजन बना दे सब संग बुला के साथ भोजन खिला देबो ये कर्जा से अदा हो जाए
0: ऐसे बात।
1: माता अमरोधी पति के बात मान करके स्नान करके घर में आकर के सुंदर भोजन बनाई
0: जय हो जी।
1: महंगूदास संध्या बुला करके आंगन में बिठा ली
0: बाबा।
1: ये संत कथे महंगूदास
0: हाँ।
1: मांग के महीना में दुर्घासिक जन्म हो तब उत्साह मनाए रहे
0: भैया।
1: ये कार्तिक के महीना में का कर उत्साह मनावा धन भैया इतने में माता अमरोधी कथे बाबा
0: कैसे
1: कुमार के महीना में तुम्हारे घर में हम सुंदर भोजन खाया तो ये भोजन ल कर्जा अदा करे कारण हम तुमन भोजन बना खिलाबो
0: ऐसे बात।
1: एक संग थे अमरौती
0: हाँ जी।
1: ये पितरा पक्ष रा तोरी आदि पुरखा माना थे अमरौती
0: कागर
1: बहकाओ माग छोड़ दे
0: हाँ।
1: इतने में एक संकट देख तो महंगू
0: अत
1: मर्द के बीच में एक नारी अबला
0: हाँ।
1: माता अमरौती बेधड़क बात का तुर अच्छा लागत
0: भला बता सही
1: महंगू दाद का थे अमरौती
0: हाँ।
1: सही था
0: हाँ।
1: ते मर्द के बीच में काबर बोला था जान तो घर के काम कर
0: ऐसे।
1: माता अमरोधिन पति के बात मान करके तालाब चले एक दिन से
0: जय हो।
1: अभी तरफ सन के कहे मुताबिक महंगू दास घर के अंदर में
0: हाँ।
1: घी और गुड़ के हुम दे के नरियर फोड़ दी
0: या जी।
1: माता अमरोधिन आवा थे भैया हुम के वासना सुन करके माता अमरोधिन सोचते दाई
0: या
1: ये हुम के वासना कहाँ से आवा थे
0: मोरे
1: पति भड़का दिन का
0: जय हो।
1: वही समय आकाशवाणी में सदगुरु हा कही थे बेटी
0: कैसे
1: और घर में वही भूत प्रेत के पूजा होते अमरौती जल्दी से जल्दी घर मोर लोक में आ जा
0: जय हो गुरुदेव।
1: आकाशवाणी सुन के माता अमरौती के सारी अंगा कांपत
0: कांपने लगे
1: घर में आकर के घर आ रहा करके सूखा कपड़ा बदल ली घासीदार बाबाला गोद में लेके आंगन में निकल गए
0: हाँ।
1: कथे बेटा
0: कैसे?
1: 9 महीना तक मोर गोद में सोए हाथ घासी
0: जय हो।
1: अब मैं तोला छोड़ के जावा था बेटा
0: याजा जी
1: पर मोर सेवा करे के मौका नहीं मिली
0: नहीं मिली
1: जैसे माम मैं हरा
0: हाँ
1: वैसे एक झन माँ धरती माता हरे बेटा
0: जय हो।
1: ओकर सेवा कर ले मोर उधार छुटा
0: छुटा जा ही दे
1: माता अमरोधिन हासिल का कहा थे
0: का कहे गुरुजी बता।

0: गुंजेश्वर गांव के कार्यक्रम की शुरुआत में आपने सुना पारंपरिक पंथी गीत। गायक कलाकार थे डेरहा राम जांगड़े और साथी।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
0: गुंजेश्वर गांव के कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं दुर्योधन प्रसाद दुबे और साथियों का गाया बांस गीत। प्रसंग है राजा सुंदर सिंह और रानी बेल कैना के किस्सा।

0: भैया रागी चकहा रहा है तो चकही ला कहा थे चकही।
1: अच्छा
0: मैं का कहानी तो लग कह के सुना चकही।
1: हाँ भाई
0: ऐसे चकहा रहा है तो कहा थे तो चकही का कहा थे।
1: हाँ।
0: महाराज कहा अपन के रहत ले दूसर के ला का कहे महाराज।
1: हाँ
0: अपने ला कहना कहा थे।

0: चकली, राजा सुंदर सिंह नाम की एक हरदी नगर में रही।
1: अच्छा भैया,
0: बड़े भोजन या 30 साल 32 भोजन वाला खवावे।
1: अरे
0: कर भोजन ला कभू ही ताक नहीं बताए।
1: अच्छा,
0: कभू सिट्ठा, कभू या लोना, कभू खारो, इसने कहा रहा है।

0: बड़े भौजाई रहे तो राजा सुंदर सिंह ला कहे बड़ा सफा खवैया से लागत हो।
1: हां भैया
0: रानी बेर कहना ला शादी करके लाहो तो कतेक सुघर तब भोजन बनाही ते हम देख लेतन।
1: अरे
0: ऐसे कहत रही से चखी ऐसे चखा रहा तब चखी ला कहानी सुनाते जे।

0: राजा का सुंदर सिंगा भैया बारे भाऊजी ना पूछाए कहा रहा है तो चकीला बता थे कहानी।
1: अच्छा
0: अरे राजा सुंदर सिंह रहा तो मंदिर ले सुना थे।
1: हाँ भैया
0: किरानी बेल कहना कहा रहे थे कि पूछी से चली।
1: हाँ
0: तो बड़े भौजी रहा तन बेलगढ़ शहर में राजा बेला के लड़की रानी बेल कहना है।
1: अरे
0: बोला ते शादी करके ले आन कही के।
1: हाँ
0: बता है।

0: चकही।
1: अच्छा,
0: राजा सुंदर सिंह रहा है तो बेलगढ़ शहर के है।
1: हाँ।
0: अब फुलवारी में जाके मल्लिन लगे है, रानी बेलकैना के सोर संदेश ओला पूछे है मल्लिन ला।
1: अरे
0: ता उहां ले रानी बेलकैना ला ला है मल्लिन।
1: अच्छा,
0: ऐसे चकही रहा है तो ला बता थे चक।

0: भैया रागी देख तो कहा है रानी बेलकैना के बात ला।
1: हाँ।
0: राजा सुंदर सिंह रहा है तन मंदिर ले सुनत रहा है चकहा रहा है तन कहा है चक ही सुने
1: हाँ भाई
0: पुकारू देत रहा है।

0: देख तो राजा सुंदर सिंह अंधरा रहते है नहीं देखती सो
1: हाँ।
0: ते रानी बेलकैना है कह के देख तो वहाँ लाने कुआं में जीवन पानी बना है।
1: अच्छा।
0: रानी बेलकैना ला दतली चमारी न ढकेल दी
1: हाँ।
0: अब दतली चमारी रानी बन के ओकर सतखंडा महल में है चकली।
1: अच्छा।
0: आज ले राजा सुंदर सिंह नहीं देखे
1: हाँ जी।

0: देख तो जाकी हां रानी बेलकैना है तो ला फूल ला लानी ते लेके दतलीचे मारी ला देली अब वहां कोलकी में गड़िया दी इस लाल भाजी हो गए वाले लान के की तो ला दे दी फिर राजा सुंदर सिंह हां
1: मोर
0: पर सागरांत कह के तो वहां लेके के बगीचा में गड़िया दी अब वहां आमा हो गए ते रानी बेलकैना हां धान बाई हो रही से
1: अरे
0: तेरा चार जल्लाद के हाथ में मधुबन जंगल में मारे है
1: हां भैया
0: आज से चकहा रहा है तन चकी लगता है
1: हां जी
0: राजा

0: चकही रानी बेल कहना है अपन हाथ में हत्या करके और चारों हाथ गोला काटे है ते पार बने हैं।
1: अच्छा
0: और पेट ला चिरे ते तरिया बने हैं।
1: हरे हरे
0: आ ये दोनों नैन ला काट के फेंके ते हमन चकही चा कहा।
1: अच्छा
0: और सिर ला काटे है तो मंदिर में है वही राजा अंधरा सुंदर सिंह वही मंदिर में खुसर के सुनत है चकही।
1: अच्छा
0: ऐसे बतावा चकहा रहा है तब
1: हाँ भाई।

0: भैया रागी
1: ओए
0: चक ही रहा तो चकहला कहा थे महाराज।
1: अच्छा
0: रानी पेलकाना ला राजा सुंदर सिंह है कैसे मिल पाही?
1: हाँ हाँ
0: ऐसे बोला चक ही रहा तो पूछा थे अब बोला चकहा बता थे जी।
1: अच्छा भाई

तेरे जावा हरा दिवस कहीं।

0: चकही दतली चमारी ला राजा सुंदर सिंह हा जाके गड़िया दी और वहां ले तेल हरदी चढ़ा के बराती आई।
1: अच्छा
0: आई मंदिर में पांच फवार घूमे तो रानी बेल कहे ना तैयार हो ही।
1: अरे
0: ले बोला शादी करके राजा सुंदर सिंह लेके तब रानी बेल कहना ला पाही चकही। ऐसे चकहा रहा तो चकही ला कहानी सुना है और सबोला राजा सुंदर सिंह मंदिर में खुसरे खुसरे सुनत रह गई।

0: रानी बेला कह नल भैया यहाँ शादी करके ले गए हो
1: भैया रागी कतली चमारी ल जाके राजा सुंदर सिंह गड़ियाई से आ वहां ले बराती आ करके रानी बेल कहना ले यहाँ शादी करके राजा सुंदर सिंह अपना हरदी नगर ले गए जी।
2: हाँ जी वाह भाई
3: दुर्योधन प्रसाद दुबे और साथियों का गाया बांस गीत आपने सुना। प्रसंग था राजा सुंदर सिंह और रानी बेल कैना के किस्सा। और इसी के साथ गुंजे स्वर गांव के कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM बैंड 103.2 MHz पर। इस समय 10:30 हुए हैं। नीचे पेश है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। आपके पत्रों और आपकी पसंद के गानों को लेकर आज मैं हूं आपके साथ सीमा साहू। कार्यक्रम का पहला गाना ये सुनते हैं मोहम्मद रफी और साथियों के स्वर में। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म का नाम है आया सावन झूम के। इस गीत को सुनने के लिए हमें पत्र लिख भेजा है छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश, नैला बोरसरा जांजगीर से हेमदेव तिवारी, दुर्गा प्रसाद, अमन कुमार, मीनाक्षी, उमाबाई, ठगिया देवी, अंजुलता, विष्णु प्रसाद, मोगरा देवी और प्यारे लाल मिश्रा। ग्राम महम्मदपुर भक्तिन बाजार अकलतरा से हैं रमेश कैवर्त, राजकुमारी और आरती कैवर्त। श्री श्रृंगी ऋषि महानदी सिहावा पर्वत अंचल ग्राम बेलर गाँव से हैं मिथिलेश, मधु, हिमांशु और अंकित देवांगन। ग्राम पौणी लाफा से हैं विद्यानंद साहू, त्रिवेणी रानी, बबली, सुमन, मंटू, मिष्ठी, सृष्टि, दृष्टि, गन्नू, गणेश, कान्हा, कृष्णा और अंशु साहू।

0: आया सावन झूम के, इस फिल्म का गाना भी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और साथियों के स्वर में। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने, धुन तैयार की थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
0: बलौदा कल्तरा से दिलहरण गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल और समृद्धि पटेल। हथकेरा भाटापारा से पंचू यादव, दादू यादव। बावली से कमलेश, हरेंद्र साहू, सुशील बिलसपुरिया। बिलाईगढ़ से हैं रोशन देवांगन, कौशल्या, हेमलता, डिंपल देवांगन। बागबहरा भदरसी से पन्नालाल सेन, तारा सेन, कौशल और खुशबू सेन। यवतमाल विदर्भ से संतोष खटसे और विनोद खटसे। ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन अब्बासी, शाहनाबाज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अरजान और अबान अब्बासी।

पारा वार्ड सिमगा से हैं रमेश कुमार यादव, श्रीमती माया, रिंकू सन्नी और कोमल यादव। महादेवघाट अमलेश्वर से डोमन सुमन मिथिलेश तारनी सूरज सुजला ज्योति और रेयांश ठाकुर। भाटापारा दतरेंगी से हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार, झावेंद्र कुमार वर्मा। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर आइए सुनते हैं आंचल फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में। मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत की धुन तैयार की है राहुल देव बर्मन ने।

0: मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत आपने सुना राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन में लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म आंचल से। आपकी पसंद कार्यक्रम इस समय आप आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से सुन रहे हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आइए सुन लेते हैं आज का ट्रैफिक अपडेट।
1: नमस्कार साथियों, मैं हूं उमाशंकर पांडे। लीजिए प्रस्तुत है जिले की आज की यातायात व्यवस्था। दैनिक कार्यक्रम ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर, कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज दोपहर कांग्रेसजनों के द्वारा अपनी मांगों के संबंध में नेहरू चौक में विरोध प्रदर्शन किए जाने की योजना है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज दोपहर 12 बजे कांग्रेस भवन के पास एकत्र होकर रैली स्वरूप नेहरू चौक आकर विरोध प्रदर्शन किए जाना प्रस्तावित है। जैसा कि यह सर्वविदित है कि नेहरू चौक शहर का सबसे बड़ा और तमाम दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण चौक है, इसलिए विरोध जता रहे सभी सदस्यों से अनुरोध है कि ध्यान रहे, आपके प्रदर्शन से आम यातायात या शासकीय कार्य किसी भी स्थिति में बाधित ना हो। इसके साथ ही गांव-गांव से लेकर शहर तक अर्थात संपूर्ण बिलासपुर जिले की यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। मित्रों, ये बड़ी विडंबना है कि हिंदू राष्ट्र भारत में जहां गाय को गौ माता के नाम से जाना जाता है, वहीं अब गौ पालकों का इनके प्रति मोह या लगाव निरंतर कम होता जा रहा है। लोग अपनी गायों को दूध देना बंद करते ही स्वच्छंद छोड़ देते हैं, जिससे ये गौधन यत्र तत्र विचरण करते रहते हैं। सूखे दिनों में तो ये मवेशी कहीं भी रहकर अपना जीवन काट लेते हैं, किंतु वर्षा इनके लिए घातक होती है। सभी जगह धरती गीली होने से या पानी भरा होने से अपने मालिकों से उपेक्षित पशुधन सूखे स्थान की तलाश में सड़कों में आकर डेरा डालते हैं। जिले की प्रायः सभी सड़कों में सैकड़ों की संख्या में मवेशी देखे जा सकते हैं। सड़कों में मवेशियों की उपस्थिति से सड़कें क्षतिग्रस्त होती हैं, गंदगी फैलती है, इतना ही नहीं सड़क दुर्घटना के कारण भी ये बनते हैं। विशेषकर रात के समय दोपहिया चालक इनसे टकरा कर गंभीर सड़क दुर्घटना के शिकार होते हैं, गंभीर रूप से घायल होते हैं या मारे भी जाते हैं। इसके अलावा भारी वाहन की चपेट में आकर ये बेचारे मूक पशु बड़ी संख्या में मारे जाते हैं। सभी गौ पालकों से निवेदन है, अपने गौधन को संभाल कर सुरक्षित रखें, क्योंकि अब शासन इसमें कड़ा रुख अपनाने जा रहा है। सतर्क हो जाएं, हमेशा यातायात नियमों का पालन करें, आपकी यात्रा शुभ हो।
0: ये था आज का ट्रैफिक अपडेट।
2: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
0: कार्यक्रम आपकी पसंद में आपका स्वागत है साथियों। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गाना आप सभी श्रोताओं की पसंद पर। डोंगरगांव जिला राजनांदगांव से राष्ट्र

पल गजभिये, राधिका बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। ग्राम दरचूरा से ददुआ साहू, भूरी साहू, संतोषी, दुलौरिन, रेखा, मोतीलाल कामेश्वरी और प्रीतम कुमार साहू। नेहरू वार्ड भाटापारा से प्रेमलाल, भूपेंद्र, दुष्यंत, राघवेंद्र साहू। मोहन पारा कल्तरा से अभिनव और अभिषेक साहू। रुआ बांधा सनिचरी बाजार भिलाई से हैं सुशील जैन, कल्पना जैन, सैया जैन, सौरभ, शौर्य और शुभम जैन। बनियापारा धमतरी से रामचंद माखीजा, काफिर भाई, श्रीमती सविता, बेबी स्वाति और इनका पूरा परिवार। भाटापारा से बचकामल, मोतीलाल, बसंत भृगु, विनय ठाकुर, जोआराम वर्मा, राधेश्याम, सूरज बारेकर, भुवन कामरी, नारायण यदु, लेखराम यदु। मारवाड़ी कुआ भाटापारा से सिया राम और अश्विनी पांडे। सोनाडीह से सुब्रत चौधरी और बेबी अनिशा। रायपुर से हैं नीलू मेघ। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर आइए सुनते हैं उषा खन्ना और किशोर कुमार की आवाज़ों में इंदिवर की रचना। संगीत निर्देशन कल्याण जी आनंद जी का है और फिल्म है जॉनी मेरा नाम।

जॉनी मेरा नाम इस फिल्म का गाना अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ में। अब आइए सुनते हैं राहुल देव बर्मन का संगीतबद्ध किया गीत आशा भोसले और सुरेश वाडकर की आवाज़ों में। कुदरत फिल्म के इस गीत को सुनना चाहा है। लूत्रा खमरिया से नकुल श्याम मोहम्मद अकरम मोहम्मद अजीज़, भाटापारा से दान सिंह रावत दानू पद्मिनी रावत शुभम सौरभ रावत नीरज रावत, पेंशन बाड़ा रायपुर से सोमनाथ यादव वंदना सूर्यप्रकाश शीला कनक गुनगुन बेबी अदिति और तन्मय यादव, छत्तीसगढ़ बेमित्रा से श्रीमती पूर्णिमा सारथी पूजा आरती भाव्या सारथी श्रीमती सुषमा सारथी, पीपरपारा पालचुआ मुंगेली से उत्तरा दिवाकर परमेश्वरी योगिता नितिन वंशिका दिवाकर, जांजगीर मेहंदा से रामनारायण कश्यप कविता देवी कुसुम लता खुशबू कुमारी कश्यप, चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन प्रभा देवी लक्की विक्की नानू रविंद्र खुशी रौनक सेन, तेलीपारा बिलासपुर से रज्जन साहू बेबी शानी छन्नू लाल श्रीवास और अनीता श्रीवास।

आशा भोसले सुरेश वाडकर और साथियों का गाया कुदरत फिल्म का गाना आपने सुना। इसे लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने, धुन तैयार की थी राहुल देव बर्मन ने। और इसी के साथ फरमाइशी फिल्मी गीतों का आपकी पसंद कार्यक्रम अब समाप्त होता है। FM बैंड 103.2 MHz पर हम आकाशवाणी बिलासपुर से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के ठीक 11 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
0: और मैं हूं अजीत। नमस्कार। कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: माँ पिता भगवान का वो अनमोल उपहार हैं जिनका प्रेम और आशीर्वाद जीवन को हर कठिनाई से पार करा देता है।
0: बहुत बहुत सुंदर विचार, इसके लिए आपका धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी का। लिखते हैं,
2: विमलेश जी, अजीत जी नमस्कार, जय जोहार। 18 तारीख को चिड़िया की बच्ची कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा। अच्छी प्रस्तुति के लिए NCERT उमंग के साथ विमलेश जी और अजीत जी को बहुत बहुत बधाई।
0: और बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या कुमारी, निवेश कुमार और नियति कुमारी।
2: मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर।
0: और गांव बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका पंजाब से अमन वर्मा, रमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा, डॉक्टर मदन लाल वर्मा और वर्मा परिवार के सभी सदस्य।
2: और कुतुबपुर तहसील हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा।
0: आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों को भेजने के लिए। और आइए एक बार फिर से चलते हैं हमारी आपकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में कुछ और नई और रोचक जानकारियों के साथ।
2: श्रोताओं, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं पेड़ों की। जैसा कि हमने इस सप्ताह की पहली कड़ी में सुना था, पेड़ सिर्फ पेड़ ही नहीं, वे इस धरती के सबसे प्राचीन जीव हैं। उनके आने के बाद ही दूसरा जीव जगत शुरू हो सका, क्योंकि वे वर्षा, भोजन, औषधि और श्वसन के मुख्य स्रोत हैं।
0: श्रोताओं, क्या आप जानना चाहेंगे कि पेड़ों की उत्पत्ति कैसे हुई? तो चलिए आपको बताते हैं।
2: पेड़ों की उत्पत्ति पृथ्वी के इतिहास की सबसे अद्भुत घटनाओं में से एक है। कहते हैं लगभग 4 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पर पेड़ नहीं थे, केवल सूक्ष्म जीव थे। कालांतर में समुद्रों में शैवाल जैसे जीव विकसित हुए जो तैरते थे और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते थे।
0: धीरे धीरे ये शैवाल जैसे जीव समुद्र से निकलकर भूमि पर आए। इन्हीं से प्रथम स्थलीय पौधों का विकास हुआ।
2: प्रश्न ये है कि इन पौधों ने क्यों बढ़ना शुरू किया। इसका कारण ये था कि जीने के लिए वे

0: अधिक सूर्य का प्रकाश पा सकें और दूसरे पौधों से प्रतिस्पर्धा कर सकें। इसी क्रम में ये पौधे बढ़ते बढ़ते पेड़ बन गए। ध्यान दें तो इस प्रक्रिया में विकासवाद का सिद्धांत काम करता है, यानी सफलतम ही टिका रहता है।
1: तो श्रोताओ, ये थी पेड़ों की उत्पत्ति की वैज्ञानिक कथा। अब जरा ध्यान दें, गर्मी का मौसम है, राह चलते चलते जब बहुत गर्मी लगती है तो आप किसी पेड़ की छाया में शरण लेते हैं
0: जी।
1: क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ठीक उस समय जब आप उसकी छाया का आनंद ले रहे होते हैं, उस समय वो पेड़ क्या क्या कर रहा होता है?
0: ध्यान से सुनिए मित्रों, उस समय वो हवा को ठंडा कर रहा होता है, क्योंकि वो वाष्पोत्सर्जन द्वारा एक प्रकार से प्राकृतिक एसी की तरह काम कर रहा होता है।
1: श्रोताओ, ठीक उस समय वो हमें ऑक्सीजन दे रहा होता है और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को अवशोषित कर रहा होता है जो हमारे लिए हानिकारक है।
0: उस समय वो शोर को कम कर रहा होता है, क्योंकि पत्तियां और शाखाएं प्रदूषित वायु को ही नहीं शोर को भी अवशोषित करती हैं। तभी तो कहते हैं पेड़ों के नीचे या जंगलों में एक शांति का आभास होता है।
1: श्रोताओ, एक बात और, ठीक उस समय वो पेड़ वर्षा और जल संरक्षण में योगदान दे रहा होता है, जिससे भविष्य में हमें भूजल और वर्षा का जल लगातार मिलता रहे।
0: उस समय वो हजारों कीटों, कवकों, पक्षियों और जीवों को आश्रय देकर प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में मदद कर रहा होता है।
1: सचमुच श्रोताओ, एक पेड़ हमारे और दूसरों के लिए मौन रहकर भी इतनी सेवा कर रहा होता है। वह बेशक मौन है, लेकिन मानो कहता है, मैं तुम्हारे लिए हवा को शुद्ध कर रहा हूँ, धरती को ठंडा करके जलवायु परिवर्तन की गति को यथासंभव रोक रहा हूँ,
0: स्वयं धूप सहकर तुम्हें छाया दे रहा हूँ, वर्षा लाने में सहायता कर रहा हूँ, मिट्टी के कटाव को रोक रहा हूँ। बदले में मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे और अन्य पेड़ों को जीवित रहने दो। हम सभी पेड़ धरती के फेफड़े हैं।
1: जी हाँ श्रोताओ, अब जब किसी पेड़ को देखें तो इन बातों को जरूर स्मरण कीजिएगा। पेड़ वास्तव में हमारे लिए प्रकृति के मौन लेकिन सबसे बहुमूल्य उपहार हैं।
0: तो ये थी पेड़ों के बारे में हमारी रोचक जानकारी इस सप्ताह की श्रृंखला में। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
1: जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो उस समय वो क्या क्या कर रहा होता है? कोई दो या तीन कारण बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो उस समय क्या क्या कर रहा होता है? कोई दो या तीन कारण बताइए।
1: 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है, और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और आइए अब सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, जो एक गीत के रूप में देश को समर्पित है। शीर्षक है प्यारा भारत।
0: ये कक्षा 3 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक सितार की एक नज्म पर आधारित है। श्रोताओ, ये खूबसूरत नज्म आपको ले जाएगी भारत के गगनचुंबी पर्वतों, कलकल करती नदियों, लहलहाती फसलों के मैदानों, घाटियों और फलों के बगीचों में।
1: तो आइए करते हैं भारत भ्रमण इस नज्म के साथ। शीर्षक है भारत प्यारा।

0: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम मौर्य कालीन पाटलिपुत्र।
1: इस कार्यक्रम में मौर्य साम्राज्य के महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के बारे में विस्तार से बताया गया है। विशेषकर ये उल्लेख किया गया है कि उनके शासन काल में जनतांत्रिक मूल्य कितने ऊंचे थे, खुफिया व्यवस्था कैसी थी और चीन के यात्रियों ने उनकी कीर्ति की कैसी प्रशंसा की।

मेरा नाम है पाटलिपुत्र। अब लोग मुझे बिहार प्रदेश की राजधानी पटना के नाम से जानते हैं। मेरा इतिहास बहुत पुराना है। इस बात को 2000 वर्ष से भी अधिक बीत चुके हैं जब एक छोटा सा गांव था मैं। नाम था पाटली। यहां वहां कुछ खेत, कुछ झोपड़ियां, पास में कल कल करती गंगा की निर्मल धारा। एक घाट था गंगा पार जाने के लिए। वहां एक दो नौकाएं खड़ी रहती। उसी घाट से महात्मा बुद्ध ने नदी पार की थी वैशाली जाने के लिए।

0: महात्मा बुद्ध का नाम मशहूर हो रहा था।
1: उन दिनों मगध पर मौर्यों का राज्य था, जो बिहार के पटना और गया जिलों में फैला हुआ था। मगध की सीमाओं को बढ़ाया बिंबिसार ने। एक बार वहां भयानक आग लग गई। इसके बाद बिंबिसार ने पास ही में नई राजधानी राजगृह का निर्माण करवाया।

0: राजा बिंबिसार के बाद मगध के सिंहासन पर बैठा अजात शत्रु। महात्मा बुद्ध के सम्मान में अजात शत्रु ने घोषणा करवाई।
1: सुने सुने सुने सभी ग्रामवासी सुने, सम्राट अजात शत्रु ने महात्मा बुद्ध के सम्मान में ये घोषणा की है कि आज से पाटली दुर्ग का मुख्य द्वार गौतम द्वार और गंगा नदी का घाट गौतम घाट कहलाएगा।

महात्मा बुद्ध ने पाटली के विषय में भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में पाटली एक प्रमुख नगर और व्यापार का बड़ा केंद्र बन जाएगा। जब बुद्ध पाटली ग्राम आए थे तो वे 79 वर्ष के थे। इसके एक वर्ष बाद ही कुशीनगर में उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया।

0: अजात शत्रु ने वैशाली को जीत लिया। उसके बाद पाटली दुर्ग का महत्व और भी बढ़ गया।
1: अजात शत्रु के बाद राजा बना उसका पुत्र उदाई भद्र। उदाई भद्र अपने पिता अजात शत्रु की तरह विजेता तो न था, पर उसे नए नए राजमहल बनवाने का शौक था। उदाई भद्र ने ही मुझे मगध की राजधानी बनाया।

0: वो 16 वर्षों तक मगध का राजा बना रहा।
1: समय बदला, मगध का सिंहासन महापद्म नंद के पास चला गया। इसी ने नंद वंश चलाया था।
0: पर मैं खुश नहीं था। मैं एक बड़ा नगर जरूर बन गया था। मेरा नाम दूर दूर तक मशहूर हो गया था, लेकिन मगध की जनता दुखी थी। महापद्म नंद के अत्याचार बढ़ते ही जा रहे थे।

महापद्म नंद के बाद मगध का राजा बना धननंद। बड़ी सेना, अपार धन संपत्ति थी उसके पास, मगर था वो बहुत ही घमंडी। धननंद ने एक बहुत बड़ी भूल कर दी जो उसके पतन का कारण बनी। उसने तक्षशिला के प्रसिद्ध आचार्य कौटिल्य का भरे दरबार में अपमान कर दिया। अपमानित कौटिल्य ने प्रतिज्ञा की

0: अत्याचारी धननंद, मैं कौटिल्य आज प्रतिज्ञा करता हूं कि तेरा सर्वनाश करूंगा, सर्वनाश।
1: और अपनी इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए कौटिल्य ने चंद्रगुप्त को चुना। मौर्य कुल का वो वीर युवक अपना देश छोड़कर भटक रहा था। कौटिल्य ने उसे तक्षशिला में शिक्षा दी।
2: और उधर भारत से बहुत दूर मैसिडोनिया में साहसी सिकंदर अपने पिता फिलिप के बाद राजा बना था। समय था ईसा से 336 वर्ष पूर्व। सिकंदर का सपना था विश्व विजेता बनने का। उसकी आंधी सारी दुनिया पर छा जाने के लिए उमड़ने लगी।

राज्यों में बटा था तब का भारत। लोग वीर थे लेकिन आपस में लड़ते रहते थे। अभिसार के राजकुमार आम्भी ने सिकंदर का स्वागत किया लेकिन राजा पुरु ने सिकंदर का डट कर मुकाबला किया।

सिकंदर बढ़ता गया, उसकी आंधी बढ़ती गई। 11 वर्षों में हर तरफ अपनी जीत के डंके बजाता हुआ सिकंदर भारत की सीमा पर आ खड़ा हुआ। छोटे छोटे राज्य

पुरु की पराजय हुई। सिकंदर जीत तो गया, परंतु अब उसके सैनिक थक गए थे। उनका मनोबल गिरता जा रहा था। उन्हें कदम कदम पर कड़ी टक्कर मिल रही थी। आगे बढ़ने की हिम्मत खत्म हो रही थी।

0: गजब हो गया, सेना आगे बढ़ने से मना कर रही है वीर से गद्दार।
1: क्या आगे बढ़ने से मना कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या मैसिडोनिया का विश्व विजयी बनने का सपना चूर चूर हो जाएगा?
2: वीर सिकंदर, आप स्वयं सैनिकों से बात क्यों नहीं करते?
1: मैं ऐसा ही करूंगा। जाओ, सारे सैनिकों को एक जगह इकट्ठा करो, ये सिकंदर का आदेश है।
3: जी सम्राट, ऐसा ही होगा,
4: ऐसा ही होगा,
3: ऐसा ही होगा।
1: ठीक सुना है कि मैसिडोनिया की बहादुर सेना ने अब आगे बढ़ने से इनकार कर दिया है और वो वापस लौटना चाहती है? मैं पूछता हूं, ऐसा क्यों? जिस काम के लिए हमने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा, जिस काम में हमने अपने बहादुर साथियों की जान की बाजी तक लगा दी, आज उसी काम से तुम सब भागना चाहते हो? याद है तुम्हें, हमारी आंधी के सामने बड़े बड़े सम्राट तक उखड़ गए और आज चारों ओर सिकंदर का डंका बज रहा है। चुप क्यों हो? मुझे जवाब चाहिए। क्या हमारी तलवारों की धार खत्म हो गई है? क्या हमारी भुजाएं खोखली हो गई है? ये व्यास नदी देख रहे हो ना, इस नदी को पार करते ही
3: हम वापस लौटना चाहते हैं।
1: सुनो मेरे वीरों, व्यास नदी को पार करते ही हमें दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिलेगा।
3: हमें तो कुछ नहीं चाहिए,
5: हम व्यास तक आए हैं। ऐसी दुनिया चलो,
3: वापस चलो
5: सम्राट,
1: ऐसी दुनिया चलो। सुनो मेरे वीरों, सुनो मेरे वीरों,
3: सबर करो साथियों। अरे कुछ तो सबर करो साथियों, जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो आगे क्यों ना बढ़ा जाए? अगर मैसिडोनिया वापस चले भी गए तो लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? हम सम्राट की बात नहीं टाल सकते।
1: शाबाश मेरे वीरों, मुझे तुमसे यही आशा थी।

0: तुम सब सैनिकों के घेरे में हो। इस निर्जन खंडहर में आधी रात को क्या षड्यंत्र हो रहा था हम जान चुके हैं।
1: महाराज चंद्रगुप्त आप?
0: हाँ
2: महाराज, देखिए आचार्य कौटिल्य भी आ रहे हैं।
0: आचार्य प्रणाम, आप इस वक्त यहाँ?
3: आश्चर्य न करो चंद्र, मगध को असंख्य नेत्रों वाली गुप्तचर व्यवस्था चाहिए। मैं सावधान हूँ।
0: धन्य हो आचार्य, मौर्य साम्राज्य को आपकी बहुत आवश्यकता है।
4: धन्य हो आचार्य,
5: धन्य हो,
6: धन्य हो।
0: मगध सुखी था।

चंद्रगुप्त प्रजा की भलाई करने वाला न्यायप्रिय शासक था। मगर एक बार फिर संकट सिकंदर के सेनापति निकेटर सेल्यूकस के रूप में बढ़ा आ रहा था।

0: सेल्यूकस भारत को जीतने का सपना लेकर आ रहा था, लेकिन अब भारत बदल चुका था। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को बुरी तरह पराजित किया।
1: बेचारा सेल्यूकस भारत को जीतने आया था, पर उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। मेगस्थनीज सेल्यूकस का राजदूत बनकर आया था। वो 4 वर्ष तक दरबार में रहा।

0: समय बदला। चंद्रगुप्त के शासन के 25 वर्ष बाद बिंदुसार राजा बना और फिर बारी आई उसके मझले बेटे अशोक मौर्य की। अशोक बहुत वीर था। उसने उज्जैनी और तक्षशिला के विद्रोह को सफलतापूर्वक शांत कर दिया और फिर हुआ कलिंग युद्ध।
1: सिर्फ विजय प्राप्त करने के लिए? नहीं नहीं, आगे ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अशोक मौर्य प्रतिज्ञा करता हूं, कभी युद्ध नहीं करूंगा। अब कभी युद्ध नहीं करूंगा। हाँ, अब कभी युद्ध नहीं करूंगा।
0: कलिंग ने अशोक का जीवन बदल डाला। उसकी रुचि अहिंसा में, बौद्ध धर्म में हो गई।

उसने बौद्ध विहार बनवाए, शिलालेख खुदवाए। अगर अशोक का स्तंभ लेख न होता तो हम कभी न जान पाते कि बुद्ध का जन्म कहां हुआ था। तभी श्रीलंका के राजा तिस का मैत्री संदेश आया तो अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। इसी तरह बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावा एशिया के और हिस्सों में भी हुआ। अशोक के बाद मौर्य वंश सशक्त नेतृत्व के अभाव में बिखरता चला गया। सम्राट आए, सम्राट गए, किसी को ऐश्वर्य मिला, किसी की सत्ता छीनी, पर मैं वहीं का वहीं खड़ा हूं। समय के बहाव को देखते हुए और भारत की गोद में अपना स्थान बनाए हुए,

0: कार्यक्रम और श्रोताओं, इसी कार्यक्रम के साथ अब हम अपने कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आकाशवाणी का, ये बिलासपुर केंद्र है।

0: FM बैंड 103.2 MHz पर हम आकाशवाणी बिलासपुर से बोल रहे हैं। इस समय 11:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब से लेकर 11:55 तक हम रिले करेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।
1: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। यह आवाज है विशाल मिश्रा की और गीत और संगीत भी विशाल मिश्रा का ही है।

0: बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: बेगम अख्तर की आवाज में हम आपको जिगर मुरादाबादी का ये कलाम सुनवा रहे हैं।

कार्यक्रम का अगला गीत आशा भोंसले और हरजोत कौर की आवाजों में है। गीतकार हैं अनजान और ये एक गैर फिल्मी गीत है।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है
0: जी।
1: या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।

0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: और लीजिए अब सुनिए पलक मुछाल और उत्कर्ष शर्मा की आवाजों में ये गैर फिल्मी गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। 11:55 होने वाले हैं। प्रादेशिक समाचार अब हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। समाचारों के बाद हम जुड़ेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा से। फिलहाल आइए जुड़ें आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से।
1: शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। सीबीआई ने महादेव ऐप सट्टेबाजी मामले में 6 नए आरोप पत्र दाखिल किए हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि आंधी तूफान, तेज बारिश और तेज हवा के दौरान पेड़ से गिरकर हुई मौत भी प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में आती है। और कोंडागांव पुलिस ने 43 शिक्षकों से कुल 12 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले 5 ठगों को गिरफ्तार किया है। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने महादेव ऐप सट्टेबाजी मामले में 6 नए आरोप पत्र दाखिल किए हैं। इनमें 6 आरोपियों को नामजद किया गया है। जांच एजेंसी ने मामले के मुख्य आरोपियों सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के खिलाफ भी अतिरिक्त सबूत अदालत में पेश किए हैं। विदेश में छिपे 4 अन्य आरोपियों के खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी है और उन्हें भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन लाने की योजना बना रही है, जो मानक E20 पेट्रोल से करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। उन्होंने कहा कि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जो विशेष रूप से इस ईंधन के उपयोग के लिए डिजाइन किए गए हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने प्राकृतिक आपदा से होने वाली मौतों पर मुआवजा देने की राज्य सरकार की नीति को लेकर अहम फैसला सुनाया है। जस्टिस संजय के अग्रवाल की एकल पीठ ने स्पष्ट किया है कि आंधी तूफान, तेज बारिश और तेज हवा के दौरान पेड़ से गिरकर हुई मौत भी प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में आती है। कोर्ट ने राजस्व विभाग द्वारा मुआवजा देने से इनकार करने का आदेश निरस्त करते हुए मृतक के बेटे को 30 दिन के भीतर 4,00,000 रुपए का मुआवजा देने के निर्देश दिए। ये मामला राजनांदगांव जिले के मोहला क्षेत्र का है। कोंडागांव पुलिस ने 43 शिक्षकों से कुल 12 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले 5 ठगों को गिरफ्तार किया है। शातिर ठगों के गिरोह ने फरसगांव, केशकाल, बड़े डोंगर, धनोरा, विश्रामपुरी सहित कई क्षेत्रों के शिक्षकों को अपने झांसे में लिया था। मामले में थाना फरसगांव और केशकाल में 4 अपराध दर्ज हैं। पुलिस द्वारा पूछताछ में पता चला कि ठग शिक्षकों को पर्सनल लोन दिलाने के नाम पर ठगी किया करते थे। दुर्ग जिले में भिलाई स्टील प्लांट से लौह स्क्रैप चोरी करने के मामले में पुलिस ने प्लांट के 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। मामले में एसएमएस थ्रिल के जीएम और इंजीनियरिंग एसोसिएट शामिल हैं। इस मामले में अब तक कुल 15 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपियों के द्वारा पिछले 4-5 माह से योजनाबद्ध तरीके से चोरी की घटना को अंजाम दिया जा रहा था। सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र के अंबिकापुर रायगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 पर कल एक चलती हाईवा में अचानक आग लग गई। मिली जानकारी के अनुसार ये दुर्घटना ग्राम सोनतराय स्थित देवगढ़ के पास हुई। इस दौरान हाईवा में सवार वाहन चालक समेत कुल 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। इन तीनों को सीतापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आज दुर्ग जिले में स्थित हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के नया भवन परिसर में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें निजी क्षेत्र की 15 कंपनियों में 1,000 से अधिक पदों पर भर्ती की जा रही है। इस रोजगार मेले में 10वीं पास भी शामिल हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा सूबेदार, उप निरीक्षक संवर्ग और प्लाटून कमांडर प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 12 जुलाई को

0: 22 परीक्षा केंद्रों में किया जाएगा। ये परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सीबीआई ने महादेव ऐप सट्टेबाजी मामले में 6 नए आरोप पत्र दाखिल किए हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि आंधी तूफान, तेज बारिश और तेज हवा के दौरान पेड़ से गिरकर हुई मौत भी प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में आती है। और कोंडागांव पुलिस ने 43 शिक्षकों से कुल 12 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले 5 ठगों को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, इसे हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे। ये आकाशवाणी बिलासपुर है। इस समय दिन के ठीक 12 बजे हैं। श्रोताओं, अब से लेकर 12:55 शाम 5 बजे तक हम रिले करेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया की अपनी ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा आधिकारिक रूप से संपन्न कर ली है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भी दोनों देशों ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। भारत को ऑस्ट्रेलिया से दीर्घकालिक यूरेनियम आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था को अंतिम रूप दिया गया। यात्रा का सबसे प्रभावशाली जनसंपर्क कार्यक्रम मेलबर्न के मावल स्टेडियम में आयोजित मेलबर्न मीट्स मोदी प्रवासी भारतीय सम्मेलन रहा, जिसमें लगभग 25,000 लोग उपस्थित थे। प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग 10 लाख भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई लोगों को दोनों देशों के बीच जीवंत सेतु बताया।
3: भारत ऑस्ट्रेलिया मैच का रोमांच, और दूसरा यह एहसास कि दोनों देशों में क्रिकेट केवल एक खेल नहीं है लेकिन एक साझा जुनून है। लेकिन आज यहाँ कोई लास्ट ओवर फिनिश का प्रेशर नहीं है, आज यहाँ केवल खेल की खुशी है, हमारी मित्रता की गर्मजोशी है और फ्यूचर चैंपियंस की एनर्जी है।
2: प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने भी भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि ये बहुसांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। प्रधानमंत्री 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो गए हैं। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति का आकलन करके प्रवर्तन में सुधार के उपायों की पहचान कर देश के सीमा सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना था। इस अवसर पर गृहमंत्री ने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है।
4: विगत 12 साल में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ सीमा सुरक्षा के लिए काम हुआ है। सबसे पहले बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर राजस्व खर्च होना, इसकी प्रायोरिटी चिन्हित करना और चिन्हित प्रायोरिटी पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना। हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो 2013 का बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और आज के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में 400% का परिवर्तन है। बॉर्डर सुरक्षा की पहली जो रिक्वायरमेंट थी, बॉर्डर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, इसको सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से किया है।
2: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है।

0: है कि सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये ईंधन मानक E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। हालांकि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जिन्हें विशेष रूप से इस ईंधन के उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज बढ़त का रुख है। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 803 अंक बढ़कर 77,545 जबकि निफ्टी 243 अंक की बढ़त के साथ 24,205 पर पहुंच गया। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज लंदन के लॉर्ड्स मैदान में मेजबान इंग्लैंड के साथ ऐतिहासिक एक दिवसीय टेस्ट मैच खेलेगी। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे से शुरू होगा। ये पहली बार है जब लॉर्ड्स मैदान पर महिला टेस्ट मैच खेला जाएगा। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश महफिल कार्यक्रम। बस कुछ ही पलों में

प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों, इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। और आज यादों की महफिल कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं दिग्गज गीतकार और शायर असद भोपाली के लिखे कुछ गीत। आपको याद है ना, आज उनका जन्मदिन है। तो आइए यादों की महफिल कार्यक्रम में आज असद भोपाली जी को हम याद करते हैं। यह है इस कार्यक्रम का पहला गीत, लता मंगेशकर, एसपी बालसुब्रमण्यम और साथियों की आवाजें। फिल्म का नाम है मैंने प्यार किया। गीतकार असद भोपाली और संगीतकार राम लक्ष्मण।

लता मंगेशकर, एसपी बाला सुब्रमण्यम और साथियों की आवाजों में अभी आपने सुना फिल्म मैंने प्यार किया का ये गीत। और आइए अब सुनते हैं उषा खन्ना के संगीत निर्देशन में असित भोपाली की लिखी ये रचना, आवाज मोहम्मद रफी की, और ये फिल्म है एक सपेरा एक लुटेरा।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए असद भोपाली का लिखा गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीत निर्देशन में, आवाज लता मंगेशकर की है और ये फिल्म है हम सब उस्ताद हैं।

0: लता मंगेशकर को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था हम सब उस्ताद हैं।
1: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
2: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
1: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: कार्यक्रम में अब सुनिए लता मंगेशकर और कमल बारोट की आवाजी। फिल्म का नाम है पारस मणि। असद भोपाली के शब्दों को संगीत में ढाला है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: लता मंगेशकर की आवाज में हम आपको फिल्म रूप तेरा मस्ताना का गीत सुनवा रहे हैं। शब्द असद भोपाली के और तर्ज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की ही आवाज में, फिल्म का नाम श्रीमान फंटूश, रचना असद भोपाली की है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

लता मंगेशकर की आवाज में हम आपको फिल्म टावर हाउस का गीत सुनवा रहे हैं। रचना असित भोपाली की और संगीत रवि का।

कार्यक्रम का अगला गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में असद भोपाली का ही लिखा हुआ, आवाजें लता मंगेशकर और साथियों की, फिल्म का नाम है आया तूफान।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। कार्यक्रम में अब सुनिए फिल्म नाग मंदिर का गीत, आवाज मोहम्मद रफी की।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है
0: जी।
1: या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म एक नारी दो रूप का ये गीत।

ग्यावस थी मोहम्मद रफी की फिल्म का नाम था एक नारी दो रूप। गीतकार थे असद भोपाली। और आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का ये आखिरी गीत।

इस गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज इस कार्यक्रम में हमने आपको गीतकार असद भोपाली के लिखे कुछ गीत सुनवाए।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर। बस आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

तो प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। कार्यक्रम सुरीला सफर के सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, निदा फाजली ने कहा है कि सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। तो चलिए निकलते हैं इस आज के सुरीले सफर पर, या यूं कहें कि इस संगीतमय सफर पर। और आज इस सफर में कुछ कालजयी और सदाबहार धुनों पर आधारित कई ऐसे गीत हम आपके लिए चुनकर लाए हैं जो आपको लगभग एक जैसे गाए हुए लगेंगे, है ना। यानी एक ही मीटर में गाए हुए ये गीत हम कई बार सुनकर ठिठक भी जाते हैं या महसूस करने लगते हैं कि अरे, ये तो बिल्कुल एक जैसा ही गाया गया है। यहाँ शास्त्रीय रागों पर बात करना हमारा उद्देश्य नहीं है दोस्तों, क्योंकि कौन सा गीत पूर्ण रूप से किस राग पर आधारित है ये तो कोई शास्त्रीय संगीत का ज्ञाता ही बता सकता है। लेकिन हाँ, जब हम इन गीतों पर अध्ययन कर रहे थे तो हमने जाना कि आज के ये सभी गीत एक ही राग पर आधारित हैं और सुनने में बिल्कुल लगभग यूं कहें एक जैसे लगते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के इस सुरीले सफर पर। हाँ, हमारे बहुत से श्रोताओं ने कभी लिखा है कि आज के गीत राग यमन पर आधारित हैं, राग आसावरी पर, राग शिवरंजनी पर, राग अल्लैया बिलावर पर, राग पीलू पर। बहुत सारे रागों का हमारे श्रोताओं ने जिक्र किया है, लेकिन हमने आपको कहा कि यहाँ राग इतना महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि हम शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता नहीं है। हमारा उद्देश्य इस रूप में आपका मनोरंजन करना है कि ये गीत जब हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि अरे, ये गीत उस गीत से कितना मेल खाता हुआ है। ये अलग बात है कि ये गीत किसी एक राग पर आधारित है, कोशिश तो हम करेंगे उसे जानने की। तो आज का हमारा टेक्स्ट है कि आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए ऐसे गाने जिसमें भाव या मूड एक जैसा है, ऐसे गीत लेकर आए हैं। ऐसे गीत जो सुनने में एक जैसे लगेंगे, हाँ, और शास्त्रीय दृष्टि से भी वैसे उनका राग एक ही है। ऐसे गीत जो एक ही मधुर धुन से प्रेरित हैं, आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस मधुर और सदाबहार राग पर कई बेहतरीन गीत बने हैं जो आपको बिल्कुल एक जैसा ही अनुभव कराएंगे। इन सभी गानों को इस कार्यक्रम में एक मधुर माला की तरह पिरोया गया है। तो बताइए कौन से हैं वो गीत, और आज हमने एक बार फिर आपके लिए कुछ शब्द जोड़े हैं कि

गानों में ये शब्द आपको सुनने को मिलेंगे, ताकि आपको कुछ आसानी हो जाए उन गानों को ढूंढने की, है ना, उस राग को पहचानने की। अगर आप में से हमारे श्रोता जो शास्त्रीय रागों के ज्ञाता हैं, तो आज के शब्द हैं हवाएं, दिल, कहा था, तमन्ना, महका, जरूरत, नगमा, अगर, किनारे और मजबूर। और यकीनन हमारे श्रोता बहुत बहुत बहुत होशियार हैं, क्योंकि उन्होंने, बहुत सारे ऐसे श्रोताओं ने इस बात का जिक्र किया है कि भाई आज तो ये गाने ये हैं, सारे गाने सही लिख दिए हैं हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने, और कई श्रोताओं ने इन्हें जानने की कोशिश की है। एक श्रोता लिखते हैं कि कई बार अलग अलग फिल्मों के गीत सुनते हुए अचानक एहसास होता है कि इनके बोल, गायक, संगीतकार और समय भले ही अलग हों, पर इनकी मूल धुन या मीटर कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ते हैं। अलग अलग समय, अलग अलग फिल्मों, अलग अलग गीतकारों और संगीतकारों की रचनाएं, लेकिन इन्हें एक अदृश्य संगीत सूत्र जोड़ता है। यही भारतीय फिल्म संगीत की खूबसूरती है। एक कालजयी धुन समय के साथ नए शब्द पहनती है, नए स्वर पाती है, नए भाव ग्रहण करती है, फिर भी अपनी आत्मा को सुरक्षित रखती है। एक सुंदर धुन समय की सीमाओं को पार कर कई पीढ़ियों तक जीवित रहती है। आज के सभी गीत, आपने उस राग का जिक्र भी कर दिया है, लेकिन आपने बहुत सुंदर इबारत लिखी है, जो बात हम कहना चाहते थे वो आपने पूरी तरह से कह दी है। तो चलते हैं इस सुरीले सफर पर।

यह आवाज लता मंगेशकर की थी फिल्म नौजवान के लिए। गीतकार साहिर लुधियानवी थे और संगीतकार थे सचिन देव बर्मन। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत के सभी गाने मुख्य रूप से अलग अलग रागों पर आधारित हैं। आपने कुछ राग

का जिक्र किया है। आप लिखते हैं कि कुछ संगीतकारों के अनुसार राग पहाड़ी, राग देश के प्रभाव वाली धुनों से प्रेरित हो सकते हैं आज के गीत। और आपने आगे लिखा है कि राग बिहाग भारतीय शास्त्रीय संगीत यानी हिंदुस्तानी संगीत का एक अत्यंत मधुर, लोकप्रिय और श्रृंगार रस प्रधान राग है। इस राग की मुख्य विशेषताएं आपने लिखी है कि गंभीर और शांत प्रकृति का है और श्रोताओं को एक आध्यात्मिक और कोमल चांदनी जैसी शांति का अनुभव कराते हैं ये राग। जी हाँ, लेकिन आज के गाने तो राग बिहाग पर आधारित नहीं है और ना ही हमारा उद्देश्य है कि हम किसी राग पर हमारे श्रोताओं से जानना चाहें, क्योंकि वही बात कि हर श्रोता शास्त्रीय रागों पर आधारित फिल्मों का चयन नहीं कर सकता है। हमारा उद्देश्य था कि आज के गीत जो हमें एक सी अनुभूति दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने शास्त्रीय रागों का जिक्र किया है जिसका आज हम यहाँ पर पठन करेंगे, उसको पढ़ेंगे, ताकि अच्छा लगेगा आज का ये कार्यक्रम कि शास्त्रीय राग कौन राग आपको प्रभावित करता है और किस तरह से प्रभावित करता है, ये भी जानने का अवसर हमें मिलेगा। एक श्रोता लिखते हैं कि आज आप पहली लेकर आए हैं जिसमें दो बातें उभर कर सामने आई हैं। सिर्फ शब्दों के आधार पर गाने चुने और वो एक ही भाव और मूड के हों तो शायद राग अलग अलग हैं, लेकिन अगर सिर्फ शास्त्रीय राग को आधार बनाए तो दिए गए शब्दों में कुछ गाने शायद नहीं है। हाँ, अंतरे में कहीं एक दो शब्द हैं, इसलिए अगर एक ही जैसी धुन पर गानों और एक ही राग की बातें तो ठंडी हवाएं, और आपने कुछ गानों का जिक्र किया है और बहुत सही किया है। हाँ, लेकिन आप जिस राग का जिक्र कर रहे हैं वो शायद न हो। आप लिखते हैं कि आज मेरे हिसाब से तो राग यमन ही चुना होगा और मैं ऐसा मानता हूं, और इसी राग पर कई गाने रखे गए हैं और आपने आगे भी लिखा है कि कुछ राग पहाड़ी पर भी आधारित हो सकते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गीतों का किसी न किसी राग से क्या नाता, उसके बारे में जानकारी आज के कार्यक्रम में क्या हमें मिलेगी। वैसे कोई भी गीत हो वो फिल्मों में उस दृश्य पर बनाया जाता है और वो गीत किसी राग पे आधारित ही बनेगा। ये राग कौन से हैं ये हमारे कई गुणी रेडियो श्रोता ही जानते हैं। वैसे आज के गीतों को आपने भी किसी राग का जिक्र किया है उस पर ज्यादा संगीतबद्ध किया हुआ लगता है, पर मुझे पक्का पता नहीं। वैसे मैंने सभी गीतों की लिस्ट भी भेज दी है, देखें कितने गीत मेरी लिस्ट के बचते हैं। जी हाँ, सबसे बड़ी बात ये, और हमने जो आपको शब्द दिए उन शब्दों के आधार पर तो हम सिर्फ शास्त्रीय रागों का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, है ना। एक श्रोता लिखते हैं कि कुछ गीत अपने अस्तित्व को इतना बड़ा बना लेते हैं कि वो सिर्फ किसी का लिखा या किसी का लयबद्ध गीत ही नहीं रह जाता, वे दशकों तक अपने सुनने वालों के हृदय में बस जाते हैं। जैसे कि आज के भारत के गीत जिनके बोल तो अलग हैं मगर धुन कमोबेश एक सी है। अतीत की परछाई को टटोलें तो और न जाने कितने ऐसे गीत कहीं न कहीं सांस ले रहे होंगे, यानी उमड़ रहे होंगे। मन का आंगन भीग रहा है और मैं सोच रही हूं क्या कभी ऐसा भी कोई वक्त था जब मेरे साथ ये गीत नहीं थे। तो एक ही जवाब आता है, गीत चाहे कोई भी हो, ये गीत ही हमारे मित्र हैं, सहोदर हैं। इन गीतों ने ही हर उदासी को मुस्कान में और अवसाद को हौसले में बदला है, जैसे कि ये गीत। आपने कुछ गीतों का जिक्र भी किया है, बिल्कुल सही कहा आपने, बस उन्हीं गीतों को आज हम लेकर आए हैं। तो अभी आपने जो गीत सुना था फिल्म नौजवान से, उसको ध्यान में रखिए और सुनिए कार्यक्रम का ये अगला गीत। आपको लगता है कि हाँ बिल्कुल वैसा ही तो है ये गीत।

जी, तो अभी आपने सुना ये गीत, फिल्म का नाम था चांदनी चौक। हमारे श्रोताओं को बताना है कि इस गीत को आवाज किसने दी थी और गीतकार संगीतकार के नाम भी अगर आप बता दें तो हमें अच्छा लगेगा, है ना? कितना प्यारा गीत था ये, और गायिका का नाम बताइए, गीतकार और संगीतकार का नाम भी बताइए।

हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज का ये सुरीला सफर थोड़ा कठिन लग रहा है। कठिन नहीं है, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए और महसूस कीजिए। आंखों को बंद कीजिए, भीतर सांस खींचिए और पता लगाइए कि क्या जो मुझे लगा वो आपको भी लग रहा है कि हाँ, ये गीत सुनने में एक ही तरह के तो लग रहे हैं, है ना? वही भाव, वही उसी तरह का माहौल। तो अगर आप उसे ध्यान से सुनेंगे तो आज का ये सफर आपको बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि राग की पहचान करना तो मुश्किल नहीं है, हवाएं और दिल जैसे शब्दों से ही पता चल जाता है कि आज का कार्यक्रम किस राग पर आधारित है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अपने अंदाज में अव्वल अनुसंधानिक अभिनव प्रयास की एक और अनुपम श्रृंखला स्वागत योग्य और सराहनीय है। राग रागिनी के तिलस्मी सम्मोहन से समरसता संभाव युक्त गीत संगीत आधारित कार्यक्रम कुछ जटिल मगर संभाव्यता पूर्ण है। नई दिशा दर्शन कराती सुरीला सफर का रोमांच आज संभवतः अपनी चरम पर रहेगा, इंतजार है। बहुत सुंदर लिखा है आपने। और आगे आप लिखते हैं कि समानता वाले संभावित गीत आपने लिखे भी हैं और बहुत गीत आपके सही जा रहे हैं। आप सुनते रहिए कार्यक्रम को अंत तक और आपको पता लगेगा कि जो आपने सोचा ठीक वही हमने भी सोचा है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज गाने का कोई भी हो इबारत पढ़कर लगता है कि वाकई में आज तो सुरीला सफर सुरीला होगा। मधुर और सदाबहार गीतों के माध्यम से आज दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक का सफर सुरीला तो होगा ही। तो मिलते हैं दोपहर 1 बजे से। अगला गीत हम आपको सुनवाएं, उससे पहले हमारे दो सवाल।

जी, तो आपको बताना है कि ऐसे और कौन से दो गीत जो आपको याद है या आपको महसूस हुए, उन गानों का जिक्र करिए एवं करिए सिर्फ दो गानों का, जिसमें आपको लगेगा कि ये दोनों गीत जब जब मैंने सुने मुझे लगा कि ये दोनों गीत एक से हैं। और हमारा दूसरा सवाल, अगर आप शास्त्रीय संगीत का ज्ञान रखते हैं हमारे जो श्रोता, जैसा कि हमें हमारा फेसबुक पेज देखने पर पढ़ने पर पता चल रहा है, तो आपको कौन सा शास्त्रीय राग पर आधारित गाया हुआ गीत ज्यादा प्रभावित करता है? अपनी अपनी पसंद के राग होते हैं ना, तो आपको किस राग ने ज्यादा प्रभावित किया ये वही लिखें जिन्हें शास्त्रीय रागों पर आधारित फिल्मी गानों का थोड़ा सा विज्ञान है। सवाल एक बार फिर से कि आप बताइए ऐसे दो गीत जो लगभग एक जैसा ही गाए हुए आपको महसूस होते हैं। और हाँ, हमारे जो शास्त्रीय संगीत के रसिक श्रोता हैं, जिन्हें शास्त्रीय संगीत का ज्ञान है या उन्होंने शास्त्रीय गायन सीखा हुआ है, तो बताइए आपको किस राग पर आधारित फिल्मी गीत ज्यादा पसंद आए। और हाँ, हमने आपसे पूछा था कि फिल्म चांदनी चौक में जो गीत गाया गया है वो किस गायिका की आवाज है और संगीतकार और गीतकार कौन है। और अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। मदन मोहन का संगीत है, राजा मेहदी अली खान के बोल हैं, मोहम्मद रफी की आवाज, फिल्म का नाम आपकी परछाइयां। ये गीत भी हमें थोड़ा थोड़ा वैसा ही महसूस होता है जैसे इससे पहले के दो गीत आपने सुने थे।

जी, तो आज फेसबुक पेज पर जब हम नजर दौड़ा रहे हैं तो हमें लग रहा है कि आज का ये सफर थोड़ा सा कठिन हो गया है हमारे श्रोताओं के लिए, जबकि कठिन नहीं है। भाई बड़ा रुक रुक कर चल रहे हैं आप लोग तो। हमने तो आपसे वादा लिया था कि सुजिला सफर में आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे और दुख तकलीफें जो भी कुछ आएगा उसे महसूस करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन लगता है हमारे श्रोता थोड़ा सा थक गए हैं, है ना? थके नहीं, हमारे साथ चलते रहिए, चलते रहिए और अंततः हमें मंजिल मिलेगी जरूर। एक श्रोता ने लिखा है कि आज सभी को हमारा नमस्कार। आज आप कुछ अलग ही थीम लेकर आई हैं, राग रागिनी का तो हमें नहीं पता, हमारे जो गाने हमें याद आएंगे उन्हें हम लिख भेजेंगे। हाँ तो लिख भेजिए ना कि आपको ऐसे कौन से गीत याद आ रहे हैं जब आपने इन्हें जब जब सुना तो लगे आपको ऐसा लगा कि अरे ये गीत तो हमने पहले भी सुना था और ये गीत भी वैसा ही लग रहा है। तो इस तरह के भाव कई बार हमें लगता है। हम हालांकि शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता नहीं हो सकते, लेकिन एक श्रोता मात्र होते हुए भी हम ऐसा महसूस तो कर ही सकते हैं ना। तो उन दो गानों का जिक्र आपको करना है और जो शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता हैं हमारे श्रोता वो तो हमें बता सकते हैं कि उन्हें किस राग पर आधारित कौन सा गीत ज्यादा पसंद आता है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि हमें राग कभी समझ ही नहीं आए और न ही कभी हमने समझने की कोशिश की, बस हमने गीतों से प्यार किया, फिर राग कोई भी हो, जो गीत हमें अच्छा लगा उसे गाया गुनगुनाया और आज तक गीतों के साथ हैं। कुछ गीतों से बहुत कुछ सीखा है और

कुछ गीतों ने हमें सहारा भी दिया है, कुछ गीतों को सुनकर हमने बहुत अच्छे से काम भी किए, और हाँ कुछ गीत उदास भी कर गई, पर फिर कुछ गीतों ने जीवन के सच्चे राज भी दिखाए, जिनके साथ रहकर हमारा इतना सफर कट गया। बस आगे का सफर भी अच्छा बीते इन गीतों को गुनगुनाते हुए। कितनी बढ़िया बात लिखी है आपने, बिल्कुल सही कहा आपने, और वही हम भी आपसे चाहते हैं कि एक श्रोता मात्र बनकर आप उन गीतों को याद कीजिए जो कभी आपको लगे होंगे कि ये गीत हमें एक जैसे लगे। बस इतना ही तो सोचना है कि दो गीत कौन से, ऐसे दो गीत थे जो हमें एक जैसे महसूस हुए, है ना। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज का जो शब्द है वो SG बर्मन साहब की धुनों से प्रेरित होकर लग रहा है ठंडी हवाएं, और फिल्म के गीतों से मिलते जुलते सभी गीतों की धुन भी हम आज सुनने वाले हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि हवाएं शब्द पर हिंदी फिल्मों में कई बेहतरीन और सदाबहार गीत बने हैं जो प्यार, उदासी और मौसम के अलग अलग रंगों को दर्शाते हैं। यहाँ हवाएं या हवा से जुड़े कुछ सबसे लोकप्रिय गानों की सूची भी आपने दी है, और आपने हमारे हर शब्द पर बहुत कुछ लिखा है। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप हर शब्द पर अपनी राय हमें लिख रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि पुराने गीत सिर्फ कानों में नहीं गूंजते, वे यादों में महकते हैं, और जब उन्हें सुनने वाले दिल से जुड़े हों तो हर धुन अपनी सी लगने लगती है। बिल्कुल सही कहा आपने कि जब हम किसी गाने से दिल से जुड़ जाते हैं तो हर गीत हमें अपना सा लगने लगता है। चलिए, ये जो गीत अब हम आपको सुनवाने वाले हैं वो भी आपको अपना सा ही लगता है। याद आया,

लता मंगेशकर को आपने सुना, फिल्म का नाम था ममता। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी थे और संगीतकार थे रोशन। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज एक बात जरूर कहूंगा कि जब रागों की बात करते हैं, खासकर फिल्म संगीत में, तो शुद्ध राग पूरे गाने में शायद ही बजाया गया होता है, क्योंकि कभी कभी कहानी के भावों को विस्तृत रूप से उभारने के लिए स्वरों में फिर बदल भी की जाती है, यानी मिश्रित रागों की धुनें ज्यादा सुनाई देती है ताकि गीत अपने भाव को अच्छी तरह से दर्शकों के दिल तक पहुंचा सके। कहने का मतलब है कि रहे न रहे महका करेंगे गीत की शुरुआत पहाड़ी के स्वर के साथ हुई, लेकिन अंतरे में कहीं यमन राग नजर आ रहा है जो रोशन जी का सबसे मनपसंद राग था। आज रागों की अच्छी व्याख्या सभी मित्रों ने की है, धन्यवाद सभी मित्रों का। बिल्कुल, हम तो आपका भी धन्यवाद करेंगे कि आपने अपनी बात को कितने अच्छे तरीके से कहा है, जो हमारे वो श्रोता इस बात को समझ पाएंगे जिन्हें शास्त्रीय रागों का ज्ञान नहीं है या उनमें उनका क्या कहना चाहिए, उत्साह नहीं है या शौक नहीं है या नहीं जानते वो उसके बारे में। बिल्कुल आपने सही कहा है कि कोई भी गीत जो है एक ही राग पर आधारित हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे रागों को मिलाकर भी कई बार इस तरह के प्रयोग किए जाते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का ये कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपने बता भी दिया है कि फिल्म चांदनी चौक के बारे में आपने पूछा था कि गीतकार और संगीतकार कौन है, तो मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं रोशन साहब। बिल्कुल सही लिखा आपने, और ये गाना स्मृति विश्वास पर फिल्माया गया था। और आपने ये नहीं बताया कि आवाज किसकी थी, गायिका का नाम भी हमें बताइए तो आपका जवाब पूरा हो जाएगा। वहीं आप लिखते हैं कि दरअसल आज के सारे गाने एक राग पर नहीं है बल्कि एक मीटर पर आधारित है, और आपने किसी गाने का जिक्र भी इस सूची में शामिल किया है। आप लिखते हैं कि आपका पसंदीदा राग, यानी कि मेरा पसंदीदा राग है कलावती, बागेश्री, शंकरा, देस और मालकोस। अच्छा, ये राग आपको बेहद पसंद आते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत खूबसूरत कार्यक्रम सुनने को मिल रहा है, धन्यवाद। आपका भी शुक्रिया कि आप इस सफर में हमारे साथ हैं, जो जैसा हमारे श्रोता कह रहे हैं कि थोड़ा सा कठिन है आज का ये सफर, लेकिन ऐसा नहीं है। आप मन की आंखों से जब इस कार्यक्रम को महसूस करेंगे तो शायद आपको भी सफर अच्छा लगेगा। एक श्रोता लिखते हैं कि आज के इस कार्यक्रम का हमें इंतजार था और अब वक्त यूं ही बीत जाएगा। सुहाना मौसम है, शुभ दोपहर है, साथ ही आपका कार्यक्रम चल रहा है उनके साथ, यानी मेरे साथ मंदाकिनी दीदी के साथ। प्रस्तुति सुंदर, कर्ण मधुर, मनमोहक है और हमारे दिल को ठंडक पहुंचा रही है, ऐसा हम मानते हैं। तो आज का ये कार्यक्रम हम सुनेंगे अंत तक, ऐसा हम वादा करते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो हमारे यहाँ सचमुच ठंडी हवाएं चल रही हैं जो बादलों को उड़ाकर ले जा रही हैं। आइए सुनते हैं इसी क्रम में अगला गीत।

तो देखा आपने संगीत का असर। हमारी एक श्रोता पूछ रही है कि भाई ये किस फिल्म का गीत है जो अभी आप सुनवा रही हैं? बिल्कुल रहे ना रहे हम वाली गीत जैसी धुन का है, जैसा गीत है। हमने आपसे यही तो कहा ना कि कई बार जब हम बहुत ही गहराई से किसी गीत को सुनते हैं, हो सकता है हम उस मीटर को ना समझते हों कि ये गीत किस मीटर में गाया गया है, लेकिन जब हम उसे बहुत गहराई से सुनते हैं तो हमें लगता है कि अरे ये तो उस गाने की धुन जैसा ही है जैसा कि अभी हमारी श्रोता ने पूछा। तो हम आपको बता दें, ये आशा भोसले की आवाज में फिल्म नरम गरम से हमने लिया था ये गीत। गुलजार साहब के बोल थे और राहुल देव बर्मन की धुन थी। हमारे श्रोता ने लिखा है कि दादा बर्मन ने 1951 में फिल्म नौजवान में गीत रचा था, ठंडी हवाएं लहरा के आई। लता मंगेशकर की आवाज थी, साहिर साहब के बोलते। इस गीत के माधुरी से प्रभावित होकर दादा के समकालीन संगीतकार रोशन ने 1954 में फिल्म चांदनी चौक में गीत रचा, तेरा दिल कहाँ है। इसमें आवाज आशा भोसले की है। बिल्कुल सही कहा आपने, वो गायिका आशा भोसले हैं जिनकी आवाज हम सुन रहे थे। मजरू सुल्तानपुरी की रचना थी और रोशन की धुन तो थे ही, लेकिन दादा का गाना संगीतकार मदन मोहन को इतना भाया था कि उन्होंने 1964 में फिल्म आपकी परछाइयां फिल्म में इसका मुखड़ा इस्तेमाल किया। यही है तमन्ना, जिसका गीत अभी आपने सुनवाया था, तेरे घर के सामने मेरी जान जाए। कहानी यही खत्म नहीं हुई, संगीतकार रोशन साहब ने इसी धुन को फिर इस्तेमाल किया 1966 की फिल्म ममता में और लता मंगेशकर से गावाया मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गाना रहे ना रहे हम महका करेंगे। अब ये गीत इतनी प्रसिद्धि देखने के बाद पिताजी की आरडी बर्मन ने भी इस धुन को आधार बनाकर कुछ गीत बनाए और 1981 में आशा भोसले का गाया फिल्म नरम गरम का गाना हमें रास्तों की जरूरत नहीं, जो कि अभी आपने सुनवाया, इसी धुन का एक बार और इस्तेमाल किया गया। और 1983 में फिल्म अगर तुम न होते में भी इसी को फिर से उन्होंने दोहराया। बात और आगे बढ़ी और आपने इसी तरह से बहुत सारे गीतों का जिक्र किया है और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी गहराई

इस बात को रखा कि आज जो कार्यक्रम हम लेकर आए हैं वाकई इसी बात पर आधारित है कि किस तरह से गीतों को रचा गया और किस तरह से जब संगीत प्रेमी श्रोता उन्हें सुनते रहे तो उन्हें लगा कि अरे ये उस गाने की जैसा ही गाना है। बस यही आज के कार्यक्रम की असली थीम है। तो आइए बढ़ते हैं आगे।

वही जो हमारे श्रोता भी लिख रहे थे कि आगे अगर तुम न होते इस फिल्म में भी इसी बात को दोहराया गया, इसी मीटर को दोहराया गया। किशोर कुमार की आवाज है, गुलशन बावरा की रचना है और पंचम दा की धुन है।

किशोर कुमार की आवाज थी और फिल्म का नाम था अगर तुम ना होते। और मैं हमारे उसी श्रोता की बात को आगे भी रखना चाहूंगी जिन्होंने पूरी तरह से अपनी बात रख दी है इस कार्यक्रम के लिए। यूं समझिए कि ये पूरा कार्यक्रम उनकी लिखी इस इबारत में आ गया है। बिल्कुल, वो लिखते हैं कि अगर तुम न होते 1983 की फिल्म थी और हमें और जीने की चाहत न होती बात और आगे बढ़ी। और 1985 आर डी बर्मन ने इसी धुन पर बनाए एक और सुपरहिट गाना फिल्म सागर का लिया। और फिर आप लिखते हैं कि

वर्मन के संगीत साम्राज्य के नौ रत्नों में से एक बासु चक्रवर्ती साहब ने भी इस धुन के नोटेशंस पे थोड़ा हेर फेर कर 1992 की फिल्म नरगिस में जगजीत सिंह साहब से दो गाने गवाए थे। कहा था जो तुमने और दूसरा था दोनों के दिल हैं, और दोनों को ध्यान से सुनने पर पता चलता है कि किस तरह से ये गाने आपस में मेल खाते हैं। मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने इतनी गहराई से अपनी बात हम तक पहुंचा दी है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं, अच्छा अब हमारे सवालों के जवाब आप देने लग गए हैं। आप लिखते हैं कि एक प्यार का नगमा है, मेरी तमन्नाओं की तकरीर और तुम अगर मुझको ना चाहो, ये गीत आपको एक जैसे लगते हैं। बिल्कुल देखिए ऐसा है, यहाँ पर हमें शास्त्रीय रागों पर आधारित एक जैसे गीत नहीं चुनने हैं, क्योंकि वही बात की हर श्रोता शास्त्रीय रागों पर आधारित गीतों को समझने के लिए जरूरी नहीं कि उसके पास शास्त्रीय ज्ञान हो। हाँ वो क्या महसूस करता है एक श्रोता के तौर पर, एक श्रोता के रूप में, वही काफी है। तो आपको कौन से गीत एक से लगते हैं वही हम जानना चाह रहे थे। एक श्रोता लिखते हैं कि ये किस फिल्म का गीत था, बिल्कुल रहे ना रहे हम जैसी धुन, अरे आपने अभी तो सुना था। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज का विषय थोड़ा कठिन है पर आज गीत बहुत सुंदर बज रहे हैं। तो भाई सफर थोड़ा कठिन भी तो अच्छा लगता है ना, लेकिन आपको मेरे साथ अंत तक, हमारे साथ अंत तक चलना है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि रागों का ज्ञान हो ऐसा नहीं है, रागों का ज्ञान हमें बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो गाने शास्त्रीय तरीके से गाए जाते हैं वो बहुत पसंद है, जैसे कि झनक झनक तोरी बाजे पाई लिया। अच्छा ये गीत आपको बेहद पसंद है। वही एक श्रोता ने लिखा है कि चांदनी चौक 1954 की फिल्म, ये गाना भी नौजवान वाली मीटर से ही बंदा है, गीत शैलेंद्र, संगीत रोशन, स्वर आशा भोसले का था। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म चांदनी चौक के लिए मजरू सुल्तानपुरी ने गीत लिखा था, संगीतकार रोशन साहब थे, गीतकार शैलेंद्र नहीं थे भाई, मजरू साहब थे और संगीतकार रोशन थे और आवाज आशा भोसले की थी। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे राग शिवरंजनी ज्यादा पसंद है। और एक श्रोता लिखते हैं कि मैंने ऐसे कई गाने विविध भारती पर सुने जो एक जैसे हैं पर अभी याद नहीं आ रहे। कोई बात नहीं, आप हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं ना, वही काफी है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गिटार के साथ पियानो का प्रिल्यूड राग पहाड़ी है चांदनी चौक, बिल्कुल सही कहा आपने। और एक श्रोता लिखते हैं कि वाह वाह एसडी बर्मन के नौजवान के गाने से जबरदस्त शुरुआत हुई और सभी की पसंद का सम्मान किया गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ऐसा ही एक और गाना राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन में जावेद अख्तर साहब का लिखा हुआ सुनते हैं, आवाज किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम सागर। अब थोड़ा सफर हल्का हुआ ना, कठिन नहीं है ना।

हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि मैं शास्त्रीय रागों के मामले में अनाड़ी जरूर हूँ, कोई बात नहीं, परंतु मैं सच कह रहा हूँ कि महकते हुए अच्छे श्रोता की तरह सुरीला सफर प्रोग्राम में आप द्वारा सुनाए जा रहे अनमोल गीतों का मैं आनंद जरूर ले रहा हूँ। वही एक श्रोता लिखते हैं कि इतनी समानता सब धुनों में, मजे की बात है, सबकी खुशबू अलग अलग है, कमाल है हमारे भारतीय संगीत को और सभी गाने बहुत ही बेहतरीन हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कुल मिलाकर कार्यक्रम का विषय वस्तु संग ताल मिलाकर श्रोतागण भी सक्रिय हैं और बराबर अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। कुछ श्रोताओं ने अपनी पसंद के गीत लिखे हैं कि वो उन्हें एक जैसा लगता है, आज मौसम की मस्ती में या दो बदन प्यार की आग में, इस तरह के गीत उन्हें पसंद आते हैं और वो एक जैसे उन्हें महसूस होते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीले सफर का विशेष आकर्षण है फिल्म ममता का अमर गीत रहे न रहे हम। संगीतकार रोशन ने इस गीत में राग पहाड़ी के स्वरों का अत्यंत सटीक, संतुलित और सुरुचिपूर्ण प्रयोग किया। यही कारण है कि यह गीत केवल अपनी मधुर धुन के लिए नहीं बल्कि राग पहाड़ी की आत्मा को सहजता से अभिव्यक्त करने के लिए हिंदी फिल्म संगीत की अमूल्य धरोहर बन गया। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ए मेरे हमसफर ए मेरी जान ने से मिलता जुलता गाना है हसीना जाने जा जाने मन, ये गाने हमें सिमिलर लगते हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज का ये कार्यक्रम हम सुन रहे हैं और गुरुदत्त की फिल्म प्यासा में गजल तंग आ चुके हैं कश्मकशे जिंदगी से, और जॉय मुखर्जी की फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना का की गजल हमको तुम्हारे इश्क ने, ये हमें अच्छे लगते हैं और सिमिलर लगते हैं, एक जैसे लगते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हवाओं पर तो बहुत सारे गीत बने हैं और क्या ही अच्छा हो जब आप हवाओं पर कुछ कार्यक्रम पेश करें। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज आपने इबारत कुछ अलग तरह की दी है, इसलिए पहले मुझे घर की बनी हुई अदरक इलायची वाली चाय ऑफिस में पीनी होगी ताकि मेरे दिमाग का केमिकल लोचा एक्टिव हो जाए और मैं सही कमेंट्स लिख सकूं, क्योंकि रागों के मामले में मैं अनाड़ी हूं। मैं एक श्रोता ने लिखा है कि सौंदर्य वही है जहां प्रतीक्षण नवीनता हो। वास्तव में चित्रपट संगीत का क्षेत्र बहुत विशाल है क्योंकि इसकी रचना शास्त्रीय, उपशास्त्रीय, लोक संगीत और पाश्चात्य संगीत के आधार पर होती रही है। संगीत निर्देशकों ने श्रोताओं की रुचि को ऐसे संगीत का सृजन कर छोड़ा है जो कहीं पर पूर्ण शास्त्रीय संगीत में रचे हैं, कुछ उपशास्त्रीय तो कुछ लोक संगीत में, और इनमें कहीं कहीं पर प्रयोग के तौर पर पार्श्व संगीत और गौण धुन का बेहतरीन संयोजन किया गया है। ध्यान रहे कि गौण धुन मुख्य धुन को दबाती नहीं है बल्कि एक नया संगीतमय रंग और गहराई जोड़कर उसे और आकर्षक बना देती है। कितनी सुंदर और शानदार बात आपने लिखी है। और अब इस कार्यक्रम का ये है आखिरी गीत। लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम प्यार का तराना। इस गीत के बारे में आपको मालूम था?

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने फिल्म प्यार का तराना का ये गीत सुना और आज का ये कार्यक्रम के आखिरी सोपान तक हम पहुंच चुके हैं। आप समझ गए आज के इस कार्यक्रम का मर्म क्या था। जी हाँ, राग पहाड़ी से प्रभावित होकर अलग अलग संगीतकारों ने अपने अपने जो गीत रचे और उसमें अलग अलग शास्त्रीय रागों को पिरो कर एक ही मीटर में जो संगीत हम तक पहुँचाया उसी को आज आप तक लाना हमारा उद्देश्य था। आपको आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा? अच्छा लगा होगा। अब आपको ये कठिन सफर आज का कठिन नहीं लगा होगा, मुझे लगता है कि अब सफर के आखिरी सोपान पर हम मिल रहे हैं और एक दूसरे को धन्यवाद देते हैं कि हमने एक दूसरे का साथ दिया। और अब इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी चाहती है यानी सफर से इजाजत। फिर मिलूंगी, नमस्कार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए इस श्रृंखला की 36वीं कड़ी।

वंदे मातरम, इन शब्दों के प्रचार में तत्कालीन समाचार पत्रों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। बंग भंग विरोधी आंदोलन के कारण पूरे देश में चल रही स्वाधीनता की लड़ाई वंदे मातरम शब्दों पर केंद्रित

0: चलो।
1: रोजमर्रा की इस्तेमाल की वस्तुओं पर भी वंदे मातरम शब्द दिखने लगे, राष्ट्र ध्वज पर भी वंदे मातरम शब्द आ गए और आम लोगों के मन में स्वतंत्रता की ज्योति जलाने वाले समाचार पत्र भी इसमें पीछे नहीं।

0: भारत की कई भाषाओं में वंदे मातरम नाम से समाचार पत्र या साप्ताहिक या मासिक पत्रिकाएं निकलने लगीं और इसकी शुरुआत स्वाभाविक रूप से बंगाल में हुई। बंगाल के विभाजन के विरोध में जनमत तैयार करने का सबसे महत्वपूर्ण काम स्वदेशी अखबारों ने किया। युगांतर, अमृत बाजार, संध्या जैसे पत्रों ने अत्यंत कड़े और उग्र शब्दों में सरकार की आलोचना करते हुए हो रहे दमन तथा अत्याचारों का विवरण आम जनता तक पहुंचाया। वंदे मातरम में दश प्रहरण धारिणी यानी 10 शस्त्र धारण करने वाली दुर्गा का वर्णन करते हुए भारत माता को वाणी विद्या दायिनी भी कहा गया है। उसी सरस्वती की लेखनी इस लड़ाई में एक शस्त्र की तरह उतरी।
1: अमृत बाजार के मोतीलाल घोष और युगांतर के बारिंद्र कुमार घोष उग्र विचारों वाले राष्ट्रभक्त थे। उनके समाचार पत्रों पर पाबंदी और मुकदमे की तलवार हमेशा लटकी रहती थी, फिर भी उन्होंने अपने शब्दों की धार कम नहीं की। वंदे मातरम शब्दों को उन्होंने लोकप्रिय तो किया ही, साथ ही उसके आशय को लोगों के मन में बसाकर उसे आचरण में लाने के लिए दिल से प्रयास भी किए। अप्रैल 1906 के युगांतर के अंक में संपादक लिखते हैं,
0: रक्त में समा चुके स्वतंत्रता के बीज को कोई भी शक्ति उखाड़ नहीं सकती। आज का धर्म है शहादत, कल का धर्म होगा विजय। शहादत बलिदान आवश्यक है ही, पर वो शेर के सामने बकरी द्वारा किया गया बलिदान ना हो।
1: और उसी 11 नवंबर 1906 के अंक में लिखते हैं,
0: जैसे को तैसा व्यवहार करो, घूसे का प्रहार हो तो लात मारो, तभी

0: तुम्हारा पौरुष दिखेगा। मृत्यु से मत डरो, उस समय होठों पर वंदे मातरम का नारा ही जीवन संगीत बनने दो।
1: अप्रैल के संध्या के अंक में लिखा गया,
0: शांत रहना राष्ट्रीय आत्मा का अपमान है, अपमान का बदला प्रतिशोध लेने से ही होता है।
1: 26 मार्च 1907 को युगांतर के पत्रकार लिखते हैं,
0: धूल में पड़ी फटे चिथड़े पहनी हुई मां को देखो, उसके आंसू कौन पोछेगा, उसके अपमान का बदला लेने सबसे पहले कौन आगे आएगा। कर्तव्य का मार्ग स्पष्ट है, युद्ध निकट आ गया है, विजय मिलेगी या स्वर्ग मिलेगा। हे वीरों, जल्दी करो, गति दोगुनी करो, मां के वैभव के लिए दान करने आगे आओ। गीता में कहा है, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, जित्वा वा भोक्षसे महीम।
1: संध्या के 15 मई के अंक में छपा ये लेख बंकिम चंद्र जी के आनंद मठ के एक संवाद से मिलता जुलता है। नवंबर के दैनिक हितवादी के अंक में लिखा गया,
0: युद्ध के नगाड़े बजने दो, मां को रक्त स्नान कराओ, शत्रु का हृदय कांप उठेगा।
1: युगांतर के एक और अंक में प्रखर शब्दों में आह्वान किया गया था,
0: वंदे मातरम की घोषणा ने शत्रु का धैर्य और सामर्थ्य नष्ट कर दिया है। देखो, मां के मुख पर विजय की मुस्कान है, वो हमें अभय दे रही है, दानवों का नाश करने के लिए वो तैयार हो गई है। देशभक्तों, तैयार हो जाओ।
1: वंदे मातरम ये अखबार तो नाम से ही खुलेआम क्रांतिकारी कार्य का मुखपत्र था। बंग भंग विरोधी आंदोलन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी की तरह बिपिन चंद्र पाल भी एक महत्वपूर्ण नेता थे। ब्रह्म बांधव उपाध्याय के आग्रह पर बिपिन चंद्र पाल ने नए शुरू हो रहे वंदे मातरम साप्ताहिक पत्रिका का संपादक पद स्वीकार किया। उस समय अरविंद घोष बड़ौदा में सयाजी राव गायकवाड़ के यहाँ नौकरी कर रहे थे। अगस्त 1906 में वे भी कलकत्ता लौट आए और राजनीति में भाग लेने लगे। वंदे मातरम साप्ताहिक पत्रिका शुरू करने के लिए क्रांतिकारियों के नेता हरिदास हल्दर ने 500 रुपए दिए थे। राजा सुबोध चंद्र मलिक भी नियमित रूप से आर्थिक सहायता करते थे।
0: वंदे मातरम साप्ताहिक पत्रिका का आदर्श वाक्य था, भारत भारतीयों के लिए। परंतु दो ही महीनों में बिपिन चंद्र पाल के वंदे मातरम के संचालकों से मतभेद हो गए और उसके बाद श्री अरविंद घोष संपादक बने। संध्या और युगांतर इन दो अखबारों के बाद वंदे मातरम यह पत्र शुरू हुआ और इन दो समाचार पत्रों की तरह ही वंदे मातरम ने भी समाज के मन में बहुत बड़ी वैचारिक क्रांति पैदा की। श्री अरविंद संपादक बने और वंदे मातरम के लेखन में पैनापन आ गया, एक धार सी आ गई। सरकार की ऐसे अखबारों की सामग्री पर बहुत बारीकी से नजर रहती थी, इसलिए श्री अरविंद इतनी सावधानी से लेख लिखते थे कि कानूनी तौर पर सरकार उन्हें फंसा नहीं सकती थी। फिर भी उस सामग्री में राष्ट्रभक्ति और युवाओं के लिए आवाहन अत्यंत स्पष्ट शब्दों में किया जाता था। वंदे मातरम के इस मिले हुए अस्त्र का सटीक उपयोग कैसे करना है, ये श्री अरविंद ने इस समाचार पत्र के लेखों द्वारा जनता को दिखा दिया था। श्री अरविंद उस समय युवाओं के क्रांतिकारी नेता के रूप में प्रसिद्ध थे, बड़ौदा के समय में एक उत्तम प्रोफेसर के रूप में विख्यात थे, वे उत्तम कवि भी थे। केसरी के लेखों द्वारा समाज के मन पर हुए प्रभाव को वे जानते थे। तिलक की तरह ही अत्यंत विस्फोट

0: कर्नाटक भाषा में उन्होंने वंदे मातरम में लेख लिखना शुरू किया। केसरी में तिलक के अग्र लेखों की तरह ही श्री अरविंद के वंदे मातरम के लेख भारतीय पत्रकारिता साहित्य की एक अमूल्य धरोहर है। आनंद मठ का पहला अंग्रेजी अनुवाद उन्होंने शुरू किया था, बाद में उनके भाई बारिंद्र कुमार घोष ने उसे पूरा किया। वंदे मातरम गीत के श्री अरविंद द्वारा किए गए दो अंग्रेजी अनुवाद प्रसिद्ध है। ये अनुवाद वंदे मातरम के सर्वोत्तम अनुवादों में गिने जाते हैं।
1: I bow to thee, rich with thy hurrying streams, bright with thy orchard gleams, cool with thy winds of delight, dark fields waving, mother of might, mother free, glory of midnight dreams, over thy branches and lordly streams, clad in thy blossoming trees, mother.
2: आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।
3: वंदे मातरम एक जय घोष, इस श्रृंखला की ये थी 36वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, अनुवाद संकलन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रीकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रीकर और मंदाकिनी जोशी, तकनीकी सहयोग किरण बंग, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।
2: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ, आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
4: वंदे मातरम सुजला,
2: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
4: शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम,
2: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष, प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2:00। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारी दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन के दौरे पर ऑकलैंड पहुंच रहे हैं। वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा युक्त दवाओं को विनियमित करने के लिए मादक पदार्थ के नियमों में संशोधन किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध के दौरान यौन हिंसा की कड़ी निंदा की, इसे युद्ध और आतंकवाद का हथियार बताया। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से, और महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत आज शाम लंदन में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड से खेलेगा। अब समाचार विस्तार।

0: क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से, और महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत आज शाम लंदन में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड पहुंच रहे हैं। श्री मोदी वहां न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है। भारत और न्यूजीलैंड इस वर्ष अपने खेल संबंधों के 100 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। हमारे विशेष संवाददाता मंजू मीणा ने बताया है कि हॉकी से शुरू हुई यह यात्रा आज भी दोनों देशों के बीच दोस्ती और सहयोग का मजबूत माध्यम बनी हुई है।
1: भारत और न्यूजीलैंड के खेल संबंधों की शुरुआत वर्ष 1926 में हुई, जब भारतीय सेना की हॉकी टीम न्यूजीलैंड दौरे पर आई। इस ऐतिहासिक टीम का हिस्सा हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद भी थे। यही दौरा उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत माना जाता है, और यहीं से उन्होंने दुनिया को अपनी अद्भुत हॉकी का परिचय कराया। एक सदी बाद दोनों देशों के खेल संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। इसी वर्ष ऑकलैंड में आयोजित FIH महिला नेशंस कप भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को हराकर खिताब अपने नाम किया। पूर्व हॉकी न्यूजीलैंड मुख्य कार्यकारी अधिकारी और 1976 ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता रमेश पटेल ने आकाशवाणी से खास बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा से दोनों देशों के बीच खेल सहयोग को नई गति मिलेगी।
2: Indian teams that came here 100 years ago.
1: 100 वर्षों की इस खेल यात्रा ने यह साबित किया है कि हॉकी केवल एक खेल नहीं, बल्कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मित्रता, विश्वास और लोगों के बीच मजबूत रिश्तों का एक सशक्त सेतु भी है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा आधिकारिक रूप से संपन्न हो गई है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे।
3: यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि ये बहुसांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान भव्य स्वागत और आतिथ्य के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार और वहां की जनता के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: भारत ने युद्ध के दौरान की जाने वाली यौन हिंसा CRSV की कड़ी निंदा करते हुए इसे युद्ध, आतंकवाद, यातना और राजनीतिक दमन का एक हथियार बताया है, जिसका प्रयोग समुदायों को अधीन करने, असहमति को दबाने और मानवीय पीड़ा पहुंचाने के लिए किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पी हरीश ने युद्ध की अवधि में की जाने वाली यौन हिंसा पर कहा कि इस तरह के हिंसा में दंड न दिए जाने के कारण ये जारी है। उन्होंने कहा कि भारत ऐसे जघन्य कृत्यों की कड़ी निंदा करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में हाल में हमलों के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू को खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सेना की नई गतिविधियों के बारे में जानकारी दी है। इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार दोनों नेताओं ने कल रात फोन पर बातचीत की और अमेरिका तथा इजरायल के बीच विभिन्न क्षेत्रों में तालमेल बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की। इस बीच ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने कल दावा किया कि उसने उत्तरी जॉर्डन में अमेरिका के अल अजराक सैन्य हवाई अड्डे पर 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। उसने कहा कि हमला तेहरान पर हाल ही में हुए अमेरिकी हमले के जवाब में किया गया था। उसने चेतावनी दी कि अमेरिका की ओर से किसी भी सैन्य कार्रवाई किए जाने पर जवाब में क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर और हमले किए

0: जाएंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन यायर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonyayar.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा वाली औषधियों के नियमन को और सख्त करने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इथाइल अल्कोहल युक्त औषधियों के लिए अनुसूची के तहत लाइसेंस अनिवार्यता से मिली मौजूदा छूट समाप्त कर दी है। मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार 30 मिलीलीटर से अधिक मात्रा में 12% से अधिक इथाइल अल्कोहल वाली सभी औषधियों को अब छूट प्रदान नहीं की जाएगी। ऐसी औषधियों को औषधि और कॉस्मेटिक अधिनियम 1940 के अंतर्गत आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करना होगा। इस संशोधन से अल्कोहल युक्त औषधि उत्पादों पर नियामक निगरानी और मजबूत होने की उम्मीद है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज वर्चुअल माध्यम से शिमला स्थित भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान की प्रदर्शनी वंदे मातरम एक यात्रा का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने सरदार पटेल का दृष्टिकोण एकीकरण एकता और संघवाद विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को भी संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वंदे मातरम ने स्वतंत्रता सेनानियों की कई पीढ़ियों को साहस बलिदान और आशा से प्रेरित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरदार पटेल ने एक राष्ट्र एक संविधान और साझा राष्ट्रीय भविष्य की मजबूत नींव रखी।
1: Today, Bharat is marching confidently towards the vision set by our Honorable Prime Minister, a Viksit Bharat by 2047. National integration, cooperative federalism and unity in diversity remain as relevant as ever. Sardar Vallabhbhai Patel ji believed for a rich, diverse country like India, a strong center was essential to maintain unity and security.
0: गुजरात में राज्य सरकार ने सूरत के बाढ़ प्रभावित इलाकों में हालात सामान्य करने के लिए बड़े पैमाने पर राहत अभियान शुरू किया है। उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने प्रशासन को निर्देश दिया कि अगले 48 से 72 घंटों के अंदर सामान्य जीवन और कारोबार पूरी तरह से बहाल किया जाए। गोवा सरकार ने प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव पहल को समर्थन दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि इस कदम से सरकारों को विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करने और बेहतर शासन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। एक रिपोर्ट।
2: एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर विचार विमर्श के लिए गोवा आई संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष गोवा सरकार ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि एक साथ चुनाव होने से सरकारें विकास कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने इस संबंध में अपने सुझाव समिति को सौंप दिए हैं और विश्वास व्यक्त किया है कि यह प्रस्ताव सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेगा। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने बताया कि बैठक में शामिल मंत्रियों ने कहा कि विभिन्न राज्यों में बार बार होने वाले चुनावों का गोवा के पर्यटन क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बैठक में मंत्री सुदीन ढवळीकर, सुभाष फल देसाई, सुभाष शिरोडकर और दिगंबर कामत भी उपस्थित थे। आकाशवाणी समाचार के लिए पंजी से महेश सोपड़े।
0: पंजाब के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर 11 और 12 जुलाई को दो दिन का विशेष शिविर आयोजित किया है। इससे पात्र मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर जमा कर सकेंगे। ये शिविर सुबह 8 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक जारी रहेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने 100% डिजिटल डेटा कलेक्शन के साथ जनगणना 2027 के पहले चरण यानी हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। एक महीने तक चले इस ऑपरेशन में केंद्र शासित प्रदेश के 24,000 से ज्यादा हाउस लिस्टिंग ब्लॉक शामिल किए गए। अब अगले चरण की तैयारी शुरू होगी। इसमें सितंबर में बर्फबारी वाले इलाकों में जनसंख्या की गिनती और इस साल अक्टूबर तक जिला जनगणना हैंडबुक तैयार करना शामिल है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले दो दिन तक हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर पूर्वी भारत के उत्तरी भागों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कुछ जगह आज तड़के हल्की बारिश हुई। आकाशवाणी से बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर शशिकांत ने बताया कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्र

0: में आज और कल बारिश की कोई चेतावनी नहीं है।
1: तो 1 जून से लेकर के 9 जुलाई तक भारत में -14% वर्षा कम दर्ज की गई है और आने वाले अगर हम 2 दिन की बात तो वर्षा का मुख्य जोन जो रहने वाला है वो हिमाचल प्रदेश, उत्तरी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उपमंडलीय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य जिसमें अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मुजफ्फरपुर, त्रिपुरा शामिल है। कल भी जो है यही पॉकेट्स मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उपमंडलीय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य जहाँ पर वर्षा का स्पेल हैवी टू वेरी हैवी के रूप में ऑरेंज कलर के लिए हमने चेतावनी जारी की है।
0: हिमाचल प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि वहां कई हिस्सों में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित है।
2: शिमला, सोलन, बसरमौर जिलों सहित अन्य क्षेत्रों में व्यापक वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है। भारी बारिश के कारण नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने व नदी नालों के आसपास न जाने की अपील की है। भारी बारिश के चलते सोलन और सिरमौर जिले में आज सभी शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित किया गया है। लगातार वर्षा से प्रदेश में विभिन्न इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं और कई स्थानों पर बिजली व पेयजल आपूर्ति भी बाधित हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 1 सप्ताह तक प्रदेश भर में मौसम के खराब बने रहने की जताई है। आज 5 जिलों कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि निस्वार्थ कर्म मानवता की सबसे बड़ी शक्ति है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सेवा और समर्पण की इसी भावना से प्रेरित होकर देश प्रत्येक नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने दिल्ली सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और दिल्ली रिज इकोसिस्टम के संरक्षण के माध्यम से दिल्ली को हरा भरा बनाने की पहल का स्वागत किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लिखे पत्र में उन्होंने इस पहल को पर्यावरण संरक्षण और सतत शहरी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से और अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। उधर फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अमेरिका के बॉस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में पहले हाफ तक कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बाप्पे ने 60वें मिनट में और उस्मान डेम्बले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। एम्बाप्पे 30 साल की उम्र से पहले विश्व कप में 20 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज लंदन के लॉर्ड्स मैदान में मेजबान इंग्लैंड के साथ ऐतिहासिक टेस्ट मैच खेलेगी। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। ये पहली बार है जब लॉर्ड्स मैदान में महिला टेस्ट मैच खेला जाएगा। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर में बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 755 अंक बढ़कर 77,497 पर, जबकि निफ्टी 232 अंक की बढ़त के साथ 24,195 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर ऑकलैंड पहुंच गए हैं। वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा युक्त दवाओं को विनियमित करने के लिए मादक पदार्थ नियमों में संशोधन किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध के दौरान यौन हिंसा की कड़ी निंदा की, इसे युद्ध और आतंकवाद का हथियार बताया। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से और महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत आज शाम लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड से खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का पहला गीत, लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम आशिक, गीत रचना शैलेंद्र की और संगीत शंकर जयकिशन का।

और लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर के साथ मोहम्मद रफी को। फिल्म का नाम है आरती, गीत रचना मजरूह सुल्तानपुरी की और धुन रोशन की।

0: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत हसरत जयपुरी का लिखा हुआ है, शंकर जयकिशन का संगीत है, आवाज मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम असली नकली।

फिल्म रंगोली का गीत सुनिए। इसे आवाज लता मंगेशकर ने दी है, शब्दकार शैलेंद्र हैं और संगीतकार शंकर जयकिशन हैं।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम संगीत सम्राट तानसेन, रचना शैलेंद्र की और धुन SN त्रिपाठी की।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरफ।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
3: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
2: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

गीता दत्त को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था साहिब बीबी और गुलाम। इस गीत को शकील बदायूनी ने लिखा था और धुन बनाई थी हेमंत कुमार ने। इस गीत के साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।

सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम हेलो सहेली का। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। आज होंगी कुछ बारिश से जुड़ी बातें, यादें और किस्से, क्योंकि बारिश का मौसम सबको लुभाता है। बारिश में भीगने का मन और नाचने का मन किसी न किसी का तो होता ही होगा। बारिश में बचपन बहुत याद आ जाता है, जब बचपन में शरारतें मस्ती क्या करते थे और बारिश के पानी के संग खेला करते थे, तो वो कुछ यादें भी आज ताज़ा होंगी। तो आज हम इसी पे करेंगे चर्चा, जिसमें नहीं लगेगा कोई खर्चा, है ना। तो मुझे सुनाई दे रही है फोन की घंटी और देखते हैं कि कौन है हमारी पहली कॉलर। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं बड़ौदा से बोल रही हूँ, सोनिया।
0: सोनिया जी, आप बड़ौदा से बोल रही हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो सहेली, मैं आज आपने फोन लगाया, तो आपको कैसा लग रहा है?
1: अच्छा लग रहा है मेरे को
0: जी। और क्या करती हैं आप?
1: हमारे लॉन्ड्री है, बंगाली में है, हमारी लॉन्ड्री खुद की है
0: जी।
1: और यहाँ पे कोयली गाँव में हमारा मकान है
0: जी। जी जी,
1: अभी हमारे छोटा बाबू आया है, अभी 1.25 महीने का हुआ है।
0: अच्छा, अरे वाह, तब तो बहुत आप बिजी रहती होंगी इसमें।
1: हाँ,
0: अच्छा,
1: 7 साल बाद में आया अभी।
0: अच्छा, चलिए, आपको अपने छोटे से बच्चे के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। और ये बताइए सोनिया जी कि बारिश आपको कैसी लगती है, बारिश में आप क्या क्या और चीजें ध्यान रखती हैं, उस पर भी हमें कुछ बताइए।
1: बारिश अच्छी भी लगती है, थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ता है
0: जी। किस तरह का आप ध्यान रखती हैं बारिश में?
1: ये कि बच्चे गीले ना हो जाए, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, सर्दी जुकाम का, ये सब चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। अब बच्चे आ गया छोटा, इसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है ज्यादा
0: जी। और बारिश की कोई जुड़ी यादें बचपन में हो आपकी?
1: जी, बचपन में तो बहुत नहाते थे हम लोग, बारिश जैसे बारिश होती थी वैसे बहुत नहाते थे बाहर जाके।
0: अच्छा, सुनिए जी, आपको जो गाना पसंद है उसके बोल बताइए।
1: पापा में पापा बन गए, मेरे बाबू का नाम राघव है, राघव रखा है।
0: अच्छा जी, राघव जी को तो मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार दीजिएगा। और आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये वाला गीत।
2: पापा

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली, मैं समा दीवान बोल रही हूँ, नर्मदापुरम जिला तो कैसी सोहागपुर से।
0: जी, आप क्षमा दीवान
1: जी
0: जी। क्षमा दीवान जी, आप बताइए कि आपको बारिश का मौसम कैसा लगता है?
1: मेरे को बारिश का मौसम बहुत अच्छा लगता है।
0: बारिश में क्या खास करती हैं आप?
1: हाँ, मैं वृक्षारोपण वगैरह करती हूँ, बम बीज बनाती हूँ,
0: जी
1: उनको बिखेरती हूँ जंगलों में जाके, नहरों पे जाके।
0: अच्छा
1: हमारी एक संस्था है महिलाओं की,
0: जी
1: तो हम लोग सभी इकट्ठे होकर वहाँ पे ये बनाते हैं और जाते हैं ग्रुप में और सभी दूर उनको बिखेरते हैं।
0: अच्छा
1: हम लोग इसमें करते हैं, जैसे स्कूलों में जाके गरीब बच्चों की फीस वगैरह भरते हैं,
0: जी
1: उनको कॉपी पुस्तक दिलाते हैं।
0: जी तो ये तो आप बहुत अच्छा काम करती हैं। क्या है
1: हमारी संस्था ने एक स्कूल को गोद लिया है, तो
0: जी
1: उसके बच्चों को हम लोग हर साल 15 अगस्त गिफ्ट वगैरह देते हैं
0: जी
1: और कार्यक्रम करवाते हैं हम लोगों से।
0: तो बच्चे तो बहुत खुश हो जाते होंगे कि जब
1: बहुत
0: उनको गिफ्ट मिलता है। और
1: बहुत खुशी होती है बच्चों की।
0: जी, और बताइए और अपने बारे में कुछ।
1: जैसे महिलाओं के लिए सिलाई मशीन दिलवाते हैं, जो गरीब परिवार की महिलाएं हैं
0: तो जिनको मान लीजिए सिलाई नहीं आती है तो उनको भी आप देती
1: उनको
0: हैं?
1: नहीं, उनको हम जैसे हमारे ग्रुप में जो महिलाएं को आती है सिलाई, उनसे प्रशिक्षण दिलवाते हैं पहले, फिर
0: जी जी जी
1: उसके बाद उनको सिलाई मशीन दिलवाते हैं
0: जी तो
1: जैसे
0: फिर
1: नहीं आता है।
0: हाँ जी
1: एक खूब गरीब परिवार की बेटी थी,
0: जी
1: उसका माँ बाप नहीं थे, तो उसका विवाह हम लोग की संस्था ने करवाया।
0: जी जी बहुत अच्छी बात है ये तो। और बताइए क्या आज आप सुनना चाहेंगी?
1: अब मैं सुनना चाहती हूँ, मेरा फेवरेट गाना है, आँखियों के झरो के से जो देखा एक बार।
0: क्या बात है, ये गाना ही बहुत अपने आप में बहुत सुंदर सा प्यारा सा गीत है। तो आपसे
1: जी
0: बात करके बहुत अच्छा लगा, और बस
1: जी
0: इसी तरह हमारे वेद भारती से जुड़ी रहिए। अब सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये वाला प्यारा सा गाना।

0: सहेली में अंतराल के बाद आप सभी का स्वागत करते हैं। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं अनीता राजपूत दिल्ली से बोल रही हूँ।
0: अनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए।
1: हमारे परिवार, हमारे पति को बहुत शौक है संगीत का
0: जी,
1: बहुत ज्यादा शौक है। और मेरे बेटे, बहू है और बेटी भी है, हम लोग 5 जन हैं।
0: क्या
1: अभी
0: बात है।
1: जी
0: आपको बारिश का मौसम कितना पसंद है?
1: अच्छा लगता है, पानी गिरता है सब
0: जी।
1: टिमटिमा।

0: पानी गिरता है तो अच्छा लगता है।
1: क्या मन करता है कि बारिश में भीग ले, नहा ले?
0: जी घूमने कहीं चले जाएं और क्या।
1: क्या बात है, हरी हरी वादियों के बीच में घूमने जाए हैं।
0: जी।
1: बचपन की कोई आपकी कुछ यादें, दोस्तों के संग हो, सहेलियों के संग हो, कुछ यादें यादें तो साझा कीजिए।
0: जी। मैं चार भाइयों में एक बहन हूँ,
1: जी
0: तो साथ में खेले हैं हम लोग
1: जी
0: पानी में बारिश में वहाँ पर।
1: जी
0: जी तो अच्छा लगता था, पहले बचपन की बहुत यादें आती हैं हम लोगों को।
1: अब ये
0: जी।

0: स्मिता जी बोल रही हैं। तो स्मिता जी, बारिश का जो मौसम होता है, तो जब आप बच्ची थी तो आपको कैसा लगता था, क्या क्या आप खेल करती थी?
1: बारिश में बिजला और पानी में छप छप करना बहुत अच्छा लगता था पहले।
0: तो और बताइए अपने बारे में, आपको क्या शौक है, अपने दिन को कैसे बिताती है, ये इस बारे में कुछ बताइए।
1: मेरे को सबकी मदद करना अच्छा लगता है। मैं रिटायर्ड पोस्ट वुमेन हूँ
0: जी,
1: गुजरात की फर्स्ट लेडी पोस्ट वुमेन हूँ।
0: क्या बात है, ये तो बड़े गर्व की बात है।
1: अभी रिटायर्ड हो गए, 8 साल हो गए, 68 की हो गई मैं
0: जी। तो
1: हेल्प करना अच्छा लगता है मेरे को।
0: जैसे कि आप किस तरह की हेल्प करती हैं लोगों की?
1: कोई बीमार हो गया तो मैं दवा बहुत सत्कार करती हूँ।
0: तो ये बहुत नेक काम है, बहुत कम लोग इस बारे में सोचते हैं। जो सोचते हैं, हम तो कहते हैं बहुत पुण्य का काम करते हैं वो। तो और स्मिता जी, ये बताइए कि आज आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी?
1: मैं दिल अपना और पीठ पर का गाना है, दिल अपना
0: जी। बहुत सुंदर सा गीत आपने चुना है, दिल अपना और प्रीत पराई। तो चलिए स्मिता जी, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो सहेली, कौन बोल रही है और कहाँ से बोल रही है? अपना नाम बताइए।
1: हेलो सहेली, मैं सरिता पांडे बोरीवली से बोल रही हूँ।
0: सरिता जी, आपका हेलो सहेली में बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए कि आप क्या करती हैं, घर में क्या क्या शौक हैं आपके?
1: मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं घर पे ही रहती हूँ।
0: जी
1: मैं

0: सिलाई बुनाई कढ़ाई सब कुछ करती हूँ थोड़ा बहुत।
1: और सरिता जी, हम आज बात करने वाले हैं बारिश के विषय में कि बारिश आपको कितनी अच्छी लगती है और बारिश में आप क्या क्या सावधानियां रखती हैं।
0: बारिश मुझे बहुत अच्छी लगती है, बारिश में घर गंदा ना हो ये सब साफ सुथरा रखता है।
1: जी बिल्कुल। और बारिश में आपने कभी बचपन में अपने दोस्तों के साथ मस्ती करी?
0: हाँ, हम लोग बारिश में गांव में रहते थे, मेरा गांव सुल्तानपुर है
1: जी।
0: हम लोग गांव में बारिश में खेलते थे,
1: अच्छा,
0: खो खो खेलते थे।
1: ये बताइए कि जब कभी घर में कुछ खत्म हो जाता है रसोई में, तो फिर अचानक आप क्या सोचती हैं कि मेहमान के लिए हम क्या बना दें फटाफट?
0: जो कुछ रहता है उसको मिक्स करके हम लोग उसका कुछ ना कुछ अच्छा डिश बना के मेहमान को देते हैं।
1: क्या बात है, यानी कुछ ना कुछ तो बनी जाता है ना गृहिणी
0: बन
1: की।
0: ही जाता है।
1: जी,
0: हाँ,
1: जैसे पकौड़ी बना ली, सूजी का हलवा बना लिया, है ना?
0: कुछ भी बना। हाँ,
1: और मान लीजिए सूजी कम है तब?
0: इसमें थोड़ा बेसन या बेसन मिक्स कर देते हैं, वो भी अच्छा बनता है हलवा।
1: बिल्कुल सही बात आपने बताई, ये तो बहुत अच्छा तरीका है कि अगर सूजी कम है तो उसमें बेसन मिला दिया। और आपके परिवार में और कौन कौन है?
0: मेरी फैमिली बड़ी है, जेठ जेठानी
1: जी
0: बहू पोते
1: जी
0: पोती
1: क्या बात है, भरा
0: बच्चे।
1: पूरा परिवार है, यानी कि बहुत
0: हाँ।
1: अच्छा लगता है आपको, है ना? तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सरिता जी। तो आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
0: हम आशीर्वाद फिल्म का बारिश का गाना।
1: ठीक है सरिता जी, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: अंतराल हुआ यूं पल में खत्म और आपकी दोस्त मंजरी वर्मा फिर आपसे बातें करने आ गई है। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली,
0: जी स्वागत है।
1: नमस्ते मंजरी जी।
0: अरे वाह, आपको तो मेरा नाम याद है।
1: अरे आपकी आवाज से पहचान गए मंजरी जी।
0: और बताइए अपने
1: हाँ,
0: बारे में, कुछ बताइए हमें।
1: एक हाउस वाइफ हूँ, साधारण सी गृहिणी।
0: प्रतिमा जी, आप हाउस वाइफ है, साधारण सी गृहिणी आपने कहा है, तो हम ये कहेंगे कि आप साधारण सी नहीं हैं, आप बहुत खास हैं। और हर गृहिणी जो होती है वो पूरे परिवार की एक धुरी होती है, सबको लेकर चलती है, सबके लिए सेवा करती है, सबका ध्यान रखती है, ख्याल रखती है, और सुबह उठती है और रात में ही वो पूरे घर के काम निपटा के सोती है। तो ये बहुत पुण्य का काम है, सेवा भाव है। मेरे दिल में बहुत सम्मान है गृहिणियों के लिए, जो भी गृहिणियाँ हैं उनके लिए बहुत सम्मान
1: जी
0: है। और बताइए कि ये मैं जानना चाहती हूँ कि जैसे बारिश का मौसम होता है ना, तो वो जब बारिश की बूंदें पड़ती हैं तो आपको कैसा लगता है?
1: मुझे तो बारिश का मौसम बहुत पसंद है। इतना सुंदर हरियाली चारों तरफ हो जाती है,
0: जी
1: ऐसा लगता है जैसे पेड़ पूरे नहा लिए पानी से, हरी
0: हाँ
1: भरी हो जाते हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगता है बारिश का मौसम।
0: जी। और
1: और
0: बार
1: उसके तो गाने भी इतने अच्छे अच्छे आते हैं उस समय रेडियो में कि वो सुन के भी मन खुश हो जाता है।
0: क्या बात है। और बारिश में बचपन में कोई शरारतें आपने सखियों के साथ या भाई बहनों के साथ करी हो या मस्ती करी हो, कुछ ऐसे किस्से याद हैं आपको?
1: बारिश में देखिए, पहले की तो बात बताएं तो हम लोग को जैसे ही बारिश देखते थे तो स्कूल जाने में छुट्टी मिल जाएगी, इस बात की बड़ी खुशी होती थी।
0: हाँ
1: और अब की जो बारिशें हैं उसमें ये खुशी होती है कि चलो अब ये लोग ऑफिस नहीं जाएंगे,
0: सही बात है। और वो
1: अब
0: अगर
1: घर में पकौड़े और सब्जी ये सब बनेंगे।
0: क्या बात है, यानी कि आप गृहिणी बिल्कुल अच्छी वाली गृहिणी है कि सबका इंतजार कर रही है कि पानी हो और ये लोग नहीं जाएं तो हम पकोड़े वगैरह बनाएं। बढ़िया बढ़िया है ना, तो बड़ा अच्छा लगा सुनकर के। प्रतिमा जी ये बताइए कि आप रेडियो सुनती हैं?
1: हाँ, तो बस से रात
0: क्या बात है। तो सबसे अच्छे प्रोग्राम आपको विविध भारती के क्या लगते हैं?
1: सबसे अच्छे प्रोग्राम वंदनवार,
0: जी जी
1: उसमें
0: जी
1: जो चिंतन आता है वो बहुत अच्छा लगता है।
0: क्या बात
1: और
0: है।
1: रामचंद्र चरित मानस में जो पहले उसकी समीक्षा करते हैं, बताते हैं
0: जी
1: उसकी
0: जी
1: स्टोरी,
0: जी
1: वो मुझे बहुत अच्छी लगती है।
0: क्या बात
1: क्योंकि
0: है,
1: वो सुनो तो उसके बाद वो रामायण सुनने में बड़ा समझ में आ जाता
0: सही बात है। उसकी
1: है ना,
0: विस्तार व्याख्या सुन के बहुत अच्छा लगता है ना।
1: बहुत अच्छा लगता है। हाँ,
0: तो
1: और
0: यानी
1: बाकी प्रोग्राम सभी अच्छे हैं विविध भारती के, तो
0: जी,
1: मैं
0: और
1: सब सुनती रहती हूँ।
0: क्या बात है। तो चलिए बहुत अच्छा लगा।
1: एक्चुअली
0: प्रतिमा जी आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: ये पसंद मेरी मम्मी की है, स्वप्न
0: जी
1: झरे फूल से नीत चुभे शूल से, वो
0: जी
1: है ना, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे।
0: ठीक। तो प्रतिमा जी आपको आज हम सुनवाते हैं आपकी मम्मी की पसंद का ये प्यारा सा गीत।
2: स्वप्न झरे फूल से।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली, मैं अंजू श्रीवास्तव बोल रही हूँ भोपाल से। बहुत
0: अंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है
1: दिनों से कोशिश कर रहे थे, अभी
0: जी।
1: जाके लगा है आपका कॉल।
0: देखिए, कोशिश रंग लाई ना, आपने कॉल लगाने
1: हाँ
0: की
1: जी,
0: कोशिश करी
1: हाँ
0: और
1: जी।
0: कॉल आपकी लग गई। ये बताइए अंजू जी कि भोपाल का कैसा मौसम है इस समय?
1: भोपाल का मौसम बहुत ही सुहाना है, चारों
0: जी
1: तरफ हरियाली, पानी और मतलब आंखों को बिल्कुल सुकून देने वाला मौसम है। इस
0: क्या बात है,
1: टाइम
0: यानी कि बारिश वहां पर भी खूब हो रही है।
1: बहुत हो रही है। हम
0: तो
1: जी
0: बारिश से जुड़ी हुई कुछ यादें हो तो आप
1: हाँ
0: साझा
1: जी,
0: कीजिए।
1: बहुत बहुत यादें हैं बारिश से जुड़ी हुई, स्कूल टाइम की, कॉलेज टाइम की। हम लोग वहाँ पास में, हम एक्चुअली मेरा मायका होशंगाबाद में है, तो
0: जी
1: मैं वहाँ पे, हम लोग स्कूल के बाद वहाँ से चले जाते थे, पहाड़ियाँ एक पास में जगह थी,
0: जी
1: तो वहाँ पे अपनी अपनी गाड़ी से हम लोग जाते थे फ्रेंड सर्किल पूरा,
0: जी
1: और वहाँ जाके पिकनिक जैसा बहुत बार मनाए हम लोग। बहुत अच्छा मौसम वहाँ का भी रहता था, पूरी हरियाली और पहाड़ियाँ।
0: दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाना एक अपना ही अलग आनंद का समय होता है, तो कुछ शरारतें भी होती होंगी आपस में दोस्तों में।
1: हाँ जी हाँ, बहुत बातें होती रहती।
0: और ये बताइए कि बारिश के समय में क्या-क्या आप सावधानियां रखती हैं, जैसे बाहर जा रही हैं, घर से निकल रही हैं, तो क्या खास बातें ध्यान रखती हैं?
1: बस ये साफ सफाई का और अच्छी जगह खाना, मेन तो साफ सफाई का है, बहुत ध्यान रखने का।
0: इस समय आप क्या शौक रखती हैं?
1: मतलब मुझे फ्रेंडशिप बहुत पसंद है, और अभी आज भी वो शो बरकरार है मेरी, मतलब बचपन की फ्रेंड, अभी तक हम लोग सब ग्रुप है, तो
0: जी
1: हर बार मिलते हैं, 3-4 साल में मिलते हैं, पर मिलते हैं, या
0: क्या
1: कभी
0: बात
1: कभी
0: है,
1: कुछ लोगों से 1 साल में मिलना हो जाता है ऐसा।
0: बहुत अच्छा लगा सुनकर कि आज भी आप अपनी दोस्तों के साथ जुड़ी हुई हैं।
1: मेरा एक तो म्यूजिक का मुझे थोड़ा सा शौक है, तो
0: जी
1: ये म्यूजिक वाले प्रोग्राम में बहुत देखती हूँ,
0: जी
1: मतलब पूरी फैमिली को हमारे म्यूजिक का शौक है। मेरा गेम्स था पहला
0: जी
1: स्कूल टाइम में, कॉलेज तक मैंने, मतलब 5th क्लास से मैंने जो बास्केटबॉल खेला है, तो स्टेट लेवल तक खेला हुआ है मेरा, नेशनल में तक पहुंच गई थी मैं, तो
0: जी जी जी
1: बहुत खेला है। मतलब मेरा पैशन था, वो पैशन था कि मुझे बास्केटबॉल ही खेलना है, और वो ही मैंने एक ही गेम चुना और उसको लास्ट तक
0: जी
1: स्कूल पूरा, कॉलेज पूरा वो खेला।
0: क्या बात है, यानी गेम्स के प्रति, वो भी बास्केटबॉल खेलने में तो बड़ा मजा आता है, और कभी जब बारिश होती तो ये गेम तो और भी अच्छा लगता होगा खेलने
1: और
0: में।
1: भी अच्छा लगता है जी।
0: तो अंजू जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ये बताइए कि आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: आज मैं टिप टिप बरसा पानी सुनना पसंद करूंगी
0: तो अंजू जी, आज आपको
1: आप।
0: सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गाना, लीजिए सुनिए ये गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली, मैं सरिता बोल रही हूँ पुणे से। मैडम
0: सरिता जी, आपका हेलो सहेली कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: बचपन से आज तक रेडियो ही सुने
0: क्या
1: और
0: बात
1: क्या
0: है,
1: था।
0: तो रेडियो आप सुबह से लेकर रात तक सुनती हैं, तो आपको कौन से प्रोग्राम रेडियो के अच्छे लगते हैं?
1: सब सारे प्रोग्राम उनको बहुत पसंद है,
0: क्या
1: जैसे
0: बात है,
1: दीपमाला हुआ, फिर छाया गीत, हेलो फरमाए, चलो सहेली।
0: जी तो ये
1: हाँ,
0: बताइए कि और आपको क्या पसंद है?
1: हमको जितना कला है सब पसंद है, चाहे ड्राइंग हो, गीत संगीत, नृत्य,
0: जी
1: सिनेमा देखना, ये सब की रेडियो सुनना, सब चीज पसंद है।
0: तो आप ड्राइंग भी
1: कला के फैन
0: कला के फैन हैं, क्या बात है जी। कला तो बहुत अनंत होती है,
1: हाँ
0: उसकी कोई
1: वो है।
0: सीमा नहीं, हर चीज में कला आपको नजर आती होगी, है ना
1: हाँ, ये
0: जी।
1: बात है। हाँ,
0: तो ये बताइए, बारिश जब होती है तो उसमें आपको कैसा लगता है?
1: अरे बारिश का तो पूछो मत। हम तो मैंने बचपन में बारिश जब होती थी तो उसका बैठ के और फोटो बनाते थे अपने से, बिना
0: अच्छा
1: सीखे ही बहुत बनाते थे, और बहुत हमको बारिश में भीगना, नहाना सब बहुत पसंद।
0: क्या बात है,
1: बारिश देखना भी बहुत पसंद है, ऐसे अभी बालकोनी में बैठ के बारिश देखना। अभी तो पुणे में बहुत बारिश हो रही है तो
0: जी जी जी
1: मेरे बालकोनी से दिखता है।
0: और बताइए, और क्या शौक है आपके?
1: और बस सबको खिलाना, सबसे बातें करना, अच्छी अच्छी बातें करना,
0: जी
1: यही सब मेरा शौक।

0: क्या चीज खिलाना पसंद करती हैं? आपको क्या पसंद है, क्या
1: नहीं
0: बनाएं?
1: नहीं खाना हम अच्छा बनाते हैं, और तरह तरह जो भी बनाते हैं वो किसी को बुला के खिलाना,
0: क्या बात है,
1: ये सब मेरा शौक है कि भाई आए मेरे यहाँ खाए, बैठे गप्पे मारे।
0: जी। आज बताइए कि आज आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
1: तिलक मंदिर फिल्म का,
0: जी
1: हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे।
0: ठीक है, तो हम आपको सुनवाते हैं दिलिक मंदिर का ये
1: हाँ
0: प्यारा
1: ठीक है,
0: संगीत।
1: प्यार में सारा आलम हम खो बैठे।
0: क्या बात है, और यही सारा प्यार हमारा भी है आप सभी के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली, मैं रतिका तिवारी हूँ, सूरत गुजरात से।
0: रसिका जी, आपका हेलो सहेली में बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए कि आपको क्या क्या अच्छा लगता है?
1: मुझे फिल्मों के गीत सुनना बहुत पसंद है, और सखी सहेली
0: जी,
1: और रेडियो सुनना, और उसमें खास तौर पे सखी सहेली मैं रोज सुनती हूँ
0: क्या बात है।
1: जी।
0: अच्छा ये बताइए रसिका जी कि बारिश का मौसम कैसा लगता है?
1: हाँ, बारिश का मौसम अच्छा लगता है, और आजकल तो बहुत बारिश हो ही रही है।
0: अच्छा क्या सावधानियां रखती हैं कि जब बारिश का मौसम होता है तो परिवार में बच्चे हैं, भाई बहन हैं, सबके लिए क्या आप खास ध्यान रखती हैं कि कैसे वो ठीक रहें, स्वस्थ रहें?
1: हाँ, बस ये है कि बारिश में ज्यादा बाहर, जब तक जरूरी नहीं हो तो बाहर ना निकलें।

0: घर पे रहे
1: जी। और बारिश में क्या क्या चीजें बनाती हैं?
0: बारिश में हम लोग पकौड़े खाना पसंद करते हैं।
1: क्या बात है, बारिश आते ही सबको पकौड़े याद आ जाते हैं ना।
0: हाँ।
1: मान लीजिए रसिका जी मेहमान आ गए और रसोई में आप गई और कुछ चीजें कम पड़ गई, तो फिर क्या आप जुगाड़ लगाती कि क्या चीज हम डाल दें और मिला दें जिससे अच्छी चीज बन जाए?
0: वैसे तो मैं ज्यादातर बेसन की बनाती हूँ पकौड़े
1: जी,
0: लेकिन अगर बेसन मान लीजिए कम है तो आटा मिला दिया, उसमें सूजी मिला दी।
1: अच्छा,
0: इस तरह। और आलू प्याज ये सब कुछ सब्जी और डाल ली।
1: बहुत अच्छा लगा। और परिवार में आपके कौन कौन हैं?
0: परिवार में मेरी सास
1: जी
0: नंदी
1: जी
0: और मेरे पति, एक बेटा।
1: भरा पूरा परिवार है, बहुत अच्छा लगा सुनकर के। और बारिश का मौसम है तो आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी आज?
0: बारिश के मौसम में मुझे आज बरखा बहार आई।
1: परख मूवी का आपको ये गीत सुनना है तो बहुत
0: हाँ, ये गीत
1: जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो हम आपको सुनवाते हैं ये गीत।

आज हेलो सहेली में सखियों ने की अपने मन की दिल की बातें, और बातों के साथ साथ उन्होंने अपने पसंद के गाने भी बताए जो सबने सुने और सबको बहुत अच्छा लगा होगा। और अब इस कार्यक्रम से विदा लेने की घड़ी करीब आ गई है, तो जाने से पहले ये आपको जानकारी नोट करा दे, हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक मंगलवार सुबह 11 बजे से 12 बजे तक। कॉल करने के लिए नंबर्स जो है वो आप नोट कीजिए। फ़ोन नंबर है 4002-4662, मुंबई का एसटीडी कोड है 022, यानी हिंदी में 4002-4662, एसटीडी है 022। अब दूसरा नंबर भी नोट कीजिए 2867-0288, एसटीडी कोड है 022, यानी

2876028 मुंबई का एसटीडी कोड है 022। अगले मंगलवार हेलो सहेली में कीजिएगा फोन, नई सहेली से दिलों की बातें कीजिएगा, क्योंकि कोशिश करने से ही सफलता मिलती है। प्रत्येक शुक्रवार हेलो सहेली दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है। अपने फोन में लगा लीजिए टाइमर अलार्म, जिसे याद रहेगा। जिन सखियों की कॉल आज नहीं लग पाई, वो मन मायूस ना करें, वो अगली बार कॉल जरूर लगाएं। जिनकी कॉल आज लगी है, वो 2 महीने तक कॉल नहीं करें। सखा भाइयों से विनती है, वे कॉल नहीं लगाएं, क्योंकि व्यस्त होंगी टेलीफोन्स की लाइनें। अपनी बातों को देते हैं विराम, हेलो सहेली कार्यक्रम से लेते हैं विदा। आपने आज का सफर तय किया मंजरी वर्मा के साथ, हमें सहयोग दिया रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नायक और भावना सिंदल ने, और संपादन सहयोग दिया नम्रता टिकोड़े ने। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए सौम्या शर्मा की लिखी कहानी वह पुरानी बेंच। हार हमेशा मैदान में नहीं होती, कभी कभी वो इंसान के मन में होती है। ऐसा ही कुछ यश के साथ भी हुआ था। यश की उम्र लगभग 40 वर्ष थी। एक प्रतिष्ठित कंपनी में 15 वर्षों तक काम करने के बाद अचानक कंपनी बंद हो गई और वो बेरोजगार हो गया। कई महीनों तक नौकरी ढूंढने के बावजूद उसे सफलता नहीं मिली। धीरे धीरे उसकी बचत खत्म होने लगी और आत्मविश्वास भी। हर सुबह वो अपने शहर के रेलवे स्टेशन पर जाकर एक पुरानी बेंच पर बैठ जाता। वहाँ बैठकर वो आती जाती ट्रेनों और लोगों को देखता रहता, बिल्कुल अपने बचपन की तरह। यश के पिताजी रेलवे में नौकरी करते थे और छुट्टियों में वो अक्सर उसे स्टेशन ले जाया करते थे। यश घंटों वहाँ बैठकर लोगों और ट्रेनों की आवाजाही निहारा करता था, किंतु आज उसे लग रहा था कि जैसे सबकी जिंदगी आगे बढ़ रही है।

उसी तरह उदास यश रोज वहाँ बैठा करता। एक दिन स्टेशन पर उसकी मुलाकात एक वृद्ध महिला से हुई। वो अपने हाथों से बने अचार और पापड़ बेचने दूसरे शहर जा रही थी। बातचीत में पता चला कि उनके पति का कई वर्ष पहले निधन हो गया था और उन्होंने अकेले ही अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। उन्होंने यश को अपने हाथों से बने अचार भी चखाए और ये भी बताया कि किस प्रकार उन्होंने जीवन की हर कठिनाई का सामना करते हुए ये छोटा सा व्यवसाय खड़ा किया था। उनकी बातों में आत्मविश्वास था और चेहरे पर एक अलग ही संतोष झलक रहा था। यश ये समझ ही नहीं पा रहा था कि जीवन में इतनी परेशानियां झेलने के बाद भी कोई इतना प्रसन्न और उत्साही कैसे रह सकता है। वो इन्हीं विचारों में खोया हुआ था कि तभी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आने की उद्घोषणा हुई। यश ने सोचा कि उनका भारी सामान होगा, इसलिए उनकी सहायता कर दे। जैसे ही वो सामान उठाने के लिए झुका, महिला ने मुस्कुराते हुए उसे रोक दिया और बोली, बेटा ये तो मेरा रोज का काम है, मैं इसे स्वयं संभाल लूंगी।

ये सुनकर यश स्वयं को रोक न सका। उसने संकोच भरे स्वर में पूछा, माताजी, यदि आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं। जीवन में इतनी कठिनाइयां आने के बाद भी आप इतनी प्रसन्न कैसे रहती हैं? क्या कभी आपका मन हार मान लेने का नहीं हुआ? यश के प्रश्न को सुनकर पहले तो महिला मुस्कुराई, उनकी आंखों में अनुभव की गहराई और चेहरे पर वर्षों के संघर्ष से उपजा आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जीवन में मुश्किलें तो आती जाती रहती हैं। अगर मैं हार मान जाती तो मेरे बच्चों का भविष्य भी हार मान जाता, इसलिए मैं चलती रही। और एक बात मैंने जीवन में और सीखी है, जब तक हम चलते रहते हैं, जिंदगी भी चलती रहती है।

अपनी बात कहकर उन्होंने यश के सिर पर आशीर्वाद भरा हाथ रखा। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी और वो मुस्कुराते हुए अपनी ट्रेन की ओर बढ़ गईं। लेकिन उनके शब्द यश के मन में देर तक गूंजते रहे। जब तक हम चलते रहते हैं, जिंदगी भी चलती रहती है। अगले दिन यश फिर उसी रेलवे स्टेशन की बेंच पर आकर बैठ गया। तभी एक मनमोहक धुन ने उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। वो धुन स्टेशन के प्रथम श्रेणी विश्राम गृह से आ रही थी। सुरों में ऐसी मिठास थी कि कुछ क्षणों के लिए यश अपनी चिंताएं भूल गया और उस संगीत के स्रोत की ओर बढ़ चला। उनकी मधुर आवाज सुनकर अनेक यात्री मंत्रमुग्ध हो गए थे और आसपास खड़े थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कुछ क्षणों के लिए पूरे स्टेशन का वातावरण ही बदल गया हो। यात्रियों की भागदौड़, ट्रेनों का शोर और प्लेटफॉर्म की चहल पहल सब उस संगीत के सामने फीके पड़ गए थे।

जब संगीत थमा तब तक यश उस विश्राम गृह के कमरे के बाहर पहुंच चुका था। वो दरवाजे पर खड़ा होकर उस कलाकार को निहार रहा था। तभी भीतर से आवाज आई, कौन हूँ भाई, क्या मेरा खाना आ गया? अचानक आवाज सुनकर यश थोड़ा घबरा गया और वहाँ से जाने के लिए मुड़ा। तभी उस व्यक्ति ने फिर बड़े स्नेह से कहा, अरे रुकिए, क्या मेरा खाना आ गया है? तभी यश को एहसास हुआ कि वो व्यक्ति दृष्टिहीन था। ये जानकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वो कुछ क्षण वहीं खड़ा रहा और उसे देखता रहा। कुछ देर बाद उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए फिर पूछा, खाना आ गया? उसकी खुशबू तो नहीं आ रही। इस बार यश ने धीरे से उत्तर दिया, नहीं, मैं खाना लेकर नहीं आया हूँ, दरअसल आपकी धुन सुनकर यहाँ चला आया था, मैं तो बस एक राहगीर हूँ। ये सुनकर वह व्यक्ति कुछ क्षण शांत रहा, फिर उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभर आई। अच्छा, तो संगीत तुम्हें यहाँ तक खींच लाया, उसने हंसते हुए कहा। फिर उसने यश को पास बैठने का इशारा किया। हाँ बैठो, मैं यहाँ अकेला बैठा हूँ, मेरे साथ ही भोजन लेने गए हैं, उनके आने में भी थोड़ा समय लगेगा, तब तक तुम ही मेरा साथ दे दो। यश बिना कुछ कहे उनके पास चुपचाप बैठ गया। उसे पता नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में होने वाली ये बातचीत उसके जीवन को एक नया दृष्टिकोण देने वाली थी। बातचीत के दौरान यश को महसूस हुआ कि सामने बैठा व्यक्ति न केवल एक असाधारण संगीतकार था, बल्कि एक अत्यंत विनम्र और सकारात्मक सोच वाला इंसान भी था। उसकी बातों में आत्मीयता थी और चेहरे पर एक अजीब सा संतोष। यश के मन में बार बार एक ही विचार आ रहा था कि इतना प्रतिभाशाली और अच्छा इंसान होने के बावजूद भगवान ने इसके साथ ऐसा क्यों किया होगा? ये प्रश्न उसके मन में लगातार उठता रहा। अंततः वो स्वयं को रोक न सका और संकोच भरे स्वर में बोला, यदि आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? संगीतकार हल्के से

मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल पूछो बेटा। यश कुछ क्षण चुप रहा, फिर धीरे से बोला, आप इतने अच्छे इंसान हैं, इतना सुंदर संगीत रचते हैं, फिर भी भगवान ने आपसे आपकी दृष्टि छीन ली। क्या आपको कभी अपनी किस्मत से शिकायत नहीं हुई? यश के प्रश्न के बाद कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। संगीतकार के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभरी, मानो उसने ये प्रश्न पहले भी अनेक बार सुना हो। फिर उसने गहरी सांस ली और बोला, पहले बहुत होती थी, मैं हमेशा यही सोचता था कि भगवान ने मुझसे मेरी आँखें

फिर उसने गहरी सांस ली और बोला, पहले बहुत होती थी। मैं हमेशा यही सोचता था कि भगवान ने मुझसे मेरी आंखें क्यों छीन ली। लेकिन एक दिन मेरे गुरु ने मुझसे पूछा, क्या हुआ? मैंने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी आपसे क्या छिपा है? आंखों के बिना अब ये सब कैसे संभव होगा? मेरी बात सुनकर गुरुजी ने मुझसे एक प्रश्न पूछा, बताओ संगीत के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या है? मैं कुछ समझ नहीं पाया। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने उत्तर दिया, संगीत का वाद्य यंत्र। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, नहीं। फिर मैंने कहा, आवाज? उन्होंने फिर सिर हिलाकर कहा, नहीं। मैंने तीसरी बार उत्तर दिया, संगीत की शिक्षा। इस बार भी उन्होंने कहा, नहीं। संगीतकार कुछ क्षणों के लिए रुक गया, मानो वो उस दिन को फिर से जी रहा हो। फिर गुरुजी ने गहरी सांस ली और कहा, अच्छा ये तो बाद में सोचेंगे कि संगीत के लिए सबसे जरूरी क्या है, पहले ये बताओ कि जिन चीजों को तुम सबसे आवश्यक मानते हो, क्या वे अभी भी तुम्हारे पास हैं? मैंने बिना सोचे उत्तर दिया, हाँ वे सब तो मेरे पास ही हैं गुरुजी। ये सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और बोले, तो फिर शुरुआत कर दो। कुछ पलों तक तो मैं उनकी बात का अर्थ समझ ही नहीं पाया, लेकिन जब मैंने अपने ही दिए हुए उत्तरों के बारे में सोचना शुरू किया, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी दृष्टि चली गई थी, पर मेरे वाद्य यंत्र मेरे पास थे, मेरी आवाज मेरे पास थी और वर्षों की साधना से प्राप्त संगीत की शिक्षा भी मेरे पास थी। मैं उस एक चीज के शोक में डूबा हुआ था जो मुझसे छिन गई थी, और उन अनमोल चीजों को भूल चुका था जो अभी भी मेरे पास थी। ये कहते हुए संगीतकार के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान फैल गई। उसने आगे कहा, उसी दिन मैंने तय कर लिया कि मैं अपनी कमी को अपनी पहचान नहीं बनने दूंगा। ये कहकर उसने हारमोनियम पर एक मधुर सुर छेड़ा और कहा, जब मैंने अपनी कमी के बजाय अपनी क्षमता पर ध्यान देना शुरू किया, तभी मेरी जिंदगी बदल गई और वो गाने लगा।

तभी उनके साथी भोजन लेकर कमरे में आ गए। बातचीत का सिलसिला वहीं थम गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है मेरा इंतजार अब खत्म हुआ। फिर उन्होंने अपने साथी का परिचय करवाया और कहा, बेटा जीवन में खुश रहने का सबसे आसान तरीका है, जो नहीं है उसकी चिंता कम करो और जो है उसका सदुपयोग अधिक करो। यश जाने लगा तो उनके साथी ने मुस्कुराते हुए बताया, शायद आपको पता नहीं है लेकिन आप जिनसे बात कर रहे हैं वे देश के एक प्रतिष्ठित संगीत महाविद्यालय के प्राचार्य हैं। इनके शिष्यों में कई प्रसिद्ध गायक और संगीतकार शामिल हैं। ये सुनकर यश कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गया। जिस व्यक्ति ने अपनी दृष्टि खो दी थी उसने हार मानने की बजाय अपने जीवन को इस तरह संवारा था कि आज वो न जाने कितने लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका था। यश वहां से लौट तो आया लेकिन उस सज्जन के शब्द और उनकी मुस्कान देर तक उसके मन में गूंजती रही। उसके मन में विचारों का एक नया द्वार खुल चुका था। उसे लगने लगा कि शायद समस्याएं उतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हम उन्हें अपनी सोच में बना लेते हैं। विचार बदल रहे थे लेकिन निराशा ने अब भी यश का साथ नहीं छोड़ा था। एक सप्ताह बाद स्टेशन की उसी बेंच पर एक सैनिक आकर यश के बगल में बैठ गया। यश के चेहरे पर छाई निराशा को देखकर उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है जवान, इतने हताश क्यों दिखाई दे रहे हो? यश ने अपनी नौकरी छूटने से लेकर भविष्य की चिंताओं तक सारी बातें उसे बता दी। सैनिक शांत भाव से उसकी बातें सुनता रहा, फिर वो बस मुस्कुरा दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। यश ने जब ध्यान से देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो हाथ असली नहीं बल्कि कृत्रिम था। वो सैनिक लगभग उसी की उम्र का था। सैनिक ने धीमे स्वर में कहा, ये हाथ मैंने सीमा पर एक युद्ध के दौरान खो दिया था। कुछ पल रुककर वो आगे बोला, उस दिन दुश्मन लगातार हमला कर रहा था, मेरे कई साथी घायल हो चुके थे। मैंने अपना एक हाथ खो दिया और असहाय होकर अपने साथियों को संघर्ष करते हुए देख रहा था। उस समय मुझे लग रहा था कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। उसकी आंखों में उस युद्ध की यादें छलकने लगी थीं। तभी मेरी नज़र अपने एक साथी पर पड़ी। उसने अपनी एक आंख खो दी थी, खून बह रहा था, फिर भी उसने कपड़े से घाव बांधा और अपनी दूसरी आंख से दुश्मन पर नजर टिकाए रखा। वो लगातार जवाबी हमला कर रहा था। सैनिक ने गहरी सांस ली और कहा, उस जांबाज को देखकर मेरे मन में एक विचार आया, यदि वो एक आंख खोने के बाद भी लड़ सकता है तो मेरे पास तो अभी एक हाथ बाकी है। मैंने बिना देर किए दूसरे हाथ से बंदूक उठाई। उसे संभालना आसान नहीं था लेकिन मैंने हार नहीं मानी। किसी तरह उसे सहारा देकर निशाना साधा और दुश्मन पर हमला शुरू कर दिया।

उस पल की बात याद करते हुए सैनिक के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान उभर आई। उस दिन हमने केवल युद्ध नहीं जीता था, बल्कि अपनी परिस्थितियों के सामने हार ना मानने का संकल्प भी जीत लिया था। फिर उसने यश की ओर देखते हुए कहा, जवान, इंसान तब नहीं हारता जब वो कुछ खो देता है, वो तब हारता है जब जो बचा है उसकी कीमत भूल जाता है। मैंने एक हाथ खोया था, लेकिन दूसरा हाथ अभी भी मेरे साथ था। तुम्हारी नौकरी चली गई है, तुम्हारी योग्यता और हिम्मत नहीं। उस रात यश बहुत देर तक सोचता रहा। उसे एहसास हो चुका था कि वो अपनी परिस्थितियों को अपनी पहचान बना चुका था। सैनिक ने युद्ध में अपना एक हाथ गवाया था, अपने कई साथियों को खोया था, फिर भी उनके चेहरे पर संतोष था। उन माताजी ने भी जीवन की असंख्य कठिनाइयों का सामना किया था, फिर भी उनके चेहरे की मुस्कान फीकी नहीं पड़ी थी, और उस दृष्टिहीन संगीतकार ने अपनी आँखों की रोशनी खो दी थी, फिर भी उसके जीवन में आशा और उसके सुरों में उत्साह का प्रकाश आज भी विद्यमान था। इन तीनों ने कुछ न कुछ खोया था, फिर भी वे जीवन से नाराज नहीं थे। शायद समस्या मेरी परिस्थितियों में नहीं, मेरी सोच में थी। जीवन में मुश्किलें सबके हिस्से में आती हैं। फर्क बस इतना होता है कि कुछ लोग उनसे हार मान लेते हैं, जबकि कुछ लोग उनसे सीख लेकर आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही यश ने ये सोचा, उसने ठान लिया कि उसे कुछ करना है। अगले दिन जब यश स्टेशन पर बैठा लोगों को देख रहा था, तभी उसकी नजर एक परिवार पर पड़ी। वे पहली बार उस शहर में आए थे और होटल, टैक्सी तथा शहर के प्रमुख स्थानों की जानकारी के लिए इधर उधर भटक रहे थे। कोई उन्हें अलग दिशा बता रहा था, तो कोई उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर अधिक पैसे मांग रहा था। ये देखकर यश को एहसास हुआ कि ऐसी समस्या केवल उस परिवार की नहीं, बल्कि प्रतिदिन सैकड़ों यात्रियों की थी। तभी उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि यदि यात्रियों को सही जानकारी और उचित मार्गदर्शन एक ही स्थान पर मिल जाए, तो उनकी परेशानी काफी हद तक कम हो सकती है। उसी समय उसे उन तीनों लोगों की बातें याद आ गईं। वृद्धा का संघर्ष, संगीतकार का आत्मविश्वास और सैनिक का साहस। पहली बार उसे महसूस हुआ कि शायद जीवन उसे किसी नए रास्ते की ओर ले जाना चाहता है।

यश ने अपनी बची हुई थोड़ी सी पूंजी इकट्ठा की और स्टेशन के बाहर एक छोटी सी मेज और कुर्सी लगाकर सूचना एवं सहायता केंद्र शुरू कर दिया। उसने एक साधारण सा बोर्ड बनवाया जिस पर लिखा था यात्री सहायता केंद्र, सही जानकारी, उचित मार्गदर्शन। शुरुआत आसान नहीं थी। कई दिनों तक मुश्किल से कोई ग्राहक आता। कभी कभी पूरे दिन की कमाई इतनी भी नहीं होती कि उसका खर्च निकल सके। कई लोगों ने उसका मजाक भी उड़ाया। नौकरी नहीं मिली तो अब ये काम शुरू कर दिया, कुछ लोग ताना मारते। लेकिन इस बार यश पहले वाला यश नहीं था। उसने हार मानने के बजाय धैर्य रखना सीखा था। वो मुस्कुरा कर लोगों की सहायता करता रहता। फिर धीरे धीरे यात्रियों को उसकी ईमानदारी और विनम्र व्यवहार पर भरोसा होने लगा। जो लोग उसकी मदद से संतुष्ट होते वो दूसरों को भी उसके बारे में बताते। कुछ ही महीनों में उसका छोटा सा सहायता केंद्र यात्रियों के लिए भरोसे का नाम बन गया। समय बीतता गया, यश ने अपने काम का विस्तार किया। उसने होटल बुकिंग, स्थानीय परिवहन, पर्यटन मार्गदर्शन और आपातकालीन सहायता जैसी सेवाएं भी शुरू कर दी। बढ़ते काम के साथ उसने कुछ बेरोजगार युवाओं को भी अपने साथ जोड़ लिया। कुछ वर्षों बाद वही छोटा सा सहायता केंद्र एक सफल ट्रैवल और यात्री सेवा संस्थान में बदल चुका था। वहाँ कई लोगों को रोजगार मिल रहा था और प्रतिदिन सैकड़ों यात्रियों की सहायता की जा रही थी। एक दिन यश अपने कार्यालय की खिड़की से बाहर देख रहा था और दूर उसे वही रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा था और उसके सामने रखी वही पुरानी बेंच भी। अनायास ही उसके कदम वहाँ की ओर बढ़ गए और वो जाकर खड़ा हो गया। उसने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुरा दिया। उसके चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान उभर आई। वही बेंच जो कभी उसकी निराशा की साक्षी थी, अब उसके नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक बन चुकी थी। उसे एहसास हुआ यदि उस दिन वो निराशा में डूब कर हार मान लेता तो शायद ये सब कभी संभव नहीं हो पाता। उस दिन स्टेशन पर एक ट्रेन सीटी बजाती हुई आगे बढ़ गई। यश ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी भी इसी ट्रेन की तरह फिर से चल पड़ी है।

दिनेश कुछ देर तक उसी बेंच के सामने खड़ा रहा। उसके मन में अतीत की अनगिनत यादें उमड़ पड़ी, वृद्धा की मुस्कान, संगीतकार के शब्द और सैनिक का साहस। तभी एक युवक आकर उसी बेंच पर बैठ गया। उसके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। वो बार बार अपना सिर झुकाकर गहरी सांसें ले रहा था। यश ने उसे कुछ देर तक देखा। उसे लगा मानो वह वर्षों पहले के स्वयं को ही देख रहा हो। यश धीरे धीरे उसके पास गया और बेंच पर उसके बगल में बैठ गया। कुछ पल तक दोनों के बीच मौन छाया रहा। फिर यश ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है जवान, इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? युवक ने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर उसके भीतर दबा हुआ दर्द शब्दों में निकलने लगा। उसने अपनी असफलताओं, बेरोजगारी और भविष्य की चिंताओं के बारे में बताना शुरू कर दिया। उसकी बातें सुनकर यश की आंखों के सामने अपना ही अतीत घूम गया। वो हल्का से मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें तीन लोगों की कहानी सुनाता हूँ। और फिर उसने उस वृद्धा, उस दृष्टिहीन संगीतकार और उस सैनिक की कहानी सुनानी शुरू कर दी, जिन्होंने कभी उसके जीवन की दिशा बदल दी थी। कहानी समाप्त होते होते युवक के चेहरे पर भी आशा की एक हल्की सी किरण दिखाई देने लगी। यश बेंच से उठा और मुस्कुराते हुए बोला, याद रखना दोस्त, जीवन में अंधेरा स्थायी नहीं होता, बस चलते रहना पड़ता है। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया। कुछ कदम चलने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा तो युवक अब पहले की तरह निराश नहीं लग रहा था। उस पल यश को एहसास हुआ कि वर्षों पहले जिन तीन अनजान लोगों ने उसकी मदद की थी, आज वही कहानी किसी और के जीवन में आशा जगा रही थी। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, शायद सकारात्मक सोच की सबसे बड़ी ताकत यही है कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती रहती है, ठीक वैसे ही जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक जल उठता है।

जीवन में सभी कुछ ना कुछ खोते ही हैं, परंतु जो बचता है उसी से नया भविष्य बनाना हमारे हाथ में है। सकारात्मक सोच परिस्थितियों को नहीं बदलती, लेकिन परिस्थितियों का सामना करने की हमारी शक्ति को बदल देती है, और यही शक्ति हमें सफलता तक पहुंचाती है।

गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज आप सुन रहे थे सौम्या शर्मा की लिखी कहानी वो पुरानी बेंच, वाचन स्वर नेहा शर्मा का, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

अभी हम रिले कर रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम FM बैंड 103.2 MHz पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है।

FM 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। अब हम प्रसारित करेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं CFN विभाग सरगुजा।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 58 है। ये खोड़, केसर, छतौली, इंजानी, बरपटिया, पुतकी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर में हाथियों की कुल संख्या 14 है। ये मकनपुर, नवाडी, पोड़िपा, पेंडारी, सिंघरा, भरदा, गौरा, मदन नगर, गणेशपुर, चिटका, बहरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के राजपुर और रामानुजगंज में हाथियों की कुल संख्या 11 है। ये अखोरा, कुंदीकला, जामदोहर, सिधवा, गोपालपुर, मुरका, अतौरी, ठरकी, चिनिया, कनकपुर, डकिया, शिवपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के लुंड्रा,

0: उदयपुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 8 है। ये पड़ौली, अमड़ी, किशुनपुर, मसगाड़, सत्तीमुड़ा, लक्ष्मणगढ़, ससकालो, तेंदुटिकरा, मानपुर, बरिमा, कुदारीडी, केसरा, सरभंजा, ललिया के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के दुलदुला, पत्थलगांव, कांसाबेल और बगीचा में हाथियों की कुल संख्या 32 है। ये धूरी अम्बा, करडेगा, केंदापानी, बकना, हड़ामाचा, पीठा आमा, राजा आमा, महेशपुर, साजापानी, तीता पाकेर, सोनाजोरी, घंताडांड, परसाडांड, पेटा, बिमड़ा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो, लेलुंगा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 117 है। ये महाराजगंज, बंगरसूता, कुड़ेकेला, बोजिया, सिंघीछाप, बनहर, लोटान, कंचीरा, पोटिया, आमगांव, झगरपुर, सागर पाली के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वनमंडल के कुदमुरा में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये कटकोना और जिलगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहा है। कटघोरा वन मंडल के केंदई, जडगा, एतमानगर और पसान में हाथियों की कुल संख्या 51 है। ये मड़ई, कोदवारी, भूडूपानी, कठमोरगा, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, जुनवानी, कुकरीकादर, बनिया, चोटिया, लालपुर, सेमरहा, बोकरा, मुड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये झिंगोल, तराईमाल, नागदरहा, पंडरीपानी, भैंसगढ़ी, बड़गांव के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये कोठारी, तालदादर, पकरीत के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 24 है। ये ओड़, अमलोर, ताराझर, डडईपानी, बुडार, जिडार, सिहार, छिंदौला, लूठापारा, फरसरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमार हाथी हमार गोट।
2: अभी हम प्रसारित कर रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमार हाथी हमार गोट। कार्यक्रम के प्रायोजक थे सीएफ अनिभाग सरगुजा। शाम के 5:05 हुए हैं। हमारा अगला कार्यक्रम होगा श्रोताओं थोड़ी ही देर में।

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और

0: टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। कुछ यादें अतीत की।
1: आकाशवाणी गोरखपुर के बड़े मशहूर फनकार और आर्टिस्ट राहत अली खान साहब, जो कि रायपुर खूब आते रहे हैं रेडियो के भी प्रोग्राम्स में, मेरा नसीब था कि मुझे उनकी छाया मिली और उनसे दादरे, गजलें, सूफियाना चीजें खूब सीखी।
0: कुछ बातें वर्तमान की।
2: आज बस जिंदगी का आनंद ले रहा हूँ, गाने का आनंद ले रहा हूँ। रोज अपना 2-4 घंटे का रियाज सुबह मेरा होता है।
0: कुछ सपने भविष्य के।
3: अभी फिर जल्दी ही कुछ अच्छे बैनरों की अच्छी फिल्में और अच्छे गीत आपको सुनने मिलेंगे।
0: कुछ किस्से अनकहे।
4: जो भी एक्शन हो रही है फिल्मों में, जो हम देख सकते हैं लेकिन वो देख नहीं सकते, वो हमें हमारी आवाज के माध्यम से बोलना पड़ता है।
0: विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विशिष्ट जनों से मुलाकात, सुनिए इनसे मिलिए हर शुक्रवार सुबह 8:30 बजे आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से।
5: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
6: देश की सुरीली धड़कन
7: विविध भारती,
5: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
6: कुछ बातें कुछ गीत कायम रहे छाया गीत,
5: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
6: वीर सैनिकों की जयमाला
5: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
6: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
8: सखी सहेली,
6: बॉम्बे टॉकीज,
9: सेल्यूलॉइड के सितारे,
6: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
8: मुझे याद सब है जरा जरा,
5: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
6: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
5: मन का सुकून दिल की आरती,
6: सुरीली संदली।
4: FM एंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 5:10 होने को है। हमारा अगला कार्यक्रम रिले होगा आकाशवाणी दिल्ली से।

0: आकाशवाणी के साथ।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत आज सुनिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे आशीष अग्रवाल के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ आज विशेष मेहमान है आशीष अग्रवाल जी, जो हम सबको राह दिखाते हैं कि अपनी जीवन शैली को सरल बनाकर ही कितना फायदा हमें हो सकता है और हमारी प्रकृति को भी कितना फायदा हो सकता है। सो आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी में। आशीष जी, सर्वप्रथम जो आपका एक मुहिम है उससे ही शुरुआत करते हैं, सस्टेनेबिलिटी माइंडफुल कंजम्पशन अ वे टू मिनिमलिस्टिक लिविंग। ये जो आपका तथ्य है, जो कॉन्सेप्ट है, इसको आप अगर हमें सरल शब्दों में समझा सकें, जो हमारे श्रोता सभी समझ पाएं कि क्या है ये कॉन्सेप्ट और इसके पीछे की मूल सोच।

0: क्या है?
1: तो मैं इसके वाई से शुरू करता हूँ कि ये पूरा मुहिम शुरू क्यों हुआ। तो आज के डेट में समाज में तीन तरह के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। पर्सनल लेवल पे अगर देखा जाए तो तनाव बहुत बढ़ गया है, स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है। सोशल लेवल पे देखा जाए तो हम लोग हमेशा बात करते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे देश में सिविक सेंस की थोड़ी कमी है। और अगर ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो क्लाइमेट चेंज, वातावरण का जो बदलाव हो रहा है वो बहुत ही तेजी से हमारे सामने आ रहा है। तो ब्रिज फॉर चेंज एक मिशन पर है जहाँ वो यस आई एम माइंडफुल मूवमेंट को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें माइंडफुल कंजम्पशन को एज अ प्रोफाउंड टूल हम लोग प्रेजेंट करते हैं, जिससे हमारी वेलबींग इंप्रूव होगी। और हमारी वेलबींग इंप्रूव होगी, हमारे एक्शंस इंप्रूव होंगे, तो आसपास होने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपने आप मिटिगेट होना शुरू हो जाएंगे।
0: जी
1: जिसमें हम लोग कहते हैं युवाओं से कि छोटे छोटे एक्शंस लेने हैं, जहां पॉसिबल हो वहां एक्शंस लेने हैं, जितना पॉसिबल हो उतना करना है। तो इसको हम लोग टर्म देते हैं PRR, कि क्या हम लोग कभी पॉज लें, अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा रिफ्लेक्ट करें, और जिस भी पैरामीटर्स पे, चाहे वो फूड है, फैशन है, टेक्नोलॉजी है, रिलेशन है, प्रोफेशन है, किसी भी आयाम पे जहां उनको लगता है रेगुलेट कर सकते हैं उस चीज को रेगुलेट करें। और ये एफर्टलेस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा एफर्ट लगाएंगे तो वही 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन करेंगे, उसके बाद फिर हमारा मोटिवेशन कहीं ना कहीं लैक करने लगता है। तो छोटे छोटे स्टेप्स, टाइनी एक्शंस कैन ब्रिंग जाइगेंटिक रिपल्स, तो वो हमारा ध्येय है। और सरल जीवन जहां आपको सही लगता है और उसमें छोटे छोटे स्टेप्स, तो यही पूरा मूवमेंट का थॉट प्रोसेस है।
0: आशीष जी, आप जो बात कर रहे हैं माइंडफुल कंजम्पशन की, वही अधूरी है आपके पूरे जो मुहिम की। उसको और गहराई से समझने के लिए अगर हम ये आपसे जानना चाहें कि माइंडलेस कंजम्पशन क्या होती है, जिसको काउंटर करने के लिए आप ये जो माइंडफुल कंजम्पशन लेके आए हैं, ताकि हम बेहतर समझ पाए कि इसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्या है।
1: जो माइंडलेस कंजम्पशन की बात करें तो जो नीड वर्सेस वांट जो बोलते हैं
0: जी,
1: कि हम लोग सबको कहीं ना कहीं पता है कि हमारी नीड तो इतनी ही है, लेकिन कई बार हमारी चाहते होती हैं, पीयर प्रेशर होता है, समाज का स्टेटस होता है, उस चीज को अकॉम्प्लिश करने के लिए हम लोग बहुत सारी चीज ऐसी खरीदते हैं, बहुत सारी चीज ऐसी इस्तेमाल करते हैं, एक लाइफस्टाइल ऐसा फॉलो करते हैं जिसकी शायद हमें उतनी जरूरत नहीं हो। और उस जर्नी में फिर बहुत सारे अलग अलग माध्यम से हम लोग ओवर कंजम्पशन करते हैं, अनरियलिस्टिक एम्बिशंस सामने रखते हैं। तो उस चीज को ही हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं कि उस अनरियलिस्टिक जो हमारे एम्बिशन है उसको कैसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए, थोड़ा सा बेहतर और मोर रिस्पॉन्सिबल लाइफ स्टाइल की तरफ युवाओं का, हमारे जो भी ऑडियंस है उनका ध्यान लाया जाए।
0: तो आपने जो नीड्स और वांट्स की बात करी कि एक तो है हमारी जरूरत और एक है हमारी ख्वाहिश,
1: बिल्कुल,
0: ये नीड और वांट का जो अंतर है, क्या आप हमें और गहराई से इसको समझा सकते हैं?
1: ये बहुत मुश्किल है। नीड का तो हमारा मानना है कि सॉफ्टवेयर ही हमारा वैसा डेवलप है कि हमें पता है कि ये हमारी जरूरत है, कब वो जरूरत वांट हो रही है उतना हमें अंदर से आवाज आ जाती है। लेकिन चूंकि हम लोग इतने कॉम्पिटिटिव सोसाइटी में रहते हैं, इतने फास्ट इवॉल्विंग सोसाइटी में, कि वांट का कहीं ना कहीं ब्रेक लगाना मुश्किल हो जाता है, और वहीं पे फिर प्रॉब्लम शुरू होती है। प्रॉब्लम इसलिए शुरू होती है कि सपोज मैं आज आशीष एक्स पर हूं, मुझे वहां 5x तक पहुंचना है, जस्ट बिकॉज मेरे पीयर ग्रुप में कोई वहां पर है, तो मैं ये नहीं देखता कि मेरे स्किल्स क्या है, मेरी अपॉर्चुनिटीज क्या है, राइट टाइम राइट प्लेस पे मैं हूं कि नहीं। मैं बस भागता रहता हूं कि मुझे 5x तक पहुंचना है, क्योंकि मेरे चाचा का बेटा या XYZ इन माई फैमिली इज एट दैट पॉइंट। तो उसमें दो चीजें होती है। पहला तो होता है कि मैंने बहुत मेहनत की लेकिन सही समय पे सही जगह पे नहीं था, तो मैं एक्स से 3x तक पहुंचा। तो सोसाइटी इतनी कॉम्पिटिटिव है, इतनी शॉर्ट साइटेड है कि वो उस चीज के लिए मुझे अप्रिशिएट नहीं करेगी 3 गुना आगे बढ़ा, बट उस चीज के लिए रेडिक्यूल करेगी कि देखो अभी भी वो इंसान तुमसे कितना आगे है। तो वो जो स्यूडो कमी है ना, जो समाज बताता है कि तुम में कुछ कमी है, तुम इतने स्मार्ट नहीं हो, तुम इतने स्किल्ड नहीं हो, उस कमी को छुपाने के लिए हम लोग माइंडलेस कंजम्पशन करते हैं, उस भड़ास को दबाने के लिए। किसी का वो भड़ास, फ्रस्ट्रेशन, वो वॉइड खाने पे निकलता है, किसी का फैशन पे निकलता है, किसी का रिलेशन पे निकलता है, किसी का दिन भर इंस्टाग्राम और ये सब पे निकलता है। दूसरे केस में क्या हो रहा है कि अगर मैं एक्स से 5x पहुंच भी गया, राइट टाइम राइट प्लेस, बहुत मेहनत की, सही लोग मिले, तो भी अगर मैं 5x पे पहुंचा तो ये समाज मुझे शांति वाली जिंदगी, एक सिंपल जिंदगी जीने के लिए प्रेरित नहीं करता है। वो बोलता है अब तुम 6 फिगर सैलरी कमा रहे हो, तो तुम्हें इस तरह का मोबाइल, इस तरह का घर, इस तरह के वेकेशंस होने चाहिए। तो हमने जो रिसर्च किया उसमें यही पाया कि वेदर वी आर सो कॉल्ड सक्सेसफुल और नॉट, दोनों ही केस में मैं माइंडलेस कंजम्पशन करता हूं बिकॉज ऑफ द पीयर प्रेशर। और वही सारे स्ट्रेस की, वही सारे नॉइस की जड़ है। इसीलिए माइंडफुल कंजम्पशन के प्रति हम लोग लोगों को इंस्पायर करने की कोशिश करते हैं डेटा की मदद से।
0: जी, तो कैसा डेटा, किस तरह से फायदा, जब आप कह रहे हैं कि माइंडफुल कंजम्पशन होती है, जितनी आपको जरूरत है उसके अनुसार आप कंज्यूम करते हैं, तो इसका जैसा आप कह रहे हैं कि आपको खुद को फायदा होता है, क्लटर कम हो रहा है, आप एक पीसफुल लाइफ लीड कर रहे हैं, उसके अलावा पर्यावरण को भी इसका लाभ होता है, जो आप डेटा की बात कर रहे हैं उसको आप हमें थोड़ा समझा सकते हैं?
1: तो कोई भी चीज जब हम लोग करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी यूज होती है किसी भी फॉर्म में, और उस एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ ना कुछ एमिशंस, कुछ पॉल्यूशन हुआ, उस पॉल्यूशन को कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट के मेजरमेंट में नापा जाता है। जैसे हम लोग होते हैं दूरी को किलोमीटर में नापते हैं, वजन को किलोग्राम्स में नापते हैं, वैसे पॉल्यूशन को कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट, कार्बन फुटप्रिंट जो बोलते हैं हम लोग, तो कोई भी काम करते हैं उसका कुछ ना कुछ कार्बन फुटप्रिंट है। तो ये एक अच्छी बात भी है और मुश्किल भी है कि हर चीज का इमिशन हो रहा है तो मैं कंट्रोल कैसे करूं, लेकिन हर चीज का इमिशन हो रहा है तो वहां अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग चूंकि सैकड़ों चीजें अपने दिन में कंज्यूम करते हैं, तो जहां जहां हमें पॉसिबिलिटी लगती है हम लोग अगर उसको थोड़ा सा रेगुलेट करें तो बहुत सारा इनडायरेक्ट पॉल्यूशन बचाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम में से सब लोग भारत में तो चाय पीना पसंद करते हैं, तो अगर मैं हर दिन सुबह एक कप चाय पीता हूँ तो हफ्ते में मैंने 7 कप चाय पिए, तो डेटा बताता है, जैसे उसका सोर्स है आवर वर्ल्ड इन डेटा, तो डेटा बताता है कि 1 लीटर दूध बनाने के लिए 3 किलोग्राम कार्बन इमिशन होता है, और अगर 1 लीटर दूध में 10 कप चाय बनते हैं तो इसका मतलब हर कप का करीब 250 ग्राम हुआ। तो हम लोग जब इंगेज करते हैं अपने ऑडियंस के साथ तो ये नहीं बोलते कि आप चाय पीना बंद कर दो, हम लोग बोलते हैं कि अगर आप कंफर्टेबल हो तो हफ्ते में 1 कप कम कर सकते हैं, तो अगर हफ्ते में 1 कप भी कम किया गया तो साल में 250 ग्राम इंटू 52 करीब 12-13 किलो कार्बन एमिशंस बच जाए।

0: तो हम लोग जब इंगेज करते हैं अपने ऑडियंस के साथ, तो ये नहीं बोलते कि आप चाय पीना बंद कर दो। हम लोग बोलते हैं कि अगर आप कंफर्टेबल हो तो हफ्ते में एक कप कम कर सकते हैं। तो अगर हफ्ते में एक कप भी कम किया गया तो साल में 250 ग्राम × 52 करीब 12-13 किलो कार्बन एमिशंस बच जाए। तो ये सिर्फ एक पैरामीटर है, ऐसे हजारों चीज हम लोग अपने अंदर ले रहे हैं। तो जहां जहां हम लोग कंफर्टेबल है वहां अगर थोड़ा सा रेगुलेट करें तो बहुत सारा एमिशंस बचाया जा सकता है।
1: इस संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2022 में जो शुरू किया था मिशन लाइफ, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, तो उसमें भी उन्होंने हर एक नागरिक की सक्रिय भागीदारी को एक महत्वपूर्ण बताया था, जो पर्यावरण संरक्षण है उस दिशा में। तो वहां पर आप हमें बताएं कि कौन सी ऐसी छोटी छोटी आदतें हैं, किन किन आदतों से हम हमारा जो भी वातावरण है उसको हम ज्यादा शुद्ध करने में या उसके संरक्षण में हम अपना योगदान कर सकते हैं।
0: तो इसको शेयर करने के लिए मैं 5R का यूज करूंगा, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। तो 5R में सबसे पहले वही रिड्यूस आता है। तो एक चीज तो बहुत क्लियर है कि अगर हम लोग अपने लाइफस्टाइल में परिवर्तन नहीं लाएंगे तो कितना भी पेड़ लगाएं, कितना भी टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए, एमिशंस कम नहीं होंगे तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी लाइफस्टाइल को, जीवन शैली को थोड़ा बदलना ही पड़ेगा, जो कि मिशन लाइफ का भी देह है कि अपने लाइफस्टाइल को एनवायरमेंट से कैसे अलाइन किया जाए। तो रिड्यूस के कॉन्टेक्स्ट में जैसे यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम का डेटा बताता है कि हर साल करीब 50 किलो खाना हर भारतीय वेस्ट करता है ऑन एन एवरेज। तो फूड वेस्ट एक ऐसी चीज है जो हमें इमीडिएटली रोक देनी चाहिए अगर अभी तक हम लोग के जीवन शैली में वो चीज नहीं आई है। तो वैसे ही एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स का कार्बन फुटप्रिंट बहुत होता है, चाहे वो मिल्क हो, चाहे वो मीट बेस्ड चीजें हो, जो भी चीज एनिमल से आ रही है, तो उसको हम लोग थोड़ा रेगुलेट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। वैसे ही एयर ट्रेवल का कार्बन इमिशन बहुत होता है, तो रिड्यूस के कॉन्टेक्स्ट में एक आम नागरिक जो करता है तो फूड वेस्ट ना करे और एयर ट्रेवल कम हो। रिड्यूस के बाद अगर रिप्लेस की बात करते हैं तो बहुत सिंपल सा है, जैसे कपड़े का थैला यूज करें। तो आमतौर पर हर दिन अगर हम लोग सब्जी वब्जी लेने जा रहे हैं तो 3 प्लास्टिक 4 प्लास्टिक यूज हो जाता है, तो सिर्फ एक बैग यूज करेंगे तो साल भर में अगर 3 × 365 भी करें तो 1000 प्लास्टिक की बैग्स सिर्फ और सिर्फ सब्जी के मायने में कम हो सकती हैं। और वही वो प्लास्टिक भी जैसा हम लोग बोलते हैं ना, सिंगल यूज होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो रिप्लेस के कॉन्टेक्स्ट में प्लास्टिक को रिप्लेस कर दिया हमने कपड़े के बैग से, वैसे ही प्लास्टिक की बॉटल्स को रिप्लेस कर दिया मेटल की बॉटल से, आजकल टिश्यू पेपर को यूज करने का बहुत फैशन चला है, तो टिश्यू पेपर को रिप्लेस कर दिया रूमाल वगैरह से, जो हमारे घर में हमारे माता पिता और दादा दादी हमेशा ही करते आए हैं। तो इससे बहुत सिंपल सा एक्ट है लेकिन बहुत सारा पानी, बहुत सारा कचरा, बहुत सारा कार्बन इमिशन बच सकता है। रिपेयर, आजकल हमारी लाइफस्टाइल इतनी फास्ट हो गई है कि रिपेयर कराने का उतना टाइम नहीं है। तो अगर मैं 2 घंटे जाऊंगा रिपेयर कराने, फिर वापस लेने आऊंगा, इतने में तो मैं नया सामान मंगा लूंगा। लेकिन रियल कॉस्ट हम लोग नहीं पे करते किसी भी चीज का। अगर इन्वायरमेंटल कॉस्ट भी जोड़ा जाए, वेस्ट मैनेजमेंट का भी कॉस्ट जोड़ा जाए, तो किसी भी प्रोडक्ट का रियल कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा। तो जहां जहां पॉसिबल हो रिपेयर कराएं। इन सब में जब सब हो गया, रिड्यूस हो गया, रिप्लेस हो गया, रिपेयर हो गया, तब जो बचा उसको रिसाइकलिंग के लिए दें।
1: आशीष जी, युवाओं की अगर हम बात करें, आप युवाओं को प्रेरित करने पर काफी बल देते हैं। अब युवा महत्वाकांक्षी भी होते हैं और वो अपने जो स्वप्न है उनको भी बहुत गहराई से देखते हैं, गंभीरता से देखते हैं, और एक आधुनिक जीवन शैली भी वो जीना चाहते हैं। तो ऐसे में आप कैसे उनको कन्विंस करते हैं कि आप अगर साधारण अपनी जीवन शैली को करेंगे, मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल अडॉप्ट करेंगे, तो उससे आपकी प्रगति में कोई बाधा नहीं आएगी बल्कि आपका जीवन बेहतर होगा। तो ये बताइए कितना चैलेंजिंग है और कैसे आप इसको अचीव करते हैं, जो युवा है उनको इस दिशा में ले जाने की ओर।
0: थोड़ा चैलेंजिंग होता है, बट इनफ रिपोर्ट्स आर देयर इन मार्केट, जहां पे ये पता है कि हमारा जो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप है, जिसको अब अपर मिडिल क्लास बोलते हैं, उसके ऊपर जो इलीट क्लास, एफ्लुएंट क्लास होता है, तो आज के डेट में जितने भी मॉडर्न एज बीमारियां हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, डायबिटीज हो, कोलेस्ट्रॉल हो, ओवरवेट हो, लोनलीनेस हो, स्ट्रेस हो, एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो, ये सब उसी एफ्लुएंट क्लास में आ रहा है। तो इसलिए बहुत एविडेंट है कि सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल गेन करने से हमारा लाइफ की क्वालिटी ओवरऑल नहीं बढ़ सकती। उसके लिए अपने लिए समय निकालना जरूरी है, अपनों के लिए समय निकालना जरूरी है, सेहत पे ध्यान देना जरूरी है, रिलेशंस पे ध्यान देना जरूरी है। तो इस पूरे मुहिम में, इस पूरे मिशन में वही थॉट प्रोसेस होता है कि आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा है, समृद्धि बहुत जरूरी है, लेकिन अगर सादगी के साथ वो समृद्धि लाई जाए तो उसमें 4 चांद लग जाते हैं। और वो आपके लिए कैसे बेनिफिशियल है, तो अगर सादगी भरा जीवन रहेगा आपका, माइंडफुल अगर आप रहोगे जीवन में, तो आपका ही ये जो तनाव है, ये जो स्ट्रेस है, कम होगा, आपकी फिजिकल और मेंटल वेलबींग इम्प्रूव होगी, और आपकी अगर वेलबींग इम्प्रूव हो रही है तो आपकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होगी, जिससे आपका काम और बढ़ेगा। तो ग्रो करने के अगेंस्ट नहीं है कोई भी थॉट प्रोसेस, बट वी शुड बी ग्रोइंग नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ, वी शुड बी ग्रोइंग नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर रिलेशंस। तो वही थॉट प्रोसेस है। और गांधी जी ने भी बोला है कि कैपिटल में बुराई नहीं है, उसका यूज किस तरीके से करते हैं वो डिफाइन करता है वेदर इट इज एन एविल और ब्लेसिंग। तो हम लोग वही बोल रहे हैं कि आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा है, समृद्धि और

0: सादगी को साथ में लेके चलने की कोशिश करो।
1: कोई ऐसे डेटा पॉइंट्स भी हैं जिनसे उनको समझाते हैं कि कैसे आप एक इंडिविजुअल लेवल पर अगर माइंडफुल कंजम्पशन करते हैं, अपने लाइफस्टाइल को मिनिमलाइज करते हैं जरूरत के अनुसार, तो किस तरह का फायदा होता है एनवायरमेंट को, ये थोड़ा सा आप हमें बता सकते हैं एग्जांपल्स देके?
0: आज के यूथ बहुत इंस्पायर्ड है, बहुत मोटिवेटेड है, बहुत ब्लेस्ड भी है, और हमने देखा है कि दे वॉन्ट टू डू समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी, बस उन्हें थोड़ा सा नज की जरूरत है, थोड़ा सा गाइडेंस की जरूरत है। तो अगर रैशनैलिटी बेस्ड बातें की जाए, लॉजिकल तरीके से कोई चीज पुट की जाए, तो उनका सपोर्ट काफी मिलता है। तो ये जो माइंडफुल लिविंग है, ये तो हमारे एंसेस्टर्स हमेशा से करते आए, कोई नई चीज नहीं, हमारे सभ्यता में, हमारे ट्रेडिशंस में है। बस डेटा की मदद से जब हम लोग पुट करते हैं उनके सामने कीप इट, तो उनका इमोशंस एक्शन की जर्नी है बहुत इजी हो जाती है। अगर अभी कपड़े की बात करें, तो एक कंपनी का भी रिसेंटली सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट आया था, उसमें उनका कहना था कि जो वो एक जींस बनाते हैं उसके लाइफ साइकिल में, मतलब डेनिम बनाना, स्टिच करना, शॉप पे ले जाना, फिर हमारे जैसे लोग उसको परचेज किए, यूज किए, धोए, यूज किए, धोए और फाइनली फेंके, तो उस पूरे जीवन काल में एक जींस के करीब 3800 लीटर पानी का इस्तेमाल होता है। तो हम लोग यही बोल रहे हैं कि आपके प्रेजेंट लाइफस्टाइल जैसा भी हो बहुत बढ़िया है, क्या उसमें छोटा सा बदलाव ला सकते हैं?
1: सो आशीष जी, एक जो प्रोजेक्ट 333 है, अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, शायद आपने उसको खुद अपनाया भी है, तो आप बता सकते हैं अपने अनुभव से कि किस तरह से ये बेनिफिट करता है, न सिर्फ पर्सनली जो भी उसको अपना रहा है, जो भी अडॉप्ट कर रहा है उस व्यक्ति के लिए वो लाभदायक है, हमारे पर्यावरण के लिए भी लाभदायक है।
0: जब हम लोगों ने ये मूवमेंट शुरू किया 2021 में, तो बहुत इंपॉर्टेंट था कि पहले हम लोग कुछ प्रैक्टिस करें और फिर उसके बाद उसकी शेयरिंग करें। तो उसमें जब रिसर्च किए, तो ये एक इनिशिएटिव आया प्रोजेक्ट 333, जहां पे पार्टिसिपेंट को इनवाइट किया जाता है कि वो 33 पर्सनल आइटम्स के साथ 3 महीने की जिंदगी जिए। वो पर्सनल आइटम्स मतलब जो आप अपने साथ कैरी करते हैं, जिसके बिना आपका जीवन नहीं हो सकता, आपका किचन वेयर, आपका सोफा, वो नहीं, आपका खुद का 33 आइटम्स।
1: कुछ अगर आप एग्जांपल दे सकते
0: हैं, जैसे मेरे कपड़े हुए, मेरे स्टेशनरी हुई, मेरा सैनिटरी किट हुआ, मेरा ट्रेवल बैग, लैपटॉप वगैरह हुआ, तो जो चीज अगर मैं कहीं जा रहा हूं तो अपने साथ रखूंगा। तो वो चैलेंज हम लोगों ने लिया 2021 में, और आज 5 साल हो गए मैं उसी 33 सामान के साथ जिंदगी जीता हूँ। तो उससे बहुत वही लिबरेशन हुआ, क्योंकि मुझे सोचना नहीं है कि मुझे क्या पहनना है, बहुत सारी चीज कैरी करने की जरूरत नहीं है, घर में बहुत सारा स्पेस होने की जरूरत नहीं है, बहुत सारा रिसोर्स मुझे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो वही चीज, अगर अगेन 33 इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट पुटिंग सम फिगर इज इम्पॉर्टेंट। तो जिसको जो इम्पोर्टेंट लगता है, जिसको जो कम्फर्टेबल लगता है, वो एक दायरा बना ले कि मुझे 50 चीजें या 55 चीजें के साथ 3 महीना 6 महीना ट्राई करना है, तो वो एक जो फ्रीडम है उसका कोई जवाब ही नहीं है। तो ये सारे तरीके होते हैं अपने क्लटर को कम करने का, जिससे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है उस पर फोकस कर सके। आजकल ऑनलाइन ऑर्डर्स हमारे लाइफ का बहुत इंटीग्रल पार्ट हो गई है, तो उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है कि जितना भी कर रहे हैं उसमें क्या थोड़ा कम किया जा सकता है। तो 2 तरह के ऑनलाइन ऑर्डर्स आजकल हो रहे हैं, एक तो ग्रोसरीज वगैरह मंगाने में, तो उसमें भी अगर हम लोग बल्क में मंगाते हैं या खुद जाके ले आते हैं, तो अननेसेसरी जो पैकेजिंग है वो कम होगी
1: जी।
0: और उससे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है क्लाइमेट के दृष्टिकोण से, वेस्ट मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से, वो है पैकेज्ड फूड, उसको कहीं ना कहीं कम करने की जरूरत है, क्योंकि उसमें फिर जब सामान आता है तो 1 टाइम प्लास्टिक, 1 टाइम कटलरी, और उसमें फिर जो वो खाना लगा हुआ होता है उसको वेस्ट मैनेजमेंट में बहुत दिक्कत होती है उसको रिसाइकिल करने में। तो क्या हम लोग इस तरह के ऑनलाइन ऑर्डर्स जो करते हैं उसको थोड़ा सा कम करें, एलिमिनेट कर पाए तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो एटलीस्ट शुरुआत तो करें, तो ये भी बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है।
1: तो इसी से जुड़ा है मेरा अगला सवाल कि कैसे हम आइडेंटिफाई करें, एवरेज एक आम नागरिक कैसे ये पहचान करे कि क्या चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, माइंडफुल कंजम्पशन के दायरे में आती है, और कौन सी चीज इम्पोर्टेंट नहीं है जो माइंडलेस कंजम्पशन के दायरे में आती है और जिसको हम हटा सकते हैं।
0: तो इसमें 2-3 प्रश्न हमेशा मिलेंगे आपको जब भी हम लोग परचेज करने की सोच रहे हैं, या शॉपिंग करने का, या किसी भी तरीके का कंजम्पशन करने की सोच रहे हैं, तो क्या हमें इसकी जरूरत है इमिडिएटली, अगर मैं इसको 3 महीने बाद भी लूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? तो जो 3 महीने का गैप है या 2 वीक का गैप है, उससे आपको इमिडिएटली पता चल जाएगा कि ये रियल में नीड है या वांट है। तो एक बार नीड वर्सेस वांट की चीज हो गई, तो जैसा बोलते हैं ना कि गुस्से में बात नहीं करनी चाहिए, वैसे ही कंजम्पशन के कॉन्टेक्स्ट में भी इम्पल्स शॉपिंग नहीं करनी चाहिए। तो जब हमें महसूस हो रहा है इम्पल्स है, तो बोले कि चलो 2 घंटे बाद ही कर लेंगे, तो फिर हम लोग जजमेंट लेने के लिए बेहतर पोजीशन में होंगे कि ये सही में नीड है या वांट है, और फिर नीड है कि वांट है, फिर वो क्वेश्चन से पूछ सकते हैं कि आज इसको मैं नहीं खरीदता हूं या खरीदती हूं तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा, 2 हफ्ते बाद खरीदूंगा, तो फिर 2 हफ्ते कम से कम वो चीज टली, तो 2 हफ्ते तक तो कम से कम वो इमिशन इनडायरेक्टली बचे।
1: जैसे आपने भी थोड़ी देर पहले कहा था, वही वांट में ये भी आ जाता है कि आप अपने आसपास वाले जो लोग हैं उनके साथ कम्पीट करना चाह रहे हैं, उनके पास कोई चीज है तो आप भी वो ले लेते हैं, हालांकि आपको उसकी जरूरत नहीं है।

0: तो ये भी बहुत सारे पहलू हैं वॉन्ट के,
1: बिल्कुल
0: जिसमें शायद अगर हम थोड़ा सा कहें कि हार्श वर्ड है, लेकिन उसको लालच या ग्रीड भी कह सकते हैं,
1: बिल्कुल
0: तो उससे हमें बचना है।
1: बिल्कुल बिल्कुल ग्रीड का तो कोई एंड ही नहीं होता ना, देर इज इनफ रिसोर्सेज फॉर नीड बट नॉट फॉर ग्रीड, वो तो हमने सुना ही है। और उसका वो रेस का एक स्पाइरल है, वो कभी खत्म नहीं होगा, और उससे स्ट्रेस ही होना है। जो पहले मैंने एक बार शेयर किया एक्स से 3x और 5x की बात, वो वही चीज है। तो हमें देखना है कि हमारी जर्नी क्या है, क्योंकि हम लोग सबकी जर्नी अपनी अपनी है, और हमारे कैनवस पे जिस चीज की जहां जरूरत है उस पर अगर फोकस करेंगे तो बहुत लाइफ सिंप्लीफाइड रहेगी और बहुत ही हेल्दी लाइफ जी पाएंगे हम
0: हेल्थी लाइफ भी जी पाएंगे, और
1: लोग।
0: शायद ये भी है कि आपका जो फिजिकल स्पेस जब फ्री होता है तो आपका मेंटल स्पेस भी फ्री होता है, आपको कम चीजों का ध्यान रखना है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो ऐसे में हम अपनी हॉबीज का या अपने रिलेशनशिप्स को ज्यादा टाइम दे सकते हैं,
1: बिल्कुल
0: अपने जो पर्सनल इंटरेस्ट है उनको ज्यादा टाइम दे सकते हैं। आपका क्या अनुभव रहा है?
1: 100% मैम। तो अभी हम लोग क्या है कि कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज का जो लाइफस्टाइल है उसके तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, डेवलपमेंट इज ऑलवेज गुड। लेकिन उसी में डेटा भी बताता है कि वेस्टर्न कंट्रीज में ही बहुत ज्यादा लोनलीनेस है, वहां के बच्चों में बहुत ज्यादा एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है। तो हम लोग इतने स्मार्ट हैं कि वी नीड टू टेक बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड। तो हमारी जो अच्छी चीजें हैं उसको बनाकर वेस्ट की जो अच्छी चीजें हैं उसको इनग्रेन करनी है। तो बोलते हैं ना, मॉडर्निटी और सभ्यता को मिलाने की जरूरत है।
0: तो जो एक सादगी वाला जीवन शैली है, जिसे आप मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल कहते हैं, उसको लेकर अलग अलग धारणाएं हैं सबके बीच। सो आप हमें बताएं कि प्रमुख गलत फहमियां क्या हैं मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल को लेकर, और उनको दूर करना कितना इम्पोर्टेंट होता है जब आप युवाओं को कन्विंस करना चाहते हैं इस राह की ओर बढ़ने की तरफ।
1: तो जब भी हम लोग माइंडफुल और सस्टेनेबल लिविंग की बात करते हैं ना, तो आमतौर पर यह धारणा बनी है कि हमें बहुत रिस्ट्रिक्टिव लाइफ स्टाइल के लिए बोला जाएगा,
0: जी
1: बोला जाएगा ये मत करो वो मत करो, होता है ना साधु बन के हिमालय पे चले जाओ। तो उस कारण से क्या होता है कि लोग इस लाइफ स्टाइल को, इस जीवन शैली को ट्राई नहीं करने चाहते, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन महसूस होता है शुरुआत में। तो ये जो मिथ है उसको हम लोग ब्रेक करने की कोशिश करते हैं कि माइंडफुल होने के लिए डे वन पे छोटे छोटे एक्शन लेने की जरूरत है, और वो छोटे छोटे एक्शन किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं। जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया, इतनी सारी चीजें कंज्यूम कर रहे हैं, फूड, फैशन, ट्रेवल, टेक्नोलॉजी, किसी भी मायने में अगर आप अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा रेगुलेट करती हैं तो आपकी वेलबींग बढ़ेगी, वेलबींग बढ़ेगी तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो उससे आपका

0: कंज्यूम कर रहा है उसमें कहाँ वो किस चीज को रेगुलेट कर सकता है, और विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफस्टाइल, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग पीस, क्योंकि लाइफस्टाइल और पीस से कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो अगेन वो सस्टेनेबल नहीं होगा।
1: हमारे जो श्रोता हैं जो आपकी बात सुनकर इंस्पायर होंगे और वो तुरंत कुछ ऐसा करना, बदलाव लाना चाहें अपने जीवन शैली में जो सिर्फ त्वरित ना हो, लंबे समय तक उसका पर्यावरण को फायदा हो, तो कोई ऐसी कॉमन चीजें बता सकते हैं जो हरेक के लिए लागू है, कोई सरल 2-3 ऐसे उपाय, ऐसी बदलाव अपनी जिंदगी में जो वो ला सकते हैं?
0: जहां जहां अगेन पॉसिबल हो, तो अगर हम लोग कार यूज कर रहे हैं तो हफ्ते में अगर एक बार कार पूल कर ले, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर लेते हैं तब तो बहुत ही अच्छा है। महीने में मैं एक बार ट्रेवल कर रहा हूँ तो साल में 12 ट्रिप ले रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट एयर ट्रेवल, तो 12 एयर ट्रेवल करने से कम करके अगर एक भी कम करके मैंने ट्रेन ले लिया तो एयर ट्रेवल का बहुत ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट होता है।
1: यस,
0: वैसे ये टेक्नोलॉजी की बात करें तो आज हर इंसान, चाहे वो युवा हो चाहे वो बड़े लोग हो, दिन भर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टेक्नोलॉजी से हमारा मिलना होता ही है, चाहे वो काम के कॉन्टेक्स्ट में हो या वो लेजर एक्टिविटीज के कॉन्टेक्स्ट में हो। तो डेटा बताती है कि एक आम हिंदुस्तानी करीब 3 घंटे रोज सोशल मीडिया पे स्पेंड करता है। काम पे तो जो हम लोग करते हैं वो करते ही है, तो उस 3 घंटे को घटा के 2 घंटे भी किया जाए तो उसका भी बहुत बड़ा इमिशन है। तो अगर 1 घंटे भी कम किया जाए तो साल भर में 365 घंटे हमने स्ट्रीमिंग कम की तो उसका बहुत बड़ा इमिशन बचेगा। सिमिलरली जो वर्किंग लोग हैं, हमारे मेल्स में हम लोग बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है इन अनरीड मेल्स 2000 रहेंगे, 5000 रहेंगे, 10000 रहेंगे, 100 रहेंगे, तो वो अनरीड मेल क्या हुआ, कहीं ना कहीं वो किसी कंपनी के सर्वर में सेव है, तभी तो आपके लिए वो जब आप खोलती है वहां अनरीड दिखाता है। तो हर मेल का 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम इमिशन है, कितना बड़ा मेल है, उसमें अटैचमेंट है कि नहीं है। तो सिर्फ इनबॉक्स को अगर हम लोग क्लियर रखते हैं उससे बहुत सारे इमिशंस बच सकते हैं। तो जो भी पहलू है हमारी जिंदगी का, किसी भी चीज को काम करने में चूंकि एमिशन्स हो रहे हैं तो किसी भी चीज को में हम लोग थोड़ा माइंडफुलनेस लाते हैं तो एमिशन बचेंगे, चाहे वो फूड हो, फैशन हो, ट्रैवल हो, टेक्नोलॉजी हो।
1: कुछ और एग्जांपल्स भी आप बताना चाहेंगे?
0: तो जैसे IIT बॉम्बे के एक सर है सोलंकी सर, तो उनका बहुत सुंदर सा एक इनिशिएटिव है वाह का, रिंकल्स अच्छे हैं, तो उनका कहना है कि हफ्ते में एक दिन अगर हम लोग बिना आयरन किया हुआ कपड़ा पहने तो कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि आयरनिंग का एमिशन्स बहुत है, 150 ग्राम, 200 ग्राम एक कपड़े को आयरन करने में एमिशन होता है। एनर्जी हमने यूज की बिजली को, बिजली उत्पन्न करने में जो इमिशन हुआ,
1: हाँ,
0: तो कार्बन इमिशन वैसे कैलकुलेट हुआ कि हमने डायरेक्ट इसके लिए तो बिजली यूज की लेकिन ये बिजली को पहुंचाने में क्या इमिशन हुआ वो मेजर होता है। तो अगर एक कुर्ते में मैंने 100 ग्राम यूज किया एग्जांपल के लिए तो 52 हफ्ते में मैं सिर्फ 52 कपड़े कम करूंगा तो 5.5 किलो इमिशन हमने कम किए। तो जहां पे भी पॉसिबल हो, जितना पॉसिबल हो वो करने की जरूरत है, और वो जरूरत इसलिए कि कई बार हमें लगता है इस छोटे से एक्ट से बहुत ज्यादा कुछ बदलाव नहीं आएगा, लेकिन 150 करोड़ लोग हैं, 150 करोड़ लोग छोटा छोटा ही बदलाव लाएंगे तो कलेक्टिवली बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। और हर देश का चूंकि वर्ल्ड को कमिटमेंट है एमिशंस को लेके, तो उस कमिटमेंट में बहुत बड़ी भागीदारी हो सकती है वो।
1: एक तरह से आप कह रहे हैं कि हम सबके पास ये शक्ति है कि हम योगदान दें, जो हम अपने पर्यावरण को संरक्षित करना चाहते हैं, एमिशंस कम करना चाहते हैं। एक और पहलू जिस पर हम आपकी राय चाहेंगे कि पिछले कुछ समय में किस तरह के बदलाव आए हैं, किस तरह के नवाचार आए हैं जो आपको प्रमुख लगते हैं, जिनसे ये उम्मीद जगती है कि हम सही दिशा में प्रगति कर रहे हैं।
0: सबसे बड़ा एग्जांपल तो ये इंटरव्यू ही है कि इतने बड़े स्केल पे इतने सारे लोगों को आप बुला रहे हैं और इस पे चर्चा कर रहे हैं। देश की बात करें मिशन लाइफ के बारे में, ग्लोबल लेवल पे यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 17 गोल 2030 तक के लिए जो है, तो 17 में से 3 गोल, गोल नंबर 3, 12 एंड 13 सीधे सीधे जो हम लोग बातें कर रहे हैं उससे अलाइंड है। क्लाइमेट एक्शन, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, एंड गोल नंबर 3 इज गुड हेल्थ एंड वेलबींग। तो संयुक्त राष्ट्र मतलब पूरे विश्व ने भी इस चीज को समझा है कि वेलबींग और माइंडफुल लिविंग बहुत इम्पोर्टेंट है। कंपनीज में आजकल ESG के ऊपर बहुत फोकस है कि उनकी सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, उनके जो ऑपरेशन है वो इन्वायरमेंट से अलाइंड होने चाहिए। ई इन्वायरमेंट, एस सोशल एंड जी इज गवर्नेंस, तो इन तीनों ही मामले में उनको अलाइन होना चाहिए। तो उसपे बहुत सारा काम हो रहा है, हर कंपनीज पे फोकस कर रही है कि उनके एमिशंस को वो लोग कैसे कम कर सके। सेम चीज अगर कॉलेजेस की बात की जाए तो कॉलेजेस में भी आज बहुत सारी रैंकिंग में होता है ना, गवर्नमेंट रैंकिंग देती है कि आपका ए है, ए प्लस है, बी है, तो उस रैंकिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है कि आपके कैंपस में क्या सस्टेनेबिलिटी के इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। तो इंसान के लेवल पे, इंस्टीट्यूशन के लेवल पे बहुत सारे इनिशिएटिव्स पूरे देश में, पूरे विश्व में हो रहे हैं।
1: आशीष जी, जो भी युवा चाहें कि हम एक लॉन्ग लास्टिंग प्रभाव छोड़ें एनवायरनमेंट पर, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, अपनी जीवन शैली को साधारण करके खुद भी ज्यादा खुश हो, डीक्लटरिंग जैसा आप कह रहे हैं कि जब डीक्लटरिंग होती है तो फिजिकल स्पेस क्रिएट हो रही है, मेंटल स्पेस क्रिएट हो रही है, आप और चीजों के बारे में सोच सकते हैं, जो चीज जरूरी है उस पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, तो इस पूरी जर्नी में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आजकल के यूथ को कि किस तरह के वो एक दृष्टिकोण अपनाएं, माइंडसेट अपनाएं, या कौन से ऐसे प्रमुख बदलाव लाएं ताकि वो बहुत ही सक्रिय भागीदार बने इस पूरी यात्रा में, इस पूरे मुहिम में?
0: तो इम्पोर्टेंट बस वो है कि वी हैव टू डू आवर बिट, क्योंकि उस चीज को इनसिग्निफिकेंट हम लोग समझने की गलती नहीं कर सकते. या इस चीज को अगर मैं ऐसे प्रेजेंट करूं कि जब तक हर इंसान अपनी भागीदारी नहीं करेगा तब तक कोई भी पॉलिसी अपना जो डिजायर्ड इम्पैक्ट है वो नहीं ला पाएगी, क्योंकि पॉलिसी को धरातल में सक्सेस या अनसक्सेसफुल जनता करती है. इसलिए हमें हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन करने की जरूरत है. किस मायने में कर सकते हैं, तो जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया कि कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी अगर हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, जहां भी उस इंसान को, मुझे मेरा पर्पस अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है, किसी एक्स वाई जेड का अलग हो सकता है, अपनी अपनी जर्नी को मैं पॉज करें, रिफ्लेक्ट करें, और जहां लगता है कि हाँ ये चीज थोड़ी इम्प्रूव करने की जरूरत है, उस चीज को इम्प्रूव करें. जैसे मुझे मालूम है मुझे 2 किलो वजन कम करना है, तो मेरा फोकस वेट पे होगा, मेरा फोकस थोड़ा एक्सरसाइज करने पे होगा. किसी को लगता है कि वो बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है मोबाइल पे, तो उसका फोकस डिजिटल डिटॉक्स पे होगा. किसी को लगता है कि उसको बहुत इम्पल्सिव आदत है वो शॉपिंग करने की. तो अपने हर अलग अलग इंसान का अलग अलग फोकस हो सकता है और उसका जज वो खुद ही होगा. तो यहाँ पे कोई गाइडलाइन नहीं है कि आपको ये ही करने की जरूरत है. जो भी आपको सही लगता है वो कीजिए, लेकिन करना जरूरी है. जब तक वो नहीं करेंगे, तो हम लोग ने जो रिसर्च किया था उसमें यही पाया कि इन द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द चेंज, बीइंग द चेंज वाला कंपोनेंट कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है. तो हम लोग बदलाव चाहते हैं लेकिन होने में थोड़ा सा हिचकिचा जाते हैं. तो अभी भारत जिस स्टेज में है, हमें बदलाव होने की भी बहुत इम्पोर्टेंट जरूरत है.
1: सो आशीष जी, आप जो इस राह पर चले हैं माइंडफुल कंजम्पशन को बढ़ावा देने की राह पर, आप बता सकते हैं कि कौन सा ऐसा आपका अनुभव रहा जिसने आपको प्रेरित किया?
0: तो मैम, मैंने इरमा के बाद साबरमती गांधी आश्रम अहमदाबाद में पर्यावरण मित्र नाम की एक संस्था स्टैब्लिश की, जो कागज बिनने वाली बहनों के साथ काम करता है. तो इट इज अ कोऑपरेटिव ऑफ रैग पिकिंग सिस्टर्स. तो वो इनिशिएटिव अभी भी चल रहा है, 12 साल हो गए. लेकिन 2014 से 2020 की जर्नी में दो चीज बहुत सामने आई, बार बार आई, कि हमारे जो यूथ है, हमारे सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप के अर्बन यूथ प्रिविलेज्ड सेक्शन में जो है, वो बहुत ज्यादा समय कम्युनिटी को नहीं दे पा रहे. वो आते हैं एज एन इंटर्न, अपना 2-4 वीक रहते हैं, चले जाते हैं. तो वो एक सवाल था कि सब कुछ है जिंदगी में, फिर भी गिव बैक क्यों नहीं कर पा रहे. और दूसरा सवाल था, 2020 की बात है ये, कि 75 साल हो गए आजादी को, लेकिन हम लोग अभी तक वो भारत क्यों नहीं बना पाए जिसको कल्पना हम लोग करते हैं, डिजायर्ड इम्पैक्ट क्यों नहीं आ पाया. तो 2021 में 15 महीने की एक यात्रा की मैंने, प्रोजेक्ट मंथन, जहां 2500 घंटे हम लोगों ने इन्वेस्ट किए 95 ऑर्गेनाइजेशंस विजिट करने में, जहां 8 अलग अलग डोमेन के लोगों से हम लोग मिले, किसान से, हाउसवाइफ से, वर्किंग प्रोफेशनल से, आईएएस, आईपीएस, एमएलए, सोशल चेंज मेकर, सबसे ये समझने की कोशिश की कि ये जो इम्पैक्ट है उनके दृष्टिकोण में उनके काम का क्या रहा. तो उस पूरे 15 महीने की जो जर्नी थी उसका निचोड़ यही निकला, इन द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द चेंज वी समटाइम्स फॉरगेट टू बी द चेंज. तो माइंडफुल लिविंग, माइंडफुल कंजम्पशन, सादगी भरा जीवन है उसका एक सार बन के निकला, कि ये जो चीज है वो इस दोनों ही प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा. हम लोग सब लोग बी द चेंज भी हो पाएंगे और सादगी भरे जीवन से तनाव भी कम होगा. और इसीलिए फिर इस पूरे मूवमेंट को हम लोगों ने लॉन्च किया, और उस पर फिर ये थोड़ा सा समय लिया कि ये बातें अगर युवाओं तक पहुंचानी है तो उनकी भाषा में पहुंचानी होगी. तो वहां पे फिर डेटा बेस्ड अप्रोच हम लोगों ने लिया कि कैसे डेटा के माध्यम से, एक्सपीरियंशियल गेम्स के माध्यम से ये सारी बातों को सामने रखा जाए. तो यहां से शुरुआत की, और एक नंबर अपने आप को इंस्पायर करने के लिए हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन ये नंबर लिया कि 10 लाख लोगों तक ये बात 2030 तक पहुंचानी है. तो इसीलिए ब्रिज फॉर चेंज उस मूवमेंट को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जहां पे ये बातें हम लोग बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से, इनसे गेम्स के तरीके से युवाओं तक पहुंचा सके.
1: आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस गहन बातचीत के लिए, और हमें बताने के लिए कि सादा जीवन शैली सभी के लिए कितनी फायदेमंद है, हमारे पर्यावरण के संरक्षण के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, और हम सब उसमें अपना अपना योगदान करें. ये कितना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे आशीष अग्रवाल के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही थी सोनू सूद। आप इस कार्यक्रम को हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी।

आकाशवाणी दिल्ली से अभी हम रिले कर रहे थे प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम एंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:41 हुए हैं। लीजिए, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम युवा जगत।

0: नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव वर्मा आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं कार्यक्रम युवा जगत में। दोस्तों, भारत युवाओं का देश है। किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत उसके युवा होते हैं। उनकी ऊर्जा, प्रतिभा और संकल्प ही देश के भविष्य की दिशा तय करते हैं। ऐसे में रोजगार और आत्मनिर्भरता हर युवा का सपना होता है। सरकारी नौकरी हो, निजी क्षेत्र हो या स्वरोजगार, हर अवसर तक पहुंचने का आधार है सही तैयारी, सही मार्गदर्शन और निरंतर प्रयास। इसी सोच के साथ कार्यक्रम के क्रम अर्थ जगत में आज हम चर्चा करेंगे युवाओं को कहां और कैसे निवेश करना चाहिए, जानेंगे कि कम से कम संसाधनों में व्यवसाय कैसे शुरू करें। और पर उससे पहले दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की बात से, जिसका विषय है प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कैसे करें। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझे जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। महान कवि मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्तियां आज भी हर युवा के लिए उतनी ही प्रेरणादायक है। ये हमें याद दिलाती है कि जीवन में सफलता केवल सपने देखने से नहीं, बल्कि सही दिशा में निरंतर प्रयास करने से मिलती है। प्रतियोगी परीक्षाएं केवल ज्ञान की नहीं, बल्कि सही योजना, अनुशासन, धैर्य, निरंतरता और आत्मविश्वास की भी परीक्षा होती है। आज के प्रतिस्पर्धी दौर में सफलता उसी को मिलती है दोस्तों, जो अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखकर लगातार सीखता है, नियमित अभ्यास करता है और कठिन परिस्थितियों में भी अपने प्रयासों को नहीं छोड़ता। लेकिन यह भी सच है कि अनेक युवा बिना स्पष्ट योजना के तैयारी शुरू कर देते हैं। कभी वे बार बार अपनी किताबें बदलते हैं तो कभी दूसरों की रणनीति अपनाने लगते हैं। परिणाम स्वरूप मेहनत तो बहुत होती है, लेकिन उसका अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाता। इसलिए तैयारी शुरू करने से पहले सही दिशा और सुविचारित रणनीति तय करना बेहद आवश्यक है। सबसे पहला कदम है अपने लक्ष्य को स्पष्ट करना। सबसे पहले आप यह तय करें कि आप किस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो बैंक हो, रेलवे, एसएससी, पीएससी, व्यापम, राज्य लोक सेवा आयोग, यूजीसी नेट, शिक्षक भर्ती या किसी अन्य प्रकार की भर्ती परीक्षा हो। प्रत्येक परीक्षा का पाठ्यक्रम, परीक्षा पद्धति और प्रश्नों का स्तर अलग अलग होता है दोस्तों। इसलिए बिना लक्ष्य और सिलेबस को समझे तैयारी शुरू करना समय और ऊर्जा दोनों की बर्बादी हो सकता है। दोस्तों, बातें तो जारी रहेंगी, आइए सुनते हैं यह संदेश।
1: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
2: देश के युवाओं ने ठाना है भारत को आयुष्मान बनाना है। आज ही पात्र लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनवाकर उन्हें दे नए साल का उपहार। 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को मिला 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार का अधिकार। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और पात्र लाभार्थी अपना आयुष्मान कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें।

दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षा में सफलता पाने के लिए दूसरा महत्वपूर्ण कदम है पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न को अच्छी तरह समझना। परीक्षा का पूरा सिलेबस अपने पास रखें और पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को गंभीरता से अध्ययन करें। इससे यह समझने में आसानी होगी कि किन विषयों पर अधिक ध्यान देना है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और किस दिशा में अपनी तैयारी को मजबूत करना है। दोस्तों, इसके बाद समयबद्ध योजनाएं बनाएं, पूरे सिलेबस को छोटे छोटे भागों में बांटे और रोज अध्ययन करें, डेली प्रयास करें तथा मॉक टेस्ट के लिए भी

टाइम मैनेजमेंट करें। याद रखिए, रोज थोड़ा थोड़ा किया गया नियमित अध्ययन एक साथ कई घंटे पढ़ने से अधिक प्रभावी हो सकता है। तैयारी के दौरान एक बात हमेशा ध्यान रखें, कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। यदि आप रोज केवल कुछ घंटे भी पूरी ईमानदारी और एकाग्रता के साथ पढ़ते हैं, तो समय के साथ वही छोटे-छोटे प्रयास बड़ी उपलब्धियों में बदल जाते हैं। कई विद्यार्थी शुरुआत तो बहुत उत्साह से करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उनका उत्साह कम हो जाता है। जबकि सफल अभ्यर्थी वही होते हैं जो परिस्थितियां कैसी भी हों अपने अध्ययन की निरंतरता बनाए रखते हैं। साथ ही कभी भी अपने स्कूल या कॉलेज के अंकों को अपनी क्षमता का अंतिम पैमाना मत मानिए। हो सकता है किसी कारणवश आपके 10वीं, 12वीं या ग्रेजुएशन में अपेक्षा से कम नंबर आए हों, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप प्रतियोगी परीक्षा में सफल नहीं हो सकते। यदि आपका लक्ष्य स्पष्ट है और आपका अनुशासन मजबूत, तो सफलता अवश्य मिल सकती है। प्रतियोगी परीक्षाएं आपके वर्तमान ज्ञान, तैयारी और प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है, न कि केवल आपके पुराने अंकों का। इसका एक प्रेरणादायक उदाहरण है आईपीएस अधिकारी मनोज कुमार शर्मा, जिनके ऊपर 12th फेल आपने मूवी जरूर सुनी होगी आधारित है। आर्थिक कठिनाइयों और शुरुआती शैक्षणिक संघर्षों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। लगातार मेहनत और संकल्प के बल पर उन्होंने यूपीएससी की कठिन परीक्षा उत्तीर्ण की और आईपीएस अधिकारी बने। उनका जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि इरादे मजबूत हों और प्रयास लगातार किए जाएं, तो मंजिल अवश्य मिलती है। इसी प्रकार सही अध्ययन सामग्री का चयन, समसामयिक घटनाओं की जानकारी, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान तथा सकारात्मक सोच, ये सभी सफलता की मजबूत नींव हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता किसी एक दिन की मेहनत का परिणाम नहीं होती, बल्कि हर दिन की एक छोटे-छोटे अनुशासित प्रयासों का प्रतिफल होता है। युवा साथियों, याद रखिए, प्रतिभा आपको शुरुआत दिला सकती है, लेकिन मंजिल तक निरंतर मेहनत, अनुशासन और धैर्य ही पहुंचाते हैं। इसलिए अपने लक्ष्य पर विश्वास रखिए, स्वयं पर भरोसा रखिए और हर दिन पहले से बेहतर बनने का प्रयास कीजिए। हो सकता है सफलता आज न मिले, कल भी न मिले, लेकिन यदि आपके प्रयास सच्चे और लगातार हैं, तो एक दिन सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी। और दोस्तों, जब बात करियर, रोजगार और आर्थिक भविष्य की हो, और वित्तीय जागरूकता भी उतनी ही आवश्यक हो जाती है। इसलिए अब बढ़ते हैं आज के क्रम अर्थ जगत की ओर, जहां हमारे साथ है आयकर विशेषज्ञ मोहित विधानी जी। उनसे जानेंगे आयकर से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को और समझेंगे कि हर नागरिक के लिए टैक्स संबंधित जानकारी क्यों आवश्यक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उनसे बातचीत की।

0: युवा जगत के क्रम अर्थ जगत में आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मोहित विधानी जी जुड़ गए हैं। आइए उनसे कुछ बात करते हैं। मोहित भाई, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम युवा जगत में।
1: थैंक यू
0: मोहित भाई। सबसे पहले आप अपना परिचय हमारे श्रोताओं के साथ साझा करिए, साथ में हमारे श्रोताओं को अपने कार्य क्षेत्र के विषय में भी बताइए।
1: नमस्कार, मेरा नाम मोहित धानी है और मैं अभी सीए फाइनल की तैयारी कर रहा हूँ। साथ साथ मेरा ऑफिस भी है जिसमें हम लोग सीए से रिलेटेड सारे काम करते हैं, जैसे अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, जीएसटी और अन्य रजिस्ट्रेशन के काम।
0: हमारे बहुत सारे श्रोताओं को तो इनकम टैक्स के विषय में ढेरों जानकारियां हैं, लेकिन आज भी हमारे बहुत सारे श्रोताओं को इसके विषय में कोई भी जानकारी नहीं है। तो आप हमारे ऐसे श्रोताओं के लिए सरल भाषा में बताइए कि इनकम टैक्स आखिर क्या है, इसे कौन देता है और इसका आखिर देश की अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ता है।
1: सबसे पहले मैं टैक्स की बात करूं तो हमारे यहाँ दो प्रकार के टैक्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसका लोड या बर्डन हम पेयर पे पड़ता है, और इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसका बर्डन हम शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे जीएसटी। जीएसटी में टैक्स फाइनल कंज्यूमर देता है, लेकिन इनकम टैक्स एक पर्सनल टैक्स होता है और उसकी लाइबिलिटी जिसके ऊपर होती है उसी को पटानी पड़ती है। इनकम टैक्स का महत्व अगर आप अर्थव्यवस्था में बोलेंगे तो जो हमारी सरकार है

0: जो भी देश में हमारा वेलफेयर का काम होता है, जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, रोड्स हो गए, जितने भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वो इनकम टैक्स के पैसों से ही सरकार कर पाती है।
1: जब हम इनकम टैक्स की बात करते हैं तो हमें एक टर्म बहुत सुनने को मिलता है, ITR। तो ITR क्या होता है? इसे भरना अनिवार्य होता है, और अगर कोई समय पर ITR नहीं भरता तो उससे क्या नुकसान हो सकते हैं इसके विषय पे?
0: ITR जो इनकम टैक्स रिटर्न होता है, वो हमारे साल भर का इनकम का ब्यौरा होता है कि अब साल भर में हमने जितनी इनकम कमाई है वो इनकम आपको इसमें दिखानी है। बहुत सारे लोगों को ये अनिवार्य भी होता है और बहुत सारे अपने वॉलेंट्री भी भर सकते हैं। जैसे अभी हम लोगों की एग्जम्पशन लिमिट है 4 लाख, तो अगर आपकी इनकम 4 लाख से कम है तो आप रिटर्न नहीं भी फाइल करते हैं तो चलता है, लेकिन अगर 4 लाख से ऊपर है तो आपको रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे केसेस रहते हैं, जैसे अगर आपका फॉरेन ट्रेवल 2 लाख से ऊपर है साल का, तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। और बहुत सारे ऐसे केसेस रहते हैं, जैसे कि आपके कोई फॉरेन एसेट्स हैं, आपका इन्वेस्टमेंट है फॉरेन एसेट्स में, या अगर आप वीज़ा वगैरह के लिए कहीं अप्लाई करना चाहते हैं तो ITR फाइल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा अगर आपको बैंक में लोन लेने की आवश्यकता है या लोन लेने की रिक्वायरमेंट है, तो ITR फाइल करना ज़रूरी है।
1: ऐसे युवा जिन्होंने हाल ही में नौकरी जी ज्वाइन किया हो, या जिनकी नौकरी नई नई हो, या जो फ्रीलांसिंग करते हो, या फिर ऐसे युवा जो छोटे छोटे व्यवसाय करते हो, उनको इनकम टैक्स या ITR से जुड़ी किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए?
0: जो युवाएं खासकर जो पहली नौकरी कर रहे हैं, उनका कुछ हिस्सा TDS में कटता है। TDS मतलब कि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। मतलब क्या होता है कि हमारे बिहाफ में जो आपके एम्प्लॉई हैं वो गवर्नमेंट को टैक्स जमा कर देंगे। तो अगर आपको TDS की खबर नहीं है, क्योंकि आपकी सैलरी का ही पार्ट है और वो कट के जमा होता है, आपको अगर TDS की खबर नहीं है, आप ITR नहीं फाइल करते हैं, तो वो पैसा भी आप क्लेम नहीं कर सकते हैं और वो सरकार के पास जमा ही रह जाएगा। इसके अलावा जो छोटे बिजनेसमैन हैं या जो फ्रीलांसर्स हैं, इनको मतलब नॉलेज नहीं होती है, या ये लगता है कि भाई हाँ हम स्टार्टिंग में अभी कम कमा रहे हैं तो हम रिपोर्ट नहीं भी करेंगे तो चलेगा, तो उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि आप एक बार ज़रूर प्रोफेशनल से कंसल्ट करें, उनके टच में रहें, उनको ये चीज़ें बताएं। अगर ज़रूरी होगा तो वो अपने टैक्स प्लानिंग उस हिसाब से करेंगे और रिपोर्ट करेंगे, नहीं होगा तो हम नहीं रिपोर्ट करेंगे।
1: मोहित, बिजनेस एडवाइजर और CA के स्टूडेंट होने के नाते आप हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि इनकम टैक्स बचाने के वैध तरीके कौन कौन से हैं, साथ में न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम के बारे में भी हमारे श्रोताओं को जानकारी दे दीजिए।
0: मैं बताना चाहूंगा आपको न्यू टैक्स और ओल्ड टैक्स रिजीम के बारे में। तो ये टैक्स सिस्टम है दोनों। ओल्ड टैक्स हमारा पुराना जो सिस्टम था वो है, और न्यू टैक्स रिजीम अभी सरकार हाल ही में 2-3 साल से इंट्रोड्यूस किया है। न्यू टैक्स रिजीम में आपको ज़्यादा छूट मिलती है, मतलब टैक्स कम आता है हायर इनकम वालों के लिए भी, लेकिन ओल्ड टैक्स में आपका टैक्स ज़्यादा आता है। लेकिन अगर आपके कुछ डिडक्शंस हैं, आपने इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं, जैसे आपने लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस किया है, आप अपने बच्चों की स्कूल की फीस भरते हैं, या आप अपने पेरेंट्स का इंश्योरेंस करा के रखे हैं, अगर आपको इन सब डिडक्शंस का लाभ उठाना है तो आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाइए। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे डिडक्शन वगैरह के कैलकुलेशन में नहीं पढ़ना है, मुझे सीधा सीधा अपना रिटर्न फाइल करना है और मेरी इनकम उतनी है भी नहीं, या हमारा कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो न्यू टैक्स रिजीम आपके लिए बहुत बेहतर है।
1: मोहित भाई, हमारे श्रोताओं को बताइए कि टैक्स इनकम टैक्स से जुड़ी हुई आम भ्रांतियां या अफवाहें कौन कौन सी हैं? साथ में हमारे श्रोताओं के लिए आपका क्या संदेश है और क्या सलाह होगी इन भ्रांतियों से बचने के लिए?
0: जो ITR से सबसे बड़ा जुड़ा हुआ भ्रम यह है कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि अगर हम ITR फाइल करेंगे तो हमको टैक्स देना ही पड़ेगा, जबकि ऐसा नहीं है। टैक्स ब्रैकेट के आप अगर अंदर आते हैं या एग्जेम्पशन लिमिट के आप अंदर आते हैं तो आपको बिल्कुल टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो गलतियां करते हैं लोग, जो मैंने देखा है कि जिसकी इनकम रेंज कम है, इनकम लेवल कम है, स्टार्टिंग में सबका इनकम मतलब नॉर्मल रहता है, तो उन लोग बोलते हैं कि हमको ITR फाइल करने की या रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर इनकम अर्निंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है तो ITR शुरू से ही फाइल करना चाहिए, ताकि आप सही से रिपोर्ट दे पाएँ। क्योंकि कल को अगर कुछ नोटिस आता है या कल को कुछ स्क्रूटनी होती है तो आपको पेनल्टी देने के भी चांसेस बढ़ सकते हैं उसमें।
1: यदि कोई युवा अपना स्टार्टअप या छोटा बिजनेस शुरू करना चाहता है तो वो वित्तीय योजना कैसे बना सकता है?
0: अगर मैं छोटे व्यवसाय की बात करूं तो बिजनेस में दो तरीके के खर्चे होते हैं। एक हमारा फिक्स खर्चा होता है जो कि लागू रहता है, चाहे आप बिजनेस आपका मतलब चाहे आपका उस दिन व्यवसाय चल रहा हो या नहीं चल रहा हो, लेकिन फिर भी वो फिक्स्ड खर्चा लागू रहते हैं। जैसे हमारा रेंट है, सैलरी है स्टाफ की, बिजली बिल है, ये सारी चीज़ें। और दूसरी खर्चा जो हमारा रहता है वो वेरिएबल खर्चा रहता है, वो जो हमारे सेल्स पे निर्भर।

0: करते हैं, तो छोटे व्यवसायों को अपना फिक्स्ड खर्चा कम करने का कोशिश करना चाहिए। जैसे कि अगर आपको रेंट पे जगह लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप नहीं लीजिए, या प्राइम लोकेशन पे रेंट पे मत लीजिए, शुरू में छोटा शुरुआत कीजिए, जहाँ पे आपको रेंट कर कम लगे, जहाँ पे आपका खर्चा बचे। शुरू में फिक्स्ड खर्चे बचाने पे ध्यान देना चाहिए, फिर जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़े वैसे वैसे आप अपने वैसे अपनी ज़रूरतों के हिसाब से आप खर्चे कर सकते हैं। प्लस शुरू में मैं एक सजेशन और देना चाहूँगा कि शुरू से थोड़ा थोड़ा सेव करते चलें। शुरू से ही आपकी जो भी सेल्स हो रही है उसमें थोड़ा थोड़ा पार्ट आप इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स के लिए साइड करें, ताकि एक अच्छा अमाउंट जमा करके आपको बिजनेस एक्सपेंड करने में हेल्प मिले उससे।
1: मोहित भाई, आजकल लोग बिजनेस, फ्रीलांसिंग या नौकरी के जरिए अर्निंग कर रहे हैं, और वो कन्फ्यूज़ भी हैं कि वो पैसों का क्या करें, कहाँ उन्हें इन्वेस्टमेंट करें, कहाँ निवेश करें। तो आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हमारे श्रोताओं को बताइए कि अगर कोई व्यक्ति पहली बार निवेश कर रहा है तो उसे क्या करना चाहिए, कहाँ निवेश करना चाहिए, और निवेश करते वक्त किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए।
0: इन्वेस्टमेंट के मैं अगर फील्ड में बात करूँ तो हम लोग के यहाँ पर एक चीज़ बोलते हैं कि जितना जल्दी उतना बेहतर। तो हमको जो हमारे युवाओं हैं, जो हमारे 18-19 साल के हमारे छोटे दोस्त हैं, उनको मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि आप भले ही छोटा ही शुरू कीजिए, बट उसको कंसिस्टेंट रखिए। कोशिश करके आप हर महीने इन्वेस्ट करें, आप म्यूचुअल फंड्स में डालिए थोड़ा थोड़ा। अगर आपको शेयर में लगता है रिस्क है तो म्यूचुअल फंड्स बहुत सेफ़ है। म्यूचुअल फंड्स में आप हर महीने कुछ 1,000-2,000 जितना आप कंफर्टेबल हैं उतना डाल सकते हैं। कोशिश हमको ये करने की, हमको कंसिस्टेंसी पे ध्यान देना है, किसी भी महीने आपका इन्वेस्टमेंट छूटे ना। कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, बट इन्वेस्टमेंट एक हैबिट है, हैबिट डेवलप करेंगे तो आगे चल के उसका बेनिफिट आपको ही मिलेगा।
1: मोहित भाई, बिजनेस कंसल्टेंट की भूमिका क्या होती है? कोई यूथ अगर इस फील्ड पे अपना करियर बनाना चाह रहा हो तो उसे आप क्या सलाह देंगे, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए?
0: बिजनेस कंसल्टेंट बेसिकली जो होते हैं वो आपके बिजनेस का इनसाइड आउट, मतलब कि हर चीज़ें, मतलब जैसे एक किसान होता है वो बीज से लेके पेड़ तक उसका ध्यान रखता है, वैसे ही एक बिजनेस कंसल्टेंट होता है, वो आपके आइडिया से लेके आपके पूरे बिजनेस स्टार्ट होने तक, इनफैक्ट स्टार्ट होने के बाद भी आपको हेल्प करते हैं। वो सिस्टम सेट करते हैं, वो आपको सारी चीज़ें बताते हैं कि क्या कितनी कॉस्ट इफिशेंट पड़ सकती हैं चीज़ें, क्या चीज़ हमको बेनिफिट करेगी, मार्केटिंग कैसे करनी है, सेल्स कैसे करनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके अलावा अगर कोई इस पे अपना करियर बनाना चाहता है तो जैसे 10th के बाद आप कॉमर्स फील्ड में घुस के, और 10+2 के बाद बहुत सारी फील्ड्स हैं जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी, CA, CS, CMA। इसके अलावा आप MBA में भी जा सकते हैं और अच्छी जगह से पढ़ाई करके, इसके बारे में पढ़ाई करके अपना करियर फिर सेट कर सकते हैं इसमें। अगर मैं CA की बात करूं पर्टिकुलरली, तो आज की डेट में भी बहुत स्कोप है, क्योंकि आप मानेंगे नहीं वैभव, हमारे भारत में 6 लाख से भी कम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं एट प्रेजेंट। और अगर मैं इसकी तैयारी की बात करूं तो आप 10th के बाद इसमें अपने आपको रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की बहुत नॉमिनल सी फीस होती है, आप रजिस्ट्रेशन करा के बुक्स आती हैं। इसके अलावा क्लासेस भी सारी ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑफलाइन भी आजकल बहुत सारे शहरों में CA जैसे जैसे कॉमन और पॉपुलर होते जा रहे हैं तो बहुत सारे कोचिंग्स हमारे शहर में भी खुलते जा रही हैं, तो आप वहाँ फेस टू फेस भी जाके पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं पढ़ाई की बात करूँ तो थोड़ा सा टफ होता है CA, क्योंकि पासिंग परसेंटेज कम होता है, लेकिन हाँ, आप निरंतर मेहनत करेंगे तो इसमें सफलता अवश्य मिलेगी आपको।
1: जी धन्यवाद। अंत में हमारे युवा साथियों के लिए आपका क्या संदेश है?
0: जैसे कि आजकल इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स को लेके बातें हो रही है, तो उसको लेके डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, खासकर कि सेविंग्स को लेके। अगर आप अर्निंग है, अगर आप नॉन अर्निंग भी है, जैसे आपको पॉकेट मनी मिलती है, तो पहले आप सेव करें उसके बाद बचा हुआ खर्चा करें। जनरली हम लोग उल्टा करते हैं कि पहले हम खर्च कर लेते हैं और फिर सेविंग्स के लिए कुछ बचता ही नहीं है। तो मेरी एक पर्सनल सलाह, छोटी सी सलाह यही रहेगी कि आप जितना भी कमाते हैं सबसे पहले आप बचाएं, चाहे 10% ही सही, फिर बाकी खर्चा करें।
1: आपने अपना कीमती समय हमारे कार्यक्रम के लिए निकाला, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मोहित भाई।
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका वैभव।

दोस्तों, अभी हम सुन रहे थे मोहित विधानी और की बातचीत हमारे साथ। मुझे उम्मीद है कि आपको इस चर्चा में मजा आया होगा और आपको काफी नई चीजें जानने को मिली होंगी। दोस्तों, बातों का सिलसिला तो जारी रहेगा, आइए लेते हैं इस शानदार से गीत का आनंद।

अभी हम सुन रहे हैं छिछोरे फिल्म के खैरियत पूछो गीत को, जिसे गाया है अरिजीत सिंह ने, जिसे लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने, जिसमें संगीत दिया है प्रीतम ने। दोस्तों अब समय है आपसे विदा लेने का, मुझे यानी वैभव वर्मा को दीजिए इजाजत। और हाँ दोस्तों, सुनना न भूले सप्ताह के प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को शाम 5:35 पे कार्यक्रम युवा जगत। धन्यवाद।

कार्यक्रम युवा जगत का प्रसारण अभी किया जा रहा था। शाम के 6:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

पहले आपको जानकारी दे दें आज की सभा के शेष कार्यक्रमों की। कार्यक्रम ग्राम सभा शाम 7:20 पर हम प्रसारित करेंगे। कार्यक्रम में आज चर्चा करेंगे ग्राम सभा में पौधा लगाए के चर्चा करब, पेड़ ला बचावा, और साथ ही फोन इन कार्यक्रम में सुनिएगा जैव उर्वरकों का खरीफ फसलों में उपयोग एवं महत्व। इस विषय पर विशेषज्ञ श्री जयंत साहू, विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर से ली गई जानकारी। रात 8 बजे कार्यक्रम सुगम संगीत में सुनिएगा अनुराग शर्मा के गायक गैर फिल्मी गीत, और इस कार्यक्रम के बाद समय होगा कार्यक्रम रजनीगंधा का। विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से श्रोता जुड़ेंगे रात 9:15 से रात 11 बजे तक। और अब आपको जानकारी दे दे कल की सभा के कार्यक्रमों की।

0: आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से हम रिले करेंगे कल सुबह 8:30 पर समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह और कार्यक्रम बातों बातों में सुबह 9 हम रिले करेंगे। प्रातः 6:30 पर कार्यक्रम खेती की बात का प्रसारण किया जाएगा। जानकारी का विषय होगा जैविक खेती और बायो फर्टिलाइजर की भूमिका। वाचन स्वर चित्र लेखा तिवारी का होगा। कार्यक्रम अमराई हम लेकर आएंगे सुबह 10। इसमें सुनिएगा छत्तीसगढ़ी लोकगीत कलाकार होंगे गोरेलाल बर्मन साथी एवं केदार यादव सुनीता थवाइत बसंत सोनी और साथी। विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले होंगे सुबह 9:15 पर दिन के 11:00, दोपहर 12:00 से शाम 5 तक और रात 9:15 से रात 11:00 तक। शाम 5 प्रसारित होगा सीएफ अनुभाग सरगुजा द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। शाम 7:20 पर कार्यक्रम ग्राम सभा में राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य इस विषय पर हम चर्चा करेंगे और शाम 7:30 का समय होगा श्रोताओं कार्यक्रम किसान वाणी का। कार्यक्रम में भेंट वार्ता में सुनेंगे श्रोता राष्ट्रीय मिशन अंतर्गत प्राकृतिक खेती जैविक खेती मिशन और परंपरागत कृषि विकास योजना पर श्री विनोद साहू ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी उपसंचालक कृषि कार्यालय बिलासपुर से ली गई जानकारी। रात 8 कार्यक्रम सुगम संगीत हम लेकर आएंगे और कार्यक्रम रजनीगंधा का समय होगा रात्रि 8:15 का। समाचारों का अनुप्रसारण प्रतिदिन की तरह उनके निर्धारित समय पर किया जाएगा और अब से थोड़ी ही देर में यानी शाम 6:20 पर श्रोता सुनेंगे ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण यहीं समाप्त हुआ। FM एंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:10 होने को हैं थोड़ी ही देर में छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से।
1: अब आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग रामेश्वरी बघेल के जय जोहार। पहले सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। रेलवे हा छत्तीसगढ़ में 250 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के उपराहा प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाए बर 175 करोड़ रुपया करिस मंजूर। प्रदेश सरकार हा एसओ खरीफ सीजन बर 48,69,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बोनी के लक्ष्य रखे है। अब तक 3,62,000 क्विंटल बीज बांटे गीस। और दक्षिण अफ्रीका में आयोजित एशिया पैसिफिक अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में दुर्ग जिला के जयदीप साहू हजीतीस दूसरा स्वर्ण पदक। अब समाचार विस्तार ले।

रेलवे ह रायपुर म 250 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के उपराहा रख रखाव केन्द्र बनाए बर 175 करोड़ रूपया मंजूर करे हे। रेल मंत्रालय के अनुसार ये परियोजना भारतीय रेल के विद्युत इंजन बेड़े के तेजी ले होवत विस्तार और जम्मो नेटवर्क में माल ढुलाई और यात्री परिचालन की बढ़ोतरी लचेत में राखत बुनियादी ढांचा ला बेहतर बनाए के प्रयास के हिस्सा आए। उपराहा प्राथमिक केंद्र ले रेलवे ह मौजूदा बुनियादी ढांचा के बेहतर इस्तेमाल कर पाही। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी हकीन है कि सरकार ह E85 ईंधन लाने की योजना बनावत है जौन मानक E20 पेट्रोल ले करीबन 20 रुपया सस्ता होही। E85 सिर्फ ओ गाड़ी मन पर उपलब्ध होही जौन विशेष रूप ले ईंधन के उपयोग पर डिजाइन करे गए है। उमन यहू कही कि इथेनॉल मिले पेट्रोल ले इंजन ला नुकसान और गाड़ी ऊपर उल्टा प्रभाव पड़े के आशंका लघलो खारिज करीन। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल हा जगदलपुर के डिमरापाल के कॉन्टिनेंटल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में बस्तर संभाग के पहली और छत्तीसगढ़ के दूसरैया अत्याधुनिक कैथ लैब के लोकार्पण करीन। ये सुविधा के शुरू होय ले हृदय रोगी मल्ला एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी और आने आधुनिक इलाज अब स्थानीय स्तर में होही। ये दौरान स्वास्थ्य मंत्री है किहीन कि अब मरीज मल्ला इलाज बर बड़े शहर ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ी संगे संग उमल्ला बेरामा इलाज घलो मिल सकी। प्रदेश में ई रिक्शा सहायता योजना के तहत मिलैया अनुदान राशि ला 50,000 ले बढ़ा के 1,00,000 रुपया करे जाही। श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन की अध्यक्षता में काली मंत्रालय में हुए छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के पहली बैठक में ये निर्णय लेगी। बैठक में गिग वर्कर्स चरवाहा और असंगठित कर्मचारी मन के मेधावी लयिका मन पर नवा कल्याणकारी योजना तैयार करे ऊपर घलो सहमति बनी। श्रम मंत्री पंजीकृत श्रमिक मन के EKYC और आधार पंजीयन कराए के संग पात्र हितग्राही मन तक योजना के लाभ पहुंचाए के निर्देश दें हैं। प्रदेश में ये बेरा खेती किसानी के काम ह जोर धर ले है। अब तक 20,14,000 हेक्टेयर ले ज्यादा क्षेत्र में धान मक्का कोदो कुटकी राहेर मूंग के संगे संग आने फसल की बोनी करे जा चुके है जौन लक्ष्य के 41% आए। बता दें कि ऐसो खरीफ सीजन में राज्य सरकार ह 48,69,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बोनी के लक्ष्य रखे है। एति कृषि विभाग के अधिकारी मन बताइन कि ऐसो खरीफ फसल पर प्रदेश में 4,95,000 कुंटल प्रमाणित बीज बांटे के लक्ष्य रखे गए है। उन्हें अब तक 3,62,000 कुंटल बीज किसान मल्ला बांटेगी से। प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत कबीरधाम जिला के बोड़ला इलाका में बनैया सड़क के राज्य स्तरीय जांच करेगी। एक हर बाद निर्माण कार्य की निगरानी और गुणवत्ता में लापरवाही पा जाए में सहायक और उप सहायक अभियंता ला निलंबित करे के निर्देश देगी। संगे संग क्षतिग्रस्त सड़क के हिस्सा ला दोबारा बनाए और ठेकेदार ला ब्लैक लिस्ट करे बर घलो कहेगी से। सुनैया मल्ला बता दान कि प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषय ऊपर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में ये दारी छत्तीसगढ़ के महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ले गए भेंटवार्ता के प्रसारण करे जाही। एकर प्रसारण काली 11 जुलाई के आकाशवाणी केंद्र रायपुर डहर ले FM और प्राइमरी चैनल में बिहनिया 9 बजे करे जाही। इला छत्तीसगढ़ के जम्मो आकाशवाणी केंद्र एके संग्रह रिले करही। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुना था।

0: और स्वरोजगार के प्रेरक जानकारी मिलिस हे। अब थोर कुन समाचार सारमा। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग डहर ले सूबेदार उपनिरीक्षक संवर्ग और प्लाटून कमांडर के भर्ती बर प्रारंभिक परीक्षा 12 जुलाई के 22 केंद्र में आयोजित करे जाही। परीक्षा बिहनिया 10 बजे ले मझनिया 12 बजे तक चलही। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में चालू शैक्षणिक सत्र में कृषि अभियांत्रिकी और खाद्य प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम के पहली बछर में प्रवेश बर ऑनलाइन काउंसिलिंग की प्रक्रिया आज ले शुरू होगी से। इच्छुक अभ्यर्थी मन 20 जुलाई तक पंजीयन कर सकत हैं। कोंडागांव में पुलिस 43 शिक्षक मन ले कुल 12 करोड़ रुपया के ठगी के मामला में 5 जन आरोपी मन लगी गिरफ्तार करे है। सरगुजा जिला के सीतापुर थाना इलाका में सोनतराई गांव के देवगढ़ मोड़ के तीर एक ठन गाड़ी में आगे लगी। हादसा में गाड़ी चलैया संग 3 जन गंभीर रूप ले झुलस गिन। दुर्ग जिला के भिलाई स्टील प्लांट ले लोहा स्क्रैप चोरी के मामला में प्लांट के SMS-3 के GM और इंजीनियरिंग एसोसिएट ला गिरफ्तार करेगी। ये मामला में अब तक 15 आरोपी पकड़े गिन हैं। और बारनवा पारा अभ्यारण्य में 3 ठन चीतल के मौत होगी। वन विभाग के अनुसार एमाले 2 ठन नर चीतल के मौत आपस में लड़े ले होइस, वे 1 ठन चीतल के शिकार होए के आशंका बताएगी। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फिर। रेलवे है छत्तीसगढ़ में 250 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के उपराहा प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाए बर 175 करोड़ रुपया करीस मंजूर। प्रदेश सरकार है एसो खरीफ सीजन बर 48,69,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बोनी के लक्ष्य रखे है। अब तक 3,62,000 कुंटल बीज बांटेगी। और दक्षिण अफ्रीका में आयोजित एशिया पैसिफिक अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में दुर्ग जिला के जयदीप साहू जीतीस दूसरैया स्वर्ण पदक।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता हाश।
2: छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार अभी हम अनुप्रसारित कर रहे थे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। FM एंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:20 हुए हैं श्रोताओं, और अब लीजिए सुनिए ईमेल से आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। ईमेल करें गीत सुनें।

स्वागत है आप सभी श्रोता साथियों का फरमाइशी कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने में। आज है आपके साथ आपकी अपनी रेडियो साथी खुशबू। कार्यक्रम की शुरुआत आइए करते हैं आप सभी की फरमाइश पर आया सावन झूम के इस फिल्म के गीत के साथ। और स्वर इस गीत में है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी का, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीत। पसंद आई है नरगोड़ा से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मण देवी, जोगेशपुरी, ट्विंकल डिंपल मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी की। छत्रपति संभाजी नगर से हैं श्रोता राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश और शीतल राजेश। मोहाली चंडीगढ़ से टी डी मल्होत्रा, ऋतिक प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और अमनदीप का मेल हम तक पहुंचा है। वीरमगाम राजकोट से रुचि गुप्ता, ट्विंकल और उमा गुप्ता। बिलाईगढ़ से हैं श्रोता खीकराम देवांगन, रेणु रजनी, प्रियंका देवांगन। डोंगरगांव से पसंद आई है राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका निष्कर्तन मै गजभिये की। मजनू कटिल्ला से हैं श्रोता कमल बालूजा, मधु सागर बालूजा। और इसी गीत को पसंद किया है सोंगा मगर लोट से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित देवी करानी, गजेंद्र कुमार, हियांश कुमार चंदन ने। पौड़ी भाटा कलतरा से हैं आप दिलीप चंदन, चोराम यदु, निखिल, वसुंधरा और प्रांजल चंदन। मदनपुर से पसंद आई है श्रवण कुमार साहू, योगेश राहुल साहू की। कुम्भार गली कोलगांव से पांडुचंदन, उषा प्रतीक्षा चंदन। जोधपुर राजस्थान से फरमाइश करता रमेश।

आया सावन झूम के इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाज़ें थी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की। और अब आपको सुनवाते हैं सबक फिल्म का ये गीत। स्वर है मुकेश का, गीतकार सावन कुमार, संगीत उषा खन्ना का। पसंद आई है तेलंगाना भवनगीर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन और मोहम्मद यूसुफुद्दीन की। रघुनाथपुरा श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना हर्षित और खुशी गोस्वामी की पसंद। पटियाला से हैं मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता। जगराव से सुनील पाठक, कमल साथ में दीपिका मल्होत्रा, गव्या सुच्चा सिंह पाठक। और ये श्रोता मुजफ्फरपुर बिहार से हैं आर्यन राज, पीयूष कुमार, रोहित राज। गाँव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। मेरठ कैंट से पसंद आई है दिग्दर्शन, कविता, कर्ण, शक्ति, रिया, जया और दर्शन भाई की। और इसी गीत को हमारे इन श्रोताओं ने पसंद किया है। ये श्रोता है रायगढ़ से नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र जो यामिनी उमा तिवारी। भाटापारा से पसंद बचकमल, मोतीलाल यादव, सियाराम, चोराम वर्मा, सूरज बारीकर, नारायण यदु और भुवन कामरी की। रसेड़ा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश, संध्या कीर्ति, डिकेश, वासु डॉली और साथ में हैं पूर्वेश साहू। और आप हैं नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नहवाकर, निर्मला विशाल नहवाकर। गांव हीरावली फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला, इंदु, पार्वती और हिमांशु गोदारा ने भी इस गीत को पसंद किया। रायपुर से नीलू मेघ, वंदना कुमार, बिट्टू कुमार का मेल हम तक पहुंचा है। वार्ड नंबर 1 पोफाली जिला यवतमाल से जयराम सिंगड़कर, दिशांत और अर्पिता ने भी इस गीत को पसंद किया। और ये श्रोता हैं भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिम्पा, कपिल पूजा परिहार। लगान पंडरिया से उत्तम कुमार बघेल, रुखमणी भारती बघेल। जमशेदपुर से अपूर्व सिंह, अनुपम राकेश कुमार। बुलढाणा वटशिंगी महाराष्ट्र से पसंद आई है अमोल मानकर, शुभताई, दीपाली और श्लोक कुमार की। और ये श्रोता है राजकोट से राजेश कृष्णा, स्वाति और ख्याति कुमारी। जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल सोनू, पप्पी भाटिया। पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल, नानक चंद मल्होत्रा ने भी इस गीत को पसंद किया। आप है मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। ये मेल हम तक हांसी से पहुंचा है। श्रोता है राजू मिगलानी, बब्बू डब्बू, बबीता मिगलानी और सुभाष योगी। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति ओजस्वी यादव की पसंद। मंडी डब्बवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू मोहित, तानिया नारंग। धुर्रा बांधा भाटापारा

बजते हैं श्रोता प्रमोद साहू देव नवीन युवराज साहू। बुलंदशहर से हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान अरजान और अबान अब्बासी। खमरिया से पसंद आई है साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार की। तेलंगाना निजामाबाद से हैं शेख अल्लाह बख्श, राबिया शेख और शेख रहीम मुन्ना। तो लीजिए सुनिए मुकेश का गाया ये गीत फिल्म सबक से।

और अब आगे बढ़ते हैं और आपको सुनाते हैं अगला फरमाइशी गीत फिल्म बॉबी से। शैलेंद्र के स्वर में ये गीत है, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीत। और पसंद भेजी है कतियापारा जूना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश लोकेश, आशीष, रवीश, शनि, रेयांश, कान्हा और आदित्य देवांगन ने। बुड़गहन से है श्रोता राम दुलारी प्रजापति, राम शरण, चंद्रेश कुमार चंद्रकला और शशिकांता प्रजापति। ये मेल हम तक पहुंचा है कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द सिंह राहुल ने। और जालंधर से पसंद संदीप, ज्योति, मन्नत और साथ में है भरत और कमल। और ये मेल गंडई पंडरिया से आया है पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की विक्की, नानू रविंद्र और रौनक सेन का। सहारनपुर से सुरेश नारंग, आशु, सोनाली नारंग। बरेली कैंट चनहेटी उत्तर प्रदेश से विनेश कुमार, रागनी और मुस्कान। और आप है सरगांव से राजेश वर्मा, हीरोमन पल्लवी और राजेश्वरी वर्मा। खोंदला उदयपुर सरगुजा से जीवधन सिंह पैकरा, घुरनी करिश्मा, सोमार साय, कलेश्वर सिंह, सुखराम, हीरामणि और ऐश्वर्या पैकरा ने मेल हमें भेजा है। भिलाई 314 से पसंद नौशाद अहमद सिद्दीकी, हमीदून, जिशान, सहना नवाज, अहमद सिद्दीकी की। और बोड़सरा नैला से हैं प्रमोद

कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति अंशु, बबली और प्रियांशु साहू। बिलासपुर से हैं श्रोता छन्नूलाल श्रीवास, अनीता पुष्पांजू, योगिता रजन साहू, हेमंत नामदेव और धर्मदास वाधवानी। इस गीत को भाटापारा से दानसिंह रावत दानू, पद्मनी, नीरज शुभम और सौरभ रावत ने भी पसंद किया। ग्वालियर से हैं सुरेश खुराना, किरण लव्या, आरव और एस के पप्पी। मोताला महाराष्ट्र से पसंद भेजी है विजय सुरलकर रतनमाला, ओम कुमार सुरलकर ने। छोटी बलिया करजत मुंबई से अहमद भाई फूलवाले, दुखनी सदफ आरजू, जूही इकबाल फूलवाले, इमरान, आमना, आसमा और साथ में है राबिया मंतशा और आशु अहमद फूलवाले। दिल्ली से प्रमिला हेमा और अंतरा सिंह का मेल हम तक पहुंचा है। डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, सोनम वली और आसमा वली, इन्होंने भी इस गीत को सुनना चाहा है और ये मेल आया है जमानिया गाजीपुर यूपी से श्रोता सुरेश जसवाल, उर्मिला दीपक, स्वाति जसवाल। सहारनपुर से सैयद मसरूर, साइना नाजिया इब्राहिम और भिलाई नगर से हैं शोक श्याम कुंवर, प्रमिला, आसमा श्याम कुंवर। तो लीजिए सुनिए बॉबी फिल्म का ये गीत।

0: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। रेलवे ने रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र के लिए 175 करोड़ रुपए की मंजूर। प्रदेश में ई रिक्शा सहायता योजना के तहत मिलने वाली अनुदान राशि को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1,00,000 रुपए किया जाएगा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि आंधी तूफान, तेज बारिश और तेज हवा के दौरान पेड़ से गिरकर हुई मौत भी प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में आती है। और दक्षिण अफ्रीका में आयोजित एशिया पैसिफिक अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में दुर्ग जिले के जयदीप साहू ने दूसरा व्यक्तिगत स्वर्ण पदक हासिल किया। अब समाचार विस्तार से। रेलवे ने रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। रेल मंत्रालय के अनुसार यह परियोजना भारतीय रेल के विद्युत इंजन बेड़े के तेजी से हो रहे विस्तार और पूरे नेटवर्क पर माल ढुलाई और यात्री परिचालन बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के प्रयासों का हिस्सा है। अतिरिक्त प्राथमिक केंद्रों से रेलवे मौजूदा बुनियादी ढांचे का बेहतर इस्तेमाल कर पाएगा, साथ ही रायपुर मंडल भविष्य में तकनीकी विस्तार के लिए महत्वपूर्ण स्थान बन जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन लाने की योजना बना रही है, जो मानक E20 पेट्रोल से करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। उन्होंने कहा कि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जो विशेष रूप से इस ईंधन के उपयोग के लिए डिजाइन किए गए हैं। श्री पुरी ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से इंजन को नुकसान पहुंचने और वाहन के प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने संबंधी आशंकाओं को भी खारिज किया। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने माई GOV के सहयोग से प्रस्तावित गांवों के भीतर की सड़कों की कोडिंग और ग्रेडिंग प्रणाली पर नागरिकों, पंचायती राज संस्थाओं, स्थानीय समुदायों, विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। इच्छुक नागरिक और संस्थाएं 14 जुलाई तक MyGOV पोर्टल पर उपलब्ध जन परामर्श में भाग लेकर अपने सुझाव ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। गौरतलब है कि वर्तमान में गांव के भीतर की सड़कों का व्यवस्थित अभिलेखीकरण और मानचित्र उपलब्ध नहीं होने के कारण एम्बुलेंस, अग्निशमन और पुलिस जैसी आपातकालीन सेवाओं, डाक, कुरियर वितरण, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, आधारभूत संरचना के विकास तथा डिजिटल नेविगेशन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्रस्तावित प्रणाली इन चुनौतियों का समाधान करते हुए अंतिम छोर तक सेवाओं की प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करने में सहायक होगी। रायपुर में आज भारतीय जनता पार्टी के 17 नए प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों के लिए पहली कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में प्रकोष्ठों की भूमिका और दायित्वों पर चर्चा की गई। इस कार्यशाला में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव, संगठन के तीनों प्रदेश महामंत्री, सभी 17 प्रकोष्ठों के प्रदेश संयोजक और सह संयोजक के अलावा बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने सभी पदाधिकारियों से आग्रह किया कि वे पार्टी की रीति नीति तथा केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाएं।
1: भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, तो आज नए गठन के बाद, नया दायित्व संभालने के बाद पहला 17 प्रकोष्ठों का आज ये कार्यशाला यहाँ पर आयोजित था और हम लोगों ने उनको आग्रह किया है कि जो मतलब हेतु है प्रकोष्ठों के गठन का कि जिस जिस क्षेत्र के संयोजक हैं प्रकोष्ठ के, उन वर्ग के लोगों तक पार्टी की रीति नीति को और भारत सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाओं को वहां तक पहुंचाएं, इसका आग्रह हम लोगों ने किया।
0: प्रदेश में ई रिक्शा सहायता योजना के तहत मिलने वाली अनुदान राशि को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1,00,000 रुपए किया जाएगा। श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन की अध्यक्षता में कल मंत्रालय में हुई छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल की पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में गिग वर्कर्स, चरवाहों और असंगठित कर्मकारों के मेधावी बच्चों के लिए नई कल्याणकारी योजनाएं तैयार करने पर भी सहमति बनी। श्रम मंत्री ने पंजीकृत श्रमिकों का EKYC और आधार आधारित पंजीयन कराने तथा पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने प्राकृतिक आपदा से होने वाली मौतों पर मुआवजा देने की

राज्य सरकार की नीति को लेकर अहम फैसला सुनाया है। न्यायाधीश संजय के अग्रवाल की एकल पीठ ने स्पष्ट किया कि आंधी तूफान, तेज बारिश और तेज हवा के दौरान पेड़ से गिरकर हुई मौत भी प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में आता है। कोर्ट ने राजस्व विभाग द्वारा राजनांदगांव जिले के मोहला क्षेत्र में एक व्यक्ति की मौत के मामले में मुआवजा देने से इंकार करने के आदेश को निरस्त करते हुए उसके बेटे को 30 दिन के भीतर 4 लाख रूपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। मुख्य सचिव विकासशील ने आज मंत्रालय में जल जीवन मिशन 2.0 की समीक्षा की। बैठक में तय किया गया कि हर घर तक शुद्ध जल पहुंचाने के लिए पंचायतों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इन योजनाओं का रखरखाव ग्राम जल और स्वच्छता समितियों के माध्यम से होगा। वहीं योजनाओं के संचालन और गुणवत्तापूर्ण पेयजल की आपूर्ति जांचने के लिए सोशल ऑडिट कराया जाएगा। प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत कबीरधाम जिले के बोरला क्षेत्र में बनी सड़क की राज्य स्तरीय जांच की गई। जांच के बाद निर्माण कार्यों की निगरानी और गुणवत्ता में लापरवाही पाए जाने पर सहायक अभियंता और उप अभियंता को निलंबित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही क्षतिग्रस्त सड़क का हिस्सा दोबारा बनाने और ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने को भी कहा गया। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में के तहत इस बार छत्तीसगढ़ की महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े से ली गई भेंटवार्ता का प्रसारण किया जाएगा। इसका प्रसारण कल 11 जुलाई को आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा FM और प्राइमरी चैनल पर सुबह 9 बजे से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि रेडियो कार्यक्रम दीदी के गोठ प्रदेश की महिलाओं के लिए प्रेरणा का सशक्त माध्यम बन गया है। कल रायपुर में आयोजित दीदी के गोठ वार्षिकोत्सव में उन्होंने दीदी के गोठ कॉफी टेबल बुक, बिहान श्रेणी त्रैमासिक पत्रिका और मोर गांव मोर पानी पुस्तक का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने सफलता की कहानी साझा करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया और कहा कि कार्यक्रम के एक वर्ष में प्रसारित 12 एपिसोड से महिलाओं को आत्मनिर्भरता, नवाचार और स्वरोजगार की प्रेरक जानकारियां मिली हैं। दक्षिण अफ्रीका में 4 से 12 जुलाई तक आयोजित एशिया पैसिफिक अंतर्राष्ट्रीय पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के जयदीप साहू ने अपना दूसरा व्यक्तिगत स्वर्ण पदक हासिल किया है। जयदीप ने दूसरे दौर की क्लासिक प्रतियोगिता के तहत 66 किलो वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इससे पहले जयदीप ने इसी प्रतियोगिता के पहले चरण में बीते 6 जुलाई को इक्विप्ड कैटेगरी में पहला स्वर्ण पदक जीता था। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जगदलपुर के डिमरा पाल स्थित कॉन्टिनेंटल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में बस्तर संभाग की पहली और छत्तीसगढ़ की दूसरी अत्याधुनिक कैथ लैब का लोकार्पण किया। इस सुविधा के शुरू होने से हृदय रोगियों को एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और अन्य आधुनिक उपचार अब स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होंगे। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा सूबेदार, उप निरीक्षक संवर्ग और प्लाटून कमांडर की भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा 12 जुलाई को 22 केंद्रों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल रायपुर जिले के समोदा में 128 करोड़ रूपये से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारियों को लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत की अध्यक्षता में 12 जुलाई को रायपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी 12 जुलाई को रायपुर में मानसून के दौरान प्रमुख प्रौद्योगिक इकाइयों द्वारा संचालित और प्रस्तावित वृक्षारोपण गतिविधियों की समीक्षा करेंगे। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में चालू शैक्षणिक सत्र में कृषि अभियांत्रिकी और खाद्य प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इच्छुक अभ्यर्थी 20 जुलाई तक पंजीयन कर सकते हैं। कोंडागांव पुलिस ने 43 शिक्षकों से कुल 12 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से फरसगांव, केशकाल, बड़े डोंगर, धनोरा, विश्रामपुरी सहित कई क्षेत्रों के शिक्षकों से पर्सनल लोन दिलाने के नाम पर ठगी की थी। बलरामपुर जिले के ग्राम बगाड़ी नाका के पास आज हुए सड़क हादसे में एक बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 युवक घायल हो गए हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र में आज ब्लास्ट फर्नेस के रॉ मटेरियल एरिया में संचालित ओवर ब्रिज क्रेन के टूटकर गिरने से क्रेन ऑपरेटर गंभीर रूप से घायल हो गया। सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र के ग्राम सोनतराई स्थित देवगढ़ मोड़ के पास एक हाईवा में आग लग गई। इस हादसे में वाहन चालक सहित 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। दुर्ग जिले में भिलाई स्टील प्लांट से लौह स्क्रैप चोरी के मामले में पुलिस ने प्लांट के
SMS3 के GM और इंजीनियरिंग एसोसिएट को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक 15 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और बारनवापारा अभयारण्य में 3 चीतलों

0: की मौत हो गई है। वन विभाग के अनुसार इनमें से दो नर चीतलों की मौत आपसी संघर्ष में हुई, जबकि एक चीतल की मौत शिकार से होने की आशंका जताई जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रेलवे ने रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र के लिए 175 करोड़ रुपए किए मंजूर। प्रदेश में ई रिक्शा सहायता योजना के तहत मिलने वाली अनुदान राशि को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया जाएगा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि आंधी तूफान, तेज बारिश और तेज हवा के दौरान पेड़ से गिरकर हुई मौत भी प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में आती है। और दक्षिण अफ्रीका में आयोजित एशिया पैसिफिक अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में दुर्ग जिले के जयदीप साहू ने दूसरा व्यक्तिगत स्वर्ण पदक हासिल किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार हिंदी में अभी हम रिले कर रहे थे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। FM एंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम होगा थोड़ी ही देर में।

0: आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
1: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
0: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
3: ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 7 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए, ईमेल करें गीत सुने का शेष भाग।

कार्यक्रम का पहला फरमाइशी गीत लीजिए, सुनिए हाथी मेरे साथी। इस फिल्म से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ें हैं, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। पसंद आई है पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से बजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली सोनम, आशीष विश्वकर्मा की, लखनपुर से विश्वनाथ साहू, पंकज तिरुपति साहू, लक्सर हरिद्वार से हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहाँ, और ये श्रोता टोरोवाल नवा शहर पंजाब से हैं गगनदीप थांदी, तृप्ता प्रियंका, प्रशांत प्रियम, वामिका और वाणी थांदी। फिल्म सिटी मुंबई से पसंद आई है अदीबा नाज़, फातिमा नसरीन अंसारी, आलिया और सबा अंसारी की। पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा सुलोचना, चेतन भगत। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नपन अफ्फार ढींगिया। पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल यशस्वी और अन्नपूर्णा वर्मा। पुतकी कला कवर्धा से राधेश्याम पांडे, वीणा विनय शंकर पांडे। और ये श्रोता तखतपुर से है मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा। श्रीरामपुर महाराष्ट्र से पसंद आई है नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद की। शादुल सहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़। मलोट पंजाब से हैं राज शर्मा, मीना योगेश, निवान सौरभ, शाइना और मैंडी शर्मा। इसी गीत को मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, सलमान इरफान, इसरार और नरगिस खातून ने भी पसंद किया है। गुमला झारखंड से हैं नजमुल हौदा, असम जावेद, शगुफ्ता अंजुम। किशनगंज बिहार से हैं श्रोता रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघव, भानु प्रिया, माधुरी और किरण। झज्जर हरियाणा से फरमाइश करता इसी गीत के बिट्टू भाटिया, रीटा रजत, मंजू और मयंक भाटिया। चिरमिरी कुरासिया कालेरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव ऋषभ, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश और कालंदरी लहरे का मेल हम तक पहुंचा है। और ये श्रोता है निमनाबाद जिला जिंद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जितेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत करमजीत कौर। बहादुरा नागपुर से वैशाली शहलास गंवाड़कर, टुकटुक प्रिंस, एकांश, सुमित और ध्वनि गंवाड़कर का मेल। पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर, मनु। जनकपुरी सहारनपुर से हैं जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी पर्ल, विलीज डिकेस्ट्रो। और तिलहारा से मेल हम तक पहुंचा है प्रकाश पोहरकर, नर्मदा सुजाता पोहरकार का। ये श्रोता है कांकेर जिला भानबेड़ा मुंगवाल से भारत राम पटौदी, जंती हेमंत, उमंग मोक्ष पटौदी।

करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, साथ में जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा और इशप्रीत शर्मा का मेल हम तक पहुंचा है। काले गांव जाफराबाद से पसंद आई है सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत, संचित वयाल, प्रथमेश, प्रणाली देशमुख, सर्वद और सानवी देशमुख की। तो लीजिए सुनिए आप सभी की पसंद पर हाथी मेरे साथी इस फिल्म का ये गीत।

हाथ ही मेरे साथ ही इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाज़ें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की थी। आगे बढ़ते हैं और सुनवाते हैं फिल्म घरौंदा का ये गीत भूपिंदर और रूना लैला की युगल आवाज़ों में। गुलजार के बोल हैं, जयदेव का संगीत पसंद आई है दिल्ली से, अजीम वकार माहिर अजीम और नगमा अजीम की। गंडई टिकरी पारा से जागेश्वर देवांगन, कचरीबाई दीपक जयश्री देवांगन, ऋषभ और ऋचा देवांगन का मेल। इसी को पसंद किया है कैदी मुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा और ऋषभ सिंह। गांधीबाग अकोला से हैं श्रोता रमेश कटनकर, वैशाली और धनंजय कटनकर। दिल्ली से सोनम सना और आदिबा का मेल। मलौट से रमेश कुमार जाझोरिया, गीता रानी, गगनदीप, आरजू गुड्डू जाझोरिया। दुर्ग से हैं श्रोता आरसी कांबड़े, करुणा मीना अश्वनी और विपुल कांबड़े। जालंधर से रोशन जहां, मन्नत इशरत और मकार जहां। रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी का मेल आया है और इसी गीत के पसंदकर्ता हमारी ये श्रोता। महाराष्ट्र से रुपेश संघई, महेश, प्रज्ञेश, प्रीतेश संघई। यवतमाल से राहुल मनवर, सरला, विशाल, चेतन, रोशनी और प्रियांशी। भाटापारा से प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र, दुष्यंत, राघवेंद्र साहू। यवतमाल महाराष्ट्र से हैं लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पनाताई, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल, रक्षता लोखंडे। मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से हैं आप सोमपान तायडे, वसंतराव भोजने और निवृत्ति आडोकार। नेपनगर मध्य प्रदेश से पसंद आई है सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर, कुशल, नीति सुरभि, अश्विन और साथ में मंगलाबेन शाह और राजेंद्र शाह की। आप है धरदे सरगांव से चंदूलाल पटवा, सुनीता हर्ष, विनीत और कृष्टि पटवा। वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू टोमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा का मेल। और इसी गीत को अड़ार नांदघाट से सुनना चाहे माखन वर्मा, चांदनी भूपेश, दीपेश वर्मा ने। ये श्रोता है मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गहमाड़कर, सरिता प्रिंस और एकांश गहमाड़कर। पैंठड़ से पसंद सुरेश जाधव, अनीता आरती, पूजा प्रसाद, सोनल और सिया जाधव की। कोटो नारायणपुर बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा अमित कुमार, हैप्पी राय। दतरंगी भाटापारा से पसंद आई है ईमेल के जरिए हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र मणि और नोखेलाल वर्मा की। और सनावत से हैं मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, अलकमा खत्री, अल्तमश, रमेश गौड़ और शदाब खत्री। तो लीजिए सुनिए आप सभी की पसंद पर घरौंदा।

घरौंदा फिल्म का ये गीत हम आप तक पहुंचा रहे थे और अब आगे बढ़ते हैं, सुनवाते हैं हमारे इन सभी श्रोता साथियों की पसंद पर अगला फरमाइशी गीत। ये श्रोता हैं पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता, पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चांसोलिया, आदर्श सार्थक और अलौकिक चांसोलिया का मेल, लसुडिया पाता जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या सुमन, कोमल परी, कृतिका और रमेश चंद्र डांगी, यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा और साव्या रामटेके, बठैना पाटन से परमेश्वर साहू, राजबत्ती, काजल पूर्वी, हेजल राजेश और रेशमा साहू का मेल, छोटी बलिया करजत मुंबई से अब्दुल कलाम राइन और अब्दुल सलाम राइन, और ये श्रोता हैं लछनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश और मुकेश कुमार साहू। इसी गीत को पसंद किया है नागर कोहरा जिला राजनांदगांव से बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा और आराध्या साहू ने। और भोपालगढ़ राजस्थान से श्रोता हैं धर्मेंद्र छिम्पा, कपिल, पूजा परिहार, रिंगनी से दिनेश वर्मा और साथ में हैं करुणा वर्मा, और आप हैं श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता, अनिकेत रोहिणी, ऋषिकेश और जीविका दले, रोहानसी से पसंद आई है डगेसर राम साहू, घनश्याम, नूतन, गौरव और अलका जानवी साहू की, और दतरेंगी से हैं श्रोता नारायण। तो चलिए आपको सुनवाते हैं नाखुदा फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज़ों में, निदा फाजली की रचना, खय्याम का संगीत।

इस गीत को हमारे इन श्रोता ने भी पसंद किया, दतरंगी से विश्राम यदु, पार्वती प्रतिमा रीना और लक्ष्मीना यदु ने। और नाखुदा फिल्म का ये गीत हम आप तक पहुंचा रहे थे, आवाज़ें लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की थी। इसी के साथ फरमाइशी कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने से दीजिए अनुमति आपके अपनी रेडियो साथी खुशबू को। शाम के 7:20 हुए हैं, लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम सभा।

0: कार्यक्रम के सुनैया जम्मो संगी संगवारी मल्ला सरवन भैया के जय जोहार हो, राम राम। संगी हो तो भाई, अब जुलाई के महीना आ गए हे और जम्मो कोती हमन के खेती किसानी के काम बूता हा भर दराय हुई है ना भाई। काबर की अही बेरा रथे जेन मा हमन खेती किसानी के जम्मो काम बूता ला करथन है ना, बुआई वुआई सब हो जाते तभे तो बढ़िया हमन ला फसल हा मिलते। और जब अभी के बेरा में सही मात्रा में पानी गिरते तभी हमारे किसानी के काम हाँ हो पाते। ज़्यादा पानी में या कम पानी में ये काम हाँ नहीं हो सके। काबर सही मात्रा में पानी रहते तभी तो बीजा हाँ अंकुरित होते है ना, और अंकुरित होके पौधा बनते। और संगी हो मानसून हाँ पेड़ पौधा में ही निर्भर करते कि कब ले मानसून हाँ आही। और संगी हो गाँव मन के पर्यावरण जल के स्तर हाँ और पूरा भविष्य है पेड़ पौधा मन में ही निर्भर करते। और यदि हमन इस साल कोनो भी गांव में वो हमन पेड़ लगाथन वो खर देखभाल के जिम्मेदारी भी तय करथन तो अवैया बेरा में हमन स्वच्छ हवा छाया फल लकड़ी और बेहतर वर्षा के लाभ घलो हमन ला मिल सकते। एक बार हमन ला थोड़ा काम बूता करना पड़ी ताकि हमन ये सब काम करबो तो भाई हमन हो सकी है ना भाई। तो गुड बात तो करबो हो, फिर आवाज सुन ले थाने संदेश ला।
1: बड़ी बहू
2: ये तुम्हारे ना
1: इतनी भी क्या जल्दी थी।
2: अरे और छोटी ये तुम्हारे ना
1: और ये मेरी गुड़िया के नाम।
3: पर दादी
2: हाँ
3: आपके नाम
4: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
2: शुभ शुभ बोलो
3: क्या
4: आरबीआई कहता है।
5: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
0: तो संगी हो जब हमने इतना कब काम ला करथन तो हमन लोग का करना पड़ी तो सबले पहले तो भाई जैसे कि ग्राम सभा होते कोनो भी गांव मन में तेखर माध्यम ले हमन वहाँ के सरपंच है पंचायत प्रतिनिधि है और जिन ग्रामवासी मन है तेन मन में ये बात ला कर सकथन। काबर की मन में सब इकट्ठा रहते अब इकट्ठा हमन बात ला सबके सामने में कही सकथन ताकि जम्मो झीने तीरे बात हा पहुँच सके। काबर एखर लाभ हम सब ला मिलही है ना भाई। और संगी हो ये सब काम ला करे भर सब की आवश्यकता होते अकेला नहीं करे जा सके तो सब के सहयोग ले ला पूरा कर सकथन। तो हमन ला कहाँ कहाँ पौधा लगाना चाहिए तो संगी हो जैसे कि स्कूल है तिहा पंचायत भवन मा है ना भाई सड़क मन के किनारे मा तालाब के तीर मा शमशान घाट मा चारागाह मा और जतका भी जगह बाँचे है जिनमें खेती उती नहीं होते या जेन टिकुरा उकरा है तेन मन में हमन पेड़ लगा

के बढ़िया वहाँ ला पौधा वाले बना सकथन, पेड़ पौधा रहे वाले बना सकथन, है ना। खाली भुइयां ला काबर की हमारे उपयोग ही होई। और संगी हो कौन कौन सा पौधा हमें लगाना चाहिए, तो जैसे नीम है, पीपल है, बर के है, आमा है, इमली, जामुन, करंज, अर्जुन, ये सब पेड़ ला हमन लगा के फायदा कमा सकथन। काबर की फल के संग संग हमला छाया और लकड़ी भी ये फल पेड़ पौधा मन देखते हैं ना। और ओखर सब पौधा रोपण के समय हमन ला संगी हो मानसून में पौधा रोपण करे ले सबले उपयुक्त रहते। काबर की ये बेरा में पौधा अच्छे से कहीं भी लग जाते है ना। काबर के नमी के कारण अंकुरण अच्छा होते और जड़ के फैलाव भी बढ़िया होते। तो खाली पौधा ला लगा देवे मन नहीं बने, तो ओखर जब हमन लगाथन तो ओखर सुरक्षा पर भी हमन ला ध्यान देना पड़ही, ताकि हमन जब कहो एको दू सालों ला सुरक्षा कर लेथन, ओका देख लेथन, बेरा बेरा में ओका पानी उनी दे देथन, है ना भाई। गरुआ बछरू मत खाए ओका बस सुरक्षित कर देथन, कांटा उटा में रूंध के, चाहे कि ओमन ला पेड़ ला तोपे के जिन जाली आते तेन में लगा के, तो ओमा वहाँ बढ़िया बाढ़ जाते। और थोड़ा दिन हमन ओकर सुरक्षा करथन तहाँ तो जीवन भर वहाँ हमार रक्षा करते। तो हम अल्लाह संगी हो पेड़ पौधा ला लगा के और ओकर सुरक्षा करके करना चाहिए, ताकि हमन के अवैया बेरा माँ जिन हमन के अगला पीढ़ी है तेन मन पर सबले अच्छा वह कहे जाए कि हमन पर बहुत अच्छा हो, मन पर हमन गिफ्ट देवो कह देवा, है ना भाई। हमन खुश हो जाही, भभर जाही कि अच्छा हमन पर बढ़िया कुछ तैयार करे हैं हमारे पूर्वज मन, काबर की उखरे से ही जीवन हाँ चलते। तय ढंग ले हमन ला करना चाहिए। और संगी हो पेड़ पौधा तो लगाथन ये ठीक बात है, फिर जैसे कि अभी के बेरा में देखियो तो पानी हाँ गिरते है ना भाई, और लगातार पानी हाँ गिरत है और झरझर झरझर बरसत है ना। और फिर अचानक का होते, बरसत रहते बरसत रहते, और तहाँ जब थिराते तो ऐसा थिरा जाते कि कहो हमन फसल लगाए हैं तेखरों पर हमन ला पानी हाँ नहीं मिले। तो संगी हो ऐसा बखत भर हमन ला अपन पहली ले कहे जाए ओ खबर ए मुसीबत ले बाँचे बर हमन ला तैयारी कर लेना चाहिए। तो ओ खबर हमन ला जल संचयन के तरीका ला अपनाना चाहिए। काबर की संगी हो कहो सूखा हो गए है तो बादर के कोनो भरोसा नहीं है, कब पानी हाँ गिरही और कब नहीं गिरही। तो हमला कृषि कार्य पर बादर में निर्भर नहीं रहना चाहिए, जब पानी गिरे था ओला इकट्ठा करना करे के हमला जरूरत है, काबर के बहुत जरूरी हवे, ताकि बेरा बखत में वो पानी के उपयोग कर सकथन, है ना भाई। अब अपन फसल में अब अपन फसल ला कोनो नुकसान नहीं होवे तेखर बर हमला ए उपाय मन ला करना चाहिए। तो का उपाय है, तो कौन ढंग ले हमन पानी ला संचित कर सकथन, तो जैसे कि खेत है ना भाई, ओखर मेड़बंदी कर लेथन, तो खेत के मुही पार ला बढ़िया अच्छा ठास ठास के बंद कर लेवाओ, और चारों कोती जेन मजबूत मेड़ बना लेवाओ, है ना। और मेड़ मन के बेरा बेरा में मरम्मत करत रहो, ताकि ओखर पानी हाँ झन ओमले कुछ कहीं में बुहावे, जेकर ले वर्षा के पानी हाँ खेत में रुक जाही और माटी के कटाव भी हाँ कम हुई। अब जब हमन ला जरूरत पड़ी तो पानी ला हमन सींच सकथन भाई, है ना। अब जैसे कि ढुलाई भुइयां हैं तेन में सब पानी हाँ बुहात जाते, तो ओला बांध के घलो हमन पानी ला रोक सकथन, है ना। या फिर ऐसे सीधा सीधा जुताई कर दिए, बेढ़ा जुताई कर देबो, तो ओमा माटी हाँ नमी बने रही है, जिन पानी के बहाव है तेनो घलाव हाँ कम हो जाही, है ना। अब एमा हमन ओ पानी जिन बाँचे है तेन ला जब पानी नहीं है सूखा पड़त है तो ओला अपन पंप के माध्यम ले अपन खेत में डाल सकथन, अपन फसल में डाल सकथन। और कहूँ पानी हम भरा है तो पशु मन के पिए हुए के काम आ जाही, कि फूल पौधा कुछ बोथन तेखा काम आही, यानी कि वो पानी हाँ बर्बाद नहीं हुए हमार कामे आही, है ना। और चेक डैम आऊ स्टाम्प डैम बना सकथन, तो जैसे कि छोटे छोटे नाला है जिन मन में पानी हाँ बुहा जाते, तो ए मन में वर्षा के पानी रोक के, है ना, भूजल स्तर ला बढ़ाए जा सकते। का भाई कि भाई अब भुइयां में जिन जल है तेनों हाँ कम हो जाते, रोज रोज हमन पंप लगा डाले हन और पंप में मन माना खींचत हन, फिर जतका भुइयां में के अंदर में जाना चाहिए तेन हाँ नहीं जा पाए, काबर जब पानी हाँ गिरते रद रद रद रद बुहा जाते। जब मुको तिल देखियो तो सीमेंटेड रोड बना डाले हन, है ना, डामर वाले है शहर मन में, गांव तक मन में अब सीमेंटेड रोड बन गए है, तेखर बा कोनो भी पानी हाँ बुहा जाते, भुइयां में घुसबे नहीं करे, तो कहाँ ले भूजल स्तर बाढ़ी संगी हो। तो एक खबर हमन ला काम करना पड़ी, ताकि भूजल स्तर घलाव हा बाढ़ है। अब वो खबर हमन ला

0: काट पिटाऊ सोख्त गड्ढा बनाना पड़ही जिसे वर्षा के पानी ला जमीन के अंदर पहुंचाए पर है ना। अब रिचार्ज पिट बना के जेखर ले कुआ हो जिन बोर बेले तेनों में जल स्तर ह बाढ़ी। अगर भुइये में जब पानी ह बाढ़े लगही तब तो भुइया जमीन के जिन जल स्तर है तेन बाढ़ जाही। तो ये सब पर हमन ला पानी के जिन बरसात में गिरते तेखर पर हमन ला आने आने ढंग ले उपाय ला करना चाहिए। तो हमर मन घलो संगी हो हमार खेत मन में ऐसे ढाल है तो वह पूरा नदिया कोती जाते तो नदिया उतारू में है तो हमन के खेत ऊपर में है तो हमारे बुहा बुहा जाते तो हमन बड़का ना अच्छे से रून दिए हैं बढ़िया ट्रैक्टर में ओला माटी ला इकट्ठा करके वो तीन थोड़ा गड्ढा बना दे हैं और बढ़िया उच्च ले पार कर दे हैं पोरीस भर के। तहाँ जब वहाँ पानी है तिल बुहाते पानी गिरते तब मस्त भर जाते तेखर ले जब बाद में हमन ला पानी नहीं गिरे तब पंप में खींच के बढ़िया खेत में हमन डाल देथन तो हमरो काम हो जाते और पानी है ना हमन ला कुछ ट्यूबवेल खनेल पड़े ना घोल मंगाएल पड़े बढ़िया जिन भगवान है पानी गिराए है तेने में हमारे काम हो जाते। तो ऐसा नहीं ढंग ले संगी हो हमन ला वर्षा के पानी ला कृषि कार्य पर संचयन करना पड़ ही तभी छमन के काम है बन ही और मानसून पर आश्रित रहो तो ये सब काम है नहीं बने है ना भाई। काबर की हमन ला ये सब काम ला करत रहना पड़ी ताकि हमन के खेती किसानी के जिन काम है तेना बढ़िया ढंग ले बने रह सके। और संगी हो आज ये शुक्रवार है ना भाई। अब आज हमन आप मन ला फोन इन में आधारित कार्यक्रम में सुनवाथन। तो आज के विषय जैव उर्वरकों का खरीफ फसलों में उपयोग और महत्व और विशेषज्ञ श्री जयंत साहू जैन मने विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर के और संचालन करते हमार बीरेन भैया है। तो आवाज सुनी फोन इन में आधारित एक कार्यक्रम ला
1: किसान संगवारी हो आज फोन इन कार्यक्रम में एक सुघर विषय लेवत हन और सुघर विषय में आप मन के जिज्ञासा रही थे वो जिज्ञासा शांत करे बर हमन अपन कार्यक्रम में आकाशवाणी बिलासपुर की स्टूडियो में कोई जानकार विशेष डॉक्टर मन बलाथन। आज यही क्रम में हम विषय रखे हैं जैव उर्वरकों का खरीफ फसलों में उपयोग एवं महत्व। तो आज के पहुना हमें विशेषज्ञ के रूप में हमारे बीच में है श्री जयंत साहू जी मन एमन हमारे विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर में। तो सबले पहली तो हम भाई आज के जिन पहुना बुलाए हैं दूरिया ले आए हवे है ना तो ओकर हम स्वागत करबो ओकर बाद ये विषय में गोट बात करबो वही बीच में आपके फोन आए ओकर लेबो। तो श्री जयंत साहू साहब राम राम जय जोहार।
2: जी राम राम जय जोहार बहुत बहुत धन्यवाद
1: और आप मन के स्वागत है आज के फोन इन कार्यक्रम। और जैसन कि अब शुरू में हम गोट करे हन कि आज के विषय बड़ा अच्छा है जैव उर्वरकों का खरीफ फसलों में उपयोग एवं महत्व। तो यही जानना चाहबो कि ये जैव उर्वरक काला के थे कैसन होते और किसान भाई उका कैसन आने के प्रयोग में लावे ओला बताओ साहब
2: जी। से अभी जैव उर्वरक के विषय में बात चले तो जैव उर्वरक ऐसे जीवित सूक्ष्म जीव आधारित उत्पाद होते है ना जो पौधों को मतलब पौधा मान लो आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराने में सहायता करते
1: जी
2: है ना। ये मिट्टी में जो पोषक तत्व रहते ना ऑलरेडी जो उपलब्ध है मिट्टी में वो लोग घुलनशील बनाते
1: अच्छा।
2: और जो वातावरण में मौजूद जो पोषक तत्व है खास कर जो नाइट्रोजन हो गए और मिट्टी में जो फॉस्फोरस है और पोटास है ये सब मतलब पौधा के लिए उपलब्ध करा में बहुत बहुत महत्वपूर्ण
1: मतलब पानी की स्थान रखते हैं। तो फोन आते हैं ले लेते हैं। हेलो
3: हेलो
1: हाँ भैया राम राम जय जोहार गौंटिया।
3: राम राम जय जोहार वीरेंद्र भाई जय जोहार।
1: पानी वानी बनी गिरे क्या?
3: हाँ हमारे कुछ इसे बढ़िया पानी है वीरेंद्र भैया।
1: तो बोनी वोनी हो गए भाई?
3: हाँ धान पान तो बोल रहे भैया दलहन तिलहन तक डालबो कहा सन।
1: हाँ तभी तो आज सुघर विषय रखे हैं जय उर्वरकों का खरीफ फसल में उपयोग और महत्व है ना।
3: और ये भाई से डॉक्टर साहब से थोड़ा पूछ देते कहा भैया।
1: तो पहले ये तो बताते कौन आज कहाँ बोला था तेला गाउंट क्या?
3: मैं भाटा पर दतरंगी ले हीरो राम साहू बोल रहे वीरेन भाई।
1: हाँ तो हीरो भाई आप मन के स्वागत है राम राम जय जोहार।
3: राम राम जय जोहार भाई बीरेन भाई बहुत दिन आत्मा से बात हो बीरेन भैया।
1: हाँ चलो बढ़िया मैया दुलार इसने रखे रही भाई हीरू भाई है ना।
3: हाँ बीरेन भाई।
1: हाँ तो ले हमारे बीच है श्री जैन साहू जी मन इमन ही विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर में। तो आज के विषय के सवाल रखो पहुना सुख

0: डॉक्टर साहब नमस्कार।
1: नमस्कार, जय जोहार।
0: जय जोहार डॉक्टर साहब। भैया जवा उर्वरक प्रबंधन के बारे में थोड़ा सा जानकारी देना भैया कि दलहन तिलहन में कौन प्रकार से उपयोग करना चाहिए।
1: ठीक है, अच्छा प्रश्न है आपके कि दलहन तिलहन में जो जैव उर्वरक है ना, ओकर जो महत्व है और ज्यादा बढ़ जाते कि जो दलहनी फसल है खास करके, है ना।
0: अच्छा,
1: जैसे एक अपन आप मन का फसल लेते हो दलहन फसल में?
0: राहर
1: वगैरह। ठीक है, तो दलहनी फसल के लिए ना एक जैव उर्वरक में एक आते राइजोबियम।
0: अच्छा।
1: ठीक है, मुख्य रूप से दलहनी फसल में ही एक उपयोग करे जाते हैं।
0: भाई।
1: और एक होता है कि जो दलहनी फसल के जो जड़ में जो ग्रंथि जो गठान बोलते हैं ना, उमें उही में ये मौजूद रहते हैं जो राइजोबियम है।
0: अच्छा,
1: है ना। और ये क्या करते कि जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है, जो नत्रजन है ना, ओला हुआ स्थिरीकृत करते। और
0: अच्छा।
1: जो फसल के आवश्यकता रहते ना, ओकर लगभग 2/3 जो नाइट्रोजन है, नत्रजन है, ओला यह पूर्ति कर देते। ठीक है, राइजोबियम कल्चर है। तो ये क्या करते कि जो राइजोबियम जो जैविक कल्चर है ना, ये फसल वार अलग अलग होते। जैसे आप माना जो अरहर में जो उपयोग करूँ ना राइजोबियम, तो कर अलग राइजोबियम कल्चर आई। चना के लिए अलग आते, उड़द मूंग के लिए अलग आते। तो दलहनी फसल के अलग अलग राइजोबियम कल्चर अलग अलग वो प्रजाति रहते। एकर उपयोग करना बहुत मतलब आवश्यक भी है। और एकर से जो हमारा रासायनिक उर्वरक पे निर्भरता रहते ना, ओला मन बहुत कम कर सकता। ठीक है ना। तो जो मिट्टी के उर्वरा शक्ति जो बनाए रखना है ओकर लिए आवश्यक है। और जो जैविक कार्बन जो चाहिए हमला मिट्टी में, जो जैविक कार्बन जो कम हो जाते, तो ओकर से भी हमला लाभ मिलते जैव उर्वरक से। तो ये सब अपन दलहनी फसल के लिए खासकर ये अपन कर सकता। और पोषक तत्व तो मिलते ही। एक साथ साथ जो कुछ ऐसे जैविक उर्वरक है ना, वो मन ऐसे कुछ वृद्धि कारक हार्मोन भी उत्पन्न करते, जेकर से जो जो इम्यून सिस्टम जो प्रतिरोधक क्षमता होते ना कीड़ा बीमारी से लड़ने के लिए, वो भी पौधा मन में बहुत अच्छा हो जाते जैव उर्वरक डाले से। तो ये बहुत ही अच्छा, सस्ता है, प्रदूषण रहित है ना। और एक अलावा जो मिट्टी के जो संरचना है, भौतिक संरचना हो गई, रासायनिक संरचना हो गई और जैविक संरचना हो गई, इनमें भी बहुत अच्छा से सुधार करते। कुल मिला के आपके मिट्टी जब ज्यादा स्वस्थ रही तो पौधा भी आपके निश्चित रूप से स्वस्थ रही और उत्पादन भी ज्यादा अच्छा ही है ना।
0: तो
1: ये चीज है जैव उर्वरक के लिए, दलहनी फसल के लिए। बाकी अन्य फसल में भी हमन उपयोग कर सकते हैं। धान में भी आप उपयोग कर सकते हो। तो धान के लिए एजो स्पिरिलम आते एक ओला आप मन उपयोग कर सकते हो, PSB करके है। और एक नील हरित शैवाल है ना, एक आप मन उपयोग कर सकते हो जैव उर्वरक के रूप में।
0: हाँ डॉक्टर। जी जी।
2: तो हीरो भाई।
0: हाँ ब्रेन भाई।
2: हाँ, तो डॉक्टर साहब मन कतेक सुगर बढ़िया जैव उर्वरक के महत्व है ना, और उपयोग कैसे करना है, ये विषय में बढ़िया आप मन सवाल रखे हो। और आपके सवाल के जवाब आप मिल गए, फोन लगाए खर बार आप ला। बहुत बहुत धन्यवाद भैया हीरो। राम राम, जय जोहर।
0: राम राम, जय जोहर ब्रेन भाई। राम राम, जय जोहर भाई।
2: फोन आते सर ले लेते। हेलो भैया, राम राम, जय जोहर गा।
3: भैया मोर माया भरे राम राम।
2: अरे तुम्हारे फोन लागो रहता है भैया। राम राम वर्मा जी, स्वागत है आप मन के।
3: और भैया बहुत लगाए हाँ, नहीं लगत रही से।
2: तो ले भैया समय हाँ, लग तो गए अब ना।
3: हाँ,
2: वो नंबर एक तो है ना, वो नहीं काम कर रहा था इसका, तो ये दूसरा नंबर काम कर रहा थे।
3: दोनों
2: खराब हो गए साहेब। हाँ तो अभी वही जियो कहे तेन जिया थे कहते, अब वही में लगी से।
3: दूसरा भाग ला बोलो ना।
2: हाँ, दूसरा भाग है भैया जैव उर्वरकों का खरीफ फसल में उपयोग एवं महत्व है ना।
3: भैया
2: तही आप मन सवाल रखे हो। तो वर्मा जी आप मन के स्वागत है। राम राम, जय जोहार।
3: हाँ भैया मोर माया भरे राम राम। मैं नवागढ़ कटाई जिला में तरल नारायण प्रसाद वर्मा बोला था भैया।
2: तो बिल्कुल स्वागत भैया। और आज के विषय आप जानत हो, यही विषय में अपन सवाल रखो। हमारे बीच हवे श्री जयंत साहू जी मन, विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर के मन।

0: तपन
1: हाँ
0: साहब।
1: डॉक्टर भैया, राम राम।
2: राम राम, जय जोहार भैया, बताओ।
1: हाँ भैया, कहाँ है जिसे दे पानी नहीं गिरा थे, कहाँ रहे तो धान बोआई मन सब पिछड़ गए रही से। अब
2: हाँ,
1: पानी गिर गए भैया
2: हाँ,
1: तो सब धान मन सड़ा थे, थरहा मन सड़ा थे। तो आपले मैं यही बात ला पूछे बार फोन लगा हम भैया, जैसे अभी हम धान के बोआई और रोपाई काम चला था भाई, काम करा था मन और पिछड़ गए भैया कुछ, तो यही विषय में बताते भैया कि ये जैव उर्वरक के उपयोग हमन कैसन ढंग ले करी अभी, ताकि हमार धान मन बने संघर जतीस और जिन थरहा वो मन बने लग जतीस भैया। तो यही जम्मो बात ला आप बता देते, फोन लगाए हो डॉक्टर
2: जी। जी जी बिल्कुल, अच्छी बात है, आप मन फोन लगा कर लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत उचित समय है कि जैविक उर्वरक के उपयोग कैसे करना है ला जाने पर। तो धान फसल में मुख्य रूप से बात चलत रही से कि दो तीन तरह के जैव उर्वरक के आप मन उपयोग कर सकते हो, जेकर से ना रासायनिक उर्वरक जो अपन प्रयोग करते हैं ना ओकर ऊपर निर्भरता कम हो जाते। जैव नियंत्रक जैव उर्वरक के अपन उपयोग करबो ना तो कम से कम 20-25% जो रासायनिक उर्वरक के जो उपयोग है ना ओला हमन कम कर सकथन। तो एमे से एक होते एक एजो स्पिरिलम हो गए जैविक उर्वरक जो धान के लिए बहुत लाभदायक है, और एक ये तो नाइट्रोजन के लिए हो गए है ना, एक फास्फोरस के लिए पीएसबी कल्चर हो गए एला उपयोग कर सकते हो आप मन। एकर अलावा एक हुआ थे नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते ओला, ओला आप मन जब पानी थोड़ा भर रहे थे ना खेत में 2-2.5 इंच जैसे पानी भरे है खेत में, तो उकर बाद एला एक एकड़ खेत पीछे आपला 4 किलो जो नील हरित शैवाल युक्त जो कल्चर रहते ना मिट्टी युक्त कल्चर है ओला आप मल्ला खेत में छिड़कना रहते। तो एकर से का है जो नील हरित शैवाल है ना ये भी वायुमंडली जो नाइट्रोजन है ना ओला अपचयित करते हैं, लगभग एक एकड़ में 15-20 किलो नाइट्रोजन प्रदान करते धान के खेत में।
1: अच्छा अच्छा,
2: है ना। तो एला आप मन उपयोग कर सकते हो। और नील हरित शैवाल जो है ना वह मतलब पोषक तत्व तो उपलब्ध कराते हैं नाइट्रोजन के रूप में, साथ में क्या होते हैं कुछ वृद्धिकारक हार्मोन भी जो जरूरत पड़ते पौधा मल्ला ओला भी उपलब्ध कराए के यह क्षमता रखते है ना। तो ये नील हरित शैवाल तो आप अवश्य रूप से उपयोग करो। ओकर अलावा जो और बीज उपचार के माध्यम से आप एजो स्पिरिलम और पीएसबी जो है ना कल्चर है ओला उपयोग कर लो तो आपके बहुत अच्छा मतलब बोला जाइए कि रासायनिक उर्वरक के विकल्प रही। और एकर से कहा होता है कि जो पर्यावरण और आर्थिक बचत के हिसाब से भी ना कल्चर के उपयोग करना बहुत मतलब लाभदायक सिद्ध होते हैं।
1: अच्छा अच्छा
2: जी जी जी,
0: नारायण भैया आप मन फोन लगाए एक बार आप मन बहुत बहुत धन्यवाद, आपके माध्यम ले हजारों किसान लाभान्वित हो है, बहुत बहुत धन्यवाद, जय जोहार राम
1: राम।
0: हाँ भैया राम राम, जय जोहार गा।
3: राम राम भैया, जय जोहार।
0: आप कौन कहाँ बोला था साहेब?
3: मैं सिंगारवाड़ी घुटकुले भगत राम पटेल बोला था भैया। और अषाढ़ के महीना में जब बादल लहरावत है ना तो मोर मन में एक तो भाव जागृत हुई से भैया कि छाए घन घोर घटा अषाढ़ के चारों कोती बिजली आवत है, आशा धरे किसान खेत में मन में आस लगावत है, करबो खेती किसानी सुघर बात ल मन में बसावत है। अब किसान वाड़ी में हमार बीरेन भाई है, हमारे डॉक्टर साहब संग सुगर सुगर बात ला बतावा थे। किसानी जब करे बार खेती में निकल सन ना तो मन हरियर हरियर देख के चारों तरफ घटल देख के ऐसे मन गदगद हो जाते कि कविता के रूप में परिणित हो जाते बीरेन भैया।
0: और कई जन कहते नहीं जैसे निकले मुसवा बिल्ले उसने कविता निकलते दिल्ले। तो
3: आज हमारे किसान मन तरफ से एक प्रश्न हवा है कि जिन हम जैव खाद के जिन हम उपयोग करसन अवे समय रासायनिक खाद गलोक ले नहीं छोड़ सकन, तो ये जिन विधि है जैव खाद और जिन रासायनिक खाद तो हमन ला खेती किसानी में एकर कोन रूप ले करना है जेकर से हमर जिन किसानी हमर खेत के जिन धान पानी या फसल है वो सुघर हो सके और कोई प्रकार के नुकसान जन पहुंचे।
2: जी बहुत अच्छा प्रश्न है, अपन ला एकदम रासायनिक उर्वरक ला एकदम छोड़ना ही नहीं है,

0: है ना, ऐसा नहीं है कि जैविक उर्वरक यूज करा था तो एकदम उला छोड़ दो, वो एक तरह के कर पूरक के काम करते हैं। ठीक है, जैसे आप मन
1: हाँ
0: है जैव उर्वरक के उपयोग करा था, ठीक है, जैसे धान के बात करा था तो एजो स्पिरिलम हो गए आपके नत्रजन के लिए, नील हरित शैवाल हो गए, ठीक है, और फास्फोरस के लिए, जो स्फूर के लिए PSB हो गए, और आपके पोटास के लिए KMB करके आते हैं ना, तो इस अलग अलग जैव उर्वरक है। तो यह जो रासायनिक उर्वरक के जो मतलब बोलना चाहिए 25% तक के जो पूर्ति होते ना, जो पोषक तत्वों के, ओकर पूर्ति कर देते आराम से। तो आप जो जितना उर्वरक उपयोग करते हो ना, ओकर लगभग 25 से 30% के बचत करते हैं। यही हिसाब से हमला ओकर उपयोग करना है शुरुआत में, और धीरे धीरे जैसे अपन उपयोग करत जाबो ना, तो जो हमारे मिट्टी में एकर जो संख्या है, जो सूक्ष्म जीव है, लाभदायक सूक्ष्म जीव, ओकर संख्या बढ़त जाते, तो धीरे धीरे धीरे धीरे फिर रासायनिक उर्वरक के जो ओकर जो का बोलना चाहिए
2: आदत डाल दे रहे
0: आदत
2: हैं।
0: डाल रहे हैं ना, वो कम हो जाए और ऊपर निर्भरता कम हो जाए धीरे धीरे। तो एकदम से अपन ला इसे छोड़ देना ऐसे नहीं है, कि एकर आप मन पूर्ति ला 25% पूर्ति ला जैविक उर्वरक से आप मन आसानी से कर सकते हो, है ना। तो जो मिट्टी के जो सेहत है ना, वो बने रही, कि लगातार रासायनिक उर्वरक अपन उपयोग करबो तो का है, बहुत सारा जो मिट्टी के जो रासायनिक और भौतिक संरचना है ना, वो बिगड़ जाते हैं, और साथ में ओकर जैविक संरचना, जैविक संरचना मतलब मिट्टी का है, जीवित है जी, मिट्टी तभी जीवित है जब उसमें सूक्ष्म जीव है। तो अगर सूक्ष्म जीव के संख्या अगर कम हो गए या खत्म हो गए, तो फिर हमारे जो पौधा मन तो विकास नहीं कर पाई। तो वही हिसाब से हमला जैव उर्वरक के प्रबंधन करना है और ओला उपयोग करना है, ठीक है। और एकर अलावा एक आप मन अभी धान बोए हो, तो धान में समय नील हरित शैवाल आप मन अवश्य रूप से उपयोग करो। नील हरित शैवाल का है कि इला 1 एकड़ पीछे 4 किलो जो कर कल्चर आते, मिट्टी युक्त जो कल्चर है, ओला आप मल्ला जो 2.5 से 3 इंच अगर पानी भरे खेत में ना, तो आप मन छिड़क दो। तो ये का है जो अपन खेत में ना लगभग 15 से 20 किलो नाइट्रोजन ये आपका प्रदान कर देते हैं ना। हाँ, तो ये आप मन उपयोग करो। और हाँ, जैसे जैविक जो जैसे आप जैविक धान कई मन उपयोग करते जैसे, है ना, रासायनिक खाद को बिल्कुल उपयोग नहीं करे, तो ओकर मन के लिए तो बहुत अच्छा चीज है जैव उर्वरक है, ठीक है। साथ में आप मन जो भी यूज करते हो, जीवामृत हो गए, घन जीवामृत हो गए, या फिर जो और वर्मी कंपोस्ट खाद वगैरह हो गए, कर भी उपयोग के साथ साथ जैव उर्वरक के उपयोग करे से जो मिट्टी के जो बोलना चाहिए लाभदायक सूक्ष्म जीव है, ओकर जो जनसंख्या है वो कई गुना बढ़ जाते हैं, तो मिट्टी के स्वास्थ्य भी उत्तम हो जाते हैं। जी,
2: तो भगत राम पटेल भाई,
1: हाँ भैया,
2: हाँ, तो बढ़िया डॉक्टर साहब मन आप मन के जिन प्रश्न रख रहे होकर उत्तर आप मन लती से
1: हाँ
2: और
1: भैया,
2: है ना, इसने समय निकाल के
1: हाँ
2: फोन
1: भैया,
2: लगा ले करियो, जब भी जो भी समस्या आती हमारे बीच उपस्थित रहते कार्यक्रम में,
1: हाँ
2: विशेषज्ञ
1: हाँ
2: डॉक्टर
1: भैया,
2: रमन सलाह देवे बर, है ना। तो आज आप मन फोन लगाए खर बार आप ला, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। राम राम, जय जोहार।
1: राम राम, जय जोहार भैया।
2: प्रोग लगत कोई क्या फोन आते फोन ले लेते हैं डॉक्टर साहब। भैया राम राम, जय जोहार।
3: भैया राम राम, जय जोहार भैया।
2: हाँ, आप मन कौन कहाँ बोला था भाई? नाम बताओ भैया, कुकड़े वाले भाई।
3: मेरा नाम है नंद कुमार साहू जी।
2: नंद भाई, आप मन के स्वागत है भाई। लेवा आज के सवाल अपन रखो, हमारे बीच है श्री जैन साहू जी मन, है ना,
3: हाँ भैया,
2: है ना। भुइया के भगवान उखरे से ती कहे जाते कि कहे चाहे पत्थर गिरा, चाहे पानी, चाहे करा है ना आंधी, फिर भी
3: हाँ
2: खेती
3: हाँ
2: ले संभाले के काम हमारे किसान करते। और तो देखो पानी आ गए तो पानी शांत होने देवो, और लई है, रोपा है, कई प्रकार के ऐसी विधि है, काका आप काका फसल लेना चाहते।
3: राम राम भैया,
0: हाँ भैया, राम राम, बताइए।
3: हाँ भैया, नंद कुमार साहू बोला था भैया,
0: हाँ जी
3: पोगड़ी
0: जी
3: मजरे तक।
0: हाँ जी,
3: हाँ भैया, वही खरीफ फसल के जैसे भाव कैसे करना है, तो पानी तो हमारे को ज्यादा हो गए है, भर भर गए है पूरा।
0: हाँ।

0: ओखरे व्यवस्था आप मन बताते कुछ तो रोपा वाला भी व्यवस्था चला थे हाँ तो उमा ले डाले जाए कि कैसे डाले जाए ये आप मन थोड़ा कुछ बताते छोटे भाई दा।
1: सबले पहली तो जैसे वर्षा ज्यादा हो गए है ना, जल भराव की स्थिति आ गए मान लो, तो जल निकास के व्यवस्था तो करे लगी आप मान लो है ना।
0: हाँ, जल निकास की प्रोग्राम कर रहे हैं बड़े।
1: और
0: ऊपर ऊपर वाले मनावा थी खेत की।
1: हाँ, और ओकर अलावा जैसे संभावना है ना कि जल भराव की स्थिति से आ सकते, तो फिर हम ना ऐसे सहनशील किस्म के उपयोग करे लगी धान के लिए जे है कि वो स्थिति में सही सरवाइव कर सके, जैसे कि स्वर्ण सब बना थे एक है ना, एक किस्म है आते जो जल भराव वाला स्थिति में अच्छा परफॉर्म करते। एकर अलावा सीआर धान करके एक आते 801 करके प्रजाति है। ओकर अलावा जैसे रोपाई का तरीका है ना, दूरी जैसे है ना, 2-3 पौधा प्रति स्थान लगाए और पौधों के बीच जो दूरी लभी बना के अपन ला रखे लगी। और अगर आप सीधी बुआई करत हो, मान लो सीधी बुआई करत हो, तो सबले पहले तो आप ला जल निकास के ही व्यवस्था करे लगी और बारिश के संभावनाओ है, तो बीज उपचार करते हो आप मन है?
0: जी, बीज उपचार अब वही कृषि लेके आए हैं महोदय जी, सोसाइटी से लेके आए हैं।
2: तो डॉक्टर साहब ये तो बड़ा अच्छा, किसान मन की अब देखो कई प्रकार ले समस्या आत रही थे जात रही थे, उस समस्या के निदान आप जैसे डॉक्टर मन जानकार मन समय समय में आके करत रही थो, जेखर ले हमारे किसान भाई मन लाभान्वित होत रही थे, अपन खेती किसानी ला बढ़िया समय रहत संभाल लेते कह जाए। जैसे कि आज हम बढ़िया गोट बात करें जय उर्वरक खरीफ फसल में उपयोग और महत्व, तो ये विषय में आप मन समय निकाल के आया हो किसान भाई, मतलब सुखर जानकारी दिया हो, जेकर फोन आई चोखर जवाब भी आप मन बड़ा अच्छा दिए हो, और निश्चित है कि कार्यक्रम आकाशवाणी के माध्यम ले सुनते वो किसान भाई बहनी मन अच्छा लाभ ले है। अब ये प्रारंभिक स्तर है, ये का अगर हम सुधार लिए तो निश्चित है कि पूरा फसल के कटाई तक के हमारे फसल अच्छा मजबूत शानदार जानदार और अच्छा उत्पादन देने वाला रही कह जाए। तो आप समय दिया एक आकाशवाणी परिवार के संग संग किसान भाई बहनी मन पर एक बार आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जयंत साहू साहब।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद वीरू भैया।
2: तो किसान भाई हो, ये तो रही से आज के फोन आधारित कार्यक्रम, जब अपन फोन लगाया और फोन लगा के समस्या के निदान पाया, विषय रही से जय उर्वरकों का खरीफ फसलों में उपयोग एवं महत्व। और एक संग अब कह जाए तो हम मान ला घर जाए के टाइम हो गए है, बेरा हो गए है, हम जाए के पहले एक बात आओ कि बता दिन आज के तकनीकी सहयोग आज के कार्यक्रम रही सब है माइकलिक का, अब जय जवान जय किसान वीरू वीरेंद्र भैया के राम राम।
3: संगी अभी आप मन फोन इन में आधारित कार्यक्रम न सुने हो, विषय रही से जैव उर्वरकों का खरीफ फसलों में उपयोग हो महत्व। विशेषज्ञ रही ने श्री जयंत साहू जिनमन विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर के रही ने, और संचालन करत रही से हमर वीरेंद्र भैया। तो भाई देखो आप मन तो ऐला सुन लिए हो, अब आप मन ला भाई कुछ गीत संगीत भी सुनवाबो तो आप मन के मन अलग ही है ना भाई। आप मना गोरा तो आ कि आज सरवन भैया कुछ गीत नहीं सुना थे, तो चलो भाई सुना थन कांटा गड़ जाते रेंगत पामा, वे गीत लगावा थे आसाराम पोड़ते हैं।

संगी हो अभी कतका सुग्घर गीत ला आप मन सुने हो, कांटा गड़ जाते रेंगत पाँव मा, अबे गीत लगात रहने आसाराम पोड़ते हो। अब बेरा हा हो गए है संगी हो आज के मौसम के जानकारी के। तो आज के मौसम में अधिकतम तापमान रही से 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान रही से 26 डिग्री। और जिन संगवारी मन हमन के धान के बुआई करे है तो धान के बुआई कतार म कतार और मसकरी तथा चौड़ा पत्ता वाले खरपतवार नियंत्रण हेतु नमी की उपस्थिति में धान के बुआई के 3 दिन के अंदर 25 किलोग्राम रेती में मिलाकर आवश्यकता अनुसार खरपतवासी जैसे पायराजो सल्फुरान और 200 ग्राम हेक्टेयर का छिड़काव करना चाहिए हमला। और धान में सकरा तथा चौड़ा पत्ता वाले खरपतवार नियंत्रण पर धान के बुआई के 20 ले 25 दिन के अंदर हमला 15 लीटर क्षमता वाले स्प्रेयर में 25 स्प्रेयर उपयोग करके आवश्यकता अनुसार खरपतनाशी जैसे बीपायरी बेक सोडियम 200-250 ग्राम हेक्टेयर पाछू छिड़काव करना चाहिए। और जिसे कि जिन शीघ्र और मध्यम अवधि के धान के समय तेका कतार बोनी जिन में बियासी की आवश्यकता नहीं होए तेन मन में धान के 10-15 दिन पहली पक जाते है ना भाई तेन में करना चाहिए। और धान के रोपाई वाले कुल क्षेत्र के लगभग 1/10 भाग में नर्सरी तैयार करके एकर बर हमन ला मोटा धान वाले किस्म में मात्रा 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पर थे, पतला धान के किस्म के मात्रा में 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पर थे जरूरत है। और संकर किस्म में मात्रा है 15 किलोग्राम पर थे। और ए ढंग ले हमन ला ओला लगाना चाहिए। और यदि धान के जिन कहे जाए कि हमन थरहा डालथन तो बुआई के पहली स्वयं उपचारित करके बीजा ला हमला

17% नमक के घोल में उपचारित करके बोना चाहिए। अप्रमाणिक और आधार श्रेणी के बीज लाहमल्ला एजोस्पाइरिल तथा पीएसबी कल्चर और 5-10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के दर ले हमला उपचारित करके बुआई करना चाहिए। और धान की रोपाई पंक्ति से पंक्ति में 20 सेंटीमीटर और पौधा ले पौधा के दूरी 10 सेंटीमीटर हमला रखना चाहिए। रोपनी का आयु है 20-21 दिन में के पौधा के रोपाई 2-3 पौधा ला 3 सेंटीमीटर के गहराई में हमला रोपाई करना चाहिए। और कहो ए ढंग ले हमन करथन तो बढ़िया धान है भग भग ले जाम थे और अच्छा खेत में अच्छा रहते काबर की भाई हमन उपचारित करके ही धान ला बोए में कुछ भी जेन हमन बीजा लगाथन ते उपचारित करके बोना बहुत जरूरी रहते। इसना करे में हमन के जेन बीज जेन पौधा है तेन में बीमारी उमारी ले बाँचे रहते और पौधा है बढ़िया ज़्यादा अच्छा से बढ़वार भी होते और माँ फसल घला अच्छा होते। तो संगी हो देखो भाई गोट बात करत करत बेरा हो गए घर जाए के तो अंतस माँ दया मैला राख के आज्ञा देव अपन सरवन भैया ला घर जाए के जय जोहार राम राम।

अभी हम प्रसारित कर रहे थे कार्यक्रम ग्राम सभा, रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम सुगम संगीत। श्रोता आज कार्यक्रम में सुनेंगे गायक हरिहरन के गाए कुछ गैर फिल्मी गीत। तो लीजिए सुनिए, जफर कलीम का लिखा यह गीत, स्वर और संगीत हरिहरन का है।

ज़फ़र कलीम का लिखा ये नज़्म हरिहरन की आवाज़ में हम आप तक पहुंचा रहे थे। संगीत हरिहरन का ही था। और अब लीजिए सुनिए दिल की बात एल्बम का ये नगमा। इसे लिखा है फरहत शहजादा ने, स्वर और संगीत हरिहरन का।

दिल की बात इस एल्बम का ये गीत आपने सुना हरी हरन की आवाज़ में, और अब लीजिए सुनिए काश एल्बम से हरी हरन का लिखा स्वर और संगीत से सजा ये नगमा।

काश एल्बम का ये नगमा हम आप तक पहुंचा रहे थे। स्वर संगीत और शब्द रचना थी हरिहरन की। आज कार्यक्रम सुगम संगीत में श्रोता सुन रहे थे हरिहरन के गाए कुछ गैर फिल्मी नगमे, और अब इसी के साथ ये अंक यहीं समाप्त हुआ। रात्रि के 8:15 हुए हैं। लीजिए, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम रजनीगंधा।

अपना एक अलग ही स्वभाव होता है। दिन की भाग दौड़ जब थम जाती है, हवाओं की रफ्तार कुछ धीमी हो जाती है और मन शब्दों और सुरों के साथ एक शांत संवाद करने लगता है। ऐसे ही सुकून भरे पलों में कुछ गीत हमारे अपने हो जाते हैं। कभी उनकी धुनें हमें छू जाती हैं तो कभी उनके बोल बरसों तलक बाद भी यादों के किसी कोने में मुस्कुराते हुए लौट आते हैं। साथियों, आज की इस महफिल में हम याद करेंगे दो ऐसे ही विलक्षण कलाकारों को जिन्होंने अपने अपने अंदाज में भारतीय फिल्म संगीत को समृद्ध किया। एक और है सरल लेकिन दिल में उतर जाने वाले गीतों के रचनाकार असद भोपाली, जिनकी लेखनी ने प्रेम, विरह और भावनाओं को कई शब्द दिए, तो दूसरी ओर है शास्त्रीय संगीत की विलक्षण साधिका, जिनकी आवाज ने शास्त्रीय संगीत और फिल्म संगीत के बीच एक सुंदर सेतु बनाया। तो आइए शुरुआत करते हैं उन शब्दों से जिन्होंने प्रेम को बड़ी सादगी से अभिव्यक्त किया।

20 जुलाई साल 1921 को भोपाल में जन्मे असदुल्लाह खान आगे चलकर असद भोपाली के नाम से प्रसिद्ध हुए। श्रोताओं, उर्दू शायरी से उनका रिश्ता बचपन से ही था। मुशायरों में पढ़े जाने वाले उनके अशार लोगों को पसंद आते थे और यही पहचान उन्हें मुंबई ले आई, जहां फिल्मी दुनिया ने उनकी प्रतिभा को खुले दिल से स्वीकार किया। साल 1949 में फिल्म दुनिया से उनका फिल्मी सफर शुरू हुआ। साथियों, शुरुआती वर्षों में असद भोपाली ने कई फिल्मों के लिए गीत लिखे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान बनी उनकी सहज और सरल भाषा। उनके गीतों में कठिन शब्दों का दिखावा नहीं था, ऐसे भाव थे जिन्हें हर श्रोता आसानी से महसूस कर सके। धीरे धीरे संगीतकारों का भरोसा उन पर बढ़ता गया। असद साहब ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, उषा खन्ना, रवि, कल्याण जी, आनंद जी और कई अन्य प्रतिभाशाली और प्रसिद्ध संगीतकारों के साथ मिलकर कई यादगार गीत रचे। उनके लेखने की सबसे बड़ी खूबी ये भी थी कि वे प्रेम की मासूमियत को बिना किसी बनावट के शब्द दे देते थे। और चलिए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म पारसमणि से उनका लिखा एक बेहद लोकप्रिय गीत।

श्रोताओं, कितनी सहजता है इस गीत में। यही तो असद भोपाली की पहचान थी। उनके शब्द सीधे दिल तक पहुंचते थे, बिना किसी शोर शराबे के। 60 और 70 के दशक में असद भोपाली ने लगातार कई फिल्मों के लिए गीत लिखे, फिर समय बदला, नए गीत कराए, लेकिन असद भोपाली के कलम की चमक कभी फीकी नहीं पड़ी। साल 1989 में जब राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म मैंने प्यार किया आई, तब एक बार फिर उनके लिखे गीत हर किसी की जुबान पर थे। ये शायद कम लोगों को पता हो कि इस फिल्म के कुछ सबसे लोकप्रिय गीत असद भोपाली की ही कलम से निकले थे।

श्रोताओं, साल 1990 में असद भोपाली को उनके द्वारा फिल्म मैंने प्यार किया के लिए लिखे गए गीत कबूतर जाजा के लिए प्रतिष्ठित फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, लेकिन अफसोस कि तब कुछ स्वास्थ्यगत कारणों से वे समारोह में शामिल नहीं हो सके। कुछ समय बाद 9 जून साल 1990 को असद भोपाली इस दुनिया से विदा हो गए, लेकिन उनके शब्द आज भी हमारे दिलों में जीवित हैं। श्रोताओं, शब्द जब सच्चे हों तो वे समय की सीमाओं में नहीं बंधते। शायद यही वजह है कि असद भोपाली के गीत आज भी उतने ही ताज़ा लगते हैं जितने अपने दौर में थे।

श्रोताओं, फिल्म संगीत की ये सबसे बड़ी खूबसूरती है, यहाँ एक और शायर की कलम जीवन के अनुभवों को शब्द देती है तो दूसरी ओर सुरों का साधक उन्हीं शब्दों में भावनाओं की सांस भर देता है। यही कारण है कि कई दशक बीत जाने के बाद भी कुछ गीत केवल याद नहीं आते बल्कि महसूस होते हैं। किसी शांत रात में, किसी लंबे सफ़र में या कभी अनायास ही रेडियो पर सुनाई पड़ जाए तो लगता है जैसे बीता हुआ कोई पल फिर से वापस लौट आया हो। भारतीय फिल्म संगीत की समृद्ध परंपरा में शास्त्रीय संगीत का योगदान भी उतना ही महत्वपूर्ण रहा है। अनेक संगीतकारों ने रागों की आत्मा को संजोते हुए ऐसे गीत रचे जो आम श्रोताओं के दिल तक उतर जाते हैं। और उनके दिल तक सहजता से भी पहुंच जाते हैं। इससे शास्त्रीय संगीत केवल संगीत सभाओं तक सीमित नहीं रहा बल्कि घर घर तक पहुंचा। और जब किसी शास्त्रीय गायिका की आवाज़ किसी फिल्म गीत में गूंजती है तो वो गीत मनोरंजन से आगे बढ़कर एक संगीत अनुभव बन जाता है। और अब हम बात करेंगे ऐसी ही स्वर साधिका की जिनकी आवाज़ में रियाज की तपिश भी है और भावनाओं की शीतलता भी, जिनकी गायकी ने शास्त्रीय संगीत और फिल्म संगीत के बीच एक ऐसा पुल बनाया जिस पर चलकर लाखों श्रोता सुरों की दुनिया तक पहुंचे। और अब आइए रुख करते हैं बेगम परवीन सुल्ताना की ओर।

श्रोताओं, 10 जुलाई 1950 को असम के नगांव में जन्मी बेगम परवीन सुल्ताना का संगीत से परिचय बचपन में ही हो गया था। संगीत उनके परिवार की परंपरा का हिस्सा था। प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता और दादा से उन्हें मिली और आगे चलकर उन्होंने पटियाला घराने में प्रख्यात गायक उस्ताद दिलशाद खां से विधिवत तालीम हासिल की। कठोर रियाज, अनुशासन और संगीत के प्रति पूर्ण समर्पण ने उन्हें हिंदुस्तानी संगीत की अग्रणी गायिकाओं में स्थान दिलाया।

साथियों, इनकी गायकी की सबसे बड़ी विशेषता है कि स्वरों की अद्भुत स्पष्टता, तीनों सप्तकों में सहज विस्तार और राग के भावों को पूरी गरिमा के साथ प्रस्तुत करने की क्षमता। ख्याल, ठुमरी, दादरा, टप्पा और तराना, हर शैली में परवीन सुल्ताना ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। देश विदेश के अनेक प्रतिष्ठित मंचों पर उनकी प्रस्तुतियां श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करती रही हैं। बेगम परवीन की कला केवल शास्त्रीय संगीत तक सीमित नहीं रही, उन्होंने फिल्म संगीत में भी अपनी विशिष्ट छाप छोड़ी। जब फिल्म कुदरत के लिए संगीतकार राहुल देव बर्मन ने हमें तुमसे प्यार कितना का शास्त्रीय रूप गवाया, तो परवीन से ये गीत उन्होंने गवाया, तो फिल्म संगीत के इतिहास में अलग मुकाम पर पहुंच गया। किशोर कुमार की आवाज़ में इस गीत का एक लोकप्रिय संस्करण अपनी गहराई, आलापों और भावभिव्यक्ति के कारण आज भी संगीत प्रेमियों के लिए विशेष महत्व रखता है। साथियों, कभी कभी कोई गीत केवल मनोरंजन नहीं करता, बल्कि संगीत की ऊंचाइयों का परिचय भी देता है। हमें तुमसे प्यार कितना ऐसा ही एक गीत जिसने शास्त्रीय संगीत की गरिमा को लोकप्रिय सिनेमा तक पहुंचाया।

बेगम परवीन सुल्ताना ने बहुत अधिक फिल्मी गीत नहीं गाए, लेकिन जितने भी गाए वे अपनी अलग पहचान बना गए। फिल्म पाकिज़ा में उनकी शास्त्रीय शैली की प्रस्तुति हो या बाद के वर्षों में चुनिंदा फिल्मों के लिए गाए गीत, हर जगह उनकी आवाज़ की पवित्रता और साधना हमें स्पष्ट सुनाई देती है। परवीन सुल्ताना को पद्मश्री, नाटक अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण जैसे अनेक राष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। श्रोताओं, किसी भी कलाकार के लिए साथियों सबसे बड़ा सम्मान श्रोताओं का स्नेह होता है और वो स्नेह उन्हें दर्शकों से मिलता आ रहा है लगातार। आज संयोग है कि आज ही के दिन जन्म हुआ गीत संगीत के जगत के दो कोहिनूरों का, एक और असद भोपाली और दूसरी और बेगम परवीन सुल्ताना। तो चलिए अब आपको सुनवाते हैं बेगम परवीन सुल्ताना की आवाज़ में सजा एक और मधुर फिल्मी गीत।

श्रोताओं, कुछ गीत समय के साथ पुराने नहीं होते, वे हर सुनने वाले के दिल में नया मौसम बनकर खिलते हैं। इन्हीं मधुर स्मृतियों के साथ अब कार्यक्रम रजनीगंधा से हमें दीजिए अनुमति।

0: कार्यक्रम रजनीगंधा अभी श्रोता सुन रहे थे एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। थोड़ी ही देर में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात की। व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। उत्तरी रेलवे के 680 किलोमीटर मार्ग पर सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए कवच के कार्यान्वयन को स्वीकृति दी गई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से। और विंबलडन टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुति ने भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआनपोई साइवेई ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने का बड़ा अवसर मिला है।
2: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
3: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
2: And then we can sell to further markets as well.
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए।
4: यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि ये बहुसांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान भव्य स्वागत और आतिथ्य के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार और वहां की जनता के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ऑस्ट्रेलिया से तमिलनाडु की अमूल्य धरोहरों की वापसी पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्री राधाकृष्णन ने सांस्कृतिक

धरोहरों को देश में वापस लाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। वर्ष 2014 से अब तक 600 से अधिक कलाकृतियां स्वदेश आ चुकी हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं की चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा एआई क्षेत्रों पर केंद्रित रही। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के विश्वास और मजबूती का पता चलता है। ओमान के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और ओमान के बीच सदियों पुराने समुद्री संबंध दोनों देशों के लोगों को सदियों से जोड़ते रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आज संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस परियोजना का लक्ष्य घनी आबादी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का विस्तार करना है। इस बीच रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। प्राथमिक केंद्र में इंजन की सुरक्षा जांच, मरम्मत और देखभाल की जाती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि 2026-27 के अंतर्गत 611 करोड़ रुपए से अधिक की 17 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने निरंतर समर्थन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। कौशल विकास, उद्यमिता और शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने पीएम सेतु पहल के अंतर्गत सूरत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई समूह के लिए 240 करोड़ रुपए की निवेश योजना का अनावरण किया है। इस पहल में आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया को समूह का प्रमुख उद्योग भागीदार नामित किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य 25,000 से अधिक युवाओं को आधुनिक उद्योग प्रशिक्षण, शिक्षुता और नए रोजगार के अवसर प्रदान करना है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए आज मिशन संचालन समूह की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बताया गया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में लगभग 94 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता बनाए गए हैं और 105 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड जोड़े गए हैं। श्री नड्डा ने कहा कि मिशन के अंतर्गत एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग तथा वाणिज्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। बैठक में अंतर विभागीय सहयोग बेहतर बनाने, संस्थागत क्षमता मजबूत करने तथा उत्पादकता और सेवा वितरण को विकसित करने पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से एकीकृत, कुशल और भविष्य के लिए तैयार की गई पहलों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय अयोध्या राम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग वाली कई याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। इससे पहले अयोध्या की एक अदालत ने इस मामले में 8 आरोपियों में से 3 को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले महीने इस मामले में विशेष जांच समिति का गठन किया था। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर मतदान 30 जुलाई को होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिन के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी

0: किया है एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाके, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 16 जुलाई तक भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का भी पूर्वानुमान जारी किया है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आज दिन भर आसमान में बादल छाए रहे और उमस भरा मौसम बना रहा। ईशानी यादव के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज राष्ट्रीय राजधानी के दिल्ली हाट में मेघालय अनानास महोत्सव का उद्घाटन किया। श्री सिंधिया ने कहा कि यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल के विजन पर आधारित है।
2: Fourth edition of the Pineapple Festival has been remarkable.
3: पाइनएप्पल फेस्टिवल का चौथा संस्करण बेहद सफल और ऐतिहासिक रहा है। आज यहाँ का अनानास दुनिया के कई देशों तक पहुँच चुका है। अब हमारा लक्ष्य प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित करना है ताकि अनानास से जुड़े उत्पादों में वैल्यू एडिशन बढ़ाया जा सके। इस मेले में भी ऐसे कई उत्पाद देखने को मिले हैं। इससे हमारे जैविक किसानों को अधिक लाभ मिलेगा और उनके उत्पाद भारत से बाहर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक और बेहतर तरीके से पहुँच सकेंगे।
2: ऑफ आर ऑर्गेनिक फार्मर्स टू बी एबल टू ग्रो Beyond the shores of India to far-reaching international shores.
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
4: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 828 अंक चढ़कर 77,559 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 244 अंक की बढ़त के साथ 24,207 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 6 पैसे मजबूत होकर 95.32 रुपए पर बंद हुआ।
0: नीति आयोग ने टाटा मोटर्स फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य आकांक्षी प्रखंडों में एकीकृत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है। ये सहयोग ग्राम संस्थाओं को मजबूत करने, सरकारी योजनाओं तक पहुंच में सुधार करने, शिक्षा और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को उन्नत करने पर केंद्रित है। इसमें कृषि आजीविका, स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देना भी शामिल है। वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद सफलतापूर्वक संपन्न कर भारतीय दल आज नई दिल्ली वापस आ गया। वेनेजुएला में हाल में आए भूकंपों में मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान शुरू किया गया था। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डिल्सी रोड्रिगेज ने भारत की सहायता, समर्थन और एकजुटता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। आकाशवाणी समाचार के पूर्व निदेशक और भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी सेबेस्टियन रॉबर्ट का आज नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 80 वर्ष के थे। उन्होंने देश विदेश में आकाशवाणी समाचार के लिए महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर किया। उन्होंने रक्षा और विदेश मामलों के क्षेत्र में एक कुशल संवाददाता के रूप में अपनी पहचान बनाई। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत के साथ लंदन के लॉर्ड्स मैदान में एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 6 विकेट पर 232 रन बना लिए थे। ये पहला मौका है जब लॉर्ड्स मैदान पर महिला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ने पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने सेमीफाइनल में ब्रिटेन के आर्थर फेरी को 7-6, 6-2, 6-4 से हराया। एक अन्य सेमीफाइनल में इटली के यानिक सिनर का मुकाबला सर्बिया की नोवाक जोकोविच से हो रहा है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला जत्था आज उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के लिपुलेख दर्रे से चीन में पहुंच गया। इस जत्थे में 52 सदस्य हैं। चीन में प्रवेश करने के बाद समूह आगामी दिनों में पवित्र कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की यात्रा से पहले निर्धारित शिविरों में विश्राम करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात की। व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुर्गन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। उत्तरी रेलवे के 680 किलोमीटर मार्ग पर

कन्यादान फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे। हसरत जयपुरी के बोल थे, शंकर जयकिशन की धुन थी। ये है आखिरी दांव फिल्म का गीत, मोहम्मद रफी की आवाज।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: इस संदेश के पहले आपने मोहम्मद रफी की आवाज में आखिरी दांव फिल्म का गीत सुना था। शब्दकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार थे मदन मोहन। अब लीजिए सुनिए ये गीत।

सुमन कल्याणपुर की आवाज में फिल्म पारस का गीत अभी आप सुन रहे थे। गीतकार थे इंदिवर, संगीतकार कल्याण जी, आनंद जी। और इसी गाने के साथ ही आज का आपके लिए कार्यक्रम समाप्त करने की सविता सिंह को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि।
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, सुनने को दे प्याली में।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: स्पेशल प्रोग्राम आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है गीतकार असद भोपाली पर।
1: वो जब याद आए

0: जब याद आए बहुत याद आए।
1: असित भूपाली का जन्म मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 10 जुलाई सन 1921 में हुआ। मुंशी अहमद खान के वो बड़े साहबजादे थे। जब उनका जन्म हुआ तो इनका नाम रखा गया असदुल्लाह खान। फारसी, अरबी, उर्दू और अंग्रेजी में उनकी शुरुआती पढ़ाई हुई। शहर भोपाल एक अदबी शहर, वहाँ की हवा में शायरी की खुशबू होने से कई शायर इस शहर में दिए हैं। उन्हीं में से एक जगमगाता नाम

असद भोपाली कोई 28 साल के रहे होंगे जब उन्होंने माया नगरी मुंबई का रुख किया, ताकि वो अपने शायरी का फन फिल्मी गानों की शक्ल में उभार सके। भोपाल से मुंबई आने वाले शायरों की फहरिस्त का अव्वल नाम है असद भोपाली साहब का।

असद भोपाली का मुंबई आना किस तरह हुआ, ये भी एक दिलचस्प किस्सा है। फाजली ब्रदर्स एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था दुनिया। निर्देशक थे SF हसनैन साहब। फिल्म के अभी दो गाने ही लिखे गए थे। लिखने वाले थे आरजू लखनवी साहब, जो तकसीम हिंदुस्तान के पेश नजर पाकिस्तान चले गए थे। अब फाजली ब्रदर्स के सामने मुसीबत मुंह बाए खड़ी थी कि बाकी गाने किससे लिखवाएं। इसी दौरान भोपाल के सुगम चंद कपाड़िया, जिनके भोपाल शहर में दो थिएटर थे, मुंबई आए हुए थे। उन्हें जब इस बात की खबर मिली तो फाजली साहब के सामने उन्होंने मदद की पेशकश करते हुए मशवरा दिया कि भोपाल शहर में शायरों की कमी नहीं है, अगर आप चाहो तो मैं एक

मुशायरा भोपाल में करता हूँ, नामी गिरामी शोहरा इसमें भाग लेंगे। आप और आपके निर्देशक साहब जिस किसी शायर से मुतासिर हों उससे बाकी गाने लिखवा लें। तजवीज फाजली ब्रदर्स को पसंद आई, भोपाल में मुशायरा हुआ। फिल्म के प्रोड्यूसर फाजली ब्रदर और एस एफ हसनैन साहब मुशायरे में आए। जो शायर उन्हें सबसे अच्छे लगे वो थे असद भोपाली। फिल्म दुनिया के बाकी गाने फिर उन्हीं से लिखवाए गए। इस तरह से उनकी फिल्मी गीतकारी के रूप में पेश कदमी हुई। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं हम सब उस्ताद हैं, इस फिल्म का किशोर कुमार का गाया हुआ ये

0: जाना भी।
1: फिल्म दुनिया में असद भोपाली के दो गाने थे, रफी साहब का गाया हुआ रोना है तो चुप चुप के रो, आंसू न बहा आवाज न हो। सुरैया का गाया हुआ गाना था अरमान लुटे दिल टूट गया, दुख दर्द का साथी छूट गया। अगले साल यानी 1950 में फिल्म आधी रात के दो गाने लिखने का उन्हें ऑफर मिला, इधर तो आओ सरकार, किसी की जीत किसी की हार, और दिल ही तो है तड़प गया दर्द से भर न आए क्यों। ये दोनों गाने लता मंगेशकर ने गाए थे, संगीतकार थे पंडित हुसन लाल और पंडित भगत राम। अब आपको सुना रहे हैं आगे बढ़ने से पहले ठाकुर जरनैल सिंह फिल्म का ये बड़ा ही मीठा सा गाना जिसे गाया है आशा भोसले ने।

सन 1950 में ही एक और फिल्म के लिए उन्होंने गाने लिखे। वो फिल्म थी निर्दोष। अगर आपको याद हो तो मुकेश साहब ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत इसी फिल्म से की थी। संगीतकार थे श्याम सुंदर।

फिल्म अफसाना एक सफल फिल्म थी और इसका संगीत भी खूब लोकप्रिय हुआ था। असद भोपाली को इसके बदले मिली एक फिल्म राजपूत, जो बॉक्स ऑफिस पर पिट गई थी। उन दिनों साल में इक्का दुक्का फिल्में बनती थीं। काम पाने के लिए स्ट्रगल और कंपटीशन बहुत कड़ा हुआ करता था। इसी की एक मिसाल 1954 में असद भोपाली को फिल्म गुलबहार में एक गाना लिखने का मौका मिला, जिसका संगीत खयाम साहब ने दिया था। इस फिल्म के दो संगीतकार थे, एक खयाम साहब और दूसरे धनी राम। दूसरे गीतकारों में थे जानेसार अख्तर, कैफी आजमी और शेवन रिजवी साहब। असद भोपाली का लिखा हुआ गाना था मुबारक बेगम का गाया हुआ, कलियों को चूमूं मैं तारों से खेलूं। दोस्तों 1949 से 1990 तक असद भोपाली ने कुल 100 के आसपास फिल्मों में गाने लिखे, करीब करीब 400 के आसपास गाने हैं। असद भोपाली साहब का लिखा हुआ टावर हाउस फिल्म का ये बड़ा ही मीठा सा गाना है, लता मंगेशकर और मुकेश ने इसे गाया है।

सन 50-51 के आसपास बी.आर. चोपड़ा साहब ने एक फिल्म अफसाना का निर्माण किया था। अशोक कुमार और वीणा मुख्य भूमिकाओं में थे। फिल्म के संगीतकार थे पंडित हुसन लाल और पंडित भगत राम। कुल 9 गाने थे फिल्म में, इनमें से 6 गाने लिखे थे असद भोपाली साहब ने और काफी मकबूल भी हुए थे।

पंडित हुसन लाल, पंडित भगत राम, श्री रामचंद्र, खय्याम, हंसराज बहल, लच्छी राम, धनी राम, दत्ता राम, पंडित शिवराम, श्याम सुंदर, एम दत्ता, नौशाद, ए आर परेशी, चित्रगुप्त, रवि, सी अर्जुन, सोनी कोमी, राजकमल, लाला सत्तार, हेमंत कुमार, मानस मुखर्जी, कल्याण जी आनंद जी, इतने सारे संगीतकारों के साथ उन्होंने काम किया। सबसे ज्यादा काम

उन्होंने गणेश और उषा खन्ना के साथ किया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने भी आनंद बख्शी साहब के साथ साथ असद भोपाली से गाने लिख पाए थे। फिल्म पारसमणि के जो दो गाने हैं वो जब याद आए बहुत याद आए और हंसता हुआ नूरानी चेहरा, ये काफ़ी मकबूल हुए थे।

अपने जमाने के मशहूर निर्माता निर्देशक के आसिफ साहब का एक अनोखा शाहकार था फिल्म लव एंड गॉड। इस फिल्म के लिए भी असद भोपाली साहब ने अपनी कलम का सही इस्तेमाल किया। नौशाद साहब का संगीत सब कुछ अमर सा लगता है।

सन 1989 में सूरज बड़जात्या ने बड़ी ही खूबसूरत प्रेम कहानी बनाई मैंने प्यार किया। इस फिल्म का कबूतर जा ये गाना सुपर डुपर हिट रहा, पर अफसोस इस गाने को जो सर्वश्रेष्ठ गाने का पुरस्कार मिला उसे लेने अपनी जिंदगी की आखिरी लड़ाई लड़ रहे असद भोपाली साहब भोपाल से मुंबई न आ सके।

0: 9 जून सन 1990 को इस शायर गीतकार असद भोपाली ने बगैर किसी अहलो अयाल के अपने शहर भोपाल से दुनियाए फानी को अलविदा कहा।
1: जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, दो गज

0: आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित था गीतकार असद भोपाली पर, शोध आलेख और स्वर अशोक सोनावणे का, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर छाया गीत लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। प्यार मोहब्बत इश्क की बातें आसान कहां हैं? एक ओर उनके दीदार का रहता है इंतजार, तो वहीं उस नजर का तीर भी हो जाता है दिल के आर पार। नजरों की इनायत और नजरों की बगावत का अंदाजा तो उन्हीं को है जिन्होंने खाई है चोट एक नजर की। वो एक नजर जो दिल को अपने साथ बांध ले जाए, या वो नजर जो दिल को तार तार कर जाए और दिल आह भर कर ये कह उठे।

उफ, ये प्यार करना भी किस दौर में आसान रहा है। दुनिया जमाने की नजरों की परवाह कहाँ चैन लेने देती है प्रेमी युगल को। न मिलना आसान है न बातें करना, मुलाकात यूं खत्म हुई जाती है कि मानो पलक झपकी और वक्त बदला। आखिर ये दिल दीवाना भी खुद को संभाले कब तक। कभी थामा जो हुस्न का आंचल तो बेबस नजर कह उठती है करती है यही गुजारिश।

इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, मिलने की तमन्ना है और चारों ओर जमाना है। जमाने के इस पहरेदारी के बीच आखिर दो दिल मिले तो किस तरह, ना दो बातें हो सकती हैं, ना नजरें चार। भाई कैसे संभाले ये दिले बेकरार, ना छेड़ा कोई तराना, ना बजाए कोई धुन, ढलने लगी है शाम, अब ये तो बताओ कैसे ढूंढे तुमको हम।

0: आप सुन रहे हैं छाया गीत। भाई बहुत हुई दुनियादारी, मोहब्बत की भी है अपनी जिम्मेदारी। अब इस दुनिया के सामने कर दिया है ऐलान, जो करना है कर लो, देखा जाएगा अंजाम। इस दुनिया से अब डरने का समय हुआ खत्म, आहें न भरेंगे खुल के कहेंगे हम, क्या हुआ जो दिल हमने दिया, क्या हुआ जो दिल तुमसे लिया। मोहब्बत के दुश्मन ए जमाने सुन ले, की है मोहब्बत कोई चोरी तो नहीं, दिल के बदले लिया है दिल, अब तेरी सुनेंगे नहीं।
1: हम तो मोहब्बत करेगा, दुनिया से नहीं डरेगा, चाहे ये जमाना कहे हमको दीवाना, आज हम तो मोहब्बत करेगा, दुनिया से नहीं डरेगा, चाहे ये जमाना कहे हमको दीवाना, आज हम

0: दुनिया में हम जैसे आशिक भी कहाँ होते हैं।
1: अरे वाह रे मजनू,
0: लैला लैला करेगा, लैला ओ लैला, लैला लैला करेगा, ठंडी आहें भरेगा, चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना, आज हम तुम

0: चाहे ये जमाना कहे हमको दीवाना, आज हम तो मोहब्बत करेगा दुनिया से नहीं डरेगा, चाहे ये जमाना कहे हमको दीवाना, आज हम तो मोहब्बत करेगा।
1: हमने तो इश्क में दुनिया भुला दी और वो हमसे पूछते हैं कि तुम हमारे हो कौन। अब तक तो सताती रही दुनिया की रस्में, अब कैसे तुम्हें समझाए अपने दिल की कस्में। वो तुम्हारी आंखें ही थी जिन्होंने किया था पहला वार, और काम से गया था अपना ये दिल बेकार। अब करोगी ऐसी बातें जनाब, तो इश्क का इश्क से ही मिलेगा जवाब।

आ ही गई वो प्यार की देवी हमारे सामने, देख के जिसको लगा ऐसा कि अपने दिल को थाम ले। अब क्या करेगी ये दुनिया सारी, वो तो खुद ही उसके हुस्न पर वारी। कल तक जो कहते रहे मोहब्बत को बड़ी बीमारी, आज खुद ही दिल को हाथ में लेकर कर रहे हैं खुद ही देने की तैयारी। मैं

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
2: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा,
3: रामा शेट्टी, रामा शेट्टी, रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
2: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
5: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
4: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: अभी हम रिले कर रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा की कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम एंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 11 बजे हैं समाचार अब आकाशवाणी दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए

0: बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुति ने भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआन पुई साइवेई ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने का बड़ा अवसर है।
1: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
2: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
1: एंड देन वी कैन सेल टू फर्दर मार्केट्स एज वेल।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा एआई क्षेत्रों पर केंद्रित रही। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के विश्वास और मजबूती का पता चलता है। ओमान के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और ओमान के बीच सदियों पुराने समुद्री संबंध दोनों देशों के लोगों को सदियों से जोड़ते रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का सबसे बड़ा संरक्षक बना रहेगा। उन्होंने आज विशाखापत्तनम में नौ सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि बदलते वैश्विक सुरक्षा माहौल में भारतीय नौसेना देश के समुद्री हितों की प्रभावी ढंग से रक्षा कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत के 90% से अधिक व्यापार का परिवहन समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा देश की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। रक्षा मंत्री ने कहा कि स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्र गिरी का नौसेना में शामिल होना रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आज संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। कोयला मंत्रालय ने आज वाणिज्य कोयला ब्लॉकों की नीलामी के 15वें चरण और 13वें और 14वें चरण के दूसरे प्रयास की बोलियां बोली। मंत्रालय के अनुसार नीलामी के लिए पेश किए गए 23 कोयला ब्लॉकों में से 8 के लिए कुल 21 बोलियां प्राप्त हुई हैं। मंत्रालय ने कहा कि इस नीलामी में 16 कंपनियों ने भाग लिया, जो देश के वाणिज्य कोयला खनन में उद्योग जगत की मजबूती भागीदारी को दर्शाता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani. The news read by Abhineet Shukla. Prime Minister Narendra Modi received a warm and enthusiastic welcome upon his arrival in Auckland, marking the start of his historic two-day visit to New Zealand. This is the first by an Indian Prime Minister in nearly 4 decades. After arriving in Auckland today, Prime Minister Modi was received at the airport by New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. The Indian community gathered in large numbers to greet him. The atmosphere was filled with excitement as people waved the Indian tricolour and chanted Kia ora Modi.